पंकज उदास और साथियों की आवाज़ में अभी आपने ये रचना सुनी नाम फिल्म से। और दोस्तों वाक्य में ही सच्चाई है इस रचना में। हम अपनों को माया के चक्कर में भूल जाते हैं, अपने रिश्तों को ही भूल जाते हैं और हमारे अपने लोग इंतज़ार करते रहते हैं। अगला गीत जवाहर भाटा फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

सही में सादी दाल रोटी खाएं और प्रभु के गुण गाते रहें, इसी में ही हमारी जिंदगी सही बीत जाएगी। और अगला गीत सीता और गीता फिल्म से आपको सुनवाने जा रही हूँ, मन्ना डे और आशा भोंसले की आवाज़ में है, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार आरटी बर्मन।

जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोई अनाड़ी तो कोई खिलाड़ी होता है, और बस ऐसी ही जिंदगी चलती रहती है। तो सो इस रचना के साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अपनी दोस्त वंदना चुग को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और अब सुनते हैं वंदे मातरम।

नमस्कार, यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 सितंबर 2026 सुबह के 5:53 और 42 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण। प्रस्तुति रहेगी पूनम आहूजा की।

6:44 से 6:55 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान, आज अयोध्या कांड का भाग 51 प्रसारित किया जाएगा। 6:55 से 7 बजे तक आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। सात बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में। सात बजकर दस मिनट से 7:30 पर गोल्ड सुप्रभात कार्यक्रम होगा और आज सवेरे

7:30 से 8 बजे तक आप सुनेंगे आज सवेरे कार्यक्रम और 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात। आठ बजकर 30 मिनट से 8:45 का समय रहेगा उर्दू में समाचारों का। आठ बजकर 45 मिनट से 9 बजे तक आप सुनेंगे कार्यक्रम म्यूजिकल दिल की, पेशकश रहेगी पूनम आहूजा की। 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचारों का वक्त रहेगा 9:05 पर। से 10 बजे आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी कार्यक्रम, प्रस्तुति रहेगी भावना की। ये था कार्यक्रमों का लेखा जोखा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। अठारहवां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश शामिल होंगे। इसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा से निपटने की क्षमता और जरूरी आपूर्ति श्रृंखला शामिल हैं। ब्रिक्स सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। इसका विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन शामिल होंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आपी अहमद और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वियेरा करेंगे, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद भी इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन की शुरूआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इसके बाद सभी सदस्य देश सामूहिक रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में रात्रि भोज में वे शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। हवाई अड्डे पर कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने उनका स्वागत किया। वहीं बुरंडी के राष्ट्रपति एविरिस्ते नादियने शिमिए अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। ये निर्णय बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 9वीं बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The 18th BRICS Summit is set to begin at Bharat Mandapam in New Delhi today. The two-day grand event will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. During the high-level event, leaders of the BRICS member countries are expected to discuss key issues, including global governance, multilateralism, trade and investment, technology, food and energy security, healthcare, disaster resilience, and critical supply chains. The summit is being held under India's 2026 BRICS chairship with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Several key world leaders will participate in the high-profile summit. Prime Minister Narendra Modi will be joined by Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto and Iranian President Masoud Pezeshkian. The Prime Minister is scheduled to hold a series of bilateral talks with BRICS leaders on the sidelines of the summit today. These include meetings with Chinese President Xi Jinping, Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim and Vietnamese Prime Minister Lee Min Hung. In view of the BRICS summit in New Delhi, traffic diversions and regulated movement will be implemented on key routes across national capital from 9:30 a.m. to 9 p.m. today. The traffic police have advised the commuters to plan their journeys in advance and allow extra travel time. It has also advised the citizens to prefer public transport, especially the metro, wherever feasible. In a social media post, the Delhi traffic police also asked the citizens to follow designated diversion routes and instructions issued by traffic personnel. Prime Minister Narendra Modi held bilateral meetings with Russian President Vladimir Putin, Iranian President Masoud Pezeshkian and UN Secretary General Antonio Guterres in New Delhi yesterday ahead of the 18th BRICS summit. During his meeting with President Vladimir Putin, the two leaders reviewed progress in India-Russia cooperation across a wide range of areas, including politics, trade and economy, defense, energy, space, skill mobility and people-to-people ties. Both sides also shared perspectives on key regional and global issues of mutual interest, including the conflicts in West Asia and the Black Sea region. In his meeting with Iranian President Masoud Pezeshkian, Prime Minister Modi discussed bilateral relations and recent developments in West Asia. Mr. Modi reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. The government has approved 18,77,000 houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban PMAYU 2.0, giving further impetus to the implementation of the scheme and advancing the goal of housing for all in urban areas. The decision was taken at the 9th meeting of the Central Sanctioning and Monitoring Committee held in New Delhi on Thursday. The meeting was chaired by Secretary of the Department of Urban Development in the Ministry of Housing and Urban Affairs, Satendra Sharma. The Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana PMKMY has completed 7 years today. The scheme was launched on this day in 2019 with the aim of providing social security to small and marginal farmers. Under the scheme, eligible landholding small and marginal farmers are assured a minimum monthly pension of 3,000 rupees from the age of 60. In women's cricket, India will face defending champion Sri Lanka in the summit clash of T20 Asia Cup in Dubai tomorrow. Sri Lanka stormed into the final last night, defeating Pakistan by 4 wickets. Chasing a target of 131, Sri Lanka overhauled the score in 18.4 overs, posting 134 runs for the loss of 6 wickets. In hockey, Indian women's team will take on South Korea in the

6:11 आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर। और ये समय रहता है भक्ति रस से भरपूर अर्पण का, जिसमें आज आप हैं पूनम के साथ। नमस्कार, सुप्रभात। तो सुप्रभात यानी सुबह की एक खूबसूरत शुरुआत, और इस शुरुआत में हमारे पास थोड़ा सा समय ऐसा होता है जिसमें कि हम अपने लिए अपने आप से बात कर सकें, क्योंकि दिन भर में तो ना जाने कितनी ही बातें होती हैं जो हर एक से हम करते हैं, लेकिन अपनी सांस की आवाज़ हम सुबह ही सुन पाते हैं, और हर सांस हमें जीवन का संदेश देती है। इसीलिए सुबह मेडिटेशन होता है, यानी ध्यान होता है, या योग होता है, या ये जो परंपराएं हैं ये मन की गहराइयों से ही जुड़ी हैं। इसीलिए अगर आप अपने आप से जुड़ना चाहते हैं, अपने मन को अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं, ताकि जो कुछ आप कर रहे हैं उसमें बेचैनी ना हो, उद्विग्नता ना हो, क्योंकि मन अगर वो करने नहीं देता तो फिर बेचैन हो जाता है, तो सुबह का समय अपने लिए निकालिए। कुछ ऐसा अभ्यास कीजिए जिससे कि आप अपने ऊपर स्थिर हो पाए, सजग हो पाए, जैसे अर्जुन हुए थे। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, और कैसे अर्जुन ने जब अपने ऊपर फोकस किया या अपने लिए सोचा तो उनके जीवन को सही दिशा मिली, सब बात करेंगे। लेकिन पहले ये भजन सुनते हैं।

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जी हाँ, तो बात हो रही थी अर्जुन की और इस बात की कि सुबह सुबह का समय क्यों ज़रूरी है कि हम अपने लिए निकालें। देखिए, सुबह के समय हम अपने मन को स्थिर कर पाते हैं, नहीं तो मन तो कभी भी एक जगह नहीं टिकता। कभी अतीत, कभी भविष्य, कभी अनगिनत इच्छाएं, इनके बीच ही दौड़ता रहता है। तो अर्जुन के साथ भी यही था। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन भगवान कृष्ण से मन की इसी कठिनाई की शिकायत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मन अत्यंत चंचल है, कठिनता से नियंत्रण में आता है। तो उन्होंने कहा, चंचलम ही मन है कृष्ण प्रमाथि बलवत्तृणम तास्यम निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। कि हे कृष्ण, मैं वायु को तो फिर भी वश में कर सकता हूँ, लेकिन मन को वश में करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या उत्तर दिया कि कैसे इस मन को नियंत्रित किया जा सकता है, जानेंगे। लेकिन पहले ये भजन।

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
2: छह बजकर 23 मिनट और ठीक 13 सेकंड आप सुन रहे हैं अर्पण आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर, और हम बात कर रहे थे कि अर्जुन बहुत परेशान होकर भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मन को कठिनता से वश में किया जा सकता है, और मेरे हिसाब से तो किया ही नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत चंचल है। तो हमारे भी सेम यही प्रॉब्लम है, यानी यही स्थिति है, यही मनोस्थिति रहती है कि हम भी अपने मन को वश में नहीं कर पाते। अब सोचिए कि 5000 साल पहले कही हुई बात आज भी वैसी की वैसी है, बल्कि आज तो ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि आज इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे सामने। हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो हमें एक जगह स्थिर नहीं रहने देता। तो श्री कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उत्तर दिया वो था कि असंशय महाबाहो मनोदुग्रहम चंचलम अभ्यासेन तो कौन थे वैराग्येन तो जगृह थे, कि मन बहुत चंचल है निसंदेह ऐसा है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे साधा जा सकता है। तो ये अभ्यास और वैराग्य कैसे हम लेकर आ पाएं, ये समझना भी तो जरूरी है। तो समझेंगे, लेकिन पहले ये भजन।

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
2: जी हाँ, तो बात कर रहे थे हम अर्जुन की और भगवान कृष्ण के उत्तर की कि कैसे अपने मन को हम कंट्रोल में कर सकते हैं, नियंत्रण में ला सकते हैं। और उन्होंने बताया कि अभ्यास और वैराग्य एक ऐसी चीज़ है जो समय से परे है। आप कभी भी किसी भी चीज़ का अभ्यास और वैराग्य में इस्तेमाल कीजिए, यानी इन दोनों चीज़ों को अप्लाई कीजिए, तो आप किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। चाहे वो बच्चों को आप पढ़ने के लिए कहें तो भी कि वो हर रोज़ अभ्यास करें और रिजल्ट से ज़्यादा अटैच ना हो तो वैराग्य रखें। बस इतना सा करने से ही हम अपने मन को भी नियंत्रण में कर सकते हैं। और इसके लिए एक छोटी सी कहानी है कि एक साधु नदी के किनारे ध्यान करता था और एक बच्चा रोज़ उन्हें देखने आता था। एक दिन बच्चा बोला, बाबा मैं भी ध्यान करना चाहता हूँ लेकिन मेरे विचार नहीं रुकते। तो साधु ने कहा, नदी को देखो,

क्या ये नदी अपने रास्ते में आने वाले हर पत्ते को रोकती है? बच्चे को समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा प्रश्न क्यों किया। तो आप सोचिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर इसका उत्तर देती हूँ।

0: जरूर। 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: जी हाँ, तो साधु ने बच्चे से कहा, जब वो ध्यान कर रहे थे, बच्चा भी ध्यान करना चाहता था, लेकिन परेशानी ये थी कि बच्चा ये कहता है कि मेरे मन के विचार रुकते ही नहीं। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा भी इतनी सी बात को समझता है, लेकिन हम बड़े होकर भी नहीं समझते। हम इस बात पे गौर ही नहीं करते, हम समझते ही नहीं कि हम जो कुछ सोच रहे हैं उसका हमारे कार्य पे, हमारे हेल्थ पे, यानी हमारे स्वास्थ्य पे कितना असर पड़ता है। तो जब बच्चे ने ऐसा पूछा तो साधु ने कहा कि नदी को देखो, क्या नदी अपने रास्ते में आने वाले हर पत्ते को रोकती है? तो बच्चे ने थोड़ा सा सोचा और फिर कहा, नहीं। तो साधु ने कहा कि बस ऐसे ही अपने विचारों के साथ भी करो, ध्यान में विचार आए तो हमारा काम उन्हें पकड़ना नहीं है, बस उन्हें ऐसे ही जाने देना है। तो जब मन भटके तो अपने आप को दोष मत दीजिए, बस धीरे से ध्यान में वापस अपनी सांस के ऊपर या उस परम पिता परमात्मा के ऊपर फोकस कीजिए, ध्यान लगाइए। ऐसा अभ्यास करते करते ही अपने आप सब कुछ बदलने लगेगा और पता भी नहीं चलेगा कि कब आप अपनी हर सांस को अपने नियंत्रण में करने लगे हैं।

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: जी हाँ, तो बात हो रही थी अभ्यास की, वैराग्य की, कि इसे करके हम अपने मन को नियंत्रण में ला सकते हैं। लेकिन सोचने की बात ये भी तो है कि मन नियंत्रण में हो जाए तो क्या होगा। तो जानते हैं क्या होगा कि जब हमारा मन हमारे नियंत्रण में रहेगा तो हम जो व्यवहार करते हैं ना, वो भी हमारे नियंत्रण में हो जाएगा। नहीं तो ऐसा होता है कि हम किसी के साथ कुछ गलत बोलना नहीं चाहते, फिर भी मुंह से निकल जाता है। गुस्सा करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी कर देते हैं। हम बाहर बहुत अच्छे रहते हैं लेकिन जब परिवार के पास पहुंचते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति हर रोज भगवान के दर्शन के लिए जाता था लेकिन घर लौटते ही परिवार पर क्रोधित हो जाता था। तो एक संत ने उनसे पूछा कि तुम जब भगवान के दर्शन करते हो तो किसे प्रणाम करते हो? तो उन्होंने कहा भगवान को। तो संत बोले, और जब घर में होते हो तो? तो व्यक्ति चुप हो गया। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम प्रणाम करते हैं या भक्ति की बात करते हैं या अपनी मनोस्थिति को ठीक करने की बात करते हैं या ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं, इबादत करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका पता हमें तब चलता है जब हमारे व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो। जब हम किसी को भी कोई भी तरह से दुख ना पहुंचाएं, चोट ना पहुंचाएं। जानते हैं भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति द्वेष रहित है, करुणामय है, अहंकार से मुक्त है, वही उन्हें प्रिय है। तो सुबह के समय इसीलिए तो है कि हम अपनी साधना को इतना अच्छा कर लें, अपने आप से इतनी अच्छी तरह से जुड़ जाएं, जब आंखें बंद करें तो अपने आप से इतनी बातें कर लें कि किसी और में किसी और को देख ही ना पाए, सब में अपने आप को ही देखें और जो व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वही सबसे करें। बस ये व्यवहार जब बदल जाता है ना, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी साधना को इतनी अच्छी तरह से पक्का कर लिया है कि आप सुबह जो अपने आप से बात करते हैं पूरा दिन आपके साथ स्थिर रहती है। नहीं तो सुबह का समय तो हम बहुत अच्छी तरह से रहते हैं लेकिन दोपहर तक आते आते, शाम तक आते आते बिल्कुल भूल जाते हैं और अपने उसी व्यवहार में लौट जाते हैं जिससे दूर भागना हम चाहते थे।

11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
2: जी हाँ, तो बात हो रही थी सुबह की और अभ्यास की, वैराग्य की, कि मन को हम अपने नियंत्रण में रख सकें। लेकिन कई बार हम ऐसा भी समझते हैं कि मन को नियंत्रण में रखना है तो फिर सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन क्या यह सही है? यही बात जानने के लिए एक शिष्य एक गुरु के पास गए और उन्होंने पूछा कि अगर मैं संसार को छोड़ दूँ तो ठीक है, लेकिन अगर क्या यहीं रहूँ तो क्या यह रहकर भी अपने मन को नियंत्रण में रख सकता हूँ? तो जो गुरु थे उन्होंने उसे एक तेल से भरा हुआ पात्र दिया और उसे अपने हाथ में रखकर चलने को कहा। जब वो चल रहा था तो रास्ते में बहुत शोर था, लोग आ जा रहे थे, लेकिन वो शिष्य पूरा ध्यान रखकर उस पात्र को लेकर जा रहा था कि तेल छलक ना जाए। वापस आया तो गुरु ने पूछा, तुमने रास्ते में क्या क्या देखा? शिष्य बोला, कुछ नहीं, मेरा ध्यान तो तेल पर था। तो गुरु ने कहा, इसी तरह से संसार में भी अपने कर्तव्य निभाने जरूरी हैं, लेकिन अंदर से ईश्वर का स्मरण बना रहे। बस ऐसा करके ही हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, ऐसे ही अपने मन को वश में रख सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं और वैराग्य को अपना सकते हैं। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी इसे अपनाने में जन्मों लग जाते हैं, तो कोशिश तो फिर भी करनी पड़ेगी और वो भी आज से ही। फिलहाल अर्पण यहीं तक। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस। तो पूनम को दीजिए अनुमति, अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा।

शोक संताप और ग्लानि के सागर में डूबते उतराते सुमंत्र ने सारा दिन अयोध्या नगरी के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर बिताया। जब शाम का अंधकार घिरने लगा तो उन्होंने नगर में प्रवेश किया। महामंत्री का अकेले वापस आना सुनकर रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल प्रेतों के निवास स्थल जैसे लगने लगे। सुमंत्र को मौन तथा व्याकुल देखकर रानी कौशल्या उन्हें अपने महल में लिवा ले गईं। वहां का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है। आभूषण रहित मलिन राजा दशरथ धरती पर पड़े हैं। वाणी के नाम पर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी मात्र यही शब्द सुनाई पड़ते हैं। सुमंत्र ने जय जीव कहकर प्रणाम किया तो राजा ने उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया।

0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। इसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशकियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था सहित सहयोग के प्रगति की समीक्षा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशकियन के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिमी एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच में श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्ष भी संबोधित करेंगे। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एसोचैम ने वैश्विक सहयोग और ग्लोबल साउथ के लिए शक्तिशाली मंच के रूप में ब्रिक्स को मजबूत करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की है। एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा कि ब्रिक्स सहयोग को ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदलने का प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सम्मेलन को देखते हुए आज सवेरे 9:30 बजे से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेष रूप से मेट्रो रेल लाइन का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। ये निर्णय बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 9वीं बैठक में लिया गया। बैठक में योजना के दूसरे चरण में किफायती आवास श्रेणियों के अंतर्गत लगभग 29,000 अतिरिक्त मकानों को भी मंजूरी दी गई। ये अनुमति असम, बिहार, गुजरात, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के लिए है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान के 131 रन के लक्ष्य को श्रीलंका ने 4 विकेट खोकर 19वें ओवर में हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में 7 बार की विजेता टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। एशिया कप जूनियर महिला हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। चीन के मोकी में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:45 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The 18th BRICS Summit is set to begin at Bharat Mandapam in New Delhi today. The 2-day grand event will bring together

7:10 और ठीक 54 सेकंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर। और ये है गोल्ड सुप्रभात, आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसमें मैं हूँ पूनम, आपके साथ स्वागत आप सभी का दिल से। तो ये दिल से जो स्वागत है ये दिल्ली के सारे श्रोताओं का और दिल्ली से दूर बैठे उन सारे प्यारे श्रोताओं का है जिनकी सुबह हमारी आवाज़ के साथ शुरू होती है। वैसे कहा जाता है कि हर सुबह एक नया पन्ना होता है और उस पन्ने पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, बेशक शुरुआत शिकायतों से करें या मुस्कुराहटों से। तो ज़रा गहरी सांस लीजिए, चेहरे पर एक प्यारे से मुस्कान ले आइए, बिल्कुल ऐसी ही। और कोई आपसे अगर पूछे ना घर में कि ये सुबह सुबह आप इतने खुश क्यों हैं, तो कह दीजिए क्योंकि सुबह सुबह मैं गोल्ड सुप्रभात सुन रहा हूँ। तो ये गोल्ड सुप्रभात एक सुबह की शुरुआत नहीं है, उम्मीदें भी जगाता है, ये याद दिलाता है कि आज का दिन नया है, संभावनाओं से भरा है। और सबसे खास बात यह है कि हमारे पास इसे खूबसूरत बनाने का एक और मौका है। तो चाय की पहली चुस्की, बालकनी में आती हवा, सुबह की सैर, हर पल को महसूस करने का समय होता है। ये याद रखिए कि सुबह की शुरुआत अगर शुक्रिया के साथ हो, चेहरे पर मुस्कान के साथ हो, तो दिन अपने आप ही सुनहरा बन जाता है। और ये वादा कि इसे हम सुनहरा बनाएंगे, ये हर रोज़ अपने आप से करना ज़रूरी हो जाता है।

0: करेगा। ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

7:17 और ठीक 24 सेकंड हो चले हैं। आप सुन रहे हैं गोल्ड सुप्रभात, और बात सुप्रभात की हो लेकिन सूर्योदय की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? या फिर मौसम की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि सुबह से उठते हैं हम, अपनी बालकनी में जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसा रहने वाला है आज का मौसम, और उसी के हिसाब से अपने दिन की प्लानिंग करते हैं। तो आपको बता दें कि आज सुबह हल्के फुल्के तो बादल हैं ही, लेकिन धूप भी है तो मिला जुला सा नज़ारा है, और तापमान इस वक्त 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो हल्की बारिश की संभावना भी बनी हुई है, इसलिए आप बाहर निकल रहे हैं तो छाता साथ में रखिएगा। और हाँ, सूर्यदेवता की बात करें तो वो 6:04 के आसपास आ गए थे और शाम को 6:30-32 के आसपास जाएंगे। सोचिए, सूर्य देवता ने अपना काम शुरू कर दिया है, आसमान अपना रंग बदलने लगा है, पेड़ों पर चिड़िया चहक रही हैं, तो फिर हम क्यों पीछे हैं? आज का मौसम चाहे बादलों वाला हो या धूप वाला, मूड हमेशा शानदार रहना चाहिए। और मौसम बेशक हमारे हाथ में ना हो, लेकिन मुस्कुराते रहना ये तो हमारे अपने हाथ में ही है।

जी आकाशवाणी एफएम गोल्ड यानी गोल्ड सुप्रभात। और अब बात उस चीज की जो सुबह नहीं बल्कि पूरे दिन को बदल सकती है, सोचिए क्या। सोच लिया आपने और बिल्कुल सही सोचा, वो है योग। योग जो सुबह को बिल्कुल एक एनर्जी वाली सुबह बना देता है। और ये सिर्फ शरीर को मोड़ना या कठिन आसन को करने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपने शरीर, अपनी सांस, अपने मन को जोड़ने का एक सुंदर तरीका है। तो सुबह के कुछ मिनट अगर आप निकाल लें तो दिन की शुरुआत बहुत शांत और व्यवस्थित हो सकती है, डिसिप्लिन हो सकती है। शुरुआत बहुत आसान आसनों से कर सकते हैं, जैसे आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, कुछ गहरी सांस लीजिए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं या कुछ सरल योगाभ्यास किए जा सकते हैं। तो ये याद रखना ज़रूरी है दोस्तों कि योग कोई प्रतियोगिता नहीं है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी तुलना करें, बल्कि ये अपने आप को और बेहतर बनाने का एक तरीका है। तो अपने शरीर की सीमा का सम्मान करना ज़रूरी है और

जरूरत हो तो एक प्रशिक्षित योग शिक्षक की सलाह भी ली जा सकती है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि सुबह जब हम अपने शरीर को समय देते हैं तो हमारे मन को एक संदेश जाता है कि मैं अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ। तो सिर्फ 5 से 10 मिनट अपने नाम कर लीजिए, फोन थोड़ी देर बाद देख सकते हैं, पहले खुद से मिलना ज़रूरी है। बस इतना मिल लेंगे ना तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी, ये आबो हवा, ये आसपास का माहौल और ये अंदर का माहौल भी।

जी हाँ, तो इस प्यारे से गाने के साथ फिलहाल समय हो चला है कि आपसे विदा लीजिए ली जाए। तो अभी आप सुन रहे थे गोल्ड सुप्रभात, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे। तो पूनम चलती है, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार।

सुप्रभात कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आकाशवाणी स्टूडियो से आज की हसीन सुबह का आगाज करते हैं। पहले कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यार भरे नगमे से करते हैं। फिल्म का नाम है वक्त, आशा भोसले की आवाज और गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने।

0: तो लीजिए, हम भी आ चुके हैं आपका अपना कार्यक्रम आज सवेरे लेकर, जहां सुबह में ताजगी है वहीं समाचारों में ब्रिक्स की झलक भी आपको देखने को मिलेगी। और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी सरबजीत कौर। नमस्कार सरबजीत।
1: नमस्कार फरत। एंड इंडीड लिसनर्स, दिस इज द काइंड ऑफ वार्म एंड लविंग कनेक्शन दैट वी हैव विद आवर डियर डियर लिसनर्स। एंड यस ऑफ कोर्स, वेलकम वंस अगेन टू टुडेज आज सवेरे शो, अ शो of 30 minutes which is dedicated to news, entertainment, information wrapped up with some music and all this and much more. So let's begin the program with the news updates.
0: जी सरबजीत, बिल्कुल। आप आइए मुख्य समाचारों से शुरुआत कर लेते हैं। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाली 11 देश शामिल होंगे, जिसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हैं। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन भी शामिल होंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वियेरा करेंगे, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह वह मंच है जहां ये देश ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण तैयार करते हैं। वहीं निरंतर संवाद के माध्यम से ब्रिक्स बहुपक्षीय संस्थाओं के भीतर ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। इसमें विकास, स्थिरता और नवाचार को एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। साथ ही यह ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी प्रमुखता देता है। भारत का उद्देश्य ब्रिक्स को एक रचनात्मक, समाधान केंद्रित और परिणाम वाले मंच के रूप में और अधिक सशक्त बनाना है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: After that update, some more news on BRICS. Prime Minister Narendra Modi held bilateral meetings with Russian President Vladimir Putin, Iranian President Masoud Pezeshkian and UN Secretary General Antonio Guterres in New Delhi yesterday ahead of the 18th BRICS summit. During his meeting with President Vladimir Putin, the two leaders reviewed progress in India-Russia cooperation across a wide range of areas including politics, trade, economy, defense, energy, space, skilled mobility and people-to-people ties. Both sides also shared perspectives on key regional and global issues of mutual interest, including the conflicts in West Asia and the Black Sea region.
3: Global trade तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: In his meeting with Iranian President Masoud Pezeshkian, Prime Minister Modi discussed bilateral relations and recent developments in West Asia. Mr. Modi reiterated India

0: India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy.
1: और सरबजीत, अब दो सरकारी योजनाओं की बात कर लेते हैं जो जिससे काफी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। पहली है हमारी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसके आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। और इस पेंशन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक और सम्मान के साथ जीवन जीने में सहायता देना है। और अब बात करेंगे दूसरी योजना की, प्रधानमंत्री आवास योजना। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पीएमएवाईयू के द्वितीय चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। इससे योजना के क्रियान्वयन को और गति मिलेगी तथा शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। यह निर्णय बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 9वीं बैठक में लिया गया।
0: Amid the worsening flood situation in Uttar Pradesh, the state government has stepped up relief and rescue operations to assist affected families. At least 25 districts are currently affected by flooding following heavy rains and the release of water from dams. Our correspondent brings us the details.
2: According to the State Relief Commissioner's Office, around 8,000 people were shifted to safe locations on Thursday alone, taking the total number of evacuated people to around 21,000. Affected people are also being provided safe shelter, with around 3,000 individuals currently staying in relief camps. Keeping in view the risk of disease outbreaks during floods, the Health Department has also remained fully active. A total of 1,165 medical teams have been deployed in affected areas. Meanwhile, intermittent rain continues in many districts of the state, including the state capital Lucknow. The Meteorological Department has predicted rain with thunder and lightning in the eastern and western part of the state in the next 5 days. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
0: Moving on further, Saudi Arabia said that it has shut down a major cross-country oil pipeline a day after it was attacked by drones. The statement by country's Ministry of Energy said the east-west pipeline after it was attacked the day before. The statement called the shutdown a precautionary measure. The east-west pipeline has played a key role in Saudi Arabia's ability to continue exporting oil following the disruption of the Strait of Hormuz during Iran's war with the US and Israel. The Saudi Foreign Ministry blamed the attack on several drones that came from Iraq. The Iraqi government condemned the assault and ordered an investigation. The shutdown comes as Iranian-backed Houthi rebels in Yemen captured part of Mocha and a strategic island of Perim in the Bab al-Mandeb Strait at the southern entrance to the Red Sea, opening a new front in the ongoing West Asia conflict. Moving on now to the world of sports. In hockey, Indian women's team will take on South Korea in the first semi-final of Junior Asia Cup at Mochi in China this morning. The match is scheduled to begin at 9:45 a.m. Indian Standard Time. Defending champions India stormed into the last four with a ruthless 19-0 demolition of Pakistan in their quarter-final match. India topped Elite Pool E with an impressive unbeaten record, earning 10 points from 3 dominant victories and 1 hard-fought draw. In the other semi-final, host China will face Japan in the second semi-final at Mochi. The match will begin at 12 noon Indian time. China defeated Kazakhstan 4-0, while Japan beat Bangladesh 2-0 in quarterfinals to seal spot in the semi-finals.
1: और सरबजीत, अब बात कर लेते हैं महिला एशिया कप क्रिकेट की। दुबई में कल भारतीय टीम फाइनल में पिछले चैंपियन श्रीलंका के साथ खेलेगी। श्रीलंका की टीम आज पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची। 131 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम ने 4 विकेट खोकर 8 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। और श्रोताओ, आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुख करेंगे महानगरों की खबरों का। सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद से जुड़ी खबरों को हम जानेंगे। सरबजीत, चेन्नई में क्या है खास?
0: जी फरत, द ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन हेल्ड अ मीटिंग एंड सपोर्ट कैंप फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज अंडर जॉइंट कमिश्नर फॉर एजुकेशन के करपकम. अ टोटल ऑफ 7,302 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैव बीन आइडेंटिफाइड, ऑफ विच 509 चिल्ड्रन हैव सिंस बीन एनरोल्ड इन स्कूल्स एंड 263 एडमिट.

0: to industrial training institutes. A total of 28 children with disabilities and special needs required additional support. Psychologists also held individual counseling sessions with children and parents to assess each child's educational, psychological, and family-related needs. The Southern Railways has completed electrification of its broad gauge network in the zone. With the entire 5,068 route kilometer broad gauge network electrified, the zone can facilitate seamless electric train operations across the network without the need for traction change, marking a milestone in its modernization efforts. The railway said electrification would reduce dependence on fossil fuels and contribute to a more sustainable and a future-ready railway station. Farhad, this is a classic example of development, use of technology and conservation of the environment.
1: बिल्कुल सरबजीत, और इन तीनों चीजों का जब तालमेल होता है तभी जो देश है वो प्रगति की राह पकड़ता है.
0: जी,
1: और अब आगे बढ़ते हैं ब्रिक्स को लेकर. एक और खबर हमारे पास है दिल्ली में. नई दिल्ली में इस चीज के लिए आज सुबह 9:30 बजे से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन किया गया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से यात्रा के लिए निकलने से पहले अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी है. पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन विशेषकर मेट्रो रेल का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों से परिवर्तित मार्गों और यातायात संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है. और आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर भी जाकर रूट डायवर्जन देख सकते हैं. वहीं दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने शहर के सभी 12 जोनों में खतरनाक भवनों, अनधिकृत निर्माणों और मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली एमपीडी और भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी प्रवर्तन कार्रवाई तेज कर दी है. एमसीडी अधिकारियों ने बताया कि एमपीडी और भवन उपनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तथा अनधिकृत और खतरनाक निर्माणों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के उद्देश्य से सभी जोनों में ये परिवर्तन अभियान चलाया जा रहा है.
0: So indeed, Farhad, you shared a very important piece of information. You spoke about the traffic diversions, the regulated traffic flow, which is going to be there today as well as tomorrow in the backdrop of the BRICS summit. So in such situations, the public transport system has a very huge role to play.
1: बिल्कुल, दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो परिवहन की जो चीजें हैं वो बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि अक्सर शनिवार और रविवार ऐसा दिन होता है जब लोग घर से बाहर निकलते हैं और उसी हिसाब से अपना प्लान वो करते हैं.
0: आई बिलीव दैट advisory also says and recommends the usage of more metro today and tomorrow. Meanwhile, let's continue with the news from Bengaluru now. Karnataka Upayukta Justice K.N. Fanendra has ordered a suo motu complaint against media reports on the supply of substandard shoes to the students of government schools. He has directed the Superintendent of Police of Karnataka, Lokayukt of respective districts to examine the relevant documents, conduct a preliminary investigation in this regard, and submit a preliminary report along with the documents within 2 weeks. Various daily newspapers in the state had reported that the shoes distributed to government school children in the current year are of poor quality and were torn within a week of use.
1: और अब महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं सरबजीत. मुंबई को टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को मुंबई के अन्ना लीला कॉलेज में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा की उपस्थिति में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया. श्री वर्मा ने कहा कि ये सामुदायिक जागरूकता रैली केवल एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज में स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करने का एक सशक्त माध्यम भी है. उन्होंने कार्यक्रम में भाग लेने वाले 1,200 से अधिक छात्रों को टीबी जागरूकता की शपथ दिलाई. राज्यपाल ने इस बात पर भी जोर दिया कि टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकती है और ये कहा कि लक्षणों को नजरअंदाज न करना और पूरी तरह से और शीघ्र स्वस्थ होने के लिए डॉक्टर से परामर्श करना भी बेहद जरूरी है. तो सरबजीत, मुझे लगता है कि पहले लोग सोचते थे कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ी है ये आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि नहीं, इसका इलाज संभव है लेकिन आपको डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से चीजें करनी होगी.
0: In fact, that's a great milestone in the world of medicine, Farhad. And I have, you know, another piece of news which is kind of another appeal to conserve nature while we celebrate our festivals. So the Telangana Governor Shiv Pratap Shukla on Friday appealed to the public to celebrate Ganesh Chaturthi with environmental responsibility by choosing eco-friendly clay idols instead of plaster of Paris versions. Extending his festival greetings to citizens across the state and country, the governor emphasized that protecting nature must go hand in hand with religious devotion to prevent water pollution during upcoming immersions.
1: जी आपने गणेश उत्सव की बात की तो कोंकण रेलवे ने भी सोमवार से शुरू होने वाले गणेश उत्सव के दौरान यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए व्यापक व्यवस्था की है क्योंकि

0: सबसे बड़ी चीज हो जाती है रेलवे में जो है जब यात्री जो है सफर करते हैं तो भीड़ भाड़ से बचने के लिए इस तरह का जो है स्टेप उठाया जाता है। तो आज से विभिन्न स्टेशनों पर इसके लिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र शुरू हो जाएंगे और साथ ही प्रमुख स्टेशनों पर मुफ्त स्वास्थ्य जांच, रक्तदान शिविर और रक्त शर्करा एवं रक्तचाप की जांच के लिए चिकित्सा बूथ भी स्थापित किए जा रहे हैं। रेल यात्री सहायता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे और स्टेशनों को हर समय साफ रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास जारी हैं। इसके अलावा स्टेशनों पर पूजा सामग्री, सजावट का सामान, ताजे फल फूल और मोदक बेचने वाले आकर्षक स्टॉल भी इस बार लगाए जा रहे हैं।
1: So this indeed, you know, is a clear and a very lovely picture of the festivities which are going to follow up in the few coming up months. And I think will that, do you have more on the metro updates for,
0: जी,
1: for our listeners?
0: कोलकाता हमारे पास रह गया है तो कोलकाता की भी बात कर लेते हैं। उद्योग मंत्री तापस रॉय के अनुसार जापान ने पश्चिम बंगाल में उद्योग और व्यापार में नए निवेश करने में रुचि दिखाई है। कोलकाता के शिल्प सदन में जापान की विदेश मामलों की राज्य मंत्री सातो अयानो से मुलाकात के बाद आकाशवाणी से बातचीत में श्री तापस रॉय ने बताया कि भारत जापान राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ अगले वर्ष कोलकाता में भव्य रूप से मनाई जाएगी। तो एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि ये हासिल हो गई है। और अब आइए मौसम का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो आज बारिश की संभावना है, गर्मी से निजात मिल सकती है हम सभी को। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं मुंबई की अगर बात की जाए तो दोपहर या शाम के समय बारिश के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं कोलकाता में ओलावृष्टि की संभावना है, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: सो इंडीड लिसनर्स, इफ यू यू नो पे हीड टू दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच कम्स इन आवर आज सवेरे प्रोग्राम, यू कैन प्लान योर डे मच अहेड। सो चेन्नई विल हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 27 डिग्रीज, मैक्सिमम इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 36 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु विल हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन, मिनिमम temperature will be around 22 degrees while the maximum may go up to 32 degrees Celsius. Hyderabad will also have cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers, minimum temperature around 25 degrees Celsius, maximum may go up to 32 degrees Celsius.
0: और सरब जी, तब हम अपने श्रोताओं को आज की तारीख याद दिला दें क्योंकि अगला जो सेगमेंट हमारा वो हम उसमें इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। आज है 12 सितंबर 2026 और आज वीरता, विज्ञान और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के लिए आज का दिन जाना जाता है।
1: Absolutely. So what is the first piece of information that you're to share with us, Farad?
0: जी सरब जी, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1897 की सारागढ़ी का युद्ध यहाँ हुआ था। 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश भारतीय सेना के किस सिख सैनिकों ने सारागढ़ी की चौकी पर हजारों अफरीदी और ओरकजाई आदिवासी लड़ाकों के खिलाफ अद्भुत वीरता से मुकाबला किया। हवलदार ईश्वर सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने अंतिम सांस तक मोर्चा संभाला। ये युद्ध सैन्य इतिहास में असाधारण वीरता और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। वहीं 1944 की अगर बात की जाए तो जर्मनी में आज ही के दिन दाखिल हुई थी अमेरिकी सेना। जी हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद से जर्मनी यूरोप में अमेरिका की रक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। युद्ध खत्म होने के बाद जर्मनी पर 10 साल तक मित्र देशों का कब्जा रहा, अमेरिकी सेना उसका ही हिस्सा थी। हालांकि सेना की संख्या धीरे धीरे कम होती गई।
1: Moving on further in the list, 12 September 1990, Konkan Railway Project formally was launched with the opening of a project office in Ratnagiri in the Maharashtra state.
0: और सरबजीत, अगर हम पीछे जाएं 1959 में तो बात कर लेते हैं, आज ही के दिन सोवियत संघ का लूना 2 अंतरिक्ष यान चंद्रमा तक पहुंचा। इसे चंद्रमा की सतह तक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष यान भी माना जाता है। और 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला। वहीं 1873 में पहले टाइपराइटर की बिक्री शुरू हुई थी आज ही के दिन।
1: 1998 ऑन दिस डे इंडिया मलेशिया साइंड एन अग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कुआलालंपुर।
0: 1966 में भारतीय तैराक मिहिर सेन ने डॉर्डेनल्स जलडमरू मध्य को तैर कर पार किया। वहीं 1991 में अंतरिक्ष शटल STS-48 अंतरिक्ष में छोड़ा गया।
1: 2002 ऑन 12 सितंबर इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट कल्पना 1 वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग अ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
0: और बात कर लेते हैं अब सन 2012 की, तो आज ही के दिन एप्पल ने iPhone 5 और iOS 6 लॉन्च किया था।
2: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
0: और सरबजीत, अब क्या है हमारे श्रोताओं के लिए खास?
1: जी फरद, नाउ वी आर यू नो द फैग एंड ऑफ आवर प्रोग्राम, द लास्ट सेगमेंट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग दिस प्रोग्राम आई कुड सी यू यू नो ब्रिंगिंग अ कलेक्शन फॉर आवर लिसनर्स, सम ब्यूटिफुल नंबर्स यू ब्रॉट, सो आई एम श्योर वी गोइंग टू शेयर सम नॉलेज एंड देयर इज गोइंग टू बी लॉट्स ऑफ म्यूजिक.
0: बिल्कुल, बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे, साहित्यकारों की बात करेंगे, स्वतंत्रता सेनानियों की बात करेंगे और एक महत्वपूर्ण जोड़ी की बात करेंगे, लेकिन हम उनका नाम अभी नहीं बता रहे, अंत में बताएंगे.
1: बिल्कुल.
0: और आप आइए, सबसे पहले हम आज याद कर रहे हैं बलदेव प्रसाद मिश्र को, जिन्होंने आज ही के दिन हमें अलविदा कहा. हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, न्यायविद और लोक सेवक रहे ये. वे भारत के ऐसे प्रथम शोधकर्ता भी थे जिन्होंने अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजी के बदले हिंदी में अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया, डी लिट की उपाधि अर्जित की. बलदेव प्रसाद मिश्र ने तुलसी दर्शन पर विशेष कार्य किया. लगभग 85 प्रकाशित और अप्रकाशित कृतियां उनके साहित्य प्रतिभा की परिचायक रही.
1: And listeners, today we are paying tributes to Bibhuti Bhushan Bandopadhyay. Bandopadhyay was one of the greatest Bengali writers, known for his simple yet deeply emotional storytelling. Born on 12 September 1894, Bibhuti Bhushan Bandopadhyay wrote about rural Bengal, nature, poverty, childhood, family relationships and human struggles. His most famous works include Pathar Panchali, Aprajita Arnaik, Chandar Pahar, Adarsh Hindu Hotel and Ichamati. His most famous novel, Pathar Panchali, introduced us to the unforgettable world of Appu and Durga. What makes the book so powerful is that it doesn't need grand events to move us. A childhood afternoon, a journey through the countryside, a family meal, the excitement of seeing something new. Bibhuti Bhushan could turn these small moments into something extraordinary. And Farhat, you would also appreciate that in today's fast-paced world, we always try to find happiness in something great. But actually, if we look back, writers like Bibhuti Bhushan Bandopadhyay epitomize that even small things can be, you know, made very, very beautiful, and small moments of life must be enjoyed and lived through.
0: बिल्कुल सरबजीत, और वैसे भी देखा जाए तो अपनी मातृभाषा में लिखना एक अपने आप में अद्भुत कला होती है, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो आपकी मातृभाषा के अंदर पाए जाते हैं और आप उसी को ही पन्नों पर, कागज में उकेरते हैं और अपनी जो एक छवि है वो प्रस्तुत करते हैं.
1: इनफैक्ट समटाइम्स फरद, द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टोरीज आर हिडन इन द सिंपलेस्ट लाइव्स, एंड दैट्स वॉट वी सी इन द राइटिंग्स ऑफ द ग्रेट विभूति भूषण बंदोपाध्याय.
0: बिल्कुल, और हम बात कर रहे हैं मातृभाषा की, तो एक और तमिल एक्टर की बात कर लेते हैं. अभिनेता रहे ये, गायक रहे, पत्रकार रहे, लेखक रहे, रंजन की. इन्होंने तमिल फिल्म अशोक कुमार से फिल्मी दुनिया में शुरुआत करी और लेकिन उन्हें पहचान SS वासन की फिल्म चंद्रलेखा से मिली. रंजन ने तमिल फिल्मों के साथ ही हिंदी फिल्मों में भी काम किया. वो हरफन मौला व्यक्ति थे. उनकी फिल्म चंद्रलेखा अपने दौर की सबसे महंगी फिल्मों में शुमार थी. उत्तर भारत में प्रदर्शित होने वाली दक्षिण भारत की ये पहली फिल्म थी जिसे दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रियाएं मिली. तमिल के बाद इन्होंने हिंदी संस्करण को लेकर रंजन बॉलीवुड में आए और बहुत सारी फिल्में इनकी लोकप्रिय रही, मंगला, सपेरा, मदारी. तो एक काम करते हैं, हम अपने श्रोताओं को उन्हीं की एक फिल्म से ये प्यारा संगीत सुनवा देते हैं.

0: There he devoted himself to the perfection of firearms. In 1861, the same year the war started, he invented the Gatling gun. A year later, he founded the Gatling Gun Company.
1: और आज हमें नोबेल पुरस्कार विजेता अमरीकी कृषि विज्ञानी नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ने भी अलविदा कहा, जिन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है। और अब हम बात कर रहे हैं ऐसी जोड़ी की जिसके बारे में हमने आपको बताया था, सरबजीत शंकर जयकिशन। हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो पूरे दौर की आवाज बन जाते हैं, और जयकिशन का नाम ऐसा ही था। 12 सितंबर 1971 को महज 41 साल की उम्र में दुनिया छोड़ने वाले जयकिशन आज भी अपने संगीत के ये लोगों के बीच मौजूद हैं।
0: एंड इन फैक्ट फरत, एज यू राइटली सेड, यू नो सम म्यूजिक पीसेज आर टाइमलेस
1: जी,
0: एंड आई बिलीव दैट्स द रियल टेस्ट ऑफ ग्रेट म्यूजिक। एंड इफ यू वर टू टॉक अबाउट जयकिशन, द आंसर इज अ बिग येस। यू नो हिज म्यूजिक इज टाइमलेस, एंड इफ यू लिसन टू हिज म्यूजिक इवन टूडे, वी कैन वे बैक रिलेट टू द एरा व्हेन दिस म्यूजिक वॉज एक्चुअली कंपोज्ड।
1: बिल्कुल, और हारमोनियम बजाने का उनको बेहद शौक था, और उन्हीं की इस प्रतिभा को पहचाना राज कपूर ने। और पहले दोनों ने फिल्म आग में संगीतकार राम गांगुली के सहायक के रूप में काम किया, और फिर 1949 में आई बरसात ने शंकर जयकिशन की किस्मत बदल दी।

0: So romance, longing, happiness, heartbreak, Jai Kishan could make you feel all of it through a tune.
1: बिल्कुल, बरसात के संगीत की सफलता के बाद शंकर जयकिशन हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े नामों में शामिल होने लगे. फिल्म आवारा के गीतों से ये जोड़ी और चमक उठी.

तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म 420 से, ये मेरा जूता है जापानी, वो भी काफी लोकप्रिय हुआ था। अब आइए सुन लेते हैं फिल्म आवारा से घर आया मेरा परदेसी। तो हम किसी तकनीकी खराबी की वजह से हम आपको ये गाना नहीं सुनवा पा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत गीत था घर आया मेरा परदेसी। और अब आइए सुन लेते हैं फिल्म अंदाज से शंकर जयकिशन जोड़ी द्वारा गाया ये गीत, जो लिखा था हसरत जयपुरी ने, जिंदगी एक सफर है सुहाना। जिंदगी

0: Interestingly, listeners, Shankar Jaikishan collaborated with legendary singers such as Mukesh, Mohammad Rafi, Manna Day, Kishore Kumar and Talat Mehmood.
1: और 12 सितंबर 1971 को जयकिशन का निधन लिवर सिरोसिस के कारण हो गया और उनके जाने के बाद शंकर ने संगीत देना जारी रखा और कई फिल्मों में संगीतकार का नाम शंकर जयकिशन ही रखा गया। तो इसके साथ ही अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा।
0: लिसनर्स, होप यू एंजॉयड टुडेज आज सवेरे। स्टे ट्यून्ड फॉर समाचार प्रभात फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ फैंटास्टिक डे। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। दो दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप।

0: राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। 2 दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह वह मंच है जहां ये देश ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण तैयार करते हैं। वहीं निरंतर संवाद के माध्यम से ब्रिक्स बहुपक्षीय संस्थाओं के भीतर ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। इसमें विकास, स्थिरता और नवाचार को एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। साथ ही यह ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी प्रमुखता देता है। भारत का उद्देश्य ब्रिक्स को एक रचनात्मक, समाधान केंद्रित और परिणाम वाले मंच के रूप में और अधिक सशक्त बनाना है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
2: रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल या हुनर वाले पेशेवरों को एक दूसरे के यहाँ काम करने का अवसर देना और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित कई क्षेत्रों में भारत रूस के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही संघर्षों को सुलझाने का सही तरीका है और भारत शांति के प्रयासों में सहायता के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। श्री मोदी ने भारत के इस रुख को लगातार दोहराया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दुनिया भर में चल रहे टकरावों, आवागमन की आजादी, सतत विकास, अक्षय ऊर्जा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आसियान के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ते नदायशिमे अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी भारत पहुंच चुके हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक और थाईलैंड उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री सिहासिक फुआंग केटकेओ भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम शेटिमा नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा और अनुपम की रिपोर्ट के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।

0: किया।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
1: आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। इसमें भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना।
0: भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा है कि ब्रिक्स सहयोग को ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
2: ब्रिक्स वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओनली ट्रेड।
3: ब्रिक्स का गठन व्यापार के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन अब इसका दायरा कई क्षेत्रों तक बढ़ गया है, जैसे वैश्विक राजनीति, आतंकवाद, कृषि और आवागमन से जुड़ी चुनौतियां। इसलिए 11 देशों का इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि इन देशों के बीच न सिर्फ व्यापार और सहयोग बढ़ना चाहिए, बल्कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, यह दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने वाला मंच बन सकता है।
2: वसुदेव कुटुंबकम।
0: सम्मेलन को देखते हुए आज सवेरे 9:30 बजे से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो कल सवेरे 6 बजे से सभी लाइनों पर अपनी सेवाएं शुरू करेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी।
7: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक देश भर में 24,96,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें हरियाणा राज्य करीब 5,75,000 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बिहार में 3,46,000 से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। फरवरी 2026 तक इस योजना के कार्यान्वयन और इसकी पहुँच आने पर 540 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कराना है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिवांगी रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अकेले गुरुवार को लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि अब तक लगभग 21,000 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय भी मुहैया कराया जा रहा है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के फैलने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय है। प्रभावित इलाकों में लगभग 1100 डॉक्टरों

0: टीमें तैनात की गई हैं। उधर राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद किया गया है। यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरेम द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में एक है। एशिया कप जूनियर महिला हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। चीन के मोकी में ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:45 पर खेला जाएगा। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में 7 की विजेता भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 से हराया था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले बिजनेस फोरम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने सम्मेलन शीर्षक से लिखा है, ब्रिक्स व्यापारिक बाधाएं हटाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ब्रिक्स से बना ब्रिज, पुतिन से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शांति के प्रयासों में मदद के लिए तैयार। जनसत्ता के अनुसार समुद्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। दैनिक जागरण लिखता है, ब्रिक्स मंच पर साथ आए मोदी पुतिन फिजिशकियन। अमर उजाला की सुर्खी है, जीडीपी आंकड़ों पर आईएमएफ की मोहर, भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया। कहा आईआईपी और पीपीआई की नई श्रृंखला से बेहतर होगी आंकड़ों की गुणवत्ता। पत्र के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में 45 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बढ़त। ई कॉमर्स शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, ऑनलाइन खरीदारी में फर्जी डिस्काउंट पर लगाम, एमआरपी बढ़ाकर बड़ा डिस्काउंट का खेल नहीं चलेगा, पिछले 30 दिन की सबसे कम कीमत बतानी होगी। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मलेशिया को हरा भारतीय हॉकी टीम फाइनल में, जूनियर एशिया कप में लगातार 4थे और कुल 6ठे खिताब पर नजरे। लोकसत्ता के अनुसार महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 से हराया। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, भारतवंशी वसुधा ने अमरीकी गणितज्ञ जोआन को 92 की उम्र में दोबारा गणित से जोड़ा। मैथ से दूरी बना चुकी थी जोआन, लेकिन छात्रा वसुधा की जिद ने भर दी ऊर्जा। गुरु शिष्या के जुगलबंदी ने सुलझाई 100 पुरानी गणित की थ्योरी। जनसत्ता ने दिया है, भारत नवोन्मेष प्रदर्शनी में 37 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचार प्रदर्शित। शिक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के समन्वय से किया आयोजन, नवाचारों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना है उद्देश्य। हिंदुस्तान ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, पश्चिमी विक्षोभ तय करेगा सर्दियों में प्रदूषण। पत्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का सीधा संबंध शरद ऋतु के दौरान समुद्र के तापमान से होता है। इसके आधार पर प्रदूषण की गंभीरता का अनुमान एक मौसम पहले ही लगाया जा सकता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। 2 के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. 18th BRICS summit to begin in New Delhi today. Discussions to focus on global governance, trade, security and supply chains as world leaders assemble for 2-day summit. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with Chinese President Xi Jinping and other BRICS leaders today on the sidelines of summit. Prime Minister Modi pushes for secure sea lanes, open supply routes and removal of trade barriers at BRICS Business Forum to sustain global trade. Saudi Arabia shuts vital pipeline after attack. Houthi rebels in Yemen seize strategic islands, tightening grip on key Red Sea shipping route. Uttar Pradesh

0: to people ties. Both sides also shared perspectives on key regional and global issues of mutual interest, including the conflicts in West Asia and the Black Sea region. In view of the BRICS summit in New Delhi, traffic diversions and regulated movement will be implemented on key routes across the national capital from 9:30 a.m. to 9 p.m. today. The traffic police have advised the commuters to plan their journeys in advance and allow extra travel time. The government has approved 18,77,000 houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0, giving further impetus to the implementation of the scheme and advancing the goal of housing for all in urban areas. The decision was taken at the 9th meeting of the Central Sanctioning and Monitoring Committee held in New Delhi on Thursday. The Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana has completed 7 years today. The scheme was launched on this day in 2019 with the aim of providing social security to small and marginal farmers. Under the scheme, eligible landholding small and marginal farmers are assured a minimum monthly pension of 3,000 rupees from the age of 60. More from our correspondent.
1: Since its launch, Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana has emerged as an important pillar of the social security for the farming community. Over these 7 years, the scheme has steadily expanded its reach among farmers across the country. It reflects the government's continued commitment to ensuring that farmers can look towards their later years with greater financial security and dignity. By February 2026, over 24.96 lakh farmers have enrolled under the scheme across the country. Haryana state leads with around 5.75 lakh enrollments, followed by Bihar with over 3.46 lakh. Since 2019, more than 540 crore rupees has been utilized to support the scheme's implementation and outreach as of February 2026. It brings the promise of financial security closer to millions who spend their working lives securing India's food security. Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
0: This is Akashwani giving you the news.
2: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
0: Welcome back to Morning News on Akashwani. Saudi Arabia said it has shut down a major cross-country oil pipeline a day after it was attacked by drones. The statement by country's Ministry of Energy said the decision was taken to shut down oil pipeline as a precautionary measure. The East-West pipeline has played a key role in Saudi Arabia's ability to continue exporting oil following the disruption of the Strait of Hormuz during Iran's war with the US and Israel. A report.
3: The Saudi Foreign Ministry blamed the attack on several drones that came from Iraq. The Iraqi government condemned the assault and ordered an investigation. The shutdown comes as Iranian-backed Houthi rebels in the Yemen captured port of Mocha and a strategic island of Perim in the Bab el-Mandeb Strait at the southern entrance of the Red Sea, opening a new front in the ongoing West Asia conflict. The Bab el-Mandeb Strait is one of the world's key shipping lanes. The advance could boost Iran's strategy of driving up the world oil and gas prices to pressure the United States. On the other hand, the 1,200-kilometer pipeline shut down by the Saudi Arabia is the key alternative route for Kingdom's oil to reach global markets. Bypassing the Strait of Hormuz, it has been shipping 4 million to 5 million barrels per day in recent months, amounting to 4-5% of global supply. With Vishal's report, Shigyasa Pandey from Newsdesk.
0: Amid the worsening flood situation in Uttar Pradesh, the state government has stepped up relief and rescue operations to assist affected families. At least 25 districts are currently affected by flooding following heavy rains and the release of water from dams. Our correspondent has the details.
4: According to the State Relief Commissioner's Office, around 8,000 people were shifted to safe locations on Thursday alone, taking the total number of evacuated people to around 21,000. Affected people are also being provided safe shelter, with around 3,000 individuals currently staying in relief camps. Keeping in view the risk of disease outbreaks during floods, the Health Department has also remained fully active. A total of 1,165 medical teams have been deployed in affected areas. Meanwhile, intermittent rain continues in many districts of the state, including the state capital Lucknow. The Meteorological Department has predicted rain with thunder and lightning in the eastern and western part of the state in the next 5 days. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
0: In Odisha, heavy to very heavy rain is likely at isolated places over southern part of the state today. The weather system over the Bay of Bengal is likely to sustain enhanced rainfall activity across Odisha. More from our correspondent.
5: Heavy to very heavy rainfall is likely at isolated places over southern Odisha today. The India Meteorological Department has issued an orange warning for Nabarangpur, Koraput and Malkangiri, where very heavy rain is expected at one or two places. Heavy rainfall is also likely over Nuapada, Balangir and Kalahandi. Several districts including Raigada, Gajapati, Ganjam, Kandhamal and Malkangiri may experience thunderstorms, lightning and gusty winds. IMD has advised people to remain alert, particularly in vulnerable and low-lying areas. Fishermen have also been advised to exercise caution as weather conditions along the Odisha coast are likely to remain rough at times. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: The India Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy rainfall accompanied by thunder squall for coastal Andhra Pradesh today. According to the IMD, heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Pradesh, Maharashtra and Chhattisgarh during the day. On to sports. In hockey, Indian women's team will take on South Korea in the first semi-final of the Junior Asia Cup at Mochi in China this morning. The match is scheduled to begin at 9:45 a.m. Indian Standard Time. Defending champions India stormed into the last four with a ruthless 19-0 demolition of Pakistan in their quarter-final match. India topped the elite pool A with an impressive unbeaten record, earning 10 points from three dominant victories and one hard-fought draw. Host China will face Japan in the second semi-final at Mochi. In women's cricket, India will face defending champion Sri Lanka in the summit clash of T20 Asia Cup in Dubai tomorrow. Sri Lanka stormed into the final last night, defeating Pakistan by 4 wickets. Chasing a target of 131, Sri Lanka overhauled the score in 18.4 overs, posting 134 runs for the loss of 6 wickets. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
6: Thank you, Anuja. The dailies today have highlighted India's readiness to help bring peace with diplomacy being the only way forward as world leaders arrive for the BRICS summit. The Pioneer headline says, a warm embrace and a tough message. The Tribune writes, Modi presses Putin for Ukraine peace, safety of Indian seafarers in Black Sea. Building economic bridges during the BRICS summit in the national capital, the Indian Express states, grouping looks at pragmatic cross-border payment mechanism, local currency trade. AI cancer screening among 37 innovations on display in BRICS Bharat Innovates after making its debut in France, writes the Indian Express. Hotels see rise in advance bookings for destination weddings within the country after PM emphasized on travelling domestically, cites the Economic Times. And finally, India's BRICS hamper serves up culture, cuisine and convenience containing Bihar's sattu and makhana, Odisha's coffee, focusing on vocal for local, notes the Pioneer. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Sarabjit. And now before we end the bulletin, the headlines once again. 18th BRICS Summit to begin in New Delhi today. Discussions to focus on global governance, trade, security and supply chains as world leaders assemble for 2-day summit. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with Chinese President and other BRICS leaders today on the sidelines of summit. Prime Minister Modi pushes for secure sea lanes, open supply routes and removal of trade barriers at BRICS Business Forum to sustain global trade. Saudi Arabia shuts vital pipeline after attack. Houthi rebels in Yemen seize strategic islands, tightening grip on key Red Sea shipping route. Uttar Pradesh government steps up relief and rescue operations as flood affects 25 districts. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। 18वीं ब्रिक्स सरबरा कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। आलमी रहनुमा इस दो रोजा तकरीब में अपने मुजाकरात में आलमी हुक्मरानी, तिजारत, सलामती और सप्लाई चेन पर तवज्जो मरकूज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सरबरा कॉन्फ्रेंस से अलग चीन के सदर शी जिनपिंग और ब्रिक्स के दीगर रहनुमाओं के साथ बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स तिजारती फोरम में महफूज समुद्री रास्तों, सप्लाई के खुले रास्तों और तिजारती रुकावटों को दूर करने की अहमियत पर जोर दिया है ताकि आलमी तिजारत में पायदारी लाई जा सके।
7: सऊदी अरब ने हमले के बाद अहम पाइपलाइन बंद कर दी है। यमन में रूसी बागियों ने अहम जजीरों पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से बहर अहमर के जहाजरानी के रास्ते पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सैलाब से मुतासर 25 जिलों में राहत और बचाव का काम तेज कर दिया है। और हॉकी में चीन में जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में भारतीय खवातीन की टीम जनूबी कोरिया के साथ खेलेगी। अब खबरें तफसील से। 18वीं ब्रिक्स सरबरा कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होने वाली है। इस दो रोजा अजीमुशान तकरीब में 11 उभरती और तरक्की करती हुई मईशतें यकजा होंगी, जिनमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहदा अरब अमारात शामिल हैं। आला सतह की इस तकरीब के दौरान उम्मीद है कि ब्रिक्स रुकन मुल्कों के रहनुमा अहम मामलात पर बातचीत करेंगे, जिनमें आलमी हुक्मरानी, कसीर मुल्की निज़ाम, तिजारत और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी, हिफ्जान सेहत, कुदरती आफात की सूरत में इस्तेहकाम और अहम सप्लाई चेन शामिल हैं। ये सरबरा कॉन्फ्रेंस भारत की 2026 की सदर नशीनी के तहत मुनाकिद की जा रही है, जिसका मौजू है मजबूती, इख्तिरा, तावुन और पायदार तरक्की का क्याम। इस मशहूर और मारूफ सरबरा कॉन्फ्रेंस में दुनिया के बहुत से अहम रहनुमा शिरकत करेंगे, जिनमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग, जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा, मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के सदर मसूद पिस्कियान शामिल हैं। यह सरबरा कॉन्फ्रेंस ब्रिक्स रुकन मुल्कों के बंद कमरे में एक जलसे के साथ शुरू होगी, जिसका मौजू है सबकी शमूलियत वाली आलमी हुक्मरानी और कसीर मुल्की निज़ाम को मुस्तहकम बनाना। ब्रिक्स रुकन मुल्कों के रहनुमा भारत मंडपम में भारतीय इख्तिराकारों की एक नुमाइश भी देखेंगे। इसके बाद एक मुश्तरका शजरकारी की तकरीब मुनाकिद होगी और फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक शानदार इशाइये का एहतमाम करेंगे। वजीर आजम आज सरबरा कॉन्फ्रेंस से अलग ब्रिक्स रहनुमाओं के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। इनमें चीन के सदर शी जिनपिंग, अबूजबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथोपिया के वजीर आजम आबी अहमद अली, मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम और वियतनाम के वजीर आजम ली मिन हंग शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
8: भारत को ब्रिक्स 2026 में मरकजी हैसियत हासिल है। ये रहनुमा ऐसे वक्त यकजा हो रहे हैं जब आलमी सतह पर तब्दीलियों और गैर इस्तेहकाम का दौर है। इन रहनुमाओं की मीटिंग मगरबी एशिया और बहरे अस्वद में तनाज़ियात, तवानाई के बहरान और आबो हवा में तब्दीली के पस मंजर में मुनक्किद हो रही है। ब्रिक्स उभरती हुई बड़ी मईशतों के माबेन तालमेल रखने वाली माशी पॉलिसी से मुतालिक एक अहम प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। लगातार मुज़ाकरात के जरिए ये फोरम कसीर मुल्की इदारों में आलमी जुनूब के मफादात को आगे बढ़ाने का एक तरीक़ाकार बन गया है। इसके एजेंडे में तरक्की, मालिया, टेक्नोलॉजी, तिजारत और आवाम से आवाम के दरमियान तबादले शामिल हैं। इस ग्रुप से आलमी सतह पर उभरती हुई मईशियतों की बढ़ती हुई इक्तसादी अहमियत और उमंगों की अक्कासी होती है। भारत की सदर नशीनी इस मौजू के तहत जारी है। मजबूती, इख्तरा, ताउन और पायदार तरक्की का क्याम, ये फोरम आलमी जुनूब की उमंगों को भी उजागर करता है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं इरम नाज।
7: वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने आलमी तिजारत की पायदारी के लिए महफूज समुद्री रास्तों, खुली सप्लाई वाले रास्तों और जहाजियों की हिफाजत पर जोर दिया है। उन्होंने ब्रिक्स मुल्कों पर भी जोर दिया है कि वो तिजारती रुकावटों को दूर करने और तिजारत के लिए मौकों में इजाफा करने की जानिब काम करें। जनाब मोदी ने यह बात कल शाम नई दिल्ली में भारत मंडपम में ब्रिक्स तिजारती फोरम के रहनुमाओं के एक जलसे से खिताब करते हुए कही। वजीर आजम ने कहा कि भारत जहाजरानी की आजादी और जहाजियों की हिफाजत की पुरजोर वकालत करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आलमी तिजारत में बिला रुकावट आमदोरफ्त के लिए महफूज समुद्री रास्ते लाजमी हैं।
9: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
7: वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने कहा कि तिजारत में आलमी सतह पर बढ़ती हुई रुकावटों के दौरान भारत इक्तिसादी पुल तामीर करना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत आज तरक्की और इस्तेहकाम के लिए एतमाद के एक वसीले की पेशकश करता है। उन्होंने कहा कि भारत ने 2014 से अब तक तकरीबन 40 मुल्कों के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे किए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स में भी उसका

0: नजरिया यही है कि तिजारत के लिए रुकावटों को दूर और मौकों में इजाफा किया जाए।
1: आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। इसमें भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना।
0: नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के तनाजुर में कौमी राजधानी के अहम रास्तों पर ट्रैफिक आमदोरफ्त महदूद रहेगी। इसके अलावा अहम रास्तों में तब्दीली की गई है जो सुबह 9:30 से रात 9 तक नाफिज रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से इजाफी वक्त के पेश नज़र अपने सफर को पहले से मनसूबा बंद करने की सलाह दी है। लोगों से अवामी ट्रांसपोर्ट खासतौर से मेट्रो से सफर करने को तरजीह देने की सलाह दी गई है। अलबत्त एडवाइजरी में कहा गया है कि इमरजेंसी और लाजमी खिदमात से वाबस्ता गाड़ियों को तरजीही तौर पर रास्ता दिया जाएगा। हुकूमत ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU 2.0 के तहत 10,77,000 मकानात को मंजूरी दी है ताकि स्कीम के नफाज और शहरी इलाकों में सबके लिए मकान के मकसद की जानिब आगे बढ़ने को मजीद रफ्तार दी जा सके। जुमेरात को नई दिल्ली में मुनक्किद हुई मंजूरी और निगरानी से मुतालिक मरकजी कमेटी की 9वीं मीटिंग में यह फैसला किया गया। मीटिंग की सदारत मकानात और शहरी उमूर की वजारत के शहरी तरक्की के महकमे के सेक्रेटरी जनाब सतेंद्र सिंह ने की। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY के आज 7 बरस मुकम्मल हो गए हैं। छोटे और पसमानदा किसानों की गुजर बसर को यकीनी बनाने के मकसद से ये स्कीम 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। स्कीम के तहत जिन छोटे व पसमानदा अहल किसानों के पास जमीनें हैं उनके लिए 60 बरस की उम्र के बाद से 3,000 रुपये महाना पेंशन का बंदोबस्त है। पेंशन स्कीम का मकसद यह है कि मोमर किसान माली इस्तेहकाम के साथ बावकार जिंदगी गुजार सकें। गुज़िश्ता 7 बरस में PMKMY छोटे और मामूली किसानों के लिए एक अहम समाजी तहफ्फुज़ के कदम के तौर पर उभरी है ताकि वो बेहतर माली एतमाद के साथ अपने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर सकें। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अपने आगाज से ही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसान बिरादरी के लिए समाजी तहफ्फुज के एक अहम सुतून के तौर पर उभरी है। 7 वर्षों के दौरान इस स्कीम ने पूरे मुल्क के किसानों तक अपनी रसाई में मुसलसल व बतदरीज इजाफा किया है। ये स्कीम हुकूमत के इस अज़्म की अक्कासी करती है कि किसान अपने बुढ़ापे की उम्र तहफ्फुज और बावक़ार तौर पर गुजार सकें। फरवरी 2026 तक 26,96,000 किसान इस स्कीम के तहत अपना इंदराज करवा चुके हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा तकरीबन 5,75,000 किसान इसी स्कीम का हिस्सा बने हैं। इसके बाद बिहार का नंबर है जहां 3,46,000 किसानों ने इस स्कीम में शमूलियत अख्तियार की है। 2019 से फरवरी 2026 तक स्कीम के नफाज और रसाई में मदद के लिए 540 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। ये स्कीम मुल्कगीर सतह पर किसानों के लिए समाजी व माली तहफ्फुज का निज़ाम है। वो किसान जो मुल्क की खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर देते हैं। शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सऊदी अरब ने कहा है कि उस पर जो ड्रोन हमले किए गए उसके एक दिन बाद उसने मुल्क के पार एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब की तवानाई की वजारत ने एक बयान में कहा है कि पाइपलाइन को बंद करने का यह फैसला एक एहतियाती कदम के तौर पर किया गया है। मशरकी मगरबी पाइपलाइन का आबनाए हुरमुज में अमरीका और इसराइल के साथ ईरान की जंग के सबब रुकावट आ जाने के बाद तेल की दरामद जारी रखने की सऊदी अरब की सलाहियत में एक अहम रोल अदा किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: सऊदी अरब की वजारत खारिजा ने इराक की तरफ से किए गए बहुत से ड्रोन हमलों को जवाब के तौर पर पेश किया है। इराक हुकूमत ने इस हमले की मजम्मत की है और तहकीकात का हुक्म दिया है। पाइपलाइन को यमन में ईरान की हिमायत वाली बागियों हूसी के हाथों मौखा बंदरगाह और बहर अहमर में जुनूबी दाखिले के मकाम पर बाबल मंदेब आबनाए के अहम जजीरे पर कब्जे किए जाने के बाद बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से मगरबी एशिया के तनाजे में एक नया महाज खुल गया है। ये आबनाए दुनिया के जहाज रानी की अहम तरीन रियासतों में से एक है। इस पेशरफ्त से तेल और गैस की आलमी कीमतों में इजाफे की ईरान की हिकमत अमली को तकवीयत मिलेगी, जिससे वो अमेरिका पर अपने दबाव में इजाफा करेगा। अगर हूसियों ने आबनाए हुरमूज से अरब जहाजों जजीरो नुमा की पीछे की तरफ बाबल मंदेब आबनाए पर अपना कब्जा जारी रखा तो उनके हामी ईरान को अमेरिका के साथ अपनी जंग में अहम पेशरफ्त हासिल हो सकती है और एक दूसरी बड़ी राहदारी के जरिए

0: सप्लाई में कमी आ सकती है और तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। जिज्ञासा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं इरम नाज।
1: उत्तर प्रदेश में सैलाब की बिगड़ती हुई सूरत हाल के दौरान रियासती हुकूमत ने सैलाब से मुतासर कुनबों की मदद के लिए राहत और बचाव कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। शदीद बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद कम से कम 25 जिले सैलाब से मुतासर हैं। उधर ओडिशा में आज रियासत के जनूबी हिस्से में मुख्तलिफ मकामात पर शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। भारतीय महकमा मौसमियात ने नबरंगपुर, कोरापुट और मलकानगिरी जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासत के दीगर हिस्सों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज आंध्र प्रदेश के लिए गरज चमक और तेज आंधी के साथ शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी दिन के दौरान तेज बारिश का इम्कान है। ओडिशा, तेलंगाना, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी रियासतों के मुख्तलिफ हिस्सों में भी इसी तरह के मौसमी हालात रहेंगे। हॉकी में चीन के मौकी शहर में जूनियर एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में आज सुबह भारतीय खवातीन की टीम जनूबी कोरिया के साथ खेलेगी। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 9:45 पर शुरू होगा। दिफाई चैंपियन भारत क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को 19-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंचा है। भारत ने पूल ए के तहत जबरदस्त रिकॉर्ड कायम किया है। उसने 3 जबरदस्त कामयाबियों से 10 पॉइंट्स हासिल किए और एक मैच पूरी जद्दोजहद से बराबरी पर खत्म किया है। एक और सेमीफाइनल में मेजबान चीन मौकी शहर में दूसरे सेमीफाइनल में जापान के साथ खेलेगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 12:00 शुरू होगा। और खवातीन के क्रिकेट में T20 एशिया कप में कल दुबई में खेले जाने वाले खिताबी मुकाबले में भारत का सामना श्रीलंका से होगा। गुज़िश्ता रात श्रीलंका ने पाकिस्तान को 4 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद शहजाद।
2: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी अखबारात ने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग से मुतालिक खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, ब्रिक्स ने दुनिया के ताकतवर तरीन G7 को पीछे छोड़ा। रोजनामा प्रताप ने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर जनाब वजीराजम जनाब नरेंद्र मोदी की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दोतरफा बातचीत की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार ने मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि रूस यूक्रेन तनाज़े का हल डिप्लोमेसी और बातचीत से ही मुमकिन है। इसके अलावा दीगर उर्दू अखबारात ने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी की ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान के साथ दो तरफा मुलाकात को भी अहमियत के साथ जगह दी है। इसी अखबार ने दिल्ली के भारत मंडपम में बिजनेस फोरम के इफ्तिताही इजलास से कॉमर्स व सनत के वजीर पीयूष गोयल और वजीर खारजा एस जयशंकर के खिताब को भी उर्दू अखबारात ने सफ़े अव्वल पर दी है।
1: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। 18वीं ब्रिक्स सरबरा कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। आलमी रहनुमा इस दो रोजा तकरीब में अपने मुजाकरात में आलमी हुक्मरानी, तिजारत, सलामती और सप्लाई चेन पर तवज्जो मरकूज करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सरबरा कॉन्फ्रेंस से अलग चीन के सदर शी जिनपिंग और ब्रिक्स के दीगर रहनुमाओं के साथ बातचीत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स तिजारती फोरम में महफूज समुद्री रास्तों, सप्लाई के खुले रास्तों और तिजारती रुकावटों को दूर करने की अहमियत पर जोर दिया है ताकि आलमी तिजारत में पायदारी लाई जा सके। सऊदी अरब ने हमले के बाद अहम पाइपलाइन बंद कर दी है। यमन में रूसी बागियों ने अहम जजीरों पर कब्जा कर लिया है जिसकी वजह से बहर अहमर के जहाजरानी के रास्ते पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई है। और इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

0: का एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये है म्यूजिकल दिल लगी, यानी आपका पसंदीदा शो, जिसमें हमारी कोशिश ये होती है कि ये जो समय है ना, ये आप अपने लिए निकालें। तो इस समय बहुत सारी टेंशन होती है, ऑफिस की होती है, परिवार की होती है, मीटिंग्स की होती है, मैसेजेस की होती है, काम की होती है, जिम्मेवारियों की होती है, सब कुछ होता है। और आज तो आप शायद वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, तो ऐसे में सुबह का एक दौर जब ख़त्म हो चुका है, आपने चाय का कप पी लिया है, अब ज़्यादा ज़रूरत है कि आप उस दिन को आसान बनाएं, व्यवस्थित करें। तो व्यवस्थित करने में क्या क्या कर सकते हैं, ये आज हम बात करते हैं अभी। लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं एक प्यारे से गाने के साथ। मैं हूँ पूनम, आपके साथ स्वागत आप सभी का दिल से।
1: ठीक है
2: धीरे धीरे।
0: गाना सुनते सुनते सोचिए ये आवाज किसकी है।
1: सुनो, अगर तुम लोगों को घंटे भर के लिए छत पे खेलने दिया तो शोर तो नहीं मचाओगे?
2: नहीं।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो एचआईवी से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
3: मेरे वाले में निडलिया इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
2: आठ बजकर 55 मिनट और ठीक 2 सेकंड हो चले हैं और हम बात कर रहे थे सुबह सुबह की प्लानिंग की कि हम जब चाय का कप लेकर बैठते हैं, चाय के चुस्कियों के साथ दिन के बारे में सोच रहे होते हैं, ऑफिस, परिवार, फ़ोन, मीटिंग, मैसेज, काम, जिम्मेवारियां, ये सारी हमारी लिस्ट में होती हैं, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कागज़ और पेन लें और सिर्फ 3 चीज़ें लिखें। पहली कि आज का सबसे ज़रूरी काम क्या है। दूसरी, ऐसा कौन सा काम है जिसे पूरा करने के बाद आपको बहुत खुशी होगी, संतोष मिलेगा, सेटिस्फेक्शन होगा। और तीसरा, आज आप अपने लिए क्या करने वाले हैं। हो सकता है पहला जवाब हो कि आपको ऑफिस के लिए कुछ कमिटमेंट है, उसे पूरा करना है। दूसरा हो सकता है कि आप किसी पुराने दोस्त को कॉल कर लीजिए। और तीसरा हो सकता है कि शाम को 20 मिनट टहलने जाएंगे, यानी वॉक के लिए जाएंगे। तो पूरे दिन की बहुत लंबी लिस्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 3 प्रायोरिटीज़ आप तय कर लेंगे तो उससे भी पूरा

तो इसे प्यारे से गाने के साथ फिलहाल पूनम को दीजिए इजाजत, पर आप कहीं मत जाइएगा, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद म्यूजिकल दिल लगी का सफर जारी रहेगा। तो अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही एफएम गोल्ड सुनते रहिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्था के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: बैठक के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद

0: बिन जायद अल नहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशकियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आसियान के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाओं को दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है। सऊदी अरब ने हौसी विद्रोहियों के ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बंद कर दी गई। ये तेल पाइपलाइन ऐसे समय में बंद की गई है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया। इससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। मूसलाधार वर्षा और बांधों से पानी छोड़ने के कारण राज्य के 25 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। एशिया कप जूनियर महिला हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। चीन की मुक्की में यह मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:45 पर खेला जाएगा। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम ने इसी स्पर्धा में मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में 7 की विजेता भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 से हराया था। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश के लिए तेज हवाओं और मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में तेज वर्षा की संभावना है। उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। विभाग ने कल तक तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The 18th BRICS Summit is set to begin at Bharat Mandapam in New Delhi today. The two-day grand event will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. During the high-level event, leaders of the BRICS member countries are expected to discuss key issues, including global governance, multilateralism, trade and investment, technology, food and energy security, healthcare, disaster resilience, and critical supply chains. The summit is being held under India's 2026 BRICS chairship with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Several key world leaders will participate in the high-profile summit. Prime Minister Narendra Modi will be joined by Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto and Iranian President Masoud Pezeshkian. The summit will begin with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. Leaders of the BRICS member countries will also visit the Bharat Innovates exhibition at Bharat Mandapam. This will be followed by a joint tree planting ceremony and a gala dinner hosted by Prime Minister Modi. The Prime Minister is scheduled to hold a series of bilateral talks with BRICS leaders on the sidelines of the summit today. These include meetings with Chinese President Xi Jinping, Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim and Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hung. In view of the BRICS summit in New Delhi, traffic diversions and regulated movement will be implemented on key routes across national capital from 9:30 a.m. to 9 p.m. today. The traffic police have advised the commuters to plan their journeys in advance and allow extra time. It also advised the citizens to prefer public transport, especially the metro, wherever feasible. Prime Minister Narendra Modi has called for secure sea lanes, open supply routes and the safety of seafarers to sustain global trade. He also urged BRICS countries to work towards removing trade barriers and expanding opportunities for businesses. Mr. Modi stated this while addressing leaders' session of BRICS Business Forum at Bharat Mandapam in New Delhi last evening. The Prime Minister said India was a strong advocate of freedom of navigation and the safety of seafarers, stressing that secure maritime routes were essential for the smooth movement of global trade.
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो. और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है.
2: Amid rising trade barriers globally, Prime Minister Modi said India was seeking to build economic bridges. He said India today offers a source of confidence for growth and stability. The government has approved 18,77,000 houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban PMAYU 2.0, giving further impetus to the implementation of the scheme and advancing the goal of housing for all in urban areas. The decision was taken at the 9th meeting of the Central Sanctioning and Monitoring Committee held in New Delhi on Thursday. During the meeting, around 29,000 additional houses were approved under the beneficiary-led construction and affordable housing in partnership verticals of PMAYU 2.0. The approvals cover six states: Assam, Bihar, Gujarat, Telangana, Tripura and Uttar Pradesh. The Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana PMKY has completed 7 years today. The scheme was launched on this day in 2019 with the aim of providing social security to small and marginal farmers. In hockey, Indian women's team will take on South Korea in the first semi-final of Junior Asia Cup at Mochi in China this morning. The match is scheduled to begin at 9:45 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.

खामोशी को जुबां मिल गई, दिल की बात लबों पर आ ही गई, लाख कोशिश की छिपाने की पर सारे जमाने को खबर हो गई, अरमानों को हकीकत के पर लग गए, दिल में मोहब्बत की बारिश हो गई, एक ही पल में इजहार के बाद जिंदगी हसीन रंगीन हो गई।

हमारे दिलरुबा यानी हमारे दिल के पास रहने वाले वो सब लोग जो हमारे अपने होते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग देते हैं कि वो हमारे साथ हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। एक ऐसी ही योजना है सरकार की जो हम सबके दिल के पास है, तो हम इसे भी दिलरुबा कह सकते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, यानी अगर आसान शब्दों में समझें तो आत्मा गाँव की और सुविधा शहर की। एक ऐसी सरकारी योजना है ये, जिसका मकसद ये है कि गांव में ऐसे बना दो कि गांव में बुनियादी सुविधाएं जो हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स और रोजगार के लिए लोगों को शहर ना जाना पड़े, है ना। इसका मतलब क्या है, रूरल और अर्बन ये दो से मिलकर बना है, दो शब्दों से, यानी एक ऐसा इलाका जो दिखने और रहने में तो गाँव जैसा हरा भरा शांत हो, लेकिन वहाँ सुविधाएं शहरों जैसी हों। काम कैसे करता है ये, मतलब ये किसी एक गांव का विकास नहीं होता, इसमें ना एक समूह बना लिया जाता है गांव का। जैसे कि मैदानी इलाकों में तो 25,000 से 50,000 तक की आबादी वाले गांव जो है उनका एक क्लस्टर बना देते हैं, समूह बना देते हैं, और पहाड़ी इलाकों में 5,000 से 15,000 की आबादी वाले जितने भी गाँव होते हैं उनका एक क्लस्टर बन जाता है, और फिर उनकी मिलजुल के जो है वो मतलब उनका कहें कि विकास किया जाता है। और क्या क्या गाँव को मिलता है अगर आप ये सोचें तो, शहरी सुविधाएं यानी 24 घंटे बिजली मिले, साफ पीने का पानी मिले, पक्की सड़कें मिले, बेहतर नालियां, सफाई व्यवस्था, गाँव में वाईफाई हो, इंटरनेट हो, डिजिटल साक्षरता केंद्र हो, अच्छे स्कूल कॉलेज आधुनिक अस्पतालों की सुविधा हो, और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, कौशल विकास उनका किया जाए, ताकि वो खेती के अलावा एग्रो प्रोसेसिंग, टूरिज्म या छोटे छोटे उद्योगों से अपनी कमाई बढ़ा सकें और उन्हें शहरों की तरफ भागने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हमारे गांव इतने खूबसूरत हैं कि वो हमें अपने गले लगाते हैं, अपने पास बुलाते हैं, तो हमें वहाँ से शहर आने की कोई आवश्यकता ना हो।

जब हम किसी मुसीबत में होते हैं ना, तो अपने अपनों को ही याद करते हैं। बहुत ही ये साधारण सी बात है। ऐसा ही होता है जब हम परिवार में होते हैं, अपने दोस्तों में होते हैं, अपने मोहल्ले में होते हैं, समाज में होते हैं, देश में होते हैं, या फिर विश्व में होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जो है, आज का जो दिन है वो यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन को मनाया जाता है आज के दिन। और बहुत ही, अगर हम आसान भाषा में समझे ना कि ये है क्या, तो विकासशील देश जो हैं जितने भी, वो आपसी मदद करें एक दूसरे की, वो दिन आज मनाया जाता है। यानी कि दुनिया के नक्शे पे अगर हम देखें ना, तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के ज़्यादातर देश जो हैं वो दक्षिणी हिस्से में आते हैं। इन देशों को विकासशील देश कहा जाता है, जैसे कि भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। जब ये देश आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, तो इसे साउथ साउथ कोऑपरेशन कहा जाता है। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? ताकि जितने भी विकासशील देश हैं वो अपने टेक्नोलॉजी, अपने डिजिटल पेमेंट या कोई भी अच्छी तकनीक जो है, उसे दूसरे देशों के साथ, दूसरे विकासशील देशों के साथ शेयर करें, एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे की जो समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, मौसम में बदलाव है, वो लगभग विकासशील देशों की एक सी होती हैं, लगभग लगभग। तो उन समस्याओं से बाहर निकलने में एक दूसरे की मदद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो अमीर देशों पर हमारी निर्भरता है, उसको हम कम करें। यानी पहले गरीब या विकासशील देश सिर्फ अमीर देशों की मदद पर निर्भर रहते थे, तो ये दिन याद दिलाता है कि देश आपस में मिलकर भी आगे बढ़ सकते हैं। हर साल 12 सितंबर को ये दिन बनाया जाता है। ये एक ऐसा दिन है जो दुनिया के विकासशील देशों को याद दिलाता है कि हम सब एक जैसे हैं, और अगर हम मिलकर एक दूसरे का साथ निभाएंगे, हाथ थामेंगे, तो हम सब मिलकर तरक्की कर सकते हैं।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP ट्रैफिक देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
2: समय मिला लीजिए 9:39 और 32 सेकंड हो गए हैं। 100.1 MHz आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी और मैं हूँ आपके साथ भावना।

0: अब सितम तो किसी के साथ कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से हो सकता है, यानी इमोशनल सितम भी हो सकता है और प्रैक्टिकल सितम भी हो सकता है, यानी कि आपको कोई गंभीर चोट भी लग सकती है, आप किसी बीमारी के अटैक के अचानक से शिकार भी हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? आज मनाया जाता है यानी 12 सितंबर को हर साल वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, यानी इस साल 12 सितंबर है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, ये हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस साल 12 सितंबर है, हो सकता है अगले साल कुछ और डेट हो, लेकिन सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को हर साल ये मनाया जाता है। तो इसमें क्या है कि जितने भी लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि अगर उनके सामने अचानक से उनके किसी अपने को या फिर सड़क पर चलते हुए किसी गैर को भी अगर कुछ हो जाता है तो वो किस तरह से उसका सामना कर सकते हैं, उसकी जान कैसे बचा सकते हैं फर्स्ट एड देकर, यानी कि ये सिखाना कि तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पहुंचने से पहले वो क्या कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे लोगों को पट्टी बांधना अगर चोट लग गई है तो, बहुत ज़्यादा गहरी CPR देना और खून बहना रोकना, ये सब छोटी छोटी बातें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हें सिखाया जाता है। समाज को किसी भी आपदा या हादसे के लिए तैयार करने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। तो फिर न घबराएं न शर्माएं, आगे बढ़कर दूसरों की जान बचाएं।
1: ओ मेरी

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सब के लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
7: मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी और मैं हूँ आपके साथ भावना। आप इस वक्त गाड़ी में हमें सुन रहे हैं या फिर कहीं पर भी हमें सुन रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, सड़क पर चलते हुए सड़क यातायात के नियमों का पालन सदैव करिए।

धीमी आवाज में सुनिए जो भी प्रोग्राम या गाने आप सुन रहे हैं, और सीट बेल्ट लगाने की आदत डालिए, क्योंकि सीट बेल्ट लगाने से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से आप बचते हैं, और अगर कोई दुर्घटना की स्थिति आती है तो उसमें आपको सुरक्षित रहने की जो उम्मीद है वो बढ़ जाती है आपकी। और सीट बेल्ट के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़े अगर आप जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपको मौके पर ही लंबा चौड़ा जुर्माना भी लगा सकती है। इसलिए सड़क यातायात के नियमों का पालन कीजिए और अपनी गड्डी लेके सपनों के दुनिया में आप कहीं भी उड़िए, अपनी मंजिल तक पहुंचिए, लेकिन सावधानी के साथ।

आज 12 सितंबर है और आज के दिन पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उनके योगदान को हिंदी साहित्य में आज के दिन याद किया जाता है। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार, निबंधकार, बहुमुखी प्रतिभा के धनी विद्वान थे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्हें उनकी अमर कहानी उसने कहा था इसके लिए विशेष रूप से जाना जाता है।

आप म्यूजिकल दिल्लगी से भावना को दीजिए इजाजत। आज का म्यूजिकल दिल्लगी यहीं तक। 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स प्रोग्राम लेकर मैं भावना आपके साथ ही रहूंगी। ईमेल आईडी हमारा fmgoldaird@gmail.com, व्हाट्सएप नंबर है 9868867535 जिस पर आप अपने मैसेजेस हमें भेज सकते हैं 10:30 बजे के प्रोग्राम के लिए। लेकिन उससे पहले अभी समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन की शुरूआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्था के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंचे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आसियान के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित

0: करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाओं को दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है। सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन विशेषकर मेट्रो रेल का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। ओडिशा के दक्षिणी हिस्से में कुछ जगहों पर आज मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने नवरंगपुर, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई अन्य हिस्सों में भी तेज बारिश के साथ साथ आंधी तूफान और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान के 131 रन के लक्ष्य को श्रीलंका ने 4 विकेट खोकर 19वें ओवर में हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में 7 बार की विजेता भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। यूएस ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने आज पहले सेमीफाइनल में रूसी खिलाड़ी करेन खाचनोव को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आयरना सबालेंका आज रात न्यूयॉर्क में फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकीना का सामना करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Sarabjit Kaur. The 18th BRICS summit is set to begin at Bharat Mandapam in New Delhi today. The two-day grand event will bring together 11 major emerging and developing economies. During the high-level event, leaders of the BRICS member countries are expected to discuss key issues including global governance, multilateralism, trade and investment, technology, food and energy security, healthcare, disaster resilience, and critical supply chains. Several key world leaders will participate in the high-profile summit. Prime Minister Narendra Modi will be joined by Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, and Iranian President Masoud Pezeshkian. The summit will begin with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. The Prime Minister is scheduled to hold a series of bilateral talks with BRICS leaders on the sidelines of the summit today. These include meetings with Chinese President Xi Jinping, Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, and Vietnamese Prime Minister Lee Ming Hung. Prime Minister Narendra Modi has called for secure sea lanes, open supply routes and the safety of seafarers to sustain global trade. He also urged BRICS countries to work towards removing trade barriers and expanding opportunities for businesses. Mr. Modi stated this while addressing leaders' session of BRICS Business Forum at Bharat Mandapam in New Delhi last evening.
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्री

0: ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: Amid the worsening flood situation in Uttar Pradesh, the state government has stepped up relief and rescue operations to assist affected families. At least 25 districts are currently affected by flooding following heavy rains and the release of water from dams. According to the State Relief Commissioner's Office, around 8,000 people were shifted to safe locations on Thursday alone, taking the total number of evacuated people to around 21,000. Affected people are also being provided safe shelter, with around 3,000 individuals currently staying in relief camps. Lok Sabha Speaker Om Birla has extended greetings to citizens on the occasion of the Prakash Purb of Sri Guru Granth Sahib today. In a social media post, Mr. Birla said that Sri Guru Granth Sahib imparts a profound spiritual message of humanity, love, equality, service, compassion and harmony. Saudi Arabia said that it has shut down a major cross-country oil pipeline a day after it was attacked by drones. The statement by country's Ministry of Energy said the east-west pipeline after it was attacked the day before. The statement called the shutdown a precautionary measure. The east-west pipeline has played a key role in Saudi Arabia's ability to continue exporting oil following the disruption of the Strait of Hormuz during Iran's war with the US and Israel. The Saudi Foreign Ministry blamed the attack on several drones that came from Iraq. The Iraqi government condemned the assault and ordered an investigation. In US Open tennis, 8th seed Ben Shelton has set up men's singles title clash with top seed Alexander Zverev. Zverev of Germany defeated unseeded Russian player Karen Khachanova 6-3, 7-6, 7-6 in the first semi-final this morning. Later in the other last four match, Ben Shelton overpowered 11th-seeded Francis Tiafoe 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 in an all-American clash. In women's singles, defending champion Aryna Sabalenka will take on second-seed Elena Rybakina in title clash in New York later tonight. The India Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy rainfall accompanied by thunder squall for coastal Andhra Pradesh today. According to IMD, heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, Gujarat, Konkan and Goa. And that is the end of this news bulletin.
2: Namaskar, Akashwani se Vishw Darpan ke saath, main Mukesh Kumar. अट्ठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। दो दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। और अमरीका के बेन शेल्टन और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र के साथ होगी।
3: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह वह मंच है जहां ये देश ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण तैयार करते हैं। वहीं निरंतर संवाद के माध्यम से ब्रिक्स बहुपक्षीय संस्थाओं के भीतर ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। इसमें विकास, स्थिरता और नवाचार को एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। साथ ही यह ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी प्रमुखता देता है। भारत का उद्देश्य ब्रिक्स को एक रचनात्मक, समाधान केंद्रित और परिणाम वाले मंच के रूप में और अधिक सशक्त बनाना है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
4: रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल या हुनर वाले पेशेवरों को एक दूसरे के यहाँ काम करने का अवसर देना और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित कई क्षेत्रों में भारत रूस के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही संघर्षों को सुलझाने का सही तरीका है और भारत शांति के प्रयासों में सहायता के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। श्री मोदी ने भारत के इस रुख को लगातार दोहराया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दुनिया भर में चल रहे टकरावों, आवागमन की आजादी, सतत विकास, अक्षय ऊर्जा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्नांडिस आर मार्कोस जूनियर आसियान के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ते नदायशिमे अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी भारत पहुंच चुके हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री सिहासिक फुआंग केटकेओ भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति कासिम फेटिमा नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा और अनुपम की रिपोर्ट के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
0: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
0: आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। इसमें भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना।
2: भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा है कि ब्रिक्स सहयोग को ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदलने का प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
6: ब्रिक्स का गठन व्यापार के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन अब इसका दायरा कई क्षेत्रों तक बढ़ गया है, जैसे वैश्विक राजनीति, आतंकवाद, कृषि और आवागमन से जुड़ी चुनौतियाँ। इसलिए 11 देशों का इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि इन देशों के बीच न सिर्फ व्यापार और सहयोग बढ़ना चाहिए, बल्कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, यह दुनिया के लिए वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को साकार करने वाला मंच बन सकता है।
2: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बंद कर दी गई है। ये तेल पाइपलाइन ऐसे समय बंद की गई है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे पश्चिम एशिया में संघर्ष में नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमलों की 25वीं बरसी पर कल हमलों में जान गंवाने वाले करीब 3,000 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। देश भर में स्मरण समारोह आयोजित किए गए। दक्षिण एशियाई देशों में अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने और उससे निपटने के लिए समन्वित प्रयासों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इसके अंतर्गत खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच, धन शोधन रोधी उपायों और संगठित आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ अभियोजन पर बल दिया गया है। ये प्रतिबद्धता काठमांडू घोषणा में व्यक्त की गई, जिसे बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को काठमांडू में दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क की पहली महासभा में अपनाया गया। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमरीका के बेन शेंटल का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़िवरेव से होगा। ज़िवरेव ने आज पहले सेमीफाइनल में रूस के करेन खचानो को हराया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में बेन शेल्टन ने अमरीका के ही फ्रांसिस टियाफो को हराया। महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन बेलोरूस की आरेना सबालेंका का मुकाबला कजाकिस्तान की एलिना रायबाकीना से होगा। महिला डबल्स में कैटरीना सिनियाकोवा को और टेलर टाउनसेंड को अमरीकी और चेक गणराज की जोड़ी ने कल रात फाइनल में अमरीका की रॉबिन मॉन्टेगोमरी और एशलिन क्रूगर को हराकर खिताब अपने नाम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। दो दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। और अमरीका के बेन शेल्टन और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़िवरेव अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस। 18th BRICS summit to begin in New Delhi today. Discussions to focus on global governance, trade, security and supply chains as world leaders assemble for two-day summit. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with Chinese President Xi Jinping and other BRICS leaders today on the sidelines of summit. Saudi Arabia shuts vital pipeline after attack. Houthi rebels in Yemen seize strategic islands, tightening grip on key Red Sea shipping route. And in US Open tennis, 8th seed Ben Shelton sets up men's singles title clash with top seed Alexander Zverev. And now the news in detail. The 18th BRICS summit is set to begin at Bharat Mandapam in New Delhi today. The two-day grand event will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. During the high-level event, leaders of the BRICS member countries are expected to discuss key issues, including global governance, multilateralism, trade and investment, technology, food and security, healthcare, disaster resilience, and critical supply chains. The summit is being held under India's 2026 BRICS chairship with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Several key world leaders will participate in the high-profile summit. Prime Minister Narendra Modi will be joined by Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, and Iranian President Masoud Pezeshkian. The summit

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये है प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स, जिसमें हम आपके दिल की बात करते हैं और आपकी पसंद के गीत भी सबको सुनवाते हैं। तो हमारा ईमेल आईडी आप सबको पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता देते हैं, fmgold@gmail.com। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। मैं हूं आपके साथ भावना, और लीजिए हमारे साथ जुड़ गए एसपी गोयल साहब रोहिणी दिल्ली से, इसके अलावा रैया रोड राजकोट से राजेश, कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी कहते हैं, कोई भी गीत सुनवा दीजिए ठीक है। अफरोज शेख है नेमुआ सुपौल बिहार से, और गाना सुनना चाहते हैं श्री 420 फिल्म का ये।

राजेंद्र जटोलिया हैं, ऊषा जटोलिया हैं, कृष्ण जटोलिया हैं, पूजा हैं, कोमल हैं, आरव हैं, ये पूरा जटोलिया परिवार है। दिल्ली नांगलोई से इनका संदेश हमें मिला है। इसके अलावा गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी साहब हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे साथ एक बहुत ही प्यारा सा संदेश आया है, देखिए मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको इन्होंने क्या लिखा है। जीवन टेस्ट है, खुशियाँ रेस्ट हैं, ज़्यादा सोचना वेस्ट है, क्योंकि हम खुद ही इस संसार में गेस्ट हैं, इसलिए स्वयं खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, यही हमारे लिए बेस्ट है। बहुत अच्छा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन और दीपांशु खोरवाल हैं, और ये गाना जो है सुनना चाहते हैं, वो शाम कुछ अजीब थी, ये वाला गाना, ये रहा इनकी पसंद का गीत।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ envelopes हैं। आप सब यहाँ आओ और ये envelopes ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से related अलग अलग messages हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में needle या injection शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
2: सौ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। ये है प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स, जिसमें मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी का जो संदेश है वो हमें मिला है गंज डुंडवारा कासगंज से। बहुत ही प्यार से इन्होंने लिखा है, भावना जी को प्यार भरा आदाब, तो आपको भी आदाब। और हमारे पास जो संदेश आया है सुरेश नारंग, आशा नारंग का, सहारनपुर से गाना सुनना चाहते हैं ये।

हमारे पास जो संदेश इस वक्त आए हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, मतलब पूरा शाह परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा है, सीटी दीवाना गुरवंश सिंह जोड़ा भी इनके साथ हैं। हमारे साथ नवाब अहमद भारती हैं बल्ली मारान दिल्ली से। इसके अलावा हमारे साथ खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानक चंद्र मल्होत्रा और रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाना बहुत ही प्यारा सा है फिल्म ठोकर से, जो ये सुनना चाहते हैं ये रहा।

नई दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु हमारे साथ जुड़े हैं, अपनी पसंद का गीत भी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा शीश पाल वर्धन साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। हमारे साथ बबलेश पवार जी हैं और उनके बहुत सारे साथी हैं, ये सब हमारे साथ गांधी चौक वार्ड में राजस्थान से जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी। मोहम्मद सईद अब्बासी ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हैं अपने पूरे परिवार के साथ और गाना सुनना चाहते हैं ये।

सलीम अख्तर रेशमा बेगम अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े और कहते हैं कि हमारा जो मेल है वो शामिल क्यों नहीं करते आप। अरे सबका मेल शामिल करने का मन करता है हमारा, लेकिन समय कहता है कि सब कुछ एक दिन में एक बार तो नहीं हो सकता। अभी स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। मैं चल रही हूँ, लेकिन 11:10 पर प्रोग्राम तस्वीर लेकर मैं भावना आपके साथ ही रहूँगी। उससे पहले अभी समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू होगा। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 21 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन की शुरूआत ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्था के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रेजनकोव ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले आज सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम गेब्रेसियस भी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनका दौरा साझा प्रगति और समृद्धि के लिए स्वास्थ्य से जुड़े वैश्विक सहयोग के महत्व को दर्शाता है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग भी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहुल ने उनका स्वागत किया। भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, फिनटेक, महत्वपूर्ण खनिजों तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में भी मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री

0: नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसर विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस बीच सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्यना सबालेंका आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबेकिना का सामना करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। यह है प्रोग्राम तस्वीर, जिसमें हम हर बार आपको एक नई जगह लेकर जाते हैं, रेडियो तरंगों पर बिठाकर आपको उस जगह की सैर कराते हैं। मैं हूं आपके साथ भावना, और आज जिस जगह की सैर हम करने वाले हैं वो है खूबसूरत दरभंगा, बिहार की बहुत ही खूबसूरत सी रौनक, बहुत ही प्यारा सा शहर, राजसी शहर, दिल खुश कर दे ऐसा शहर।

पग पोखर पान मखान, पग पग पोखर पान मखान, सरस बोल मुस्की मुस्कान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, ललित नगर दरभंगा थी। मिथिला की सांस्कृतिक, अगर हम कहें राजधानी, खाली राजधानी नहीं, सांस्कृतिक राजधानी दरभंगा, विद्या वैभव खान पान मधुर मुस्कान और अपनी मीठी बोली के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ध्रुपद गायन, मिथिला पेंटिंग, सिक्की और सुजनी लोक कला के साथ अपनी गौरवशाली संस्कृति पर मिथिला के लोग नाज करते हैं।

दरभंगा का प्रमुख पर्यटन स्थल जो है वो यहाँ का राज परिसर है, यानी राज कैंपस। कहा ना कि ये एक राजसी शहर है। इस राज कैंपस में दर्जनों भव्य ऐतिहासिक महल और मंदिर हैं। दरभंगा का ये राज परिसर अब शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। परिसर में मौजूद भव्य महलों में नरगौना महल, आनंद बाग महल, बेला पैलेस, ये सब खास हैं। और राज परिसर में दो यूनिवर्सिटीज हैं। जी हाँ, राज परिसर के अंदर दो यूनिवर्सिटीज हैं, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय। तो दुनिया में ये ऐसा पहला मामला है कि किसी राजा महाराजा ने अपने महल को शिक्षा के लिए दान कर दिया हो। बहुत ही खास है दरभंगा, और दरभंगा की हर बात, हर चीज। साथ मिलकर चलिए, बातें बहुत हैं।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP ट्रैफिक देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
2: सौ दशमलव एक मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम है तस्वीर, जिसमें आज हम रेडियो तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं दरभंगा की। मैं हूं आपके साथ भावना। और नरगौना पैलेस जो है, नरगौना पैलेस अपने आप में बहुत ही खास भवन है, अद्भुत कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो पूरा महल है ना, ये सीमेंट के दीवारों और खम्भों से बना है। इसमें एक भी, जी हाँ, एक भी ईंट का प्रयोग नहीं किया गया है। और ये पहला पूरी तरह से वातानुकूलित महल था, यानी प्राकृतिक रूप से एयर कंडीशन्ड इसे बनाया गया था। सारा ही जो वातावरण है एकदम ठंडा ठंडा है, मौसम के अनुसार सब कुछ इसमें एडजस्ट हो जाता है प्रकृति के हिसाब से। ये देश का पहला पूरी तरह से या कहें कि देश दुनिया में शायद अकेला पैलेस है जिसके परिसर में निजी रेलवे स्टेशन बनाया गया था। और इस भव्य नरगौना पैलेस का डिज़ाइन एक तितली के जैसा है, बहुत ही खूबसूरत है ये। और इसके अलावा दरभंगा का किला लाल रंग का होने के कारण इस राज किले को दरभंगा का लाल किला भी कहा जाता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये किला दिल्ली के लाल किले से ऊंचा है। बताया जाता है कि महाराजा कामेश्वर सिंह ने इसे बनाया था और इस किले के भीतर राज परिवार के लोग रहते थे। किले के अंदर जो है ना, बहुत सारे मंदिर और महल आपको देखने को मिलेंगे। और सुरक्षा की दृष्टि से किले के भीतर दीवार के चारों ओर तालाब बनाया गया था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है ये राज किला।

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn.

0: to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सौ दशमलव एक मेगा हर्ट्स पर तस्वीर प्रोग्राम में दरभंगा की तस्वीर बना रहे हैं हम. बेला पैलेस है दरभंगा के सबसे सुंदर और भव्य स्थलों में एक, नाम बेला पैलेस का भी है. बेला पैलेस को महाराजा कामेश्वर सिंह के भाई विश्वेश्वर सिंह ने 1934 में आए भूकंप के बाद बनवाया था. अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध 65 एकड़ में फैले इस महल में फिलहाल पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है. इसके अलावा श्यामा मंदिर है. राज परिसर में आम लोगों के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह है ये. नवरात्र के दौरान बहुत भीड़ होती है यहाँ पे. संकट मोचन मनोकामना मंदिर है. श्यामा माई काली मंदिर से कुछ दूरी पर ही है. आम लोगों के बीच इसकी भी काफी प्रतिष्ठा है और लोग कहते हैं कि यहाँ मनोवांछित फल मिलता है. और इस मंदिर में लोग लड्डू चढ़ाते हैं. मखदूम शाह दरगाह दरभंगा रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर है, दिग्घी पोखर के पास. और बहुत ही खास है ये, यहाँ पर ईद के दौरान काफी जायरीन आते हैं. और इसके साथ ही टावर चौक के पास बनी मस्जिद और सूफी संत मखदूम बाबा की मजार भी बहुत लोकप्रिय है यहाँ.

इश्क अपने आप हमारे पास चलकर आता है जब दिल में अपने किसी का ख्याल घूम घूम कर आता है। बहुत ही ख़ास ये बातें हैं जब एक ऐसे शहर की बात हो रही हो जो आप कहें कि राजाओं का शहर है, रजवाड़ों का शहर है, यहाँ पर पोखरों का भी शहर इसको हम कह सकते हैं। डिग्गी पोखर है यहाँ पर, और वहाँ पर करीब उसके पास ही मतलब 400 साल पुराना हज़रत मखदूम भीखा शाह सैलानी रहमतुल्लाह अलैह जो है उनकी मज़ार है, और यहाँ पर लोग इबादत करने आते हैं। और दो म्यूज़ियम है यहाँ पर दरभंगा के ख़ास, महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह म्यूज़ियम और चंद्रधारी म्यूज़ियम। इन दोनों म्यूज़ियम्स में जो आप कहेंगे कि राज परिवार से संबंधित बहुत सारी कलात्मक अमूल्य दुर्लभ सामग्रियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। इन दुर्लभ सामग्रियों में सोने चांदी हाथी दांत के बने हथियार हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सिक्के हैं जो आप देख सकते हैं, आपको बहुत अनोखे और अलग लगेंगे। दिग्घी हरारी पोखर दरभंगा शहर ही नहीं पूरा मिथिला पोखर तालाब के लिए मशहूर है। और दरभंगा शहर की अगर हम खास बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कई बड़े बड़े तालाब हैं जो देखरेख जिनकी जो है वो की जानी चाहिए और भी ज़्यादा। तो दिग्घी पोखर जो हरारी पोखर है आपको किसी झील का सा अनुभव करवाएंगे। और यहाँ के जो लोग हैं ना मिथिला के, वो माछ के बहुत प्रेमी होते हैं और पोखर बनवाते हैं। इससे मछली तो मिलती ही है, जल संरक्षण भी होता है और लाखों लोगों को रोज़गार भी मिलता है, और बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं ये पोखर तालाब।

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
2: MHz आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम है तस्वीर, जिसमें बात हो रही है दरभंगा की। कुशवेश्वर स्थान, ये मंदिर और पक्षी विहार, ये दरभंगा से करीब 70 किलोमीटर दूर है। और ये जो कुशवेश्वर स्थान है, कुशवेश्वर में रामायण काल का एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जिसे मिथिला का बाबा धाम माना जाता है। और कांवड़ के दौरान जो अभी गया है ना सावन, उसमें शिवरात्रि के समय यहाँ भारी भीड़ रहती है। और करीब 10,000 एकड़ में फैला ये इलाका जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत पक्षी अभयारण्य भी घोषित किया गया है। यहाँ पक्षी विहार के लिए आते हैं और कई देशों से आए पक्षियों का प्रवास भी होता है। दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों का दर्शन भी आप यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा राजनगर है, मधुबनी दरभंगा से करीब 50 किलोमीटर दूर। राजनगर का ऐतिहासिक राज कैंपस इनक्रेडिबल इंडिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ के महल, मंदिर, स्थापत्य कला की अद्भुत मिसाल पेश करते हैं। यहाँ की नक्काशी दीवारों पर जो की गई है राजनगर में, कलाकारी, कलाकृति आप देखेंगे ना तो दंग ही रह जाएंगे। बिल्कुल यहाँ के जो भव्य मंदिर हैं और महल

जो है पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेते हैं। भव्यता और वैभव की झलक आप यहाँ की दीवार, मेहराब, गुंबद से लेकर मूर्ति तक सब में देख सकते हैं। कलाकृति में यहाँ पे आपको मिथिला पेंटिंग के साथ साथ देशी विदेशी दोनों शैली का अनुपम समागम देखने को मिलेगा और सचमुच आपको यहाँ से प्यार हो जाएगा।

0: BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: दरभंगा की रेडियो तस्वीर हमने बनाई है आज और उसके आसपास की जगहों की भी बात की है, तो एक जगह और है अहिल्या स्थान। ये अहिल्या स्थान वो जगह है जहाँ पे देवी अहिल्या को समर्पित मंदिर है। रामायण में गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या का जिक्र है। देवी अहिल्या गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बन गई थी जिनका भगवान राम ने उद्धार किया था। तो अहिल्या स्थान जो है दरभंगा से करीब 20 किलोमीटर के करीब दूर होगा। यहाँ मंदिर के अलावा गौतम कुंड भी है और इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और ये जगह अब रामायण सर्किट से भी जुड़ चुका है। बहुत ही खूबसूरत है दरभंगा, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ की हर बात, यहाँ का इतिहास, यहाँ के महल, यहाँ के मंदिर, यहाँ की मज़ार सब है खास। बस आप एक बार आइए तो यहाँ।

12:10 पर घर आंगन प्रोग्राम होगा चैनल पर। आगे थोड़ी देर में होंगे समाचार। अभी स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। फिर मुलाकात होगी आपसे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि ये चर्चा द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से हुई। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, रक्षा और सुरक्षा साझेदारी तथा क्षमता निर्माण सहित प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इथियोपिया की भागीदारी की सराहना की और कहा कि इसकी उपस्थिति से ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज को और मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री ने भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी आज देर शाम चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बेलारूस के विदेश मंत्री मार्क्सिम रिजनकोफ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग भी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, फिनटेक, महत्वपूर्ण खनिजों तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में भी मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले आज सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रियसस भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इस बीच सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये

0: आंगन। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर में बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आ गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर।
1: और घर आंगन के इस शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर।
0: और मैं हूं दीपा भूषण।
1: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। और
0: श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर, यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के YouTube और इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी, यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़ पर।
1: और श्रोताओं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रथम प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, और गुरबाणी का प्रकाश हर मन को शांति, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहे, यही हम सब चाहते हैं। और साथ ही दीपा, देखो आज है छुट्टी का दिन, और छुट्टी के दिन खास तौर पर थोड़ा सा आलस तो हो ही जाता है
0: उठने में सुबह। लेकिन आलस होना चाहिए पर एक्टिव भी होना चाहिए।
1: हाँ, लेकिन आलस के साथ साथ हम ये चाहते हैं, चाहे दिन कोई भी हो आपका, छुट्टी का दिन हो या ना छुट्टी का दिन हो, पर अपनी जो रूटीन है ना वो कायम रहनी चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जैसे बदली तो आपका फिर स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो इसीलिए अपनी रूटीन को कभी ना बदलने दीजिए। और आज श्रोताओं के लिए जो हम जो सवाल लेकर आए हैं,
0: क्या सवाल है?
1: वो सवाल है कि आपकी दिनचर्या में सबसे ज्यादा एक्टिव समय कौन सा होता है, सुबह, दोपहर या शाम? आप हमें लिख के बिल्कुल जल्दी जल्दी से अपने जवाब भेज दीजिए, और हमें इंतजार है आपके जवाबों का। तो ये था आज का सवाल। तो दीपा, कैसा लगा ये सवाल तुम्हें आज का?
0: मुझे तो बहुत अच्छा लगा सिमरन। और तुम अपनी वो मेल भी तो बताओ।
1: हाँ, मेल तुम बताओ कि किस मेल पे हमें मेल पे हमारे श्रोता जो हमें जवाब देंगे,
0: जवाब दे सकते हैं, और आपके जवाब हम आज ही शामिल करेंगे fmgoldga@gmail.com पर।
1: और साथ ही अब जब तक हमारे श्रोता हमें जवाब लिखकर भेजें, सोचें, तब तक हम अपने श्रोताओं को खूबसूरत सा क्यों ना गीत सुनवाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत, फिल्म थी जमीन आसमां।
1: दोस्तों अब आज हम बात करेंगे विशेष दिन की, आज के। आज दोस्तों प्राथमिक चिकित्सा दिवस है। आज यानी 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाते हैं और दोस्तों ये दिन वर्ष के सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट सोसाइटी महासंघ IFRC ने की थी।
0: बिल्कुल, और इसका उद्देश्य आम लोगों में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व को और आपात स्थिति में जीवन बचाने वाली तुरंत सहायता के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है और साथ ही दुर्घटना और अत्यधिक रक्तस्राव या अचानक स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार की जानकारी कई बार जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा सिमरन। और आज एक खास दिन और है, आज यानी 12 सितंबर को हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध महान रचनाकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की पुण्यतिथि है। अपनी कालजयी कहानी उसने कहा था से हिंदी कथा साहित्य को एक नई दिशा देने वाले गुलेरी जी स्वयं महान इतिहासकार और भाषाविद भी थे।
0: बिल्कुल, और दीपा देखो उनकी अपार विद्वत्ता के कारण उन्हें इतिहास दिवाकर की उपाधि से भी विभूषित किया गया था और ख़ासतौर पर उनका अमर साहित्य जो साहित्य जो भी था आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। मतलब जो उनका अमर साहित्य था वो हमारा आज भी मार्गदर्शन
1: कर रहा है। बिल्कुल सही कहा सिमरन तुमने। और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन।
0: और साथ में दीपा मैं एक बार फिर से ये दोहराना चाहूंगी कि हमारा आज का जो सवाल है वो है आपके दिनचर्या में सबसे ज्यादा एक्टिव समय कौन सा होता है, यानी कौन सा ऐसा समय होता है सुबह दोपहर शाम या जब आपका मतलब आप बहुत ही उत्सव आप एनर्जी आपके अंदर हो हाँ और आप काम करने में बेहद खुशी महसूस करें कोई भी काम करने में। कई बार होता है हम आलस्य में कोई काम कर नहीं पाते, तो हमें जो भी है आपके मैसेज वो भी हमें फटाफट से भेज दीजिए, तो हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और मैसेज करने के लिए एक बार पता बता दो।
1: हाँ, हमारा पता है ईमेल के लिए fmgoalga@gmail.com।

0: दोस्तों, अभी आपने लता मंगेशकर जी का गाया हुआ शक्ति फिल्म से ये गीत सुना। और सिमरन, हमारे जो तुमने प्रश्न पूछा था उसकी कुछ मेल आने लगी हैं।
1: बताओ तो, कौन सी मेल आई है?
0: बहादुरगढ़ से मेल आई है महेश अग्रवाल जी और मीना अग्रवाल जी। वो लिखते हैं कि दीपा जी, सिमरन जी नमस्कार, और बहुत ही खूबसूरत गाने और बहुत खूबसूरत सवाल आपने पूछा है। और वो लिखते हैं कि कार्यस्थल पर तो हमारा शाम के समय बहुत ही हम एक्टिव होते हैं, और घर पर सुबह के वक्त हम बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, ऐसा वो लिख रहे हैं।
1: और साथ में एक रजत की मेल आई है, ये है नोएडा से। इन्होंने लिखा है, नमस्कार बुआ, दोपहर के भोजन के बाद का समय मेरे लिए सबसे अधिक सक्रिय रहने का समय होता है, और ये आसान नहीं है, लेकिन शरीर और मन को आलस्य से दूर रखना जरूरी है। तो थोड़ी सी निमित्तता और इच्छा शक्ति से हम खुद को सक्रिय और ऊर्जावान रख सकते हैं। भाई देखो, बहुत ही अच्छा रजत जी ने लिखा है, और कितनी अच्छी बात कही है। हमारे मेल का जवाब बहुत ही खूबसूरत ढंग से इन्होंने लिखकर हमें भेजा है। तो देखो, अगर हम बात कर ही रहे हैं कि एक्टिव कैसे रहते हैं, जीवन शैली हमारी कैसी रहती है, तो क्यों ना हम एक बात करें कि जरा एक पल रुक कर खुद से पूछिए कि कितनी एक्टिव है आपकी जीवन शैली। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हमारी दिनचर्या में कितना समय ऐसा होता है जब हमारा शरीर सक्रिय रहता है, ये बताओ।
0: और आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी में दोस्तों, हम काम तो बहुत करते हैं लेकिन शारीरिक गतिविधि अक्सर कम होती जा रही है। घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करना, लिफ्ट का इस्तेमाल करना, पास की दूरी के लिए भी वाहन लेना, और खाली समय में लगातार मोबाइल या टीवी देखना, ये सब हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है।
1: लेकिन एक्टिव रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको घंटों जिम में जाकर पसीना बहाना है। छोटी छोटी आदतें भी आपकी जीवन शैली को ज्यादा सक्रिय बना सकती हैं।
0: बिल्कुल। और मसलन, अगर मंजिल पास है तो पैदल चलिए, मतलब अगर आप पास में ही आपकी जो लिफ्ट है से जाना जरूरी नहीं है, मतलब अगर आप सेकंड फ्लोर पर रहते हैं तो आप चढ़ के भी जा सकते हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल करिए, लंबे समय तक बैठने के बीच थोड़ा उठकर चलिए जरूर।
1: बिल्कुल सही। और सुबह या शाम को

0: समय टहलना, पसंदीदा संगीत पर हल्का डांस करना या घर के कामों में सक्रियता में हिस्सा लेना भी शरीर को गतिशील रख सकता है।
1: और दोस्तों याद रखिए, एक्टिव लाइफस्टाइल सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि मन को भी तरोताजा रखने का एक खूबसूरत तरीका है।
0: तो आज से खुद को एक छोटा सा चैलेंज दीजिए, हर दिन अपनी दिनचर्या में थोड़ी और गतिविधि जोड़ने का, क्योंकि स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत अक्सर एक छोटे से कदम से होती है, जैसे

0: जान पहचान पहले से थी। ये गीत अभी आपने सुना, गायक कलाकार थे आशा भोसले और किशोर कुमार, फिल्म थी भला मानुष।
1: और दीपा एक मेल आ गया है मेरे पास, उन्होंने ये है चरण दास का मेल है, इन्होंने लिखा है कि FM गोल्ड 2 साल से सुन रहा हूँ, रोजाना जवाब भेजता हूँ, शामिल होते नहीं, आज भेजूंगा प्रस्तुतकर्ता का नाम सुनते ही समझ गया कि आज तो मेरा शामिल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है चरणदास जी, हमने आपका मेल शामिल किया है और हम पढ़ भी रहे हैं कि आपका मेल शामिल नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं, हमने आपका मेल भी शामिल किया और हम आपका नाम भी पढ़ रहे हैं। साथ में एक और मेल मेरे पास आया है, ये है अफरोज शेख का, इन्होंने लिखा है कि मैं तो पूरे दिन अपने काम में एक्टिव रहता हूँ जी। बहुत अच्छी बात है, हाँ कि पूरे दिन अच्छा है, और कई बार क्या होता है कि हम किसी समय सुबह हो जाते हैं एक्टिव, कई बार हमें एनर्जी ज़्यादा होती जब हम उठते हैं सुबह, लोग कहते हैं एनर्जी काफ़ी होती है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे दोपहर आ जाती है तो थोड़ा सा एनर्जी लो हो जाती है और शाम को थोड़ी सी और कम। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने लिखा पूरे दिन रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब अगला क्या बताने वाली हो तुम?
0: अब हम बात करने वाले हैं सिमरन, आज एक राष्ट्र एक समय की। देखो, देश में घड़ियां तो पहले भी एक ही समय बताती थी, और अब जो हमारी सरकार है उसकी कोशिश है कि देश की महत्वपूर्ण डिजिटल प्रणालियों की घड़ी भी एक ही भरोसेमंद समय से चले।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, और ख़ास तौर पर जब घड़ी की बात तुम एक कर ही रही हो तो इसका ये मतलब नहीं कि समय बदलता है, बदलता नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि समय जो नापने और रिकॉर्ड करने के लिए एक आधार जो है वो करता है ना।
0: हाँ, मतलब ये है कि समय बदलना है बल्कि समय को नापने और रिकॉर्ड करने का आधार एक करना है, कि मतलब हम समय को नहीं बदल रहे हैं, और इस उद्देश्य से सरकार ने एक राष्ट्र एक समय के तहत 27 अगस्त 2026 को नए नियम जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य पूरे देश में भारतीय मानक समय IST को एक समान और आधिकारिक समय के रूप में इस्तेमाल करना है। एक राष्ट्र एक समय इस पहल से देश की महत्वपूर्ण प्रणालियों को भारतीय मानक समय यानी IST को एक समान और विश्वसनीय स्रोत से जोड़ा जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, और सरल शब्दों में कहें तो देश में समय जो है बताने और दर्ज करने का एक ही भरोसेमंद आधार होगा। आज हमारी ज़िंदगी का लगभग हर काम सही समय पर निर्भर करता है, जैसे कि बैंक में पैसे भेजना, प्राप्त करना, ऑनलाइन भुगतान, मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं, रेलवे और हवाई सेवाएं, बिजली व्यवस्था, सरकारी रिकॉर्ड, कानूनी दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड, है ना, इन सभी में ज़रूरी है कि समय और टाइम स्टैम्प बिल्कुल सही हो।
0: बिल्कुल सही होना चाहिए, ये सही बात है, और अगर अलग अलग प्रणालियों में समय में थोड़ा भी अंतर हो तो लेन देन, रिकॉर्ड और सेवाओं में परेशानी हो सकती है।
1: और ये जो नियम है वो तुरंत नहीं लागू होंगे, है ना, क्योंकि इनके लागू होते ही पहले 180 दिनों का समय दिया गया है, और इस दौरान सरकारी विभाग, बैंक, कंपनियां, संस्थान और दूसरी संबंधित एजेंसियां अपनी नजदीकी प्रणालियों के जांच करके जरूरी बदलाव कर सकेंगी। बिल्कुल
0: एक, हाँ बिल्कुल सही बताया सिमरन तुमने, और दोस्तों एक राष्ट्र एक समय का मतलब है देश के महत्वपूर्ण कामों और डिजिटल प्रणालियों के लिए समय का एक ही भरोसेमंद भारतीय मानक IST। इससे समन्वय बेहतर होगा, डिजिटल रिकॉर्ड अधिक सटीक होंगे और महत्वपूर्ण प्रणालियों से समय की गड़बड़ी भी कम होगी।

0: समय तू धीरे धीरे चल, ये गीत अभी आपने सुना। गायक थे किशोर कुमार, आशा भोसले और फिल्म थी कर्म। और सिमरन कुछ और मेल आई हैं, तो जो नवीन भाटिया जी हैं इन्होंने भी अपनी मेल पहले भेजी थी, जो है ये कहते हैं कि सुबह उठने के बाद स्नान ध्यान के बाद ये काफी एक्टिव हो जाते हैं। ये बात उन्होंने लिखी
1: बहुत
0: है,
1: अच्छी बहुत अच्छी बात है। और साथ में मेरे पास भी दीपा एक मेल और आ गया है, ये गौरी शंकर जी का मेल है और इन्होंने राम राम तो कही हम दोनों को, और साथ में इन्होंने कहा है कि सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी है। राम वैसे काम के लिए सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, सारा दिन ध्यान काम में रहता है इंसान के, सुबह कुछ और विचार होते हैं, शाम को बदलाव आ जाता है। तो ये आपने बहुत ही अच्छा कहा, अगर शरीर का इस्तेमाल भाग दौड़ में नहीं करेंगे तो शरीर बीमारी का घर बन जाएगा। शुक्रिया गौरीशंकर नांगलोई से, बहुत बहुत शुक्रिया गौरीशंकर जी, आपका मेल बहुत अच्छा था, हमें अच्छा लगा।
0: सभी जो श्रोता मेल लिख रहे हैं उनको हम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आज सिमरन अब हम बात करने वाले हैं सड़क नियमों के आगे शिष्टाचार, मतलब सड़क पे हमारे क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि देखो आज की जो हमारी बातचीत है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत जुड़ी हुई है। हम में से बहुत सी महिलाएं हैं या और भी लोग हैं खुद कार या टू व्हीलर्स चलाते हैं, और अगर वाहन नहीं चलाते तो पैदल सड़क का इस्तेमाल तो करते ही हैं, कार्यालय जाने के लिए, बाजार जाने के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने या लेने के लिए।
1: बिल्कुल, और ख़ास तौर पर दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए यातायात जो है हमारी रोज़ की कहानी है, लेकिन यातायात में फंसते ही एक दिलचस्प बात होती है, हम अक्सर दूसरे को बहुत ही गलत नज़र से देखते हैं और बहुत जल्दी ऐसे बोलते हैं कि जैसे मतलब उन्होंने कि अचानक ब्रेक क्यों लगा दी और इन्होंने दिशा नहीं दिया, है ना।

0: अपने आप ही बदल दी गाड़ी और साथ में मेरी लेन से मेरी लेन में क्यों आ गए, ऐसे बोलने लग जाते हैं। और कई बार क्या होता है, इतना हॉर्न जोर से क्यों बजा रहा है।
1: हाँ, ये भी बहुत,
0: ये तो आप आते हैं जो रोज ही हर कोई बोलता
1: हाँ,
0: है।
1: हाँ, लेकिन आज एक छोटा सा सवाल खुद से भी पूछते हैं, क्या सड़क पर हमारा अपना व्यवहार ही भी उतना अच्छा है जितना हम दूसरों से चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि सड़क केवल हमारी नहीं है, एक साझा स्थान है जहाँ कार चालक, दोपहिया वाहन चालक, पैदल यात्री, बच्चे, बुजुर्ग और साइकिल चालक सभी एक दूसरे के साथ जगह बांटनी होती है। सड़क सुरक्षा संबंधी निर्देश भी इसी बात पर जोर देते हैं कि हमें सतर्क और दूसरों के प्रति संवेदनशील भी रहना चाहिए।
0: और यहीं से आता है सड़क का शिष्टाचार, यानी कि नियम हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और लेकिन शिष्टाचार हमें ये सिखाता है कि दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए हमें।
1: यानी दोस्तों, दिशा सूचक देना सिर्फ एक यातायात नियम नहीं है, इससे सामने और पीछे चल रहे लोगों को पहले से पता चल जाता है कि हम आगे किस दिशा में मुड़ने वाले हैं या जाने वाले हैं। इसी तरह अगर कोई वाहन सुरक्षित तरीके से हमारी लेन में शामिल होना चाहता है तो हर बार उसे रोकने के बजाय जहां संभव हो उसे थोड़ी जगह देना भी सड़क पर हमारे शिष्ट और जिम्मेदार व्यवहार की निशानी है।
0: लेकिन देखो अंतिपा, देखो कभी कभी हमारी जो परेशानियां सिर्फ यातायात की नहीं होती, बल्कि हमारा अपना गुस्सा और अधीरता जो भी होती है वो यातायात को और तनावपूर्ण बना देती है। लगातार हॉर्न बजाना, बहुत कम दूरी और साथ में बनाकर पीछे चलना, अचानक लेन अपनी चेंज कर देना अपनी, है ना, और उसके बाद दूसरे चालक को रास्ता ना देना, ये सब सड़क शिष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है।
1: इसलिए सड़क पर हमारी छोटी छोटी आदतें दोस्तों मायने रखती हैं। सुरक्षित दूरी रखना, समय पर दिशा सूचक देना, बिना जरूरत हॉर्न ना बजाना, पैदल यात्री को रास्ता देना और सामने वाले की गलती पर तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया ना देना।
0: और दीपा देखो, ये समझना है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा किसी और से नहीं होती बल्कि हमसे खुद से होती है।
1: तो अगली बार जब हम सड़क पर निकले, याद रखें सड़क पर हमें एक दूसरे के मुकाबला नहीं करना है, एक दूसरे के साथ सुरक्षित रहना है। सुरक्षित चलिए, संयम से चलिए और दूसरों को भी सुरक्षित चलने का मौका दीजिए।

0: और दीपा देखो, एक मेल और आ गया हमारे पास, ये आया है गाजियाबाद से, योगांशु कौशिक का। इन्होंने लिखा है
1: क्या लिखते
0: कि
1: हैं?
0: इन्होंने लिखा है कि ख़ास तौर पर कि मैं FM गोल्ड बचपन से सुनता रहा हूँ,
1: वाह,
0: आपके सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। वही, बहुत बहुत
1: थैंक
0: शुक्रिया। और
1: यू।
0: मेरा एक्टिव टाइम जो होता है शाम को होता है, जिसमें मैं 7-8 घंटे कम से किलोमीटर वॉक करता हूँ और फिट रहने के लिए कोशिश करता हूँ कि मैं फिट रहूँ, है
1: बहुत
0: ना।
1: अच्छी
0: बहुत
1: बात
0: अच्छी
1: है।
0: बात है, बहुत अच्छी इन्होंने बात कही है। और ये भी होना भी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप सुबह ही एक्सरसाइज करें, आप शाम को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और साथ में मैं ये कहूँगी कि अब मैं एक बात करना चाहती हूँ कि दुनिया तो जीत ली, क्या खुद को जीता हमने कभी?
1: ये तो
0: कहते
1: बड़ी बात कही
0: हैं,
1: सिमरन तुमने।
0: बिल्कुल। और
1: कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को जीत लेता है।
0: हम सब जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को अच्छा चाहिए, घर चाहिए, है ना, किसी को बड़ी नौकरी, किसी को नाम, पहचान, और सबको पाने की कोशिश में हम अक्सर एक सवाल भूल जाते हैं, क्या हमने खुद को समझा है कभी?
1: दुनिया की नजरों में सफल होना आसान हो सकता है, लेकिन लेकिन अपने डर पर जीत पाना, अपने गुस्से को काबू करना, अपनी कमियों को स्वीकार करना और मुश्किल वक्त में भी खुद पर भरोसा बनाए रखना, यही असली जीत है सिमरन।
0: और कभी-कभी हम दूसरों को जीत जाते हैं लेकिन अपने मन को हार जाते हैं, दूसरों को खुश करने की कोशिश में आपकी अपनी खुशी जो होती है वो भूल जाते हैं, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते उतरते ये भूल जाते हैं कि हमारी अपनी उम्मीदें क्या थी।
1: तो आज थोड़ा ठहरिए दोस्तों और खुद से पूछिए, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया लेकिन क्या मैंने खुद को जीता? क्या मैं अपनी गलतियों को माफ कर पाता हूँ? क्या मैं मुश्किल परिस्थितियों में शांत रह पाता हूँ? क्या मैं बिना किसी तुलना के अपनी जिंदगी से खुश हूँ?
0: तो याद रखिए, दुनिया की तालियां कुछ पल की खुशी देती हैं लेकिन खुद पर जीत जिंदगी भर का सुकून देती है, इसलिए दुनिया जीतने की दौड़ में खुद को मत हारिए।
1: क्योंकि आखिर में सबसे खूबसूरत जीत वही है जब इंसान आईने में खुद को देखे और कह सके, हाँ, मैंने दुनिया को नहीं, सबसे पहले खुद को।

0: दीपा मेल आ गया लगता है जैसे
1: एक मेल आई है। इद्रीस सैफी जी लिखते हैं कि जो सुबह का समय होता है वो उनका बहुत एक्टिव रहता है, वो पार्क टहलने जाते हैं और वहाँ पे उनका अच्छा समय गुजरता है।
0: बहुत अच्छी बात है। और साथ में मेरे पास भी एक मेल आया है, वो लिखा है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, ये शांति नगर सोनीपत से है और इन्होंने लिखा है कि दीपा जी और आप मतलब बहुत बहुत आपको बधाई हो, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और लग रहा है और साथ में कार्यक्रम की प्रस्तुति सदाबहार गीत बहुत सुंदर लग रहे हैं, अति उत्तम प्रस्तुति है आपकी, अनमोल बातें और गीतों की तो उन्होंने तारीफ कर ही दी है। और इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि दिल से बहुत बड़ी बड़ी बधाई और साथ में आपका जीवन भी बहुत अच्छा रहे और ऐसी तरह से एक्टिव रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ में एक और मेल आ गया है मेरे पास, ये है मेरठ से सुनैना गुप्ता का, इन्होंने भी लिखा है कि मेरा जो सबसे सही समय होता है जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं बहुत एनर्जी फील करती हूँ और साथ में पार्क तो मैं जाती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, अगर ना जा पाऊँ तो घर में छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, तो इसलिए मेरा समय जो है सुबह का बहुत अच्छा होता है। तो चलो सुबह के समय के साथ एक और गाना भी सुनवा देते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज दोपहर नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम, जहां पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। मौजूद हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, प्रधानमंत्री ने अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है इस शिखर सम्मेलन से अलग, और अभी और किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता का आज कार्यक्रम है?
1: हाँ जागृति, आज का दिन राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से करीब 1.5 घंटे बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह से ही ब्रिक्स के सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया और मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर रुचि जताई है। इसके अलावा इथियोपिया ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूद अवसरों पर चर्चा हुई। जागृति, आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति जिनपिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की पहली यात्रा है। जी जागृति।
0: जी धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। और इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम गेब्रेसियस भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से क्वांगचो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। ये सेवा ऐसे समय फिर शुरू हो रही है जब चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन ऐसे समय में बंद की गई है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई, जबकि मधु और सुखवीर

वक्त हो चला है 1:11 और 7 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल है, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल, और कलाकार बेमिसाल में मैं संगीता हूँ आप सभी के साथ। दोस्तों, कभी कभी किसी फिल्मी धुन को सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो धुन नहीं, हमारी अपनी कोई पुरानी याद हो। कुछ संगीतकार धुनें बनाते हैं और कुछ संगीतकार धुनों को जिंदगी दे देते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक फनकार की है, जयकिशन की। जी हाँ, वही जयकिशन जिनका नाम आते ही शंकर जयकिशन की वो बेमिसाल जोड़ी याद आती है, जिसने हिंदी फिल्म संगीत को नई रवानी, नई रंगत और नई पहचान दी। लेकिन जयकिशन की अपनी संगीत शख्सियत भी कम दिलचस्प नहीं थी। आज जयकिशन की पुण्यतिथि है। महज 41 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को विदा कहा। पर देखिए ना, उनकी उम्र भले ही थम गई पर उनके धुनों की उम्र तो बढ़ती ही जा रही है। ऐसे बेमिसाल कलाकार जाते कहाँ हैं, वो तो रह जाते हैं अपने काम के जरिए हमारे साथ, हमारे पास।

कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल, और कलाकार बेमिसाल में आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार जय किशन को। जय किशन जिनका जन्म हुआ था गुजरात के बांसंदा में 1929 को, और बचपन से ही उन्हें संगीत का शौक था और उन्होंने हारमोनियम सीखा। आगे चलकर संगीत की तलाश उन्हें मुंबई तक ले आई, और फिर एक दिन ये मुलाकात हुई, वो मुलाकात हुई जिसने हिंदी फिल्म संगीत का इतिहास बदल दिया। तो मुंबई में जय किशन की मुलाकात से हुई शंकर से। शंकर उन्हें पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर में ले आए। दोनों की दोस्ती और संगीत की साझेदारी इतनी गहरी हुई कि आगे चलकर यही जोड़ी शंकर जय किशन के नाम से मशहूर हुई।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल और कलाकार बेमिसाल में आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार जय किशन को। तो हमने बताया आपको कि किस तरह से पृथ्वीराज कपूर से मुलाकात हुई शंकर जय किशन की और कहानी यहां से राज कपूर तक पहुंचती है। राज कपूर अपनी फिल्म बरसात के लिए संगीत की तलाश में थे। शंकर को संगीत देने का मौका मिला लेकिन शंकर ने साफ कहा कि जय किशन को भी बराबर का साझेदार बनाया जाए। राज कपूर राजी हुए और फिर आया 1949 का साल। उफ, बरसात का संगीत ऐसा जादू चला कि शंकर जय किशन की जोड़ी रातों रात फिल्म संगीत की दुनिया में स्थापित हो गई और यही वो फिल्म थी जिसने आगे चलकर राज कपूर और शंकर जय किशन की जोड़ी को बहुत लंबे समय तक बनाकर रखा। हम कह सकते हैं कि एक लंबे समय तक चलने वाली रच

हम याद कर रहे हैं संगीतकार जयकिशन को। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो हम आपको बता दें कि हम उनकी बातें कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके कई खूबसूरत गीत सुन रहे हैं। जयकिशन की खासियत थी मेलोडी, उनकी धुनों में रोमांस था, मिठास थी और सबसे बढ़कर एक ऐसी सादगी थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। शंकर जयकिशन ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की बुनियाद को पश्चिमी संगीत की ऑर्केस्ट्रा और इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ मिलाकर एक नया फिल्मी संगीत रचा। उनके यहाँ ऑर्केस्ट्रा सिर्फ पीछे बजने वाली आवाज नहीं बल्कि गीत के जज्बात को आगे बढ़ाने वाला किरदार था। और जयकिशन खास तौर पर रोमांटिक और कैची धुनों के लिए खूब जाने जाते थे।

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP ट्रैफिक देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: वक्त हो चला है 1:35:25 आकाशवाणी दिल्ली का ये FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल और आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार जय किशन को। न जाने कितने ऐसे उनके गीत जिनकी वजह से हम पहचाने जाते हैं, चाहे आवारा हूं की बात करें, दुनिया के किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, गीत जो है वो आज भी गूंज रहा है, या फिर प्यार हुआ इकरार हुआ, या फिर मेरा जूता है जापानी। न जाने कितने ऐसे गीतों की बात की जा सकती है। तो राज कपूर की फिल्मों में संगीत कहानी का हिस्सा बन जाता था और इसमें शंकर जयकिशन की धुनों का बहुत बड़ा योगदान था। श्री 420 में शैलेंद्र और हसरत जयपुरी जैसे गीतकारों के साथ मुकेश मन्नाडे, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे गायक गायिकाओं की आवाजों ने इन गीतों को अमर कर दिया। एक बड़ा प्यारा सा, कल ना एक किताब पढ़ रही थी मैं लता मंगेशकर के ऊपर, उसमें बड़ा प्यारा सा किस्सा था कि राज कपूर ने जय किशन से कहा कि लता जी के घर भेजा जय किशन को, और जब लता जी ने आशा से कहा कि देखो तो ज़रा कौन आया है, और लता आशा बाहर निकल कर आती हैं और जय किशन से मिलती हैं, और जय किशन ने उनको बोला था कि वो राज कपूर के ऑफिस से आए हैं। और आशा जब लता दी के पास आती हैं तो लता दी पूछती हैं कि कौन था, तो आशा जी कहती हैं कि राज कपूर के ऑफिस से आए थे, उनके सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी भी इतने हैंडसम होते हैं क्या? और ये बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उस किताब में इस बात का जिक्र है, क्योंकि जय किशन बहुत टॉल थे और बहुत ही हैंडसम थे, बहुत गुड लुकिंग थे। चलिए हम श्री 420 से आपको सुनाते हैं ये बड़ा ही प्यारा सा गीत।

एक जोड़ी मगर दो अलग अलग अंदाज। एक दिलचस्प बात ये भी है कि शंकर और जयकिशन हमेशा हर धुन जो है वो साथ बैठकर नहीं बनाते थे। दोनों की अपनी अपनी संगीत समझ और अपनी रचनात्मक पहचान थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से एक तरह का वादा किया था कि कौन सी धुन किसने बनाई इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि आज भी कई गीतों को लेकर संगीत प्रेमियों में चर्चा होती है कि ये धुन शंकर की थी या फिर ये धुन जयकिशन की थी, मगर नाम हमेशा एक ही रहा, शंकर जयकिशन। और शायद यही उस साझेदारी की सबसे खूबसूरत बात है।

के मुकाबले 5 गोल से शिकस्त देकर जूनियर एशिया कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। यह मुकाबला चीन के शहर मोची में खेला गया। और यूएस ओपन टेनिस में दिफाई चैंपियन आरियाना सबालिन्का आज रात न्यूयॉर्क के फाइनल में दूसरे दर्जे की खिलाड़ी एलेना रैबाकिना का सामना करेंगी। अब खबरें तफसील से। भारत की सदारत में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग नई दिल्ली में शुरू होने वाली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर इथोपिया के अपने हममनसब डॉक्टर आबी अहमद अली के साथ दो तरफा बातचीत की। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा कलीदी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इक्तसादी ताउन, दिफा और सलामती के शोबे में शराकतदारी और सलाहियत साजी समेत अहम शोबों में होने वाली पेशरफ्त का

0: जायजा लिया। मीटिंग के दौरान वजीर आजम मोदी ने 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में इथोपिया की शिरकत को सराहा और कहा कि इथोपिया की मौजूदगी ने आलमी खित्ते जुनूब की इज्तमाही आवाज को मजीद मजबूत बनाने में मदद दी है। वजीर आजम ने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर जो भारत की सदारत में मुनाकिद हो रही है, मलेशिया के अपने हम मनसब अनवर इब्राहिम के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने तजारत और सरमायाकारी, दिफा सिक्योरिटी और आवाम से आवाम के राबते समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने इस साल फरवरी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मलेशिया के दौरे के नतीजे की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। जनाब मोदी ने आसियान भारत ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में मलेशिया की मजबूत हिमायत की तारीफ की। वजीर आजम मोदी ने वियतनाम के अपने हम मनसब ले मिन हुंग के साथ मीटिंग में ब्रिक्स में शराकत दार मुल्क की हैसियत से वियतनाम की शिरकत का खैर मकदम किया। वजारत खारजा ने कहा है कि मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं को दो तरफा ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेने का मौका फराहम हुआ। इस साल मई में वियतनाम के सदर तू लम के भारत के सरकारी दौरे के दौरान दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद जामे स्ट्रेटजिक साझेदारी की सतह तक ले जाया गया था। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल किया और शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने का इरादा किया। भारत और वियतनाम के दरमियान तवील अरसे से दोस्ती कायम है जो मुश्तरका तहजीबी विरसे, बाहमी एतमाद और इफहाम व तफहीम पर मबनी है। वियतनाम भारत की मशरक नवाज पॉलिसी का एक अहम सुतून और जनूबी मशरक़ी एशिया के साथ भारत के वसी तर रवाबित में एक अहम शराकत दार मुल्क है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ भी दो तरफा बातचीत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज चीन के सदर शी जिनफिंग के साथ भी दो तरफा मीटिंग करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये छोटी कॉन्फ्रेंस ब्रिक्स मुल्कों की शमूलियाती हुक्मरानी और कसीरुल जहती को मजबूत करने पर मबनी इजलास के साथ शुरू होगी। इसके बाद ब्रिक्स रुकन मुल्कों के आला रहनुमा भारत मंडपम में मुनाकिद भारत इनोवेट्स नुमाइश का भी दौरा करेंगे। इसके बाद वो इज्तिमाई शजरकारी करेंगे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए दिए जाने वाले खसूसी इशाइये में शिरकत करेंगे। वहीं कल ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के दूसरे दिन मुनाकिद होने वाला इजलास जिद्दत तराजी इश्तराक और इस्तेहकाम शमूलियाती आलमी तरक्की के लिए मुस्तकबिल की तश्कील पर मबनी होगा। इस इजलास में रुकन ममालिक के अलावा बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम जैसे मुआविन ममालिक भी शामिल होंगे। ब्रिक्स ममालिक दुनिया की आबादी में लगभग 50%, आलमी GDP में 40% और तिजारत में 25% से ज़्यादा की हिस्सेदारी रखते हैं। ब्रिक्स टीम के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: बेलारूस के वजीर खारजा मैक्सिम रिजनकोव भी आज सुबह नई दिल्ली में होने वाली 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। भारत और बेलारूस के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं जिनमें खसूसी तौर पर दो तरफा और कसीर जहती शोबों में वसी पैमाने पर बढ़ता हुआ ताउन है। वियतनाम के वजीर आजम ले मिन हुंग भी ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के लिए नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर वजीर ममलकत बराए शहरी हवाबाजी मुरलीधर मोहोल ने उनका इस्तकबाल किया। भारत और वियतनाम के दरमियान मजबूत जामे स्ट्रेटजिक शराकत दारी कायम है जो देरीना दोस्ती और ताउन पर मबनी है। इससे कबल आज सुबह आलमी इदारे सेहत WHO के डायरेक्टर जनरल डॉ टेड्रोस अदनाम गेब्रेसस भी ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचे। वजारत खारजा ने कहा है कि उनका दौरा मुश्तरक तरक्की और खुशहाली के लिए सेहत मुतालिक उमूर में आलमी ताउन की अहमियत को उजागर करता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के सदर मसूद पेदशकियान से मुलाकात की। ईरानी सदर ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए कौमी राजधानी में हैं। इससे पहले उन्होंने कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत के उस देरीना मौकिफ को दोहराया कि सभी मामलात का हल बातचीत और सफारतकारी के जरिए ही निकाला जाना चाहिए। सऊदी अरब ने अपनी अहम मशरकी मगरबी तेल पाइपलाइन को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। यह इकदाम मजकूरा तेल पाइपलाइन को ड्रोन हमले का निशाना बनाए जाने के एक दिन बाद किया गया है। सऊदी अरब की वजारत तवानाई ने कहा है कि पाइपलाइन को एहतियाती इकदाम के तौर पर बंद कर दिया गया है। मशरकी मगरबी तेल पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए इंतहाई अहम है क्योंकि आबनाए हुरमुज में रुकावट के बाद इसी पाइपलाइन के जरिए सऊदी अरब को अपना तेल बरामद करने में मदद मिल रही थी। यह सूरत हाल ईरान की अमरीका और इसराइल के साथ जारी जंग के दौरान पैदा हुई है। भारतीय महकमे मौसमियात

आईएमडी ने छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ में आज इंतहाई शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी कल तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। वहीं उड़ीसा, तेलंगाना, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी भारत के हिस्सों में भी उसी के मौसमी हालात रह सकते हैं। हॉकी में भारत ने आज चीन के मौके में जनूबी कोरिया को 1-5 से शिकस्त देकर खवातीन जूनियर एशिया कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। यूएस ओपन टेनिस के मर्दों के सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में 8वें दर्जे के खिलाड़ी बेन शेल्टन का सामना आला दर्जे के खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेवरेव से होगा। जर्मनी के जेवरेव ने आज सुबह खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में रूस के खिलाड़ी कैरेन खाचानोव को 6-3, 7-6 और 7-6 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में बेल शेल्टन ने अपने हमवतन 11वें दर्जे के अमरीकी खिलाड़ी फ्रांसिस को 4-6, 6-3, 6-3 और 7-5 से हराया। खवातीन के सिंगल्स मुकाबलों में दिफाई चैंपियन आरियाना सबालिनका का आज रात न्यूयॉर्क में दूसरे दर्जे की खिलाड़ी एलेना रेबकीना के साथ खिताबी मुकाबला होगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत की सदारत में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग नई दिल्ली में शुरू होने वाली है। दो रोजा सरबराह मीटिंग में आलमी रहनुमाओं की शिरकत के दरमियान आलमी तर्ज हुक्मरानी, कसीर जहती तजारत, सिक्योरिटी और सप्लाई चेन से मुतालिक उमूर पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी ने मलेशिया के हमनसब अनवर इब्राहिम के साथ दो तरफा बातचीत की। उन्होंने आसियान भारत

0: आनंद, प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से अलग अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं, और अगर आज की बात करें तो किन देशों के साथ अभी द्विपक्षीय वार्ता होने का कार्यक्रम है?
1: जी जागृति, आज का दिन भारत के लिए द्विपक्षीय और राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है।
0: जी,
1: आज सुबह से ही ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया और मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इथियोपिया के ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूदा अवसरों पर चर्चा हुई। अगर आज हम शाम के कार्यक्रम की बात करें तो जागृति, आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति जिनफिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की यह पहली यात्रा है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत मुख्य रूप से सीमा पर तनाव कम करने और व्यापार असंतुलन के मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है। जी जागृति।
0: जी आनंद, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजनकोफ आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ मुलाकात की। इससे पहले शिखर सम्मेलन से अलग कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से ग्वांगझोउ और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। ये सेवा चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के भारत दौरे के बीच शुरू हो रही है। इस साल मार्च में भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने भी शंघाई और कोलकाता के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की थीं, जिससे दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क और मजबूत हुआ है। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुंचाना है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रदर्शनी में आए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करना देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की नवाचार व्यवस्था तेजी से विकसित हुई है।
3: इंडिया इनोवेशन, भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हुआ है। भारत इनोवेटिव्स की यात्रा ने नीस में आयोजित अपने पहले वैश्विक प्रदर्शन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव स्थापित किया है। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के साथ हम अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रयोगशाला से बाजार तक और भारत से विश्व।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत

0: किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। इस तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जल डमरू बध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गो में से एक है। पंजाब पुलिस के गैंगस्टर रोधी कार्यबल AGTF और देश छोड़कर भागे लोगों की निगरानी और प्रत्यर्पण की शाखा OFTEC ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से फरार अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलम को मोल्दोवा गणराज्य से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की है। गैंगस्टर रोधी कार्यबल के पुलिस अधीक्षक बिक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की 4 सदस्यीय टीम आज सुबह उसे भारत लेकर आई। बिहार में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हालांकि कई इलाके अब भी प्रभावित हैं। राज्य के 14 जिलों के 2,000 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है।
1: प्रदेश में गंगा, सोन, बागमती, घाघरा और पुनपुन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है। हालांकि गंगा और पुनपुन कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर पटना के गांधी घाट समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर से अधिक ऊपर बह रही है। जलस्तर में कमी के साथ गंगा, गंडक, कोसी और सोन के तटवर्ती इलाकों में कटाव का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील तटबंधों और कटाव संभावित स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निदेश श्री।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान की आशंका है। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन पपैया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि प्रोफेसर पपैया की वाक्पटुता और विद्वता ने देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं सेवा, त्याग, समानता, करुणा और मानवता की भावना को बढ़ावा देती हैं और समाज को मानव कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इससे पहले पुरुषों के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने कल पहले सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्याना सबालेंका आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना का सामना करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबुधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

वक्त हो चला है 2:31 और 11 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का ये FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। कार्यक्रम है संगीत.com और मैं संगीता हूँ आप सभी के साथ।

फिल्म है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और पर्दे पर है अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी। आवाज़ें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की, संगीत अनु मलिक का।

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
2: कार्यक्रम है संगीत.com और संगीत.com में अगला गाना हम कौन सा आपको सुनवाने वाले हैं, तो अगला गाना है फिल्म बाजीगर से। हालांकि इस फिल्म के सारे ही गाने एक से बढ़कर एक थे, लेकिन हम जो गीत सुनाने जा रहे हैं वो है किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, और आशा जी की आवाज़ में, विनोद राठौर की आवाज़ में ये गीत है। बोल जफर गोरखपुरी के थे और संगीत फिर से अनु मलिक का। लेकिन इस गीत से जुड़ी ना एक बड़ी दिलचस्प बात है, वो ये कि ये जो है गाना मूल रूप से एक फिल्मी गीत के लिए नहीं बल्कि एक एल्बम के लिए सोचा गया था, और इसे गजल के अंदाज में पंकज उधास से गवाने का इरादा था। लेकिन जब बाजीगर में इसका इस्तेमाल किया गया तो अनु मलिक ने इसकी रफ्तार को बदला और गायकों को भी बदल दिया। पंकज उधास की जगह आशा जी आ गई, विनोद राठौर आ गए, और जिस अंदाज में इस गीत को गाया गया वो कमाल है। और अनु मलिक के संगीत को तो कहना ही क्या, ये तो पूरा एल्बम ही बड़ा कमाल का रहा। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत।

session is now officially called to order. Is it okay? Is it okay? Your Highness, Excellencies, नमस्कार. भारत में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है. भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है. रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं. इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है. इसी सोच के साथ 350 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया. लगभग 30 शहरों में आपकी टीम्स का स्वागत करने का हमें अवसर मिला. भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को सफल बनाने में सक्रिय योगदान और समर्थन के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. फ्रेंड्स, इस वर्ष की ब्रिक्स समिट एक ऐतिहासिक पड़ाव है. हम ब्रिक्स की 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. मानव जीवन में 20 वर्ष की आयु मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के नए चरण का आरंभ करती है. यह वह अवस्था होती है जब सपनों के साथ जिम्मेदारियां जुड़ती हैं, सामर्थ्य को नई दिशा मिलती है. आज ब्रिक्स भी अपने कमिंग ऑफ एज के क्षण में है. पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स ने वैश्विक

0: पर अपनी विशिष्ट पहचान बढ़ाई है। हम एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं और कंसेंसस से आगे बढ़ते हैं। हम किसी के विरुद्ध नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने का की सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए। मैं ब्रिक्स कम्युनिटी कंटिन्यूटी एंड इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म का प्रस्ताव रखता हूं। इसके तहत ट्रॉयका के माध्यम से सभी इनिशिएटिव्स और आउटकम्स का फॉलोअप हो सकेगा। हम एक सिक्योर डिजिटल रिपोजिटरी बना सकते हैं। इसमें हर निर्णय के साथ नोडल पॉइंट, समय सीमा और इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस दर्ज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ब्रिक्स को मजबूत करते हुए हमें ग्लोबल रिफॉर्म की दिशा भी तय करनी होगी। ग्लोबल गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। इसके ऊपरी भाग में पावर और डिसीजन मेकिंग केंद्रित है और निचले भाग में वो देश हैं जो इन डिसीजन से प्रभावित तो होते हैं लेकिन उन्हें आकार नहीं दे पाते। ग्लोबल साउथ आज वैश्विक संकटों की फ्रंट रो में है लेकिन डिसीजन मेकिंग की बैक रो में है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें, जिसे हम अगली समिट तक एक ब्रिक्स रिफॉर्म रोडमैप का रूप देने का प्रयास कर सकते हैं। इस रोडमैप को बनाने में हमें 3 मुख्य पहलुओं, रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस एंड रूल मेकिंग का ध्यान रखना होगा। पहला, रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। इस विषय पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए। जो देश ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देते हैं उन्हें ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को दिशा देने में भी उचित भूमिका मिलनी चाहिए। दूसरा, रिस्पॉन्सिवनेस। वैश्विक संस्थानों में मानवता का विश्वास तभी बनेगा जब वे समस्याओं का प्रभावी समाधान करने में सक्षम होंगे। हमें कलेक्टिव रिस्पांस के स्पीड, स्केल और लास्ट माइल इंपैक्ट पर ध्यान देना होगा। सी फेयरर्स का वैश्विक व्यापार में बहुत बड़ा योगदान है, किंतु अक्सर मुश्किल समय में उन्हें सहारे की कमी महसूस होती है। मेरा प्रस्ताव है कि क्या हम सी फेयरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं। इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटीज और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, रूल मेकिंग के संबंध में भविष्य के ग्लोबल रूल तय करने में समान भागीदारी सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एआई, साइबर स्पेस, आउटर स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भविष्य के अवसरों के साथ भविष्य के नियम भी तय कर रहे हैं। हमें ग्लोबल साउथ को रूल टेकर से रूल शेपर बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। ब्रिक्स के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों के युवा डिप्लोमेट्स और पॉलिसी मेकर्स को नेगोशिएशन स्किल्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और लीगल एक्सपर्टीज प्रदान कर सकते हैं। सुखद संयोग से आज यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन है। ग्लोबल साउथ को समर्पित इस दिन पर ऐसा निर्णय लिया जाना विशेष महत्व रखता है। भारत इस विषय में लीड लेने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, भारत में आयोजित इस ब्रिक्स समिट का संदेश स्पष्ट होना चाहिए। यदि हमारा भविष्य साझा है तो उसके निर्माण का अधिकार भी साझा होना चाहिए। फ्रॉम वॉइस टू इंपैक्ट, फ्रॉम प्रिविलेज टू पार्टनरशिप, यही ब्रिक्स एट 20 का संकल्प हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो एक बड़ा संदेश।
2: अभी आप ब्रिक्स लीडर्स समिट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन सुन रहे थे। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

0: सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के शुरुआती सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता पर केंद्रित है।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को सफल बनाने में सक्रिय योगदान और समर्थन के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।
0: और अब चलते हैं भारत मंडपम, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता दीपेंद्र। हेलो दीपेंद्र
2: जी, जारी
0: अभी कार्यक्रम स्थल पर आप मौजूद हैं, शिखर सम्मेलन के बारे में क्या ताजा जानकारी है आपके पास?
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज के सत्र के लिए सभी सदस्य देशों के नेता दिल्ली के भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नेताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के बहुपक्षवाद को मजबूत करने के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे। सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 20 वर्ष में वैश्विक मंच पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। वहीं सत्र की बात करें तो सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि भारत इनोवेट प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे संयुक्त रूप से पौधारोपण करेंगे और फैमिली फोटो के लिए एकत्रित होंगे। इसके बाद शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले ब्रिक्स सदस्य देशों के नेताओं के सम्मान में भव्य रात्रि भोज का भी आयोजन करेंगे। जी जागृति
0: जी, धन्यवाद दीपेंद्र इस जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबुधाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली से मुलाकात की। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा एवं सुरक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग के साथ बैठक में श्री मोदी ने ब्रिक्स में साझेदार देश के रूप में वियतनाम की भागीदारी का स्वागत किया। अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बैठक में दोनों पक्षों ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात की। इससे पहले कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से क्वांगझोउ और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। ये सेवा ऐसे समय फिर शुरू हो रही है जब चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग भारत के दौरे पर हैं। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन ऐसे समय बंद की गई है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मुखी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The 18th BRICS Summit under presidency of India began in New Delhi a short while ago. Prime Minister Modi welcomed world leaders at

0: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।
1: पूर्वोत्तर डायरी।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको ले चलते

0: ते हैं नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। और बीते दिनों ताल कटोरा स्टेडियम पूर्वोत्तर भारत के युवाओं की प्रतिभा से सराबोर हुआ। पूर्वोत्तर भारत के युवाओं ने यहां पूर्वोत्तर भारत की कला संस्कृति और अपनी रचनात्मकता का बेहद खूबसूरत प्रदर्शन किया। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और युवाओं के साथ संवाद किया। तो आइए एक खास रिपोर्ट सुनते हैं जिसमें हम इस खास आयोजन के बारे में विस्तार से जानेंगे।
1: केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने महोत्सव के 9वें संस्करण में भाग लिया और विद्यार्थियों से संवाद किया। इस मौके पर सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के युवा विकसित भारत 2047 की नींव मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
2: The capability to take India forward, from coders to creators to entrepreneurs to musicians like Lily, who enthrall us with her capability, to athletes, Lolina Borugen, Mirabai Chanu. What does not my Northeast have? And this is the power we need to unleash. And this is the power that Prime Minister Narendra Modi aims to unleash by calling the Northeast our Ashta Lakshmi, our eight forms of Lakshmi, my young friend.
1: उन्होंने खेल, संगीत, शिक्षा, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में क्षेत्र के युवाओं की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन का उदाहरण देते हुए कहा कि पूर्वोत्तर में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें सही अवसर और मंच उपलब्ध कराने की। कार्यक्रम में माई होम इंडिया की भूमिका का भी उल्लेख किया गया। सिंधिया ने कहा कि 21 साल पहले पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों को दूसरे शहरों में अपनेपन का एहसास कराने के उद्देश्य से शुरू हुई यह पहल अब राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को जोड़ने वाला मंच बन चुकी है। महोत्सव में विद्यार्थियों ने अपनी कला और संस्कृति की खूबसूरत झलक पेश की। नृत्य प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों और विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति श्रद्धांजलि भी दी गई। केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्ट ने पूर्वोत्तर की संस्कृति के साथ वहां के युवाओं की प्रतिभा और उपलब्धियों को राष्ट्रीय मंच पर सामने लाने का काम किया। यह महोत्सव विविधता में एकता और युवा शक्ति के संदेश के साथ सम्पन्न हुआ। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार।
0: श्रोताओं, आर्थिक सहायता किसी भी विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है। मेघालय सरकार ने भी मेघालय के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रदान करके उनके आगे बढ़ने के लिए और पढ़ने के लिए रास्ता तैयार किया और करीब 87,000 ऐसे विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप्स दी गई। तो किस तरह से मेघालय सरकार की इस पहल से विद्यार्थियों को आर्थिक मदद मिल रही है और वो अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं।
3: मेघालय सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 87,691 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि जारी की है। इसके लिए करीब 91 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच गए हैं। खास बात यह है कि इस बार छात्रवृत्ति का भुगतान तय समय से पहले पूरा हुआ। सरकार के अनुसार 27 अगस्त को राशि जारी किए जाने के बाद विद्यार्थियों के खातों में पैसा 3 से 4 कार्य दिवसों के भीतर पहुंच गया। पहले इसके लिए 5 से 6 दिनों का समय बताया गया था। इस तेज और सीधे भुगतान के पीछे स्नेह स्पर्श व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके जरिए राशि को सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाया गया। इस वर्ष छात्रवृत्ति के लिए कुल 96,812 आवेदन सत्यापित किए गए थे। इनमें से 87,691 विद्यार्थियों को भुगतान मिल चुका है। वहीं करीब 9 करोड़ 121 विद्यार्थियों का भुगतान बैंक खाते और आधार लिंकिंग से जुड़ी समस्याओं के कारण लंबित है। सरकार ने स्पष्ट किया कि इन विद्यार्थियों के लिए निर्धारित राशि रद्द नहीं होगी, बैंक विवरण ठीक होने के बाद भुगतान किया जाएगा। छात्रवृत्ति मिलने से विद्यार्थियों को फीस, पढ़ाई और अन्य शैक्षणिक खर्चों को पूरा करने में आर्थिक मदद मिलेगी। ये पहल राज्य में आदिवासी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मेघालय की ये पहल बताती है कि समय पर मिलने वाली आर्थिक सहायता

0: विद्यार्थियों की शिक्षा के सफर को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार।
1: मिजोरम न सिर्फ पूर्वोत्तर भारत बल्कि हमारे भारत का एक खूबसूरत राज्य है और राज्य की इसी खूबसूरती को देश दुनिया में सबके सामने लाने के लिए लगातार मिजोरम सरकार ने प्रयास भी किए हैं। विंटर फेस्टिवल एक ऐसा ही अवसर होता है जब पर्यटक मिजोरम आते हैं और यहाँ की खूबसूरती को निहारते हैं, यहाँ की कला संस्कृति से अवगत होते हैं और खासतौर पर जो वहाँ का आतिथ्य है उसका भी लाभ लेते हैं। तो मिजोरम सरकार ने अब विंटर फेस्टिवल की तैयारियां शुरू कर दी हैं और किस तरह से पर्यटन आकर यहाँ के आकर्षण का लाभ ले सकते हैं इस मामले में इंतजाम किए जा रहे हैं। तो विंटर फेस्टिवल की तैयारियों पर मिजोरम सरकार की जो परियोजनाएं हैं इस संबंध में आइए ये खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं।
2: मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहोमा की अध्यक्षता में विंटर फेस्टिवल 2026 की आयोजन समिति की बैठक हुई। बैठक में महोत्सव की तैयारियों और विभिन्न गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को भारत की विंटर कैपिटल के रूप में पहचान दिलाने के लिए विंटर फेस्टिवल एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से मिजोरम की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ स्थानीय कारोबार और उद्यमिता को भी सामने लाया जाएगा। महोत्सव में कई आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना है। मत्स्य विभाग की ओर से एंगलिंग यानी मछली पकड़ने की प्रतियोगिता, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की ओर से बांस से जुड़े नए उत्पादों की प्रदर्शनी और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से फोटोग्राफी प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इसके अलावा क्रिसमस के मौके पर सड़कों की सजावट, क्रिसमस परेड और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। मिजोरम में पर्यटन को भी इस पहल से नई गति मिलने की उम्मीद है। राज्य में इस साल जनवरी से जून के बीच 5,37,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। अधिकारियों के अनुसार बैराबी रांग रेल लाइन शुरू होने के बाद राज्य में पर्यटकों की आवाजाही में बढ़ोतरी हुई है। विंटर फेस्टिवल के जरिए मिजोरम अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक खूबसूरती को देश दुनिया के सामने रखने के साथ स्थानीय उत्पादों और उद्यमियों के लिए नए अवसर तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार।
1: श्रोताओं, आज हम त्रिपुरा का जो आधुनिक स्वरूप देख रहे हैं उसमें कई ऐसे व्यक्तित्वों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिनसे आज आधुनिक त्रिपुरा की तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत होती है। ऐसे ही एक शख्सियत थी महाराजा वीर विक्रम। उन्होंने त्रिपुरा का एक अच्छा आधुनिक स्वरूप हम सभी के सामने प्रस्तुत किया और त्रिपुरा के बुनियादी ढांचे, यहाँ के विकास को लेकर एक नई तस्वीर हम सभी के सामने प्रस्तुत की। तो आइए महाराजा वीर विक्रम की त्रिपुरा के विकास में योगदान की इस कहानी को सुनते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में।
3: त्रिपुरा के इतिहास में कुछ ऐसे शासक रहे हैं जिनकी दूरदर्शी सोच का असर आज भी राज्य के विकास में दिखाई देता है। इनमें महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्हें आधुनिक त्रिपुरा का निर्माता माना जाता है। 19 अगस्त 1908 को जन्मे महाराजा वीर विक्रम ने कम उम्र में त्रिपुरा की राजगद्दी संभाली। उनका शासनकाल भले ही लंबा नहीं रहा लेकिन इस दौरान उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जिन्होंने त्रिपुरा के आधुनिक विकास की नींव रखी। त्रिपुरा के शाही परिवार के सदस्य प्रद्योत किशोर देववर्मन ने बताया कि महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य और महारानी कंचन प्रभा देवी के प्रयासों से ही त्रिपुरा को भारतीय संघ का हिस्सा बनने का अवसर मिला। इसी वजह से आज हम गर्व से खुद को भारत का नागरिक कहते हैं।
4: वो सिर्फ महाराजा नहीं थे, सिर्फ जनजाति के लिए या बंगालीज के लिए या हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस के लिए वो एक देश प्रेमी थे। आज हम लोग हिंदुस्तान में हैं क्योंकि कंचन प्रभा देवी जानते थे कि महाराजा का सपना है कि हम एक हिंदुस्तान में रहे, ना कि पाकिस्तान में।
3: महाराजा वीर विक्रम ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में महाराजा वीर विक्रम कॉलेज की स्थापना हुई जो आज भी त्रिपुरा के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में शामिल है। उन्होंने राज्य में स्कूलों के विस्तार और आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। उनका योगदान केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था, उन्होंने प्रशासन में सुधार किए, शहरों के सुनियोजित विकास पर जोर दिया, सड़कों और संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाया और सार्वजनिक सुविधाओं को मजबूत किया। उनके प्रयासों से अगर तला को एक व्यवस्थित शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम हुआ। अगरतला एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराना भी उनके प्रमुख योगदानों में शामिल था। आज महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट त्रिपुरा को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। शाही परिवार की एक अन्य सदस्य राजकुमारी प्रज्ञा देव बर्मन ने भी महाराजा वीर विक्रम के योगदान को याद करते हुए उन्हें आधुनिक त्रिपुरा का निर्माता बताया।
5: उन्होंने जो भी कुछ किया अभी हम लोग पूरा अपना त्रिपुरा में हम देख सकते हैं। जो भी आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, MBB कॉलेज हो या आपके धर्मनगर में कॉलेज है, उसको छोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स लाना, डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करना त्रिपुरा में, वोटिंग राइट्स, उसको छोड़ के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रिफॉर्म्स लाना, अगरतला टाउन प्लानिंग, और सबसे जो बड़ा उनका जो विजन था वो था आपका लैंड रिजर्वेशन, जो आज का जो TTADC है, इट इज एक्चुअली एन आउटकम ऑफ जो महाराजा ने इनविजन किया था, ताकि हमारे लोगों को बचाकर अपना लैंड राइट्स दे सके। तो ये सबका जो भी महाराज ने हमारे सबके लिए किया, धर्म जाति ये सब नहीं देखा महाराजा ने कभी भी। और आजकल के जमाने में लोग वोट्स लेने के लिए, पावर में आने के लिए, ये सब छोटे छोटे चीजों को लेकर हमारे कम्युनिटी में, हमारे लोगों के बीच में बहुत कुछ पैदा किए हैं।
3: भारत की आजादी से पहले ही महाराजा वीर विक्रम ने एक आधुनिक और प्रगतिशील त्रिपुरा का सपना देखा था। शिक्षा, बुनियादी ढांचे, शहरों के विकास और प्रशासन के क्षेत्र में उनके फैसले अपने समय से काफी आगे थे। त्रिपुरा के विकास में उनके योगदान की छाप आज भी दिखाई देती है। उनकी दूरदर्शी सोच और विकास की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सुमन भट्टाचार्य जी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं विशेष शुक्ला।
1: श्रोताओं, सिक्किम की खेल प्रतिभाओं के बारे में हम तो पहले ही आपके साथ बातें करते रहे हैं इस कार्यक्रम में, और आज फिर आपके साथ हाल ही में आयोजित हुई एक अल्ट्रा मैराथन दौड़ के बारे में बात करते हैं, जहां सिक्किम के खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराया है। तो स्पीति अल्ट्रा मैराथन में किस तरह से सिक्किम की खेल प्रतिभाओं ने अपने प्रदर्शन को प्रस्तुत किया, आइए इस विशेष रिपोर्ट में जानते हैं।
6: भारतीय सेना और फिटिजन इंडिया LLP के सहयोग से आयोजित इस ऊंचाई वाले मैराथन का आयोजन हिमाचल प्रदेश के काजा और आसपास के इलाकों में किया गया। इसका उद्देश्य हिमालय क्षेत्र में फिटनेस, साहस और सहन शक्ति को बढ़ावा देना था। इस प्रतियोगिता में 77 किलोमीटर की कुंजुमला चैलेंज सबसे कठिन स्पर्धाओं में शामिल रही, जिसमें प्रतिभागियों को ऊंचाई वाले चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ा। सिक्किम की ओर से टीका एम मंगर ने 77 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन सफलतापूर्वक पूरी की और 21 किलोमीटर की आयु वर्ग स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया। मीना कुमारी सुब्बा ने 77 किलोमीटर की ओपन श्रेणी में दूसरा रनर अप स्थान प्राप्त किया। वहीं सुष्मिता राय ने 77 किलोमीटर ही अपने आयु वर्ग में पहला और 42 किलोमीटर स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया। सन माया सुब्बा ने 77 और 42 किलोमीटर दोनों स्पर्धाओं में अपने आयु वर्ग में पांचवा स्थान प्राप्त किया। बिनिता कामी ने 42 किलोमीटर में अपने आयु वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। वहीं शोभा राय ने 21 किलोमीटर की सूर्या स्पीति चैलेंज में अपने आयु वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त किया। पुरुष वर्ग में गंगा हॉन्ग सुब्बा ने 77 किलोमीटर की ओपन श्रेणी में दूसरा रनर अप स्थान हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने 42 किलोमीटर की स्पर्धा में अपने आयु वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया। सिक्किम के इन खिलाड़ियों की उपलब्धि ने राज्य का गौरव बढ़ाया है और कठिन परिस्थितियों में उनकी मेहनत और जज्बे को भी सामने रखा है। मोइनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं सरफिरोजी।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संदेश भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम में सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 है। सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार। शुरू होता है प्रोग्राम मन भावन, जो आपके मन को भाता है वही आप हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं 9868-68753। आप अपनी रिक्वेस्ट इस नंबर पर हमें कर सकते हैं।

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। आज मन भवन में आपके साथ मैं सीमा वर्मा, मेरे साथ आप सब हैं ही। कैसे हैं भला? इस नंबर के जरिए है 9868687 53, और आपके संदेश हम तक पहुंचना शुरू हो गए हैं, बहुत शुक्रिया। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान है, साथ में पूजा परिहार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। वहीं हरजिंदर सिंह भाटिया जी, नमस्कार। एंजल भाटिया आपके साथ, सोनू हैं, पप्पी भाटिया हैं और तमन्ना भाटिया हैं, बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और पूरी कोशिश है कि आपके जो फरमाइशी गीत हैं वो आप तक पहुंचाएं हम। शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा हैं, चैतन्य मस्कीन हैं, मेघा हैं, साथ में चंडीगढ़ से राहुल खुराना है, रचिता खुराना है, किशोरिधान खुराना है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसी तरह आपके बहुत सारे संदेश जो हैं

हम तक आ रहे हैं। कस्बा बिलराम से हमारे पास इरशाद अहमद शाह साहब का संदेश आया है। शाहजहां बेगम हैं इनके साथ और मरियम और जैनब हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए और आप जल्दी जल्दी हमें अपना संदेशा भेजिए। नंबर आपको मैं बता चुकी हूँ, एक बार फिर से सुन लें आप, 9868868753। और मध्य प्रदेश सनावत की बात करें, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज हैं इनके साथ, आयुषी हैं, रमेश चंद्र वर्मा हैं, शेख मूसा भाईजान हैं, भाई राजकुमार बुडाना हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस के लिए। इसी तरह आप अपने संदेशे जो हैं वो भेजते रहिए, मैं आपके संदेशे पढ़ते पढ़ते बीच बीच में अपनी वाणी को विराम इसलिए दूंगी क्योंकि बहुत खूबसूरत गीतों की दिलकश दखलंदाजी हर किसी को भाती है ना।

स्वागत एक बार फिर आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 100.1 ये नंबर आपकी दोस्त सीमा वर्मा एफएम के स्टूडियो से आप तक पहुंचा रही है और इसी नंबर के ज़रिए आपकी फरमाइशें जो हैं वो हम तक पहुंचती हैं और हम आप तक आपके अपनों तक ये फरमाइशें जो हैं वो पहुंचाते हैं। हिसार से राजकुमार जी हैं, प्रमोद हैं, पुष्पेंद्र हैं और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेशों के लिए। गंज डुंडवारा से मोहम्मद उस्मान अंसारी हैं, कलीम अंसारी साहब हैं, शमशुल कंवर राही हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो दीपेश वर्मा हैं, पूनम हैं इनके साथ, ज्योति और शिवांश वर्मा हैं। सनावत से शेख मूसा मोहसिन साहब हमें संदेशा भेजते हैं। वहीं अगर हम मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पर लक्ष्य सोनी हैं, मानवी तन्वी हैं, मोहिनी ऋतिका हैं, बलवीर सिंह हैं और कुछ नाम हैं, मुकेश कश्यप साहब हैं, शीतल हैं, सोनू सुरेश हैं और काजल सीमा भी हैं। सहारनपुर जनकपुरी से जॉन डिकॉस्ट्रो हैं, रोजी डिकॉस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकॉस्ट्रो हैं और दुर्गई सेलू से हमारे साथ चंदू कुलकर्णी साहब हैं, हेमलता हैं और सी आर कुलकर्णी जी हैं। और अब जो गीत आप तक मैं पहुंचा रही हूं अपने आप में बहुत ही लाजवाब और ख़ास गीत है, बस सुनिए ज़रा इसे।

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP ट्रैफिक देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
2: वेलकम बैक जी। 3:45:20 और अभी हमने जो सुना कि ये जो 3 दिन बहुत ख़ास हैं और ऐसे में ट्रैफिक के बारे में पहले से जानकारी होना बेटर रहता है जब आप घर से बाहर निकलते हैं, और आज मैं भी मेट्रो में आई हूं, तो कोशिश कीजिए मेट्रो में आप सफ़र करें। बहरहाल एक बार फिर आपको याद दिला दूं, आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड 100.1 के साथ हैं। आपके साथ मैं सीमा वर्मा। मेरे साथ आपके बहुत सारे मैसेजेस हैं, पहुँच रहे हैं 9868686853 के ज़रिए। साहब अब बारी है अगला मैसेज लेने की। नागपुर से हमारे पास प्रकाश रंभाड़े जी हैं, साथ में भारती हैं, जानवी हैं, इनके साथ वैष्णवी हैं और हर्षिल हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। वहीं अगला संदेशा ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां का है, और इन्होंने उत्तराखंड से हमें संदेशा भेजा है। अगला संदेशा अगर मैं लेती हूँ, इतने बड़े बड़े आप जो मैसेजेस मुझे लिखते हैं उसमें पते क्या होता है, खो जाता है। क्या खो जाता है भला? आपका नाम भी खो जाता है और साथ साथ ये पता जो हम बीच में बोलते हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। अफरोज शेख साहब, आपको मैं आप ही के लिए कह रही हूँ, ठीक। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी साहब, निगत परवीन है, शहनवाज हैं, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी हैं, पूरा का पूरा अब्बासी परिवार है। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। होली चौक उत्तमनगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल हैं, आपने भी संदेशा भेजा, आपके लिए आपको भी हम शुक्रिया कहते हैं साहब। और संजय पटेल और उषा पटेल हैं और पाटिल हैं, ये आपने कहाँ से भेजा है संदेशा, मैं ये ढूंढने लगूंगी तो नाम जो है वो कहीं खो जाएगा आपका। मलकापुर से आपने संदेशा भेजा है, और भी आपके लगातार संदेशे हम तक पहुंच रहे हैं। साथ साथ मुझे आपको गाना भी सुनाना है, एक है ना, नमस्ते जी, कौन कह रहा है जी हमें? बबीता बोट हैं, निखिल कांगड़ा हैं, तन्वी बोट हैं और अंकित कांगड़ा हैं, सीताराम कांगड़ा भी हैं। आपने हमें संदेशा भेजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शमशुर कमर राही हैं, शाहीन फातिमा हैं, अनु खान हैं, आपके साथ उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। नंबर आप जानते हैं जो हम बार बार आप तक नंबर पहुंचा रहे हैं, और जो गीत हैं वो तो हम आपको आपकी फरमाइश के साथ

5153 इस पर आपने हमें अपना मैसेज भेजना है। अगर कोई गीत सुनने का कारण है तो भी आप बता सकते हैं, आपका जन्मदिन है, आज कोई मांगलिक कार्य हुआ है, आपका दिल उदास है या आज आप बहुत खुश हैं, जो भी कुछ है साझा कीजिए हमसे।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: तीन बजकर 52 मिनट 17 सेकेंड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 और समय जो है वो आगे बढ़ रहा है. आप जानते हैं ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी 9868886875 मन भावन प्रोग्राम का ये नंबर है जिस पर आप अपनी फरमाइश भेजते हैं. और यहाँ कस्बा गुन्नेर से हमारे पास, उत्तर प्रदेश से हमारे पास फारूक अली खां, फैज़ी फरजान और फरहीन फरहान और फारिया ताहिरा का संदेशा आया है. आपने जिस गीत की फरमाइश की है, बहुत प्यारा गीत है. बहुत समय हो गया मैंने सुना नहीं, कोशिश करेंगे कि अगर हम आप तक पहुंचा सकें. मध्य प्रदेश से हमारे पास हुकुम कर्माकर साहब हैं, साथ में सुनीता हैं, हार्दिक हैं, प्राची हैं और तनु हैं. इसके साथ साथ कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका

सवाल भानु प्रकाश, आपने हमें संदेशा भेजा दिल्ली से, बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और इसी तरह आपके जो संदेशे हैं हमारे पास लगातार आ रहे हैं। दुर्ग से हमें संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव और समर्थ और शौर्य का संदेशा आया है, बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और मुझे लग रहा है अब एक गीत आप तक मुझे पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि वक्त जो है वो अपनी चाल पर ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। तो चलिए एक और गीत सुनते हैं।

0: as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन। अब वक्त इतनी इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम आप तक कोई गीत सुनाएं, लेकिन चलते चलते चलिए कुछ नाम और हम पढ़ देते हैं। दिलावर खां, हसीना बानो, अलीजा नवाब और लड्डू जो हैं वो लिख रहे हैं कि माफ़ कीजिए, आपने अभी तक हमारा संदेशा नहीं लिया। रघुवीर नगर से आप हमें संदेशा भेजते हैं। वहीं चाणक्य चौक से मनोहर लाल गांधी जी हैं, वो हमें अपना संदेशा भेज रहे हैं। और इसके साथ साथ और भी नाम हैं, आफ्ताब अंसारी हैं, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ हैं, अनवर मास्टर हैं, लुपना अंसारी हैं। और अब हमें जाना है। सीमा वर्मा को इजाज़त दीजिए क्योंकि अब वक्त समाचारों का हो गया है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है और यह शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक पड़ाव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के

0: व्यक्त करता है।
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक शासन के लिए 10 सूत्री कार्य योजना का प्रस्ताव रखा और कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार अब और टाला नहीं जा सकता।
0: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
1: अब चलते हैं भारत मंडपम, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता दीपेंद्र। दीपेंद्र, शिखर सम्मेलन से जुड़ा क्या ताजा अपडेट है आपके पास?
2: जी देवेंद्र, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले सदस्य देशों के नेता जो है समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। और यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया बड़े बदलाव, आर्थिक चुनौतियों और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस ब्रिक्स समिट का संदेश स्पष्ट होना चाहिए कि यदि हमारा भविष्य साझा है तो उसके निर्माण का अधिकार भी साझा होना चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के भारत में सभी नेताओं का गर्व स्वागत किया था। वहीं सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे संयुक्त रूप से पौधारोपण करेंगे और फैमिली फोटो के लिए एकत्रित होंगे। इसके बाद शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले ब्रिक्स सदस्य देशों के नेताओं के सम्मान में भव्य रात्रि भोज का। जी देवेंद्र
1: जी, धन्यवाद दीपेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और अबूधाबी के युवराज के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ आबी अहमद अली से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, रक्षा और सुरक्षा तथा क्षमता निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा एवं सुरक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान भारत संबंधों को मजबूत करने में मलेशिया के समर्थन की सराहना की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक में दोनों पक्षों ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किन से मुलाकात की। इससे पहले कल श्री पेजिश्किन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से क्वांगचू और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। ये सेवा ऐसे समय में फिर शुरू हो रही है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 है। आइए साथियों, अब सुनते हैं फिल्म संगीत। सबसे पहले फिल्म शर्मीली का गीत, जो 1971 में सिल्वर स्क्रीन पर आई। गायक हैं किशोरदा।

0: ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: ये आकाशवाणी है। अब आप ब्रिक्स लीडर्स समिट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सुनेंगे।
1: के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ इस सेशन के समापन की घोषणा करता हूं।

अभी आप ब्रिक्स लीडर्स समिट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन सुन रहे थे। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ है। कुछ ही देर में आप और हम मिलकर सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोजगार समाचार।

0: days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Further details are available on the website, that is at www.iwai.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय TSU राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है और आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। कार्यकारी अभियंता सह प्रबंधक एक पद, प्रबंधक प्लेसमेंट एक पद तथा सहायक कुल सचिव 6 पद। विस्तृत भर्ती अधिसूचना ऑनलाइन आवेदन पोर्टल, पात्रता मानदंडों और संदर्भ की शर्तों की जानकारी के लिए देखिए त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.tsu.ac.in। मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। यांत्रिक मैकेनिकल 8 पद, इलेक्ट्रिकल 3 पद तथा रासायनिक केमिकल अनुभाग में 15 पद। पदनाम है यांत्रिक और वैद्युत विभागों के लिए सहायक अभियंता और रासायनिक केमिकल अनुभाग के लिए इंजीनियरिंग में स्नातक अभिक्षमता संपन्न उम्मीदवार। इच्छुक उम्मीदवार विस्तृत विज्ञापन के लिए देख सकते हैं वेबसाइट www.mrpl.co.in। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। अधिकारी विधि विभाग में, वरिष्ठ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल अनुभाग में, उपप्रबंधक इलेक्ट्रिकल तथा सिविल और उपप्रबंधक नीति एवं विनियामक कमिश्नरिंग रूफटॉप। इसके अतिरिक्त इन पदों को भी भरा जाना है महाप्रबंधक अनुबंध एवं खरीद, उपमहाप्रबंधक विधि, उपप्रबंधक EMD, उपप्रबंधक इंजीनियरिंग सिविल, उपप्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी, लेखा अधिकारी वित्त अधिकारी तथा इंजीनियर कॉर्पोरेट प्लानिंग। विस्तृत अधिसूचना के लिए देखिए वेबसाइट www.sci.co.in। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई आमंत्रित कर रहा है सहायक प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी के पद को अनुबंध के आधार पर भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन। रिक्ति 1 है और विस्तृत विज्ञापन, पात्रता मानदंड, नियम और शर्तों तथा अन्य जानकारियों के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.iitbhilai.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी आमंत्रित करती है विमान अनुरक्षण अभियंता के पद को भरने के लिए आवेदन। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार देख सकते हैं आधिकारिक वेबसाइट igrua.gov.in। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता आमंत्रित करता है औषधीय रसायन विज्ञान विभाग में प्राध्यापक पद को भरने के लिए आवेदन। आवश्यक शैक्षिक एवं वांछनीय योग्यता, अनुभव और सामान्य निर्देशों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया देखिए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता की वेबसाइट www.niperkolkata.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: शाम के 4:30 हुए हैं। वक्त है न्यूज मैगजीन परिक्रमा का, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार आप तक पहुंचाएंगे हम, साथ ही अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे उनके क्षेत्र के खास समाचार। खेल गतिविधियां भी कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगी और उन खास हस्तियों को भी हमेशा की तरह आज भी याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। परिक्रमा के आज के अंक में मैं हूँ आपके साथ नईम अख्तर और साथ हैं सायरा मुजतबा। सायरा, क्या हाल है आपके?
2: बहुत बढ़िया हाल है, आप सुनाइए नईम। वेरी वेरी आदाब एंड नमस्कार टू यू एज वेल एंड टू आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड। और नईम, ऑफ कोर्स वी आर सिटिंग इन दिल्ली, सो वी आर सीइंग, यू नो, ब्रिक्स समिट इज हैपनिंग, सो एवरीवेयर देयर इज अ थ्रिल इन द एयर, इजंट इट?
1: हमारी आकाशवाणी भवन के एकदम पास से उस दिन कार्काइट भी निकला था, तो वो सब कुछ भी हमने देखा और बहुत अच्छा सजा हुआ है।
2: yes.
1: तो मतलब लगता है कि हाँ, हम राजधानी में रह रहे हैं तो कुछ खास है।
2: एब्सोल्युटली, इंडीड अ बिग moment for our country and for our capital as well.
1: Bilkul.
2: And so of course we'll bring a lot for you, for our listeners, regarding the BRICS summit and jo parikrama hai show hamara, jisme hum desh ki parikrama to karenge hi. We'll go to different parts of the country, see what interesting stories our correspondents have from there, but let's start with the headlines first.
1: Ji, aap hi shuruaat kijiye.
2: BRICS summit under India's presidency is underway in New Delhi. Focus on global governance, multilateralism, trade, security and supply chains. World leaders assemble for two-day summit.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।
2: New Delhi declaration adopted on first day of the summit. Prime Minister Modi holds bilaterals with his Malaysian, Vietnamese and other world leaders. And Ethiopian counterparts also confers the Crown Prince of Abu Dhabi.
1: यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की।
2: Orange alert for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, Telangana and Vidarbha today.
1: और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया।
2: And Naeem, as we had mentioned that we'll bring more details regarding the BRICS summit for our listeners in our Dateline India.
1: Banta hai.
2: So yes, New Delhi is once again at the center of the diplomatic map of the world. The 18th BRICS summit is being held in the Indian capital today and tomorrow, bringing together leaders of major emerging and developing economies at a time when the global order itself is undergoing a major transformation.
1: Bharat ke is summit ki mezbani karne ki ek khas ahmiyat hai. Ye chauthi baar hai jab Bharat BRICS ki adhyaksha कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012 में नई दिल्ली में, 2016 में गोवा में और 2021 में नई दिल्ली से वर्चुअली ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी और लीडर्स समिट की मेजबानी की थी। अब 5 साल बाद भारत की राजधानी में एक बार फिर ब्रिक्स का झंडा लहरा रहा है।
2: द थीम ऑफ इंडियाज 2026 ब्रिक्स चेयरशिप इज Building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. Well, those are merely 4 words, but behind them lies some of the biggest questions facing the world today.
1: बिल्कुल, आइए अब उस समय में वापस चलते हैं सारा, जब ब्रिक्स का सफर शुरू हुआ था। असल में इसकी कहानी अर्थशास्त्र की दुनिया से शुरू होती है। 2011 में अर्थशास्त्री जिम ओनील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की उभरती हुई आर्थिक क्षमता को बताने के लिए ब्रिक शब्द गढ़ा था। उस समय ब्रिक कोई राजनीतिक समूह नहीं था, ये सिर्फ एक आर्थिक अवधारणा थी।
2: That's right, that was in 2001. And Brazil, Russia, India and China began meeting at the foreign ministers level. And then in 2009, against the backdrop of the global financial crisis, the first BRIC leaders summit was held in Russia. The message was significant. Emerging economies wanted a stronger voice in decisions making and shaping the international financial system.
1: अगले साल नेता ब्राजील के ब्रासिलिया शहर में मिले, फिर 2011 में ये समिट चीन के सानिया शहर में हुआ और इस बैठक से एक बड़ा बदलाव आया। दक्षिण अफ्रीका इस समूह में शामिल हो गया, नाम में एक अक्षर और जुड़ गया, लेकिन समूह का भौगोलिक और राजनीतिक दायरा काफी बढ़ गया। ब्रिक्स से ये ब्रिक्स बन गया और ये सब कुछ हमें बहुत अच्छी तरह याद है सायरा।
2: That's

0: Right. And from there on, the summit journey continued across continents. A grouping that began with just four countries in 2006 has, two decades later, evolved into a much larger family of 21 BRICS member and partner countries. Its agenda too has expanded.
1: जो शुरुआत में मुख्य रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बातचीत के तौर पर शुरू हुआ था, वो अब व्यापार, वित्त, ऊर्जा, तकनीक, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य सेवा, विकास, वैश्विक शासन, खाद्य सुरक्षा, आपदा से निपटने की क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा करने वाले एक मंच के रूप में विकसित हो गया है.
0: Today, BRICS represents around half of the world's population, about 40% of global GDP, and more than a quarter of global trade. Well, that's quite a big transformation.
1: तो असल में BRICS क्या है? क्या ये एक आर्थिक गठबंधन है, एक राजनीतिक गुट, स्थापित पश्चिमी संस्थाओं का मुकाबला करने वाला संगठन, या फिर कुछ बिल्कुल अलग? इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है. ब्रिक्स नाटो जैसा कोई सैन्य गठबंधन नहीं है. इसका कोई एक स्थायी मुख्यालय या कोई ऊपर की सरकार यानी कि सुपर नेशनल गवर्नमेंट नहीं है.
0: एग्जैक्टली नहीं. इट्स चेयरमैनशिप रोटेट्स एंड ईच चेयरिंग कंट्री सेट्स इट्स प्रायोरिटीज एंड होस्ट द लीडर्स समिट. Its strength lies somewhere else, that is in bringing countries with different political systems, economic structures and national interests around one table to identify common interests and cooperate where their priorities converge.
1: Aur isi wajah se Bharat ki bhumika bahut ahem ho jati hai kyunki Bharat is baatcheet mein sirf ek mookdarshak या पैसिव भागीदार के तौर पर शामिल नहीं हो रहा है. वो इसकी मेजबानी कर रहा है, वो इसकी अध्यक्षता कर रहा है और वो अपनी सोच या विजन भी सामने रख रहा है. भारत की 2026 की थीम लचीलापन, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी उसी सोच को दिखाती है और नई दिल्ली में हो रही बातचीत में इन चारों विचारों पर पहले से ही अमल किया जा रहा है.
0: Well, at the BRICS Business Forum Leaders Session at Bharat Mandapam, Prime Minister Narendra Modi called for secure sea lanes, open supply routes and the safety of seafarers to sustain global trade.
1: 2014 से भारत ने लगभग 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और ब्रिक्स में भी भारत व्यापार की बाधाओं को कम करने और व्यवसायों के लिए ज्यादा अवसर पैदा करने पर केंद्रित दृष्टिकोण की वकालत कर रहा है.
0: Well, this brings us to another major part of India's BRICS agenda, that is innovation. The BRICS Incubator Networks, BRICS MSME Portal and BRICS Startup Innovation Fund, they're designed to connect startups and small and medium enterprises with markets, finance, investment and talent.
1: कितनी अच्छी बात है. और इसके कई मौके के बारे में सोचा जा सकता है. भारत के एक छोटे से स्टार्टअप में आया कोई आइडिया हजारों किलोमीटर दूर ग्राहकों तक पहुंच सकता है. एक युवा एंटरप्रेन्योर किसी दूसरे ब्रिक्स देश के इन्वेस्टर से जुड़ सकता है.
0: एंड इवन अ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन वन इमर्जिंग इकोनॉमी कैन हेल्प सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अनदर. एंड दिस इज द काइंड ऑफ प्रैक्टिकल कोऑपरेशन दैट इंडिया वांट्स ब्रिक्स टू एनकरेज.
1: और आर्थिक आंकड़े एक और दिलचस्प कहानी बताते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि जहां पिछले दो दशक में ग्लोबल जीडीपी लगभग 2.5 गुना बढ़ी है, वहीं ब्रिक्स देशों की कुल जीडीपी लगभग 4.5 गुना बढ़ी है.
0: Well, in other words, the economic strength of BRICS has grown at nearly twice the pace of the world economy. That's more than a statistic, Naeem. It's actually a signal. A signal that the economic center of gravity is changing.
1: जी बिल्कुल. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स बाजारों के बढ़ते आर्थिक महत्व पर प्रकाश डाला. ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने ब्रिक्स सदस्यों के बीच व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के अधिक से अधिक उपयोग का आह्वान किया.
0: South African President Cyril Ramaphosa stressed that the Global South must lead in manufacturing, technology and value creation while raising concerns over unilateral sanctions. Brazilian Foreign Affairs Minister Mauro Vieira described BRICS as a platform connecting some of the world's most dynamic economies.
1: और भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत की प्राथमिकताओं पर जोर दिया. ज्यादा संतुलित व्यापार, सेवाओं में अधिक व्यापार और किसानों, महिला उद्यमियों, युवा व्यवसायों और एमएसएमई के लिए अवसर.
0: Chinese journalist Ren Yan has praised India for the arrangements of the BRICS summit, saying that comprehensive preparations have been made for the global event. He said the summit has attracted the attention of not only the member countries, but also the wider international community. Talking exclusively to Akashvani, Mr. Yan said that India has built a bridge among the member countries and created a platform for greater cooperation among the Global South nations.
2: This Chinese

0: President Xi Jinping's visit to India after 7 long years. As we all know, China and India are good neighbors and also has greater civilizations. I think the BRICS summit has provided a good platform for both leaders of China and India to meet together and discuss many issues.
1: रशियन ब्लॉगर और थिंक ब्रिक्स की को फाउंडर अनास्तासिया गोलियाकोवा ने भी ब्रिक्स समिट के आयोजन में भारत की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों के बीच आपसी बातचीत का स्तर हर साल बढ़ रहा है।
2: We see we have friendly nations around us like India, like People's Republic of China, other BRICS countries. So together we are much more stronger.
3: The scale of the business gathering itself is remarkable. More than 2,000 business leaders and delegates from member and partner countries are participating in what has been described as the largest BRICS business forum ever held.
1: और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदानोम घेब्रियसिस की मौजूदगी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को रेखांकित करती है।
3: The participation of the African Union is significant as well, with Burundi's President Evariste Ndayishimiye representing the bloc at the summit.
1: Summit के पहले बंद सत्र का फोकस समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर है। कार्यक्रम में नेताओं का भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का दौरा, उसके बाद सामूहिक वृक्षारोपण समारोह और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित एक शानदार डिनर भी शामिल है।
3: Anton Naim, this actually makes me recall the famous saying by Mahatma Gandhi that the future depends on what you do today. And of course, that thought befits the BRICS conversation today perfectly.
1: और आपने अगर महात्मा गांधी की बात की तो मुझे भी रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही सुंदर पंक्ति याद आ रही है। उन्होंने लिखा, जहां मन निडर हो और सिर गर्व से ऊंचा हो।
3: That's right, the famous poem where the mind is without fear and the head is held high.
1: बिल्कुल। आज जब अलग अलग महाद्वीपों के नेता नई दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं तो भारत उस भावना को आज के दौर के हिसाब से एक नया अर्थ दे रहा है। एक आत्मविश्वास से भरा भारत, एक नई सोच वाला भारत, एक ऐसा भारत जो बाजारों, विचारों और लोगों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा भारत जिसे यकीन है कि उसकी अपनी तरक्की की कहानी दुनिया की तरक्की की कहानी में योगदान दे सकती है।
3: और इसी फेमस टैगोर पोएम की जो आखिरी पंक्ति थी ना, वो भी एकदम बिफिट हो रही है, दैट इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम लेट माय कंट्री अवेक।
1: आपने तो कंप्लीट कर दी पोएम।
3: एंड वेल, परहैप्स द बिगेस्ट क्वेश्चन टुडे इज नॉट वेदर द वर्ल्ड इज चेंजिंग, बिकॉज अनडाउटेडली इट इज ऑफ कोर्स चेंजिंग। द बिगर क्वेश्चन इज हु विल हेल्प शेप दैट चेंज। Here in New Delhi, India is making its answer heard through cooperation, through innovation, through resilience, through sustainability, and through a distinctly Indian confidence that when nations work together, possibilities can become opportunities. This is BRICS 2026, and this is India at the center of the conversation about the future.
1: और सारा वक्त है अब अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। आप आगाज करें।
3: यस नईम, तो हम लोग जो है देश की परिक्रमा पे निकल लेते हैं और हम लोग ने ब्रिक्स के बारे में तो बहुत चर्चा की, बट बहुत से ऐसी चीजें हो रही हैं हमारे देश में जो हमारे लिसनर्स दे वांट टू हियर व्हाट्स हैपनिंग। सो लेट्स स्टार्ट अ जर्नी फ्रॉम पंजाब। एंड ऑन द ओकेजन ऑफ सारेगाढ़ी टुडे, tributes were paid to the martyrs of the battle of Sargadhi at its memorial in Firozpur. In Amritsar, the Bhog of Akhand Pat Sahib was performed at the Sargadhi Gurdwara in the memory of the 21 British Indian Sikh soldiers. Let's hear more from our correspondent.
4: Nishchay kar apni jeet karo.
5: The Battle of Sargadhi is one of the most unprecedented battles in the world military history. It was on this day 129 years ago when these 21 brave Sikh soldiers under the leadership of Hawaldar Ishar Singh of the Sikh Regiment fought to their last breath against the Afghani tribesmen in Samana village of Khyber Pakhtunkhwa, presently in Pakistan. They killed hundreds of Afghani tribesmen and foiled their attempts to capture the Sargadhi fort. These brave hearts who died in this war were mostly from the Majha region of Punjab. They were honored with the highest Indian Military Bravery Award, Indian Order of Merit at that time. The award

0: is at present equal to the Paramit Chakra. These diehard soldiers were part of the then 36th Sikh Regiment, which is now known as the 4th Sikh Regiment of the Indian Army. Salute to these 21 Sikh bravehearts. For Parikrama, this is Rajesh Bali from Jalandhar.
1: अब पंजाब से चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, जहां के सिंधु दुर्ग जिले के डोडा मार्ग तिलारी के जंगलों में दुर्लभ स्लेंडर लॉरिस, जिसे स्थानीय भाषा में वन मानव कहा जाता है, के देखे जाने से तिलारी घाटी की समृद्ध जैव विविधता और वहां के वन्य जीवों के संरक्षण की जरूरत पर एक बार फिर ध्यान गया है। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी हासिल करते हैं।
2: The slender loris, a small and elusive mammal found primarily in the dense forest of South India and Sri Lanka, is locally known as Vanmanav or Lajwanti in Maharashtra. Its presence has been recorded in the forest stretch extending from Ker and Mangeli in Dodamarg Taluka to Virdi near the Goa border. This region is home to several rare and endangered species including the tiger, king cobra, black panther, elephant and slender loris, which are listed under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act. Nature experts and environmentalists have pointed out that the area serves as a breeding habitat for these animals and have demanded its inclusion in the eco-sensitive zone to ensure their long-term protection. Often referred to as the Amazon of Maharashtra, the Tilari Valley is known for its exceptional biodiversity. The latest sighting of the Vanmanav has renewed calls for stronger conservation measures to safeguard the region's rich wildlife and its ecologically significant forest habitats. With Nilesh Joshi, Madhuri Pange for Parikrama from Mumbai.
3: And from Mumbai, we go to my favorite place.
1: In mine too.
3: Great. Yes, we're going to Goa, where a multimedia exhibition at Madgaon Railway Station is promoting citizen responsibility and public awareness as part of the vision of a cleaner, safer and developed Bharat.
4: The Meri Jimmedari Mera Viksit Bharat exhibition at Madgaon Railway Station is being organized from September 8 to 12. The five-day event is jointly organized by the Central Bureau of Communication Goa and Konkan Railway Corporation Limited. Through informative posters and engaging displays, the exhibition encourages citizens to keep railway premises clean, protect public property, follow safety rules, maintain queues, and respect fellow passengers. It also promotes responsible habits such as avoiding smoking and drinking on trains and keeping noise levels under control. The initiative highlights how responsible actions by individuals can collectively contribute to the vision of a Viksit Bharat. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwadi News, Padji.
1: चलिए, आप मुंबई से मतलब महाराष्ट्र से गोवा गई थी पड़ोस में, तो मैं वापस महाराष्ट्र आती हूँ नागपुर में। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के नागपुर लोकल चैप्टर की ओर से आयोजित खनन अभियंताओं के 36वें राष्ट्रीय अधिवेशन और राष्ट्रीय परिसंवाद का कल उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विदर्भ में माइनिंग और ग्रीन स्टील हब बनाने की क्षमता के बारे में बताया। आइए सुनते हैं रिपोर्ट हमारे प्रतिनिधि से।
5: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि विदर्भ में खनन क्षेत्र के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बनने की क्षमता है।
6: After 2014, when Prime Minister Modi ji took over and created new policies in mining, we are witnessing that mining transformation is a transformation from paper to actual action.
5: विदर्भ की खनिज संपदा, विशेष रूप से गढ़चिरौली के लौह आयस भंडारों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में लगभग 5,00,000 करोड़ रुपए के निवेश और करीब 50 MTPA इस्पात उत्पादन क्षमता विकसित की जा रही है। फडणवीस ने कहा कि गढ़चिरौली के साथ चंद्रपुर, भंडारा, नागपुर, गोंदिया और यवतमाल जिलों में भी नई औद्योगिक परिसंस्था विकसित हो सकती है। ग्रीन स्टील, स्वच्छ तकनीक और बेहतर लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी से रोजगार के तथा आर्थिक अवसर भी बढ़ेंगे। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
3: And well, from the western part of India, we now go to the northeast. Well, a three-day national conference on natural farming was held at the College of Postgraduate Studies in Agricultural Sciences from 9th to 11th September. We have more from our Shillong correspondent.
2: It brought together farmers, scientists, policy makers, natural farming practitioners, and

0: entrepreneurs from across the country. From soil health and climate pressures to rising input costs and the need for better farm incomes, the conference deliberated on various topics. Over the 3 days, technical sessions and farmer interactions looked at sustainable resource management, biodiversity, eco-friendly plant protection, seed systems, integrated farming, and the development of stronger value chains. With local farmers and entrepreneurs showcasing their produce, practices and farm-based enterprises, the exhibition was an opportunity to take their work beyond their villages. Stalls had local farm produce, fruit and flower saplings, handloom and handicraft items on display. Visitors also explored the region's plant genetic resources. On display were rows of unique germplasm samples. More than 500 participants attended the national conference to discuss insights into bringing together traditional farming wisdom, research and modern markets. For Parikrama, Anumita, Akashvani, Shillong.
1: और क्या अब हम खेल के मैदान की तरफ चलें सायरा?
2: Absolutely.
1: तो जानते हैं वहाँ की हलचल के बारे में और उसमें भी पहले हॉकी के बारे में अपने श्रोताओं तक खबर पहुंचाते हैं. भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है. चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया. भारत की तरफ से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और रघुवीर कौर ने 1-1 गोल किया. और यूएस ओपन टेनिस के बारे में भी मेरे पास एक खबर है. अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से होगा. महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्याना सबालेंका आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रैबाइकिना का सामना करेंगी. अब हम पहुंच गए अपने लास्ट सेगमेंट में जहां हम याद करेंगे अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों को और साथ ही बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है.
3: आज हम बात करेंगे तीन बहादुर महिलाओं की जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी. ये वीरांगनाएं थी तमिलनाडु की वेलु नाचियार और कोयली तथा उत्तर प्रदेश की सुभद्रा कुमारी चौहान.
4: वीर मंगई यानी बहादुर महिला वेलु नाचियार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जंग का बिगुल फूंकने वाली पहली भारतीय महारानी थी. वे 1780 से 1790 तक तमिलनाडु में शिवगंगा की महारानी रही.
3: रामनाथपुरम की राजकुमारी वेलु नाचियार युद्ध शैली के अनुकूल हथियारों के उपयोग सहित लड़ाई की अनेक विधियों तथा वल्लरी, सिलंबम जैसे मार्शल आर्ट, घुड़सवारी और तीरंदाजी में प्रशिक्षित थी. वे कई भाषाएं जानती थी और फ्रेंच, अंग्रेजी तथा उर्दू जैसी भाषाओं में पारंगत थी. जब युद्ध में उनके पति मुत्तु वडुगनाथ पेरियावडिया तेवर की अंग्रेज सैनिकों ने हत्या कर दी तो वेलु नाचियार युद्ध के मैदान में उतर गयी.
4: इस अवधि के दौरान वेलु नाचियार ने सेना का गठन किया और 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अभियान शुरू करने के उद्देश्य से हैदर अली के साथ गठबंधन के प्रयास किए. जब वेलु को मालूम हुआ कि अंग्रेज अपने हथियार कहाँ रखते हैं तो उन्होंने उस जगह आत्मघाती हमले की योजना बनाई और सारा भंडार जला दिया. उन्होंने अपने पति के राज्य को पुनर्गठित किया और 10 से अधिक वर्ष तक वहां शासन किया. 25 दिसंबर 1796 को वेलु नाचियार का निधन हो गया.
3: महारानी वेलु नाचियार की सेनापति कोयली को भारतीय इतिहास की पहली महिला शहीद माना जाता है. कोयली का जन्म 18वीं सदी में शिवगंगा जिले में हुआ था. वे वेलु नाचियार की समर्पित कमांडर थी और उन्होंने कई बार वेलु की जान बचाई. कोयली की निष्ठा और बहादुरी देखकर उसे सेना की महिला इकाई का कमांडर इन चीफ बना दिया गया.
4: 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी के किले पर हमला करते समय कोयली ने अपने शरीर पर घी मला और स्वयं को आग लगाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के शस्त्र भंडार में छलांग लगा दी.
2: We are also remembering some other personalities. A very prominent writer, Bibhuti Bhushan Bandyopadhyay's birth anniversary is today. Well, his best known works are the autobiographical novel Pathar Panchali, jispe of course you all know Satyajit Ray ne banayi, Aparajito, Chandar Pahar and Aranyak. And Martin Smith actually in his guide to modern world literature describes Bibhuti Bhushan Bandyopadhyay as perhaps the best of all modern Indian novelists. Going on to write that probably

0: nothing in 20th century Indian literature, in prose or poetry, comes to the level of Adhair Panchali. And Bandyopadhyay was posthumously awarded the Rabindra Puraskar in 1951, a literary award in West Bengal, for his novel Ichhamati.
1: हिंदी के विशिष्ट और बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार रांगे राघव की आज पुण्यतिथि है। इनका मूल नाम TNB आचार्य था। जन्म इनका आगरा में हुआ, लेकिन उन्हें हिंदी के साथ साथ तमिल और कन्नड़ भाषा का भी ज्ञान था, और इसके अलावा ब्रज और संस्कृत पर भी उनका बहुत बड़ा अधिकार था। हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार और महात्मा गांधी पुरस्कार कुछ खास पुरस्कार हैं जो उन्हें उनके जीवन में उनके कामों के लिए दिए गए।
0: Today is also Swarnalata's death anniversary. In a career that spanned almost 22 years, she recorded songs in most of the Indian languages, be it Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Hindi, Urdu, Bengali, Odia, Punjabi as well. She won the National Film Award for Best Female Playback Singer for her rendition of the song Porale Ponatai. And we have a song for our listeners. Let's listen to it.

0: आज ही पुण्यतिथि है जय किशन दया भाई पंकल की, जिन्होंने शंकर सिंह रघुवंशी के साथ मिलकर संगीतकार जोड़ी शंकर जय किशन के नाम से बनाई और इसी नाम से मशहूर हुए। इनकी मुलाकात के बारे में अगर हम बात करें सायरा, तो ओपेरा हाउस के थिएटर के पास इनकी मुलाकात हुई और जब इनकी मुलाकात हुई तो शंकर को पता चला कि जय किशन हारमोनियम बजाते हैं। दोनों ही ने ही पृथ्वी थिएटर्स के परचम तले साथ साथ काम करना शुरू किया और वहीं काम करते करते उनकी मुलाकात राज कपूर से हुई, जहां वो उनके करीब आ गए और शंकर जयकिशन को बरसात का संगीत राज कपूर ने सौंप कर एक पहला ब्रेक दिया।
1: That's right. SJ ki jodi, of course, we all know that widely considered to be the greatest music composers of the Hindi film industry. From 1949 until Jay Kishan's death in 1971, they composed musical scores for 136 films, introducing a new level of orchestral richness in film music. SJ collaborated with legendary singers such as Mukesh, Mohammad Rafi, Manna Day, Kishore Kumar, Talat Mehmood, Lata Mangeshkar, Suman Kalyanpuri, Asha Bhosle, and even Sharda. They worked extensively with the lyricist Shailendra and Hasrat Jaipuri, with whom they created some of the most memorable songs in their career.
0: एक के बाद एक उन्होंने ऐसे बढ़कर के फिल्मी गीत दिए जो आज भी हमारे गानों में रस घोलते हैं। तो क्यों ना कुछ गीतों की एक झलक ले लीजिए।

0: कल का तो वाकई नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन आज का पता है सायरा कि अभी आज हमारी घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि सायरा और नईम इजाजत ले लीजिए अपने श्रोताओं से। तो चलिए परिक्रमा कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। अनुमति दीजिए नईम अख्तर और सायरा मुज्तबा को।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के पहले दिन सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि अब इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदलना उनकी साझा जिम्मेदारी है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय

0: सदस्य देशों के नेताओं द्वारा इस अवसर पर दो स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। इससे पहले समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करने पर आधारित सत्र के पहले दिन अपने उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखा ताकि हर साल अध्यक्षता बदलने के बावजूद समूह की संस्थागत गति बनी रहे।
1: ग्लोबल गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर आबी अहमद अली के साथ आर्थिक सहयोग, रक्षा और सुरक्षा तथा क्षमता निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा तथा सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति सी चिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन से मुलाकात की। इससे पहले श्री पजेश्कियन ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। पाकिस्तान के एक मानवाधिकार संगठन ने अधिकारियों पर बलूचिस्तान में सुनियोजित सैनिकरण और दमनकारी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि हिंसा और विस्थापन नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। मानवाधिकार संगठन ने बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उसने कहा कि इस क्षेत्र में आजीविका का साधन रहे फलों के बाग अब एक ऐसी नीति के तहत विनाश के कगार पर हैं जो भूमि और आजीविका दोनों के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहूदी नववर्ष रोश हशाना के अवसर पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू, इसराइल के लोगों और दुनिया में रहने वाले यहूदी समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि नया वर्ष सभी के लिए शांति, बेहतर स्वास्थ्य और सतत प्रगति लेकर आए। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक सफ़र ख़त्म होता है तो दूसरे की शुरुआत हो जाती है। और अगर हम FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ की बात करें तो एक सफ़र बस अब शुरू होता है आपके साथ। आप सुन रहे हैं 100.1 गाते गुनगुनाते में। आज आपके साथ मैं सीमा वर्मा, और हमारे साथ वो गीत जो हमें अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: FM गोल्ड 100.1 सुन रहे हैं आप, आकाशवाणी दिल्ली के। जी हाँ, FM गोल्ड रेडियो स्टेशन है जी ये, आपका अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन जिसमें आपका पसंदीदा प्रोग्राम गाते गुनगुनाते इस वक्त आप से मुखातिब है और हम आप तक पहुंचा रहे हैं 80s के गीत। आज मैं जितने भी गाने लेकर आई हूँ वो 80s के गीत हैं और

बहुत खूबसूरत गीत, उससे पहले धागे बांधेंगे, धागे बांधेंगे, हाथ जोड़ेंगे आप, दर दर जाके फरियाद करेंगे आप, वो मन भरने तक बात करेगी, आप मर जाने तक याद करेंगे।

रेशमा जी की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, और आइए अब गाते गुनगुनाते के सफ़र को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आपको एक ऐसा गीत सुनाते हैं जो आपने अपने टाइम में बहुत गुनगुनाया है, और ये 1982 की फिल्म डिस्को डांसर का गाना है। डिस्को डांसर की अगर हम बात करें तो ये एक म्यूज़िकल फिल्म रही है। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं साथियों जो ख़ास तौर पर संगीतमय फिल्में कही जाती हैं, म्यूज़िक उनका बेस होता है, और इसी वजह से गाने भी बहुत शानदार होते हैं और लोगों को बहुत पसंद आते हैं। अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा विस्तार से। वैसे तो सभी गीत इसमें बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक गीत जो मैं लेकर आई हूँ वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जो मेरी आवाज़ के पीछे आप थोड़ा थोड़ा शायद सुन भी पा रहे हैं। राही मासूम रज़ा साहब की कहानी थी ये, अनजान का लिखा हुआ गीत जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लीड रोल में हमने मिथुन चक्रवर्ती और किम को देखा, और इस फिल्म में आपने राजेश खन्ना जी की स्पेशल अपेयरेंस देखी, जिसे फ्रेंडली अपेयरेंस भी कहते हैं। तो चलिए, इतना कुछ बता दिया मैंने, अब इन्जॉय करते हैं इस गीत को।

0: moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

आप सुन रहे हैं 1981 की फिल्म नसीब का गीत जो लता मंगेशकर ने गाया, और आप हैं FM गोल्ड 100.1 के साथ प्रोग्राम गाते गुनगुनाते।

अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाती हूँ, अच्छा खासा बैठी बैठी गुम हो जाती हूँ, अब मैं नहीं रहती, तुम हो जाती हूँ।

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

गाते गुनगुनाते का सफर जो है वो चल रहा है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 के साथ. और आज शनिवार की जानदार शानदार शाम आपके साथ मैं सीमा वर्मा ऐसी प्रोग्राम में. आइए अब हम सुभाष घई साहब की एक फिल्म का जिक्र करते हैं और इस फिल्म का नाम रहा राम लखन. इस फिल्म को आपने ज़रूर ज़रूर देखा होगा क्योंकि ये

1989 में आई और हर किसी ने इस फिल्म को बहुत बहुत पसंद किया। और इसके साथ साथ कहना होगा कि राखी जी की कुछ आखिरी फिल्मों में से एक, उसके बाद उन्होंने फिर फिल्मों में काम नहीं किया। इस फिल्म के साथियों सभी गीत काफ़ी कर्णप्रिय रहे, अच्छे रहे। और अब जो हम आपको गीत सुनाने जा रहे हैं वो अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास जी की आवाज़ में ये गीत है। और आइए अब गाते गुनगुनाते का अगला गीत सुनते हैं।

गाते गुनगुनाते कि इस सफ़र में अब हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ से मोड़ हमें नज़र आ रहा है, यानी हमें मुड़ना है, जाना है। रेशमा आ गई हैं स्टूडियो में और एक तरन्नुम भरे लहजे से हम आज के प्रोग्राम का समापन करेंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 और ये जो आखिरी गीत है ये 1981 की फिल्म आहिस्ता आहिस्ता से है। बहुत ही सूदिंग गाने इस फिल्म के रहे और उनमें से एक गीत मैं आपके लिए चुनकर लाई हूँ। लेकिन इस गीत को आप तक पहुँचाने से पहले कुछ पंक्तियाँ भी पहुँचानी है कि सुनो मैं तुम्हारे बारे में लिखना नहीं चाहता, सुनो मैं तुम्हारे बारे में लिखना नहीं चाहता, लिखता उस चीज़ को हूँ जिसे मैं दिल से बाहर निकाल सकूँ।

तो साथियों, करती हूँ आपको इस गीत के हवाले, और अब सीमा वर्मा को इजाजत दीजिए। आप सुनते रहिए FM Gold 100.1। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के पहले दिन सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद आकाशवाणी संवाददाता दीपेंद्र के पास। दीपेंद्र, दिल्ली घोषणा पत्र में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है?
2: देखिए, दुनिया के कई हिस्सों में जारी संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव पर ब्रिक्स देशों ने चिंता जताई। ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने दुनिया में सैन्य खर्च में लगातार हो तेज बढ़ोतरी पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। इसके अलावा नेताओं ने कहा कि वैश्विक समस्याओं का समाधान बहुपक्षीय सहयोग के जरिए होना चाहिए, जिसमें सभी देशों के अलग अलग विचारों और हितों का जो है सम्मान किया जाना चाहिए। इसके अलावा सतत विकास, भूख और गरीबी खत्म करने, जलवायु

0: लोगों की जान चली गई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। जी दीपेंद्र
1: जी, धन्यवाद दीपेंद्र। ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं द्वारा इस अवसर पर 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। इससे पहले समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करने पर आधारित सत्र के पहले दिन अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने समूह की संस्थागत नीति गति सुनिश्चित करने के लिए ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए एक नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया समूह की अपनी कार्यप्रणाली से शुरू होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बीच कजाकिस्तान के राष्ट्रपति और यूरेशियन आर्थिक संघ के अध्यक्ष कासिम जोमार्त तोकायेव ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। श्री नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव की मौजूदगी में 10 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 12 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से राज्य में मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी और बीमारियों के खतरे का समय रहते पता लगाने की क्षमता मजबूत होगी। पाकिस्तान के एक मानवाधिकार संगठन ने अधिकारियों पर बलूचिस्तान में सुनियोजित सैन्यकरण और दमनकारी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि हिंसा और विस्थापन नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। मानवाधिकार संगठन ने बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उसने कहा कि इस क्षेत्र में आजीविका का साधन रहे फलों के बाग अब एक ऐसी नीति के तहत विनाश के कगार पर हैं जो भूमि और आजीविका दोनों के लिए खतरा है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. BRICS nations have expressed concern about ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. In the New Delhi Declaration adopted on the first day of the BRICS Summit 2026, the leaders advocated for a multilateral approach that respects diverse national viewpoints and positions on crucial global issues. These issues include sustainable development, eradication of hunger and poverty, and contributing to the global response to climate change. In his closing remarks, the Prime Minister noted that the New Delhi Declaration adopted today provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
3: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
2: BRICS members expressed deep concern over the continued escalation of tensions in West Asia and called for exercising maximum restraint as well as avoiding actions that could further aggravate the situation. They encouraged increasing efforts through dialogue and diplomacy towards a long-term understanding that will contribute to lasting peace, security and stability in the region. BRICS leaders called for a sustained Gaza ceasefire and unhindered humanitarian aid. They stressed that lasting peace requires a just solution to the Israeli-Palestinian conflict and reaffirmed support for Palestine's rights and greater representation.

0: in international institutions. The leaders condemned the terrorist attack in Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year in the strongest terms. BRICS members reaffirmed their commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations. Earlier, the BRICS Summit 2026 kicked off at Bharat Mandapam in New Delhi this afternoon. Prime Minister Narendra Modi, in his opening remarks, proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the grouping's institutional momentum is maintained despite the changing chairship every year. The Prime Minister said the mechanism would enable follow-up of all initiatives and outcomes through the Troika. The Prime Minister said BRICS countries will have to work on a new and ambitious agenda for the next 20 years. The Prime Minister also proposed to establish a seafarers' emergency support network to connect the maritime authorities and diplomatic missions of relevant countries to facilitate assistance during difficult times.
1: Kya hum seafarers emergency support network bana sakte hain? Iske madhyam se संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
0: Prime Minister Modi said the time has come to translate the unity and consensus among BRICS countries into concrete outcomes on the global stage. Mr. Modi said resilience, innovation, cooperation and sustainability have been India's foremost priorities as chair. Guided by these priorities, India has laid special emphasis on connecting BRICS cooperation directly with the common people. The Prime Minister noted that the Global South stands in the front row of global crises, but in the back row of decision-making. On the issue of reform in the United Nations Security Council, the Prime Minister emphasized that it can no longer be postponed. Prime Minister Narendra Modi today held a series of bilateral meetings on the sidelines of the BRICS summit. He met his Ethiopian counterpart, Dr. Abiy Ahmed Ali, Malaysian counterpart, Anwar Ibrahim, and Vietnamese counterpart, Le Minh Hung. The leaders reviewed cooperation in trade, defence and security, people-to-people ties, and also covered regional and global issues. Mr. Modi also held talks with Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Both sides reiterated the importance of the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership. And with that, we end this news bulletin.
2: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। श्रोताओं, चार उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले एक संक्षिप्त नाम से शुरू हुआ ब्रिक्स आज चार महाद्वीपों तक फैले एक महत्वपूर्ण समूह का रूप ले चुका है। समय के साथ इसमें नए देश शामिल होते गए और इसका दायरा आर्थिक सहयोग से आगे बढ़कर विकास, वित्त, तकनीक, व्यापार, स्वास्थ्य, जलवायु और वैश्विक शासन जैसे क्षेत्रों तक पहुंचा है। भारत चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। भारत की अध्यक्षता का विषय है बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और टिकाऊ विकास के लिए मिलकर काम करना। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि ब्रिक्स की शुरुआत कैसी हुई, इसका विस्तार किस तरह हुआ, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, भारत ने पहले कब कब इसकी अध्यक्षता की और वर्ष 2026 में भारत के नेतृत्व में ब्रिक्स में किस तरह के नए सहयोग को आगे बढ़ाया जा रहा है। श्रोताओं, ब्रिक्स आज प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और नीतिगत सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच है। ये वैश्विक शासन से जुड़े मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच साझा दृष्टिकोण बनाने का माध्यम भी है। समय के साथ ब्रिक्स ने वैश्विक दक्षिण यानी विकासशील देशों के हितों को बहुपक्षीय संस्थाओं में आगे रखने के लिए भी एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में अपनी भूमिका बनाई है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि ब्रिक्स की शुरुआत कैसे हुई और आज ये किस रूप में हमारे सामने है।
4: श्रोताओं, ब्रिक्स की कहानी वर्ष 2001 से शुरू होती है। इसी वर्ष गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट में ब्रिक्स शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इस रिपोर्ट में ब्राजील, रूस, भारत और चीन को भविष्य में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में उभरने की संभावना जताई गई थी। आगे चलकर इन चार देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर सहयोग बढ़ा और वर्ष 2006 में ब्रिक्स को राजनीतिक सहयोग के मंच के रूप में औपचारिक रूप दिया गया। वर्ष 2000

0: नौ में रूस के येकातेरिनबर्ग में पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसके साथ चारों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय संवाद की शुरुआत हुई। इसके बाद वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से ब्रिक का नाम बदलकर ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स का उद्देश्य केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रहा, इसका ध्यान वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण बनाने, अधिक लोकतांत्रिक और संतुलित वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देने और विकासशील व्यवस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी रहा। वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने ब्रिक्स के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संकट ने मौजूदा वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की कमियों को सामने रखा। ब्रिक देशों ने अधिक प्रतिनिधित्व वाली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया। इन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की अधिक भागीदारी की मांग की। साथ ही संरक्षणवाद का विरोध करते हुए खुले और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था का समर्थन किया। समय के साथ ब्रिक्स का एजेंडा और व्यापक हुआ। इसमें आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, कृषि, रोजगार, दूरसंचार और अंतर्राष्ट्रीय वित्त जैसे विषय शामिल हुए। ब्रिक्स ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO और वैश्विक वित्तीय संस्थाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में अधिक प्रतिनिधित्व और समानता की आवश्यकता पर भी बल दिया। श्रोताओं, ब्रिक्स के विस्तार का एक बड़ा चरण जनवरी 2024 में आया, जब मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इसके पूर्ण सदस्य बने। इसके बाद जनवरी 2025 में इंडोनेशिया भी पूर्ण सदस्य बना। आज ब्रिक्स में कुल 11 देश हैं: ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात। ये देश मिलकर दुनिया की करीब 49.5% आबादी, 40% वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद और 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्ष 2025 में ब्रिक्स ने पार्टनर देश की एक नई श्रेणी भी बनाई। बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम इस व्यवस्था में शामिल हुए। इस तरह ब्रिक्स चार देशों के आर्थिक संवाद से आगे बढ़कर राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय और सामाजिक सहयोग के एक व्यापक मंच में बदल गया है।
1: श्रोताओं, ब्रिक्स के विस्तार के साथ इसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। ऐसे समय में जब दुनिया आर्थिक बदलाव, तकनीकी विकास, जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है, ब्रिक्स के लिए सहयोग और साझा समाधान का महत्व और बढ़ गया है। अब ये जानना जरूरी है कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान किस तरह की प्राथमिकताएं तय की और वर्ष 2026 में भारत इस मंच को किस दिशा में आगे ले जा रहा है। आइए सुनते हैं रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है। अध्यक्षता करने वाला देश उस वर्ष की प्राथमिकताएं तय करता है, वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करता है और विभिन्न मंत्री स्तरीय तथा कार्यकारी बैठकों का संचालन करता है। भारत वर्ष 2026 में चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। भारत की अध्यक्षता का जोर ब्रिक्स की उपलब्धियों को मजबूत करने, संस्थागत व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने, विकास, टिकाऊ विकास और नवाचार को आगे बढ़ाने तथा ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को सामने रखने पर है। भारत की अध्यक्षता के दौरान 25 शहरों में 350 से अधिक बैठकें और उच्च स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें ब्रिक्स सहयोग के तीन प्रमुख क्षेत्रों, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, आर्थिक और वित्तीय सहयोग तथा सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। वर्ष 2026 में कृषि के क्षेत्र में ब्रिक्स सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस ऑन एग्रो इकोलॉजी और ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर जैसे सहयोग को आगे बढ़ाया गया। इनका उद्देश्य टिकाऊ कृषि, ज्ञान साझा करने और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। ब्रिक्स एग्रीन के माध्यम से बीज, आनुवांशिक संसाधनों और कृषि इनपुट के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम किया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ब्रिक्स मिशन फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू किया गया। इसके साथ वर्ष 2026 से 2029 के लिए स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने की साझा पहल की रूपरेखा भी तैयार की गई। पारंपरिक और एकीकृत चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञ कार्य समूह बनाने का निर्णय लिया गया। मानसिक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इसके लिए ब्रिक्स ट्रेनिंग हब नेटवर्क और ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस के माध्यम से शिक्षण और क्षमता निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। श्रोताओं, टिकाऊ विकास के क्षेत्र में स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण पर सहयोग के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अपनाए गए और ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्मार्ट ग्रिड्स एंड एनर्जी स्टोरेज शुरू किया गया। शहरी विकास के क्षेत्र में ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब स्थापित करने की दिशा में कदम उठाए गए। जलवायु और आपदा जोखिम को ध्यान में रखते हुए शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत भी अपनाए गए। आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में ब्रिक्स MSME कोऑपरेशन पोर्टल एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्यमों को बाजार, वित्त, तकनीक और क्षमता निर्माण के अवसरों से जोड़ना है। इसके साथ ब्रिक्स इनक्यूबेटर नेटवर्क के माध्यम से स्टार्टअप और इनक्यूबेटर के बीच सहयोग बढ़ाने तथा ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड के जरिए नए और बढ़ते स्टार्टअप को वित्तीय सहयोग देने की दिशा में काम किया गया। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में ब्रिक्स साइंस एंड रिसर्च रिपोजिटरी को ज्ञान और वैज्ञानिक जानकारी साझा करने के मंच के रूप में आगे बढ़ाया गया। युवाओं के लिए ब्रिक्स यूथ कोऑपरेशन फ्रेमवर्क 2026 अपनाया गया, जबकि खेल के क्षेत्र में तकनीक से जुड़े सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्य समूह बनाया गया।
1: श्रोताओं, विस्तारित सदस्यता के कारण ब्रिक्स में एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका की अलग अलग परिस्थितियों और अनुभवों को जगह मिली है। भारत का प्रयास है कि इस व्यापक प्रतिनिधित्व को व्यवहारिक सहयोग में बदला जाए। विकास, जलवायु कार्रवाई, तकनीक, ऊर्जा, वित्तीय मजबूती और वैश्विक संस्थाओं में सुधार जैसे मुद्दों पर साझा प्रयास किए जाएं। भारत वर्ष 2026 में ब्रिक्स को एक ऐसे रचनात्मक और समाधान आधारित मंच के रूप में मजबूत करना चाहता है जो वैश्विक दक्षिण की आवाज को अधिक प्रभावी ढंग से सामने रख सके। श्रोताओं, भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। ये भारत की चौथी अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ब्रिक्स की यात्रा बताती है कि चार देशों के आर्थिक संवाद से शुरू हुआ ये समूह आज व्यापक वैश्विक सहयोग के एक महत्वपूर्ण मंच में बदल चुका है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। नमस्कार।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य प्रथम दिवसे सर्वसम्मत्या नवदेहली घोषणापत्रम् अंगीकृतम्। घोषणापत्रस्य अंगीकारः सदस्य राष्ट्राणां समन्वितानां संकल्पानां कृते स्पष्ट मार्गदर्शकः इति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना मलेशिया वियतनाम इथियोपिया प्रधानमन्त्रिभिः तथा अबुधाबी युवराजेन सह द्विपक्षीय वार्ता संचालिताः। अद्य सायं चीन राष्ट्रपतिना शी जिनफिंग वर्येण सह संभाषणं विधीयते। षड्वर्षीय स्थगनं समापयता चीन देशेन अस्य मासस्य एकविंशति दिनांकात् ग्वांगझोउ नवदेहली मध्ये नियमित यात्री विमान सेवाः पुनः प्रारप्स्यन्ते। अपि च महिला हॉकी क्रीडायां चीनस्य मुकीनगरे आयोजितायां कनिष्ठ एशिया चषक स्पर्धायां दक्षिण कोरिया देशं 5-1 इति अंकैः पराभूय भारतं अंतिम चरणं प्राविशत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य नवदेहल्याम् 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इथियोपिया मलेशिया वियतनाम इत्येतेषां देशानां प्रधानमंत्रिभिः अथ अबुधाबिनः युवराजेन सह द्विपक्षीय गोष्ठीनां श्रृंखलां प्रारब्धवान्। कूटनीतिक वार्तानां अस्याम् आवृत्तौ प्रधानमंत्रिणा सर्वप्रथमं इथियोपिया देशस्य प्रधानमंत्रिणा डॉ. आबी अहमद अली सन्निधेन सह उच्चस्तरीय संभाषणं विहितम्। विदेश मंत्रालयेन विज्ञप्तौ संसूचितं यत् उभौ नेतारौ द्वयोः देशयोः विशेष रणनैतिक संधिं नूतनां औन्नतिं नेतुं संकल्पं गृहीतवन्तौ। गोष्ठ्यां मुख्यतया आर्थिक सहयोगस्य रक्षा सुरक्षा संबंधानां तथा क्षमता संवर्धनस्य क्षेत्रेषु प्रगतेः समीक्षणं कृतम्। एषा महती सम्पूर्तिः

0: गतवर्षस्य दिसंबर मासे असिस अबाबा नगरे प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक प्रवासस्य परिणामस्वरूपेण संजाता। भारतस्य अध्यक्षतायां नवदेहल्यां समायोक्ष्यमाणस्य 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य अवसर अन्तराले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मलेशिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा अनवर इब्राहिम इत्यमुना सह उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्तां संचालितवान्। अस्यां गोष्ठ्यां द्वयोः देशयोः नेतारौ व्यापार निवेश रक्षा सुरक्षा तथा जनात् जनसंपर्कः इत्येतेषु बहुविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य प्रगतेः समीक्षणम् अकुरुताम्। उभौ नेतारौ अस्मिन् वर्षे प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः मलेशिया प्रवासस्य संकल्पानां निष्पत्तेः अपि सूचनां गृहीतवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना आसियान भारत सम्बन्धानां सुदृढीकरणे तथा क्षेत्रीय सहयोगे मलेशिया देशस्य निरन्तर समर्थनस्य भूरिशः प्रशंसा कृता। अत्रावधेयं यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वियतनाम देशस्य प्रधानमन्त्रिणा ले मिन् हुंग इत्यनेन सह उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। अस्यां गोष्ठ्यां ब्रिक्स सम्मेलने वियतनामस्य सहभागिदेशत्वेन सहभागिता सविशेषं स्वागतीकृता। विदेश मंत्रालयेन संसूचितं यत् अस्मिन् वर्षे वियतनाम राष्ट्रपतेः तोलम वर्यस्य भारत प्रवास वेलायां उच्चस्तरे समुन्नीतायाः संवर्धित व्यापक रणनैतिक संधेः प्रगतेः समीक्षणम् अस्मिन् उपवेशने विहितम्। अनेन सहैव प्रधानमन्त्रिणा अबुधाबिनः युवराजेन शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जयद अल नहियान इत्यनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धाः समीक्षिताः। उभौ पक्षौ राजनैतिक सांस्कृतिक वाणिज्यिक ऊर्जा क्षेत्रेषु तथा जनात् जनसंपर्के आधारितस्य भारत यूएई व्यापक रणनैतिक सहयोगस्य पुनरुच्चारणं चक्रतुः। अद्य सायमन्तराले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना सी चिनफिंग इत्यमुना सहापि द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समयमेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। नवदेहल्याः ऐतिहासिक भारत मण्डपे आयोज्यमानस्य 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य प्रथमदिवसे एव सदस्य देशैः सर्वसम्मत्या नवदेहली घोषणापत्रम् अंगीकृतम्। सत्रस्यास्य समापने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अस्य घोषणापत्रस्य स्वीकाराय प्रस्तावम् उपस्थापितवान्, यं सर्वे नेतारः एकस्वरेण सर्वसम्मत्या च अंगीकृतवन्तः। स्वकीय समापन उद्बोधने प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना संसूचितं यत् अद्य अंगीकृतं नवदेहली घोषणापत्रं ब्रिक्स सदस्य देशानां सन्धि संकल्पानां कृते एकां स्पष्टां कूटनीतिक दिशिम् अंकयति। तेन विशेषतः प्रतिपादितं यत् एतेषां सर्वसम्मत संकल्पानां प्रत्यक्ष मूर्त परिणामेषु परिवर्तनम् इदानीं सर्वेषां सदस्य राष्ट्राणां उत्तरदायित्वं वर्तते।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सबलं प्रोक्तं यत् अद्यतनेन विचार विनिमयेन एतत् स्पष्टं भवति यत् परिवर्तनशीलस्य विश्वस्य मार्गदर्शनं पुरातनैः अप्रासंगिकैश्च संस्थानैः विधातुं न शक्यते। तेन प्रतिनिधित्वेन संवेदनशीलतायां नियम निर्माण प्रक्रियासु च आधारभूत परिष्काराणां महती आवश्यकता प्रतिपादिता। प्रधानमन्त्रिणा संसूचितं यत् ब्रिक्स नेतृभिः भावि प्रौद्योगिकीनां विकासे तथा तासां नियमन विधानेषु ग्लोबल साउथ देशानां समान सहभागिता भवेत् इत्यस्यां नीतौ विशेष बलः प्रदत्तः। तेन प्रतिपादितं यत् निर्णयानां तेषां निष्पत्तीनां च मध्ये विद्यमानं अन्तरालं केवलं सामूहिक कार्यप्रणालीभ्यां समापयितुं शक्यते। भाषणस्य अन्ते प्रधानमन्त्रिणा ब्रिक्स अध्यक्षरूपेण सर्वेषां राष्ट्राध्यक्षाणां रचनात्मक योगदानाय निष्ठापूर्ण सहयोगाय च हृदयेन कृतज्ञता प्रकटीकृता। ब्रिक्स मञ्चस्य स्थापनायाः 20 वर्षपूर्तिं स्मरणीयां विधातुम् अस्

0: मञ्चे सदस्य देशानां नेतृभिः द्वे स्मारक डाक चिटिके आधारिकरूपेण विमोचिते। नवदेहल्याः भारतमण्डपे आयोज्यमानस्य अस्य शिखरसम्मेलनस्य समावेशी वैश्विकशासनं बहुपक्षवादस्य दृढीकरणञ्च इति विषयकसत्रे स्वकीये उद्घाटन उद्बोधने प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ब्रिक्सनिरन्तरता क्रियान्वयनप्रणाल्याः एकं क्रान्तियुगं प्रस्तावम् उपस्थापितवान्। श्रीमोदिना संसूचितं यत् प्रतिवर्षं अध्यक्षतायाः परिवर्तने सत्यपि संघस्य संस्थागत गतिशीलता तथा पूर्वं तिष्ठेत् तदर्थं ट्राइका प्रणाल्याः माध्यमेन सर्वेषां संकल्पानां निष्पत्तीनाञ्च निरन्तरं पुनरीक्षणं विधास्यते। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना बलपूर्वकं प्रोक्तं यत् ब्रिक्स देशैः आगामि विंशतिवर्षाणां कृते एका नूतना सुदृढा महत्वाकांक्षी च कार्यसूची रचयितव्या, यस्याः आरम्भः संघस्य स्वकीयात् कार्यप्रणाली परिवर्तनात् एव भवितुमर्हति।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: प्रधानमन्त्री कठिन समये साहाय्यं सुकरं कर्तुं सम्बद्ध देशानां समुद्रीय प्राधिकारिणः कूटनीतिक लक्ष्यं च योजयितुं सीफेयर्स आपत्कालीन समर्थन जालस्य स्थापनायाः प्रस्तावम् अपि अकरोत्। श्रीमोदी अवदत् यत् वैश्विक व्यापारे नाविकानां महतीं योगदानं भवति, तथापि कष्टकाले ते प्रायः स्वसमर्थनस्य अभावम् अनुभवन्ति। चाइना सदर्न एयरलाइंस इत्यनेन अद्य उक्तं यत् ते अस्मिन् मासे एकविंशति दिनांकात् ग्वांगझौ नवदेहली नगरयोः मध्ये नियमित यात्री विमानयानानि पुनः आरभ्य षट् वर्षाणां स्थगनं समाप्यते। 20-अधिक-2000तमे वर्षे कोविड 19 महामार्याः आरम्भात् अनन्तरं भारत चीन देशयोः मध्ये विमानसेवाः स्थगिताः आसन्। महिला हॉकी क्रीडायां चीनस्य मोकी नगरे आयोजितायां कनिष्ठ एशिया चषक स्पर्धायां दक्षिण कोरिया देशं 5-1 इति अंकैः पराभूय भारतम् अंतिम चरणं प्राविशत् इति वार्ताः।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we'll be taking your calls on your market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, vyapar, arthvyavastha aur share bazaar se juda koi bhi prashn poochne ke liye, aap dial kijiye 2331-4444, 2331-0481 aur 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। श्रोताओं, चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
2: प्राची नमस्कार और राजेश आपको भी
0: वेलकम टू यू।
2: गुड इवनिंग राजेश।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए जानें सुर्खियां।
0: ब्रिक्स नेशंस अडॉप्ट न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन On the first day of BRICS Summit 2026, leaders advocate for multilateral approach that respects diverse viewpoints and positions on global issues. SEBI releases consultation paper proposing changes to closing auctions.

0: Concession and derivatives settlement. And benchmark domestic indices register weekly decline of over 2%.
1: ब्रिक्स देशों ने ब्रिक्स समिट 2026 के पहले दिन नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। नेताओं ने वैश्विक मुद्दों पर अलग अलग दृष्टिकोण और रुख का सम्मान करने वाले बहुपक्षीय नजरिए को बनाए रखने की बात कही। सेबी ने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन और डेरिवेटिव सेटलमेंट में बदलाव का प्रस्ताव देते हुए परामर्श पत्र जारी किया और प्रमुख शेयर सूचकांकों में 2% से अधिक की साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई।
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: ब्रिक्स देशों ने दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ध्रुवीकरण तथा अलगाव की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा 2026 में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक स्तर पर सैन्य खर्च में भारी बढ़ोतरी के मौजूदा रुझान पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सत्र के समापन पर इस घोषणा को अपनाने का प्रस्ताव रखा। अपने समापन भाषण में श्री मोदी ने कहा कि आज अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा सदस्य देशों के साझा संकल्प के लिए एक स्पष्ट दिशा प्रदान करती है।
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले। हमने इस बात पर भी बल दिया कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और उनके नियमों के निर्माण में ग्लोबल साउथ की बराबर भागीदारी होनी चाहिए।
1: सिद्धार्थ, ग्लोबल साउथ का साझा संकल्प, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए।
3: देखिए, ब्रिक्स का जो जब बनाया गया था तो ये एक धारणा थी, ये मानना था कि तकरीबन 2006 में और सन 2000 में इसकी कल्पना
1: जी।
3: एक व्यक्ति थे गोल्डमैन सैक्स में जिन्होंने इसकी कल्पना की और उसके बाद ये माना कि आने वाले समय में ये चार देश जिसमें ब्राज़ील था, हिंदुस्तान था, इंडिया था, चाइना, और तो इनकी ये जो है एक उभरती हुई जो अर्थव्यवस्था है उनमें इसमें इनका बड़ा रोल होगा और साथ साथ उसमें उसके बाद साउथ अफ्रीका भी जुड़ा
1: जी।
3: तो और उसका जो बेसिक जब पहली बार ये इस ब्रिक्स सम्मेलन हुआ 2009-10 में जो सम्मेलन हुआ उसमें ये था कि कैसे जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है उनको कैसे रिफॉर्म किया जाए, कैसे एनर्जी सिक्योरिटी की बात की जाए, कैसे ग्लोबल साउथ का जो सवाल आपने किया कि उनको जो है कैसे उनको भी इस पूरा जो दुनिया की बदलती हुई परिस्थिति है उसमें उनको भी बराबर का हिस्सा दिया जाए। ग्लोबल साउथ से हमारा मतलब होता है जो ऐसे देश जो डेवलपिंग देश हैं जो भी थोड़ा पिछड़ गए हैं, पीछे हैं, अभी पूरी तरह से
1: विकास की राह में आगे हैं।
3: हाँ, आ रहे हैं, मतलब विकास की राह पर हैं, आगे नहीं हैं, वो पीछे हैं, उनको भी साथ लेके चलना है बदलते हुए समय के। लेकिन आप देखेंगे जैसा अभी दिख रहा है कि जो मल्टीलैटरलिज्म है, डेमोक्रेटिक जो अलग अलग जो विचारों को लेके जो है अब उतना उसकी उसको समावेश करना या उसको एक्सेप्ट करना उसको लेके जो है एक विरोधाभास है या आपस में एक तालमेल जिसको कहें नहीं है, या उसे एक्सेप्ट करना कि उस विरोधाभास में भी हम साथ मिलकर काम करें, साथ मिलकर बैठें। तो मुझे लगता है एक तो एक वही सबसे बड़ा वो है, साथ साथ जो अभी दुनिया में हम देख रहे हैं चारों तरफ जिस तरह का जो एक चाहे आप अमेरिका ईरान का हो या अमेरिका ईरान और इज़राइल एक तरफ हैं, यूक्रेन रशिया का जो लड़ाई चल रही है, तो इसको लेके भी चिंता है क्योंकि कि ब्रिक्स का मानना है कि इस समूह का मानना है कि इन सब चीज़ों का जो समाधान सिर्फ बातचीत से हो सकता है, लड़ाई से किसी चीज़ का समाधान नहीं हो सकता।
0: We'll continue our discussion with Siddharth. In the meantime, we are joined in by Vinay from Delhi. A warm welcome, Vinay.
1: विनय, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है विनय से। इस बीच हमारे साथ उत्तराखंड से दिनेश जुड़ रहे थे, लेकिन शायद वो फिर हमें दोबारा कॉल करेंगे।
0: सो सिद्धार्थ, गोइंग बैक टू व्हाट यू सेड अबाउट द लीडर्स एडवोकेटिंग फॉर अ मल्टीलैटरल अप्रोच that respects diverse national viewpoints and positions on crucial global issues. And one major development that has taken place is India's Middle East peace push at BRICS, where UAE Crown Prince met with Iranian President Pezeshkian. So that's a step in the right direction, and the real essence of what is happening at BRICS is showcased in this meeting. Perhaps there could be some outcome, positive outcome.
3: Absolutely, Rajesh. And I think India has been taking this position or making or trying to bring nations with different viewpoints or with differences to talk to each other and bring them to a reasonable dialogue to reach some kind of a solution to the existing stalemate or issues. And as you rightly said, with the UAE and heads of state from UAE and Iran talking, so I think that's a big achievement for this round of Delhi BRICS leaders meeting, I would say. And we have been saying this, and we've been also saying that India is also trying to push the cause of nations, where we see today supply chains are disrupted, trade protectionism is at its height, plus there is stress in terms of fiscal stress, and so India is also trying to ensure that globally there is no the supplies of energy as far as the issue of energy supplies is concerned, as far as other supplies of fertilizer or essential items. So we've been also pushing the cause of those causes also.
0: We have two callers online with us, both from Delhi. First we go to Premjeet. Premjeet, a warm welcome. Please ask your question.
4: Very good evening to all of you, sir. And we are very blessed that we are having BRICS summit right now.
0: जी
4: सिद्धार्थ सर, मेरा सर सवाल ये है कि अभी प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा कि सी फेरर को, बिकॉज सर आई एम ऑल्सो ए सी फेरर, इंक्रोच करने के लिए और उनके इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे ब्रिक्स के सिंडिकेट को एक्नॉलेज किया, सर आप इस पर जरा अपना प्रकाश डालें सर, धन्यवाद सर।
3: नहीं प्रेमजीत जी, गुड इवनिंग, नमस्कार आपको, और आपने जो सवाल उठाया आज के समय में, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि अभी हमने देखा है जो गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो हो रहा है, जो बार बार जो जिस तरह से जब से अमेरिका और ईरान के बीच और इसराइल के बीच में ये जो युद्ध छिड़ा है, उसके बाद जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहाँ से 40% जो तकरीबन तेल की सप्लाई, तेल और गैस की सप्लाई होती है दुनिया को, वहाँ पे जो पानी के जहाज जिनके थ्रू ये सप्लाई होती है, उन पे हम लगातार देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मतलब अटैक्स होते रहे हैं, और एक इस और ये वजह बहुत बड़ी चिंता है, इसी को शायद प्रधानमंत्री ने इसी की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है पूरे ब्रिक्स के सभी देशों का, जो 11 देश इस ब्रिक्स के समूह में हैं, साथ साथ जो पार्टनर देश हैं, और ये इस समय बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब ये हाल फिलहाल में भी हम देखेंगे तो लगातार इस तरह के जो अटैक्स जो हैं पानी के जो जहाज़ जिनके थ्रू ये सप्लाईज ऑयल एंड गैस की सप्लाईज होती है, उन पर हो रहा है। तो और बिल्कुल वाजिब बात आपने जो कही, सीफेरर्स जो आप लोग उस पर काम करते हैं, उसको उसका संचालन करते हैं, तो उनकी जानमाल और उनकी सुरक्षा जो है बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो इसी बात को शायद उठाने की कोशिश की, और उन्होंने ये संदेश भेजने की कोशिश की है कि कम से कम ऐसे उपाय किए जाएँ ताकि ऐसी चीज स्थिति से हम लोग बच पाएँ।
1: दिल्ली से हमारे साथ विनय जुड़ रहे हैं। विनय जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: मैम, मुझे पूछना है कि क्या कहते हैं, अगर निफ्टी में किसी स्टॉक का वेट 10% है, तो उसमें अगर 1 या 2 पॉइंट की मूवमेंट होती है तो इंडेक्स में कितनी मूवमेंट होती है, नंबर वन। नंबर टू, कि हमारा अगर निफ्टी 20 पॉइंट अगर डे एंड पे एंड होता है, क्लोज होता है 20 पॉइंट प्लस में, तो जो सेंसेक्स है वो उसका वन उसका थ्री टाइम्स होता है, ऐसा क्यों
3: अमित जी?

0: एक तो आपका पहला सवाल बहुत टेक्निकल सवाल है कि कितना पॉइंट अगर वो चढ़ता है किसी शेयर में, अगर वृद्धि होती है तो उससे निफ्टी पे कितना इम्पैक्ट आता है। और जहाँ तक आपने उसका बीएसई से जो आपने कंपैरिजन किया, एक वो मोटा अनुमान माना जाता है कि तकरीबन 3 गुना है, बट ऐसा कोई मतलब कोई इस तरह की कोई वो नहीं है कि विनय विनय जी माफ़ कीजिएगा आपका नाम, मैंने नाम गलत बोला, विनय जी। तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई उसका कोई ऐसा कोई आधार है कि जिसको हम मान के चलें कि इतना गिरेगा तो इतना ही होगा। हालांकि और इस आधार को भी अभी जो नया सेबी ने अभी जो सिस्टम आया था क्लोजिंग ऑक्शन का, जो प्राइस डिस्कवरी का, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के शेयर्स का, उसमें इस चीज पे भी कहीं ना कहीं एक वॉलेटिलिटी आ रही थी। तो मुझे लगता है ऐसा कोई इसको आधार ना माने आप। और
1: जी, दिल्ली से हमारे साथ अमित झा जुड़ रहे हैं। अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: जी, मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: मेरा प्रश्न सिद्धार्थ से ये है सर कि अभी जो ब्रिक्स ने समिट हो रहा है अपने देश में, नई दिल्ली में, तो एक ब्रिक्स करेंसी की बात सामने आ रही है, तो क्या ये ब्रिक्स करेंसी डॉलर और यूरो की तरह ही मतलब प्रचलन में आ जाएगा सर? और दूसरा प्रश्न ये है सर कि जैसे अभी ट्रम्प, अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रम्प जी का स्टेटमेंट आया था कि ईरान वॉर कंक्लूड सून, तो क्या ईरान वॉर मतलब खत्म होने के आसार हैं सर? धन्यवाद।
0: नहीं, जहाँ तक आपकी अमित जी आपका सवाल है करेंसी को लेके, तो इसकी बात हमेशा समय समय पर होती आई है, लेकिन ऐसा कोई ठोस अभी हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है जहाँ पे ब्रिक्स जहाँ ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही। हाँ, ये ज़रूर हो रहा है कि ब्रिक्स देश आपस में अपनी करेंसीज में अपने जो व्यापार है वो अपनी अपनी अपनी करेंसी में करें, ये एक इस पे एक जोर है। साथ साथ जो हमारे पेमेंट सिस्टम्स हैं उनको, जो सेंट्रल बैंक के पेमेंट सिस्टम है उनको कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे से समावेश करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन अभी ब्रिक्स की कोई करेंसी इस तरह की होगी या उस पर कोई बहुत सीरियसली विचार हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका दूसरा एक सवाल और भी था,
3: आई थिंक परहैप्स ही विल कॉल,
0: उनका सवाल था अमेरिका का और ईरान का जो युद्ध है कि वो शायद अमेरिका राष्ट्रपति का वो हवाला दे रहे थे कि जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी ऐसा कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो स्थिति आज की है वो स्थिति काफी मतलब चिंताजनक और खराब है, तो ऐसा कोई संकेत नहीं कि युद्ध तुरंत खत्म होने जा रहा है।
3: मूविंग ऑन, मार्केट्स रेगुलेटर सेबी टुडे प्रपोज चेंजेस टू द मेथोडोलॉजी फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपायरी डे सेटलमेंट प्राइसेस ऑफ इंडेक्स एंड स्टॉक डेरिवेटिव्स फॉलोइंग अ रिव्यू ऑफ द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड क्लोजिंग ऑक्शन सेशन कैश फ्रेमवर्क। इन अ कंसल्टेशन पेपर सेबी प्रपोज टू ऑप्शंस फॉर डिटर्मिनिंग द सेटलमेंट प्राइसेस, ब्लेंडेड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस WAP based on trades executed during the last 30 minutes of the continuous trading session CTS and the 10 minute CAS or continuation of the existing CTS VWAP methodology. The proposals follow feedback received from market participants on the use of the CAS determined closing price for settling derivative contracts on expiry. Determination of derivative settlement prices based on the closing price arrived at through CAS was among the significant areas of feedback received by SEBI. The Securities and Exchange Board of India has sought comments from stakeholders on the proposals till the 3rd of October. Siddharth, if you could very in simple terms explain to our listeners the proposed changes to the methodology for calculating the expiry day settlement prices.
0: See, Rajesh, I think this closing auction session was a methodology which was brought in by SEBI basically for better pricing, price discovery of stocks which are in which have derivatives trading. So I think, and since they came in, there was a lot of volatility being observed in the prices at both the exchanges. So I think, and obviously there were a lot of feedback to the SEBI. I would only also say that it's good on part of the market market regulator that they have taken cognizance of this issue and of the feedback and have also proposed a new, I would say, volume weighted average price, which was the earlier methodology to discover the price at the closing of the each session. So I think now what they are proposing is a blend of all three, the continuous trading system plus the blend of volume weighted average price and also the closing, the new system, the closing.

0: auction session. So I think basically, and they are also proposing some changes in the timing and also the transition from the continuous trading system to the cash. So I think these are 2-3 major changes which they have proposed, so that to basically fine-tune the closing auction system that was implemented. And also I think this is for now, obviously these are proposals which they have sought feedback, and then finally what comes out we'll have to wait.
1: जयशंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: गुड इवनिंग. नमस्ते मार्केट मंथर टीम.
1: नमस्ते
2: सर. आई हैव टू क्वेश्चंस. वन ऑफ कोर्स रिलेटेड टू ब्रिक्स. व्हाट लिवरेज दिस ब्रिक्स हैज, बिकॉज़ वी वांटेड टू ब्रिक्स वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम डॉलर ट्रेड, बट हमारा युआन से जमता नहीं है. रशियंस का हम रूबल रूपी से हमारा रशिया का रूपी से जमता नहीं है. उनको हमारे पास खरीदने के लिए कुछ है नहीं ज्यादा. हम उनसे ज्यादा खरीदते हैं. तो व्हाट लिवरेज one leverage could happen that we could have de-dollarized the trade and all that, but it's not happening. So what leverage this group this as such has, that is one question. Second question is, अभी सर ये आने वाला है 8th day commission का, तो there will lot of cash flow into the hands of the people retired as well as who are employed. So how this will affect the stock market? Will this money flow into the stock market or again go into the properties or and other things which will again jack up the prices of the property but not the market? So what is your opinion all on these two factors? Thank you.
0: See, Jayashankar ji, answering your question, I would say de-dollarization was never the aim of BRICS. So I don't think that is right. From day one, I think even if you look at the first declaration, BRICS nations always favored democratization and reforms in the international financial institutions, basically reform of United Nations and also International Monetary Fund, the World Bank, and it should be reformed to now reflect the changing demographic changes, the changes in the world order. So basically that was, and also the other thing was energy security plus cooperation between nations and also supporting these global south, the nations which are still developing. So, and also giving financial assistance and removing trade barriers between nations. So I think all those were the basic aims, and there to a large extent things have moved. And So that is one part of the question. Answer to your second question, 8th pay commission, if I am not wrong, I don't think any money would flow in the current financial year from the 8th pay commission, because the recommendations are still unworks. So I don't see money coming in. So I don't think there is a reason for me to answer that question.
1: मुंबई से हमारे साथ रत्नाकर जुड़ रहे हैं. रत्नाकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: हेलो
1: जी,
4: प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
3: हेलो, गुड इवनिंग सर.
4: गुड इवनिंग.
3: मेरा सवाल है कि अभी दिल्ली में जो ब्रिक्स परिषद हो रही है, उसमें कुछ चुने हुए कुछ 10-12 नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय जो बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है ईरान और अमेरिका का, उसके बारे में उनमें कुछ डिस्कशन होता है कि नहीं? कुछ हो गया ऐसा? कुछ सवाल तो नहीं आया है, ऐसा कुछ होने की उम्मीद है क्या? नहीं तो आपकी उसमें क्या राय है? थैंक यू.
0: नहीं, रत्नाकर जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और बिल्कुल उस पर डिस्कशन हुआ है और डिस्कशन होते भी हैं. इस ऐसे जब बिसाइड्स यूए एंड आल्सो द डिक्लेरेशन आल्सो हैज सेड दैट कोई भी जो है युद्ध से किसी भी चीज का समाधान नहीं होगा. तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन में इसका मेंशन भी है कि लड़ाई से किसी भी चीज का समाधान नहीं होगा, केवल बातचीत के से ही जो है ऐसी चीज़ों का समाधान हो सकता है. तो मुझे लगता है रत्नाकर जी, ये काफ़ी ऐसे जब भी ऐसे कोई समूह आपस में बैठते हैं 10-11 देश और साथ में पार्टनर नेशंस भी हैं 20 देश, तो ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल सीरियस डिस्कशंस होते हैं.
1: ठाणे से हमारे साथ गुरुनाथ जुड़ रहे हैं. गुरुनाथ जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए. गुरुनाथ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
5: हाँ, सुन पा रहा हूँ मैम
1: जी. कृपया अपना सवाल पूछिए.
5: मैम नमस्कार.
1: नमस्कार.
5: हेलो,
4: आप सवाल पूछें गुरुनाथ जी.
5: हाँ जी, हाँ जी सर. सर मेरा क्वेश्चन है, अभी जो 6-7 महीने पहले जो वॉर चालू हुआ अमेरिका और ईरान के बीच में, उससे पहले हमारी मार्केट तो ऐसे लगता था कि 1 लाख के अंकों को भी छू जाएगा. तो ये मतलब अभी जो मार्केट जो नीचे आ गई

0: है तो इसमें क्या मतलब FIs या संस्थागत जो निवेशक होते हैं या डोमेस्टिक, क्या वो कम हो गए और क्या ये जो वॉर है इसका असर हमारे मार्केट पे पड़ा है क्या? थैंक यू.
1: नहीं गुरुनाथ जी, बिल्कुल इस जो भी जियोपॉलिटिकल स्थिति है, जो दुनिया में इस समय अनिश्चितता है, उसका हमारी बाज़ार को भी उसने कहीं ना कहीं बाज़ार में वॉलेटिलिटी है या अनिश्चितता का माहौल से में बाज़ार में भी है। तो और हम दुनिया का पार्ट हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उस जो भी दुनिया में हो रहा है उससे हम अछूते रहेंगे। साथ साथ अगर आप देखेंगे जो 6-7 महीने में हुआ, टैरिफ को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ टैरिफ ट्रम्प साहब आए तो उन्होंने दुनिया भर में टैरिफ लगाया, हमारे ऊपर भी लगाया, और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुए शॉर्ट टर्म में। और जहाँ तक वेस्ट एशिया, जो ये लड़ाई चल रही है, उससे सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है तेल की कीमतें। और हम भारत जैसा देश जो 90% तेल आयात करता है, तो हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा जो इसका एक फिस्कल कॉस्ट है। और कहीं ना कहीं उस अनिश्चितता, वो जो अनिश्चितता है वो बाज़ार में भी दिख रही है। साथ साथ जो आपने बात कही कि FIIs ने भी पैसा निकाला, लेकिन FIIs ने पैसा सिर्फ इस कारण से नहीं निकाला। FIIs जो नेचर है उनका एज एन इन्वेस्टर, मेरा ये मानना है, वो जहाँ भी मौका देखते हैं उनको लगता है कि हाँ, वो बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग उनका जो है इंटेंट रहता है, मोटिव रहता है, तो वो वहाँ पैसा लगाते हैं जहाँ जिस बाज़ार में उनको लगता है ज़्यादा है। तो ऐसा कोई
2: extent work on sentiments. Absolutely. And positive sentiments are required for markets to
1: yes
2: go.
1: And despite that Rajesh, our markets have not tanked, and even FIIs have withdrawn. Even then the domestic investors, both institutional and retail, have posed confidence in the Indian markets.
3: अन्य खबरों में, श्रोताओं, 4 सितंबर 2026 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 45 अरब डॉलर के से बढ़कर 785.7 अरब डॉलर के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विदेशी मुद्रा संपत्ति 47 अरब डॉलर से अधिक बढ़कर लगभग 648 अरब डॉलर हो गई है। हालांकि सोने का भंडारण लगभग 2.5 अरब डॉलर से अधिक फिसलकर लगभग 114 अरब डॉलर रह गया है। और इस बीच हमारे साथ दिल्ली से वीरेंद्र जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: हेलो
3: जी, अपना सवाल पूछिए।
4: हाँ मैम, नमस्ते।
3: नमस्ते
4: मैडम, जो जैसे अभी ये सुन रहा था ना प्रोग्राम की, ये सब चर्चा कर रहे हैं युद्ध वगैरह का, ईरान का, अमरीका का,
3: जी
4: तो ये तो कॉमन बात हो गई, सबको पता है, इस पे टाइम वेस्ट करना बेकार है। बजाय इस पे समाधान निकालिए कि जो विस्तार जो लड़ाई की वजह है, लड़ाई की वजह है विस्तारवाद, और विस्तारवाद की वजह है पॉपुलेशन। चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है, वो तिब्बत से विस्तार कर रहा है।
3: जी वीरेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछिए।
2: I think we lost touch with him. In the meantime, we have a story on the RBI governor interview, Prachi.
3: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि फॉरेन करेंसी, नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिटरी और दूसरी योजनाओं से आने वाला निवेश बहुत मजबूत रहा है। एक साक्षात्कार में श्री मल्होत्रा ने कहा कि ये मजबूत निवेश भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में निवेशकों के भरोसे को दिखाता है और कम समय में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की क्षमता को भी सिद्ध करता है। बैंकिंग सिस्टम में अतिरिक्त नकदी पर श्री मल्होत्रा ने बताया कि रिजर्व बैंक के पास नकदी को संभालने के लिए कई उपकरण हैं और वह जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि ऋण वृद्धि बढ़ने के साथ साथ करेंसी प्रचलन, विदेशी मुद्रा बाजार में दखल और बैंकों की कोषीय आवश्यकताओं के जरिए समय के साथ कुछ अतिरिक्त नकदी को वापस ले लिया जाएगा। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार पांचवें सप्ताह गिरावट आई। ये गिरावट कच्चे तेल के दाम बढ़ने और वैश्विक ब्याज दरों को लेकर चिंताओं के बीच दर्ज की गई। इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1733 अंक यानी 2.3% गिरकर 74782 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 500 अंक यानी 2% से अधिक फिसलकर 23398 पर स्थिर हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 लगभग 1.5% फिसला, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक इस सप्ताह लगभग 1% नीचे आया। क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो बिकवाली अधिक रही और सप्ताह के दौरान प्रमुख क्षेत्र गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी रियल्टी में सबसे अधिक यानी 6.5% से अधिक की गिरावट

0: गिरावट आई। इसके बाद निफ्टी आईटी जिसमें सप्ताह के दौरान लगभग 6% की गिरावट दर्ज की गई।
1: सिद्धार्थ, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इन द आरबीआई गवर्नर्स इंटरव्यू, ही इज रिफ्लेक्टेड स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज एंड कॉन्फिडेंस इन इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड द एबिलिटी इंडियाज एबिलिटी टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल विद इन अ शॉर्ट पीरियड। सो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दैट ही हैज मेड एंड ही इज क्वाइट पॉजिटिव अबाउट द ग्रोथ ऑफ इंडिया।
2: Rajesh, more than the statement that he's made, also the fact that we have got almost close to $130 billion through these FCNR deposits, that itself shows the current state of the Indian economy, the strength in the inherent strength in the Indian economy, and also what he's also reflected that because of this huge influx of money coming in, the liquidity is high in the market, but he's also assured the market that there's nothing to worry. RBI is looking into it. They are completely hands on the situation and already conducting operations to absorb the excess liquidity.
1: Okay. The European Commission has formally submitted its proposal to the European Council to sign and conclude the free trade agreement with India, marking a major step towards implementing the ambitious pact widely described as the mother of all deals. If authorized by the Council, the agreement will become the largest trade deal ever concluded by both the European Union and India. Now, this really augurs well. We don't have time. A very, very, very brief comment.
2: I think it opens up a big market for Indian exporters.
0: बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ कार्यक्रम में आने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए।
2: धन्यवाद आप।
1: Thank you, Siddharth, for being with us. And before we close the headlines once again, BRICS nations adopt the New Delhi Declaration on first day of BRICS Summit 2026. Leaders advocate for multilateral approach that respects diverse viewpoints and positions on global issues. SEBI releases consultation paper proposing changes to closing auction session and derivatives settlement. And benchmark domestic indices register weekly decline of over 2%. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
5: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है, साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
4: ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने दो स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती रहती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रॉइका के माध्यम से सभी पहलुओं और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
5: ग्लोबल गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
4: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम

0: के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिक्स नेताओं ने पौधारोपण किया। उन्होंने इंडिया इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुँचाना है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। श्री नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव की मौजूदगी में 10 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 12 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से राज्य में मरीजों को बेहतर सेवा मिलेगी। भारत ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दुनिया की सबसे लंबी स्टील स्लैग सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1.85 किलोमीटर लंबी ये सड़क स्वदेशी तकनीक के व्यापक प्रयोग को दिखाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये पहल कचरे से संपदा बनाने और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की प्राथमिकताओं के अनुरूप है। पाकिस्तान के एक मानवाधिकार संगठन ने अधिकारियों पर बलूचिस्तान में सुनियोजित सैन्यकरण और दमनकारी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि हिंसा और विस्थापन नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोची में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। BRICS nations have expressed concern about ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. In the New Delhi Declaration adopted on the first day of the BRICS Summit 2026, the leaders advocated for a multilateral approach that respects diverse national viewpoints and positions on crucial global issues. These issues include sustainable development, eradication of hunger and poverty, and contributing to the global response to climate change. In his closing remarks, the Prime Minister noted that the New Delhi Declaration adopted today provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: BRICS leaders condemned the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22nd April last year in the strongest terms. They reaffirmed commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations. Earlier, the BRICS Summit 2026 kicked off at Bharat Mandapam in New Delhi this afternoon. Prime Minister Narendra Modi, in his opening remarks, proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the grouping's institutional momentum is maintained despite the changing chairship every year. The Prime Minister said the mechanism would enable follow-up of all initiatives and outcomes through the Troika. The Prime Minister said BRICS countries will have to work on a new and ambitious agenda for the next 20 years. The Prime Minister also proposed to establish a seafarers emergency support network to connect the maritime authorities and diplomatic missions of relevant countries to facilitate assistance during difficult times.
2: Kya hum seafarers emergency support network bana sakte hain? Iske madhyam se sambandhit deshon ki maritime authority aur missions ko joda jayega. Isse distress alerts, medical assistance, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
1: Prime Minister Modi said the time has come to translate the unity and consensus among BRICS countries into concrete outcomes on the global stage. Mr. Modi said resilience,

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन के प्रमुख घटनाक्रमों पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: भारत की अध्यक्षता में आज से नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। इस वर्ष की थीम है सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण को दर्शाती है। आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में इस सम्मेलन के पहले दिन के घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर हर्ष पंत। अम्बेसडर सज्जनहार और डॉक्टर पंत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज के जो हम बात कर रहे थे घटनाक्रम जो हुआ है उसमें सबसे खास बात क्या रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना इस विषय पर आयोजित शिखर सम्मेलन में पहले दिन के सत्र को संबोधित किया और इसके अंत में उन्होंने नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 का प्रस्ताव रखा और इसे अडॉप्ट किए जाने की घोषणा की। तो सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है, साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। यदि किसी सदस्य को कोई आपत्ति न हो तो मैं डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करने का प्रस्ताव रखता हूं। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, आज की हमारी बैठक अत्यंत सार्थक और रचनात्मक रही। हमारे विचारों की विविधता के साथ साथ ब्रिक्स सहयोग के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता भी स्पष्ट रूप से सामने आई है। आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग, तीनों में सुधार आवश्यक है। हमने इस बात पर भी बल दिया कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और उनके नियमों के निर्माण में ग्लोबल साउथ की बराबर भागीदारी होनी चाहिए। निर्णयों और उनके परिणामों के बीच जो दूरी बनी हुई है उसे पार्टनरशिप और कलेक्टिव एक्शन से काम करना होगा। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले। ब्रिक्स चेयर के रूप में आपके बहुमूल्य योगदान, कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट और आपकी प्रतिबद्धता के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ इस सेशन के समापन की घोषणा करता हूं।
1: और एक बार फिर स्वागत करते हैं इस चर्चा में पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार का। अशोक जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
3: जी बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, धन्यवाद
1: जी। अशोक जी, भी हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने जो ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 यानी कि नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जो अडॉप्ट की गई आज पहले दिन के सत्र के अंत में, उसके बारे में बताया। तो जो ये घोषणा पत्र अडॉप्ट किया गया है, इसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको कौन से लगते हैं?
3: जी बहुत धन्यवाद मुझे फिर से मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूं जो ये हम कंसेंसस डिक्लेरेशन, ये जो घोषणा पत्र है
1: जी,
3: इसको हम सर्वसम्मति से अडॉप्ट कर पाए, मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है। क्योंकि बहुत ये कहा जा रहा था जो ये मुद्दे इतने पेचीदे हैं और इतने डिवाइसिव हैं देशों के बीच में, तो उसमें एक सर्वसम्मति पाना बहुत ही मुश्किल होगा
1: जी।
3: क्योंकि आपको याद है जो 2023 में जब भारत ने अध्यक्षता की थी G20 की, तब भी ऐसा ही मुद्दा था रूस और यूक्रेन का युद्ध का, और तब रूस चीन एक तरफ खड़े थे और सारे जो पश्चिमी देश थे एक तरफ खड़े थे, परंतु एक ब्रिज बिल्डर के नाते भारत ने अपना रोल अदा किया था और एक सर्वसम्मति से वहां पर भी डिक्लेरेशन पारित किया था, और वो उस दो दिनों के सत्र के शुरू होने के पहले दिन के शुरू होने से उसको एडॉप्ट कर लिया गया था। आज भी पहले दिन ही किया गया, और क्योंकि ये बहुत इसमें बातचीत ये कहा जा रहा था जो ईरान चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर हमला हुआ है, क्योंकि ये तीन देश जो हैं, युद्ध चल रहा है जो ईरान में और अमेरिका और इसराइल में, तो इसमें तीन देश जो इसमें भागीदार हैं, ईरान के ऊपर तो हमला हुआ है और ईरान ने हमला किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया, तो उनके ऊपर वो कह रहे थे जो किस प्रकार का ये फॉर्मुलेशन किया जाए। तो यहां पर फिर से भारत ने एक ब्रिज बिल्डर बनकर वो काम किया है। दूसरी बात मैं बताऊंगा जो यहां पर जो आतंकवाद के विरुद्ध जो प्रोविजंस है, मेरे विचार से वो बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर कोई उनको पढ़ेगा और उनको देखेगा, ये पैराग्राफ 40, 41, 42 में सभी कुछ रिफ्लेक्टेड है, तो ये जो पूरा लैंग्वेज है, ये पूरा लैंग्वेज भारत जो लैंग्वेज का प्रयोग करता है आतंकवाद के बारे में बोलने का, जो ये किसी भी कारण से उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, सभी को साथ में मिलकर इसके विरुद्ध काम करना चाहिए, जो टेररिज्म फंडिंग है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके विरुद्ध काम करना चाहिए, तो ये सब जो भारत कहता है, मांगता है, वो उसमें दिए हुए हैं। और पहलगाम इंसिडेंट के बारे में भी, जो पिछले साल 22 अप्रैल को हुआ था जिसमें हमारे 26 लोग मारे गए थे, तो उसका भी इसमें पूरी तरीके से विवरण है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा, कहा था जो हम ऐसा ये ब्रिक्स समिट करना चाहते हैं, ब्रिक्स की अपनी प्रेसिडेंसी करना चाहते हैं जो कि पीपल सेंट्रिक हो,
0: बिल्कुल,
3: जिसका फायदा लोगों को मिले, जिसमें ह्यूमैनिटी फर्स्ट हो। तो ये सारे जो 140 पैराग्राफ हैं इस डिक्लेरेशन के, वो सभी इसके बारे में ही बताते हैं, जो कैसे नेशनल करेंसीज में ट्रेड किया जाए, ट्रेड बढ़ाया जाए, निवेश बढ़ाया जाए, तो एनर्जी सिक्योरिटी कैसे की जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी को कैसे आगे लेकर आया जाए, स्टार्टअप्स फंड कैसे किया जाए, विमेन और यूथ का इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा होना चाहिए ब्रिक्स के देशों में, तो ये सभी चीजें इसमें हैं। और मैं समझता हूं जो बहुत ही ये एक ठोस और बहुत ही अच्छा डिक्लेरेशन है जो कि आगे चलते हुए सभी देशों का बहुत फायदा करेगा।
1: डॉक्टर पंत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी हमने अम्बेसडर सज्जन हार को सुना, ने काफी विस्तार में बताया है जो ये नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 आज अडॉप्ट किया गया है, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्होंने कई बातें कही, पर जो सबसे अहम बात मुझे लगी, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वसम्मति से अडॉप्ट कर पाए हैं हम बात, क्योंकि हमारे जो ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं और जो मेंबर नेशंस हैं, उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई एक तरफ है, ईरान एक तरफ है, तो इन सब बातों को देखते हुए आप इसको कितना अहम मानते हैं कि एक सर्वसम्मति से पास हुआ ये अडॉप्शन, और उसके अलावा आप क्या मानते हैं कि क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहे?
4: जी धन्यवाद। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो एक कॉमन परसेप्शन था कि बड़ा भारत को मुश्किल आएगी कंसेंसस डॉक्यूमेंट अडॉप्ट करवाने में, और ब्रिक्स कहीं ऐसा ना हो कि लड़खड़ा जाए, वो मुझे लगता है कि भारत ने काफी अपनी डिप्लोमेटिक मेटल इस नेगोशिएशंस में दिखाई, और जो कंपीटिंग एजेंडास थे, चाहे वो ईरान और सऊदी अरब या यूएई के बीच में हो, डाइवर्जेंसेस थे, उनको पाटने में भारत की डिप्लोमेसी सफल रही। तो मुझे लगता है बड़ा अचीवमेंट है और एक ट्रेंड बनता जा रहा है अब G20 से लेकर ब्रिक्स तक, जहां भारत जो एक बहुत ही फ्रेगमेंटेड हम वैश्विक अवस्था में जी रहे हैं, उसमें भारत एक तरह से देशों को साथ पिरोने में, कन्वर्जेंसेस ढूंढने में, कॉमन सॉल्यूशंस को आगे लाने में सफल होता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये भारत के जो ग्लोबल स्टेचर के लिए, ये भारत की डिप्लोमेसी के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है कि भारत का रोल जो है वो दुनिया में, जब दुनिया में देश एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, उसमें भारत एक ऐसी व्यवस्था को लेकर आता है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को लेकर आता है जहां पर एक देश जो देशों के बीच में खाई है उसको पाटने में भारत सफल हो पाता है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक मापदंड बनता जा रहा है भारत की डिप्लोमेसी के लिए। इसमें जो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि यूजुअली ब्रिक्स का जो एजेंडा होता है वो जियो इकोनॉमिक्स और जो SDG इश्यूज हैं उन पर वो काफी प्रबलता के साथ सामने आते हैं, लेकिन इस बार टेररिज्म के अलावा ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स की बात कर रहा है ब्रिक्स, और यूनिलैटरल वॉर मेजर्स ना आए इसकी बात कर रहा है। मुझे लगता है बड़े महत्वपूर्ण है कि ब्रिक्स आज अपने आप को एक जियो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म से जियो पोलिटिकल प्लेटफॉर्म की तरफ बनता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, और ब्रिक्स आज ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आता है इस बात को कहने में कि जो भी दुनिया में बदलाव हो रहा है, उथल पुथल हो रही है, उसमें ब्रिक्स कहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकता है। जो पहले एक हिचक होती थी जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर बोलने की, वो हिचक अब खत्म होती नजर आ रही है।
1: आपने एक बहुत दिलचस्प बात कही कि ब्रिक्स जो है वो जियो इकोनॉमिक ग्रुपिंग से बढ़कर अब एक जियो पोलिटिकल ग्रुपिंग की तरफ बढ़ गया है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, पर इससे पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आज के सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातें कही, और एक बात जो उन्होंने कही वो ये कि अब ये समूह परिपक्व हो गया है। उन्होंने कहा कि इट हैज रीच्ड अ कमिंग ऑफ एज। पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज ब्रिक्स भी अपने कमिंग ऑफ एज के क्षण में है। पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बढ़ाई है। हम एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं और कंसेंसस से आगे बढ़ते हैं। हम किसी के विरुद्ध नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने की सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।
1: अम्बेसडर सज्जनहार, हम साफ तौर पर हमने जैसे भी सुना प्रधानमंत्री मोदी को, उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जैसा एक विविध समूह जिसके भीतर इतने अंतर हैं, इतने डिफरेंसेस हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे अंदर, हमारे भीतर काफी अंतर हैं, काफी डिफरेंसेस हैं, पर साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इन डिफरेंसेस के बावजूद ब्रिक्स ने सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का रास्ता चुना है। इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं?
3: जी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, और इसके साथ साथ मैं एक और चीज कहूंगा जो अभी उन्होंने कही और दोहराई, और वो उन्होंने

0: जो हम किसी के विरुद्ध नहीं है,
1: जी
0: ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत कहा जा रहा था जो इसमें गुट में कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो कि इस गुट को एंटी वेस्टर्न बनाना चाहते हैं, पश्चिम देशों के विरुद्ध बनाना चाहते हैं। और वो पहले नाम लिए जाते थे, ईरान का तो यकीनन, क्योंकि ईरान के ऊपर इतने ये आक्रमण हुआ है, अभी भी हुआ है, पिछले साल भी हुआ है, उसके विरुद्ध कितने सैंक्शंस लगाए गए हैं, केवल अभी से नहीं परंतु दशकों से उसके ऊपर सैंक्शन लगे हैं। तो वो तो बिल्कुल एक एंटी वेस्टर्न फॉर्मुलेशन इसमें यकीनन चाहते थे भाई, इसको ग्रुप को हम एक एंटी वेस्टर्न ग्रुप के रूप में लेकर आए। और ये भी कहा जाता था क्योंकि रूस के ऊपर भी सैंक्शंस इतने लगाए गए, रूस के ऊपर ये जो यूक्रेन ने के ऊपर हमला किया रूस ने, और फिर जो सहायता दी जा रही है यूक्रेन को, तो वो भी चाहते थे जो ये इसको एंटी वेस्टर्न, और फिर चीन का भी ऐसा ही कहा माना जाता था जो रवैया है। परंतु उन्होंने कहा जो हम, और भारत का हमेशा पक्ष रहा है, जो हम एंटी वेस्टर्न नहीं है, हम नॉन वेस्टर्न है,
1: बिल्कुल
0: हम पश्चिमी देशों के साथ नहीं हूं परंतु उनके विरुद्ध तो बिल्कुल नहीं है। और इसमें देखा जाए भारत के अपने बड़े अच्छे संबंध हैं, न केवल अमेरिका के साथ परंतु यूरोप के साथ और बहुत सारे पश्चिमी देशों के साथ। तो जो उन्होंने कहा है जो ये आ, आ, हम किसी के विरुद्ध नहीं है और हम कंसेंसस की बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए ये वाला जो गुट है इसमें करीब 49% से ऊपर जनसंख्या है पूरे विश्व की,
1: बिल्कुल
0: 40% है इसकी जीडीपी, ग्लोब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी बहुत है, 26% है इसका वर्ल्ड ट्रेड का प्रपोर्शन, 40% है इसकी एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि एनर्जी के बहुत इसमें जायंट्स आ गए हैं,
1: बिल्कुल
0: रूस पहले था, अभी यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इंडोनेशिया, सभी मिलकर आ गए हैं। तो अगर ये इसमें इतना ज्यादा आर्थिक शक्ति है परंतु अगर ये एक आवाज से नहीं बोलेगा तो कोई इसकी आवाज को सुनेगा नहीं, कोई इसकी आवाज पर ध्यान नहीं देगा। परंतु ये हमने इस समय ये बता दिया है, प्रूफ कर दिया है, जो ये गुट हालांकि इसमें इतनी विविधता है परंतु फिर भी ये एक आवाज से सभी मिलकर बोल सकते हैं, और इसीलिए मेरे विचार से इस गुट का जो महत्व है और कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। अगर सभी अपनी अपनी अलग आवाज में बोलते, अगर हम कंसेंसस डिक्लेरेशन नहीं ले आ पाते
1: जी
0: जिसकी हम बात कर रहे थे अभी,
1: हाँ
0: तो फिर इसका गुट का इतना महत्व नहीं होता जितना कि अब हो रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं जो कितने सारे देश हैं जो दरवाजे के बाहर खटखटा रहे हैं, वो भी अंदर आना चाहते हैं,
1: बिल्कुल
0: परंतु हम नहीं आने दे रहे हैं अभी, क्योंकि हम इसको कंसोलिडेट कर रहे हैं अभी।
1: डॉक्टर पंत, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ग्लोबल साउथ के एक बड़े समर्थक रहे हैं, वोटरी रहे हैं, और इस बात पर जोर देते रहे हैं कि अब इसकी आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और आज भी अपने संबोधन में उन्होंने ग्लोबल साउथ का समर्थन किया। पहले सुनते हैं क्या कहा।
2: हमें ग्लोबल साउथ को रूल टेकर से रूल शेपर बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। ब्रिक्स के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों के युवा डिप्लोमेट्स और पॉलिसी मेकर्स को नेगोशिएशन स्किल्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और लीगल एक्सपर्टीज प्रदान कर सकते हैं। भारत इस विषय में लीड लेने के लिए तैयार है।
1: डॉक्टर पंत, अभी जैसा हमने सुना, प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ को नियम मानने वाले यानी कि रूल टेकर्स की जगह अब नियम बनाने वाले यानी कि रूल शेपर्स में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि, और इसमें भारत, उन्होंने कहा कि भारत इस बारे में एक अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है, जो भी ट्रेनिंग की जरूरत है वो हम देने के लिए तैयार हैं। तो क्या ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ और जो पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके बीच का एक पुल जो है वो भारत की स्थिति कैसे और कितना मजबूत स्थिति है भारत की इस इसमें?
3: देखिए, दुनिया में जो इस समय उथल पुथल चल रही है और जो हमने अंतर्राष्ट्रीय जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने, वो जो पूरा स्ट्रक्चर ढांचा बना था ग्लोबल ऑर्डर का, वो चरमरा रहा है, वो शिथिल पड़ता जा रहा है। और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो ग्लोबल साउथ का हो रहा है, विकासशील देशों का हो रहा है। अगर आप

0: तो युद्ध भी देखें जो यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच में है, और मिडल ईस्ट में ईरान और इसराइल और अमेरिका के बीच में चल रहा है, वो उसमें चाहे फूड सिक्योरिटी का इशू हो, एनर्जी सिक्योरिटी का इशू हो, सारे इश्यूज जो हैं वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उनका सबसे गरीब देशों
1: बिल्कुल
0: पर पड़ रहा है, जो सबसे जो जो विकासशील देश है उन पर पड़ रहा है, और उनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स बने हैं यूएन हो, WTO हो, WHO, वो काम नहीं कर रहे, ये बात बड़ी स्पष्ट है। तो भारत का पिछले कुछ सालों से ये सतत प्रयास रहा है कि कैसे इन देशों की आवाज को बुलंद किया जाए, इनकी प्रायोरिटीज को, इनके इंटरेस्ट को, इनके एस्पिरेशंस को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा जाए, क्योंकि ग्लोबल गवर्नेंस का कोई मतलब नहीं अगर आप इनकी आवाजें नहीं सुन रहे, और बड़ी शक्तियां ये बात बिल्कुल सही है नहीं सुन रही हैं। तो कहाँ उसमें भारत ने जो लीड ली, जिस तरह से भारत अफ्रीकन यूनियन को G20 में का मेंबर बनाता है, और अब जो उसने अपनी ब्रिक्स की एजेंडा की जो रूपरेखा तैयार करी, उसमें अगर आप ध्यान से देखें, चाहे रेजिलियंस की बात वो करता है, चाहे इनोवेशन की करता है, चाहे कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी की करता है, इसके केंद्र में ग्लोबल साउथ है। तो
1: बिल्कुल
0: भारत हमेशा से न सिर्फ अपने हितों की बात कर रहा है मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर, बल्कि वो ग्लोबल साउथ के डेवलपिंग कंट्रीज के हितों की बात कर रहा है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भारत अपने लिए कहता था कि भारत रूल टेकर से रूल शेपर की तरफ बढ़े, रूल्स बनाए बैठकर, वो बात आज प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ के लिए कही कि ग्लोबल साउथ अगर रूल्स नहीं बनाता है तो उसको दूसरे के रूल्स पर ऑपरेट करना पड़ता है, और वो रूल्स ऐसे हैं जो उसको नुकसान देते हैं, उसको मार्जिनलाइज करते हैं। तो मुझे लगता है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात भारत की, एक बहुत महत्वपूर्ण पहल भारत की तरफ से हो रही है, और भारत उसको अपनी अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करने को तैयार है, चाहे वो DPI हो, चाहे वो लो कॉस्ट इनोवेशन हो, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी हो, और दूसरा भारत कैपेसिटी बिल्ड करने को तैयार है ग्लोबल
1: जी
0: साउथ के देशों में। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि डिप्लोमेसी में, नेगोशिएशंस में हम कैसे उन देशों को ज्यादा सशक्त बना सकते हैं जो कमजोर पड़ जाते हैं नेगोशिएटिंग टेबल पर, क्योंकि जो विकसित देश है उनके पास इतनी ताकत होती है डिप्लोमेसी की, या नेगोशिएटिंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि कहीं पर ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग वर्ल्ड कमजोर पड़ जाता है। तो ये प्रयास भारत का लगातार जारी है, और मुझे लगता है आगे भी भारत के केंद्र में, भारतीय विदेश नीति के केंद्र में ग्लोबल साउथ और उनके एस्पिरेशंस रहेंगे।
1: बात, अगर जब हम कर रहे हैं कि रूल टेकर्स से रूल शेपर्स बनने की बात कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे कि UNSC है, यानी कि UN सिक्योरिटी काउंसिल है, या जो विभिन्न फाइनेंशियल आर्थिक संगठन है, उनमें सुधार होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी एक मुद्दा है जो आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उठाया।
2: यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। इस विषय पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए। जो देश ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देते हैं, उन्हें ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को दिशा देने में भी उचित भूमिका मिलनी चाहिए।
1: जी अम्बेसडर सज्जनहार, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो प्रधानमंत्री ने बात की कि अब UN सुरक्षा परिषद में सुधार में और देरी नहीं की जा सकती, उन्होंने इसी तरह वित्तीय संस्थानों में भी वोटिंग पावर और लीडरशिप के पदों में प्राथमिकताओं की बात की है, ये आज की मौजूदा वर्तमान में जो वैश्विक सच्चाई है उसको दर्शाता है, और ये कितना जरूरी हो गया है।
3: जी, बहुत ज़रूरी हो गया है। देखिए, मेरे विचार से ये वाले जो रिफॉर्म्स हैं, ये जो बदलाव है, ये आज नहीं, ये कल हो जाना चाहिए था, परसों बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और आपको याद होगा जो जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने पद संभाला था और वो गए थे UN जनरल असेंबली में, तब उन्होंने कहा था जो एक साल में इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और कोई ना कोई निर्णय होना चाहिए, निष्कर्ष निकलना चाहिए, क्योंकि UN सिक्योरिटी काउंसिल अभी वो रियलिटी रिफ्लेक्ट करता है जो कि 1945 में थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब जो रियलिटीज थी उसको रिफ्लेक्ट करता है, आज के दिन की रियलिटीज रिफ्लेक्ट नहीं करता। और अगर उसको ठीक तरीके से काम करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो मल्टीलैटरलिज्म हो, UN सिक्योरिटी काउंसिल हो, एकदम शिथिल पड़ चुका है, एकदम इतने उसका सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव
1: जी
3: था जो वहां पर पीस सिक्योरिटी शांति लेकर आए, सुरक्षा लेकर आए पूरे विश्व में। अब हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है 4.5 साल से, उसमें वो कुछ भी नहीं कर पाया है। और अभी ये ईरान का और अमेरिका का युद्ध भी कितने 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, परंतु उसमें भी कुछ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कोई योगदान नहीं दे पाया है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है वो उसका कार्यशीलता बढ़ेगी, वो अच्छा अपना काम कर पाएगा अगर वो आज की रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। वही बात है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, क्योंकि वहां पर भी जो लीडरशिप है, वोटिंग राइट्स है, वो आजकल की इकोनॉमीज को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि अगर ब्रिक्स में देखा जाए, चीन दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में,
1: जी
3: भारत चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और भी हमारे इसमें बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, परंतु उनको अपने जितना उनका योगदान है उतना बिल्कुल भी नहीं मिलता है। भारत करीब 18% योगदान करता है ग्लोबल ग्रोथ में, परंतु यही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो उनको
1: उनको
3: डिसीशन
1: आवाज नहीं मिल रही,
3: मेकिंग
1: जितना
3: में
1: योगदान है
3: उस
1: उतनी आवाज नहीं मिल रही।
3: उतनी आवाज नहीं मिल रही, और उसको जरूर मिलना चाहिए।
1: जी, एक और
3: जी
1: बात जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कही वो थी कि समुद्री यात्री यानी कि सी फेरर्स की सुरक्षा को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। सुनते हैं क्या कहा।
2: सी फेरर्स का वैश्विक व्यापार में बहुत बड़ा योगदान है, किंतु अक्सर मुश्किल समय में उन्हें सहारे की कमी महसूस होती है। मेरा प्रस्ताव है कि क्या हम सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं, इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटीज और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
1: डॉक्टर पंत, प्रधानमंत्री ने जो सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बनाने की जो एक पेशकश की है, अगर हम मौजूदा परिपेक्ष में देखें, खासकर जो पश्चिम एशिया में हो रहा है और उससे पहले भी उसके साथ साथ और न सिर्फ पश्चिम एशिया में पर और भी हिस्सों में जो भारत विश्व के दूसरे हिस्सों में हो रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, सप्लाई चेन में जो हम आजकल सप्लाई चेन्स में डिस्रप्शन हम देख रहे हैं, उन सब के मद्देनजर ये जो प्रपोजल, ये जो एक प्रधानमंत्री ने बात कही है एक सपोर्ट नेटवर्क बनाने के लिए, ये कितनी अहम है?
0: ये मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट एक पहल प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें पिछले कुछ समय से वैश्विक हालात जिस तरह के बने हुए हैं, उसमें सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट जो हो रहा है वो ग्लोबल ट्रेड पर हो रहा है, ग्लोबल कॉमर्स पर हो रहा है, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो रही हैं, और जो एक जिस तरह से वैश्विक ढांचा बना हुआ था व्यापार का, उस पर निरंतर प्रहार हो रहा है। और ये बात भारत लगातार कहता रहा है कि जो बेसिक ग्लोबल गुड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो उसका प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ता है, गरीब देशों पर पड़ता है,
1: जी
0: और ग्लोबल कॉमर्स इस तरह से डिस्टर्ब होता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सारी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है, जिसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है। पूरी वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है वो उथल पुथल है, इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा है, जीडीपी नीचे जा रहे हैं, तो कहीं पर इसको सुदृढ़ करना, इसमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो आप आपकी मदद कर पाए कठिन से कठिन समय में, जब दो देश युद्ध लड़ रहे हों, लेकिन कहीं पर जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वॉर फाइटिंग के वो प्रोटेक्ट रहे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल है, और इसको इसका समर्थन जरूर काफी हद तक न सिर्फ ब्रिक्स के देश बल्कि ब्रिक्स से आगे जो देश हैं, ब्रिक्स के बाहर जो देश हैं वो भी करेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पर है, लोगों की लाइवलीहुड पर है, लोगों की इकोनॉमी इकोनॉमिक ग्रोथ पर है। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल भारत ने प्रस्तुत किया है अपनी प्रेसिडेंसी के लिए, और
1: जी
0: अगर ये आत्मसात होता है, अगर ये ऑपरेशनलाइज होता है ग्राउंड पर, तो इसका बेनिफिट ग्लोबल होगा, न सिर्फ भारत को होगा बल्कि दुनिया में होगा।
1: जी अब बात करते हैं कि आज जो पूरा दिन की गतिविधियां, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से भी बातचीत की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल बाद भारत पहुंचे हैं, आज आए हैं।

0: उनके साथ आज कुछ देर पहले आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की और इन दोनों नेताओं के बीच में ये 3 साल में तीसरी मुलाकात थी। पहले सुनते हैं कि इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
1: आपका हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ब्रिक्स समिट में आपके सकारात्मक वक्तव्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सेलेंसी, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान चीन से मिले समर्थन और सहयोग के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अब हमें द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। एक बार फिर भारत में आपका हार्दिक स्वागत है।
0: एम्बेसडर सज्जन हार, दुनिया की दो सबसे अधिक आबादी वाली उभरती अर्थव्यवस्थाएं भारत और चीन, दोनों नेताओं के बीच में ये जो बैठक हुई है ये कितनी महत्वपूर्ण है?
2: जी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। जैसे आपने बताया, जो ये पिछले 3 साल में तीसरी बैठक है, जो हमारे बीच के जो संबंध थे उनमें बहुत एक शॉक उसको मिला था, बड़ी खटास आ गई थी जब गलवान इंसिडेंट हुआ था 2020 में, जून 2020 में, और वो 5 साल तक चलता रहा, कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहे और जो हमारे संबंध थे, राजनीतिक संबंध, राजनयिक संबंध, उनको बहुत ही निचले स्तर पर हम ले आए थे और बहुत से ऐसे अंकुश भी लगा दिए थे भारत ने जो चीन के साथ संबंधों पर। परंतु इसकी फिर से शुरुआत हुई अक्टूबर 2024 में, जब कजान में रूस में ब्रिक्स की समिट के साइडलाइंस पर मुलाकात हुई और तब नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन शुरू हुआ। और फिर पिछले साल त्यानजिन में मुलाकात हुई, इस बारी बिश्केक में भी 10 दिन पहले मुलाकात हुई, परंतु कोई स्ट्रक्चर्ड बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई। परंतु आज ये मुलाकात हुई और मैं समझता हूं जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया था 2024 में अक्टूबर में, जिससे कि हमने वीजा देने शुरू कर दिए थे, फैसिलिटेट कर दिए थे, जिससे कि हमने डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू कर दी थी, कैलाश मानसरोवर यात्रा हमने फिर से प्रारंभ कर दी थी, जो चीन से इन्वेस्टमेंट आती है उसमें थोड़ी सी हमने ढील दे दी थी, उसके जो प्रोविजंस थे उनको थोड़ा लिबरल बना दिया था, लूजन कर दिया था। तो ये मैं समझता हूँ नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, ये शुरुआत हुई थी 2024 में और आज की मुलाकात में देखता हूँ। देखिए, मैं नहीं समझता जो कोई बहुत ही इतना बड़ा या जिसे कहा जाए गेम चेंजिंग या मेजर अनाउंसमेंट होगा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में, परंतु फिर भी मैं समझता हूं जो हमारे संबंध ठीक होते हुए चल रहे हैं तो उसको और ज्यादा कंसोलिडेट किया जाएगा। थोड़ा सा दोनों देशों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में विश्वसनीयता को और आगे लाने का प्रयास किया जाएगा और जिससे कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, जो हमारे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो हमारा 3500 किलोमीटर का बॉर्डर है, रिकॉग्नाइज्ड वो नहीं है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, उसके ऊपर पीस और ट्रैंक्विलिटी रहनी चाहिए, उसके ऊपर शांति रहनी चाहिए। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में चीन ने उनके ऊपर बहुत इनकर्शंस किए हैं, 2013 में, 2014 में, 2017 में, 2020 में तो गलवान हुआ। तो वो जो बॉर्डर है वो स्टेबल होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए और वहां पर शांति रहनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी।
0: चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन इससे पहले सीधे चलते हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद कुमार के साथ, जो इस वक्त मौजूद है भारत मंडपम में। आनंद, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: जी अनुभा
0: जी, आनंद, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के पूरे दिन की गतिविधियां जो रही, अब उसके बाद आज जो नई दिल्ली डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट हो गया, अब कल जो दूसरा दिन है इस शिखर सम्मेलन का, कल के लिए क्या कार्यक्रम है और कल क्या क्या होने की संभावना है?
3: अनुभा, ब्रिक्स सम्मेलन के कल दूसरे और अंतिम दिन ब्रिक्स के साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में भाग लेंगे। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। आज ब्रिक्स के जैसे 20 वर्ष पूरे हुए हैं, इसके उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। सत्र के आज समापन के बाद सदस्य देशों के नेताओं ने भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और बाद में सभी ने

0: बरगद के पौधे भी लगाए। जी अनुभा,
1: आनंद, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर पंत, मैं आप पर वापस आना चाहूंगी। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की जो द्विपक्षीय वार्ताएं आज हुई, उनमें हमने अभी बात करी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स के जो अन्य सदस्य देश हैं, इथियोपिया और यूएई, और जो भागीदार देश है मलेशिया और वियतनाम, इनके नेताओं से भी मुलाकात की। दो राष्ट्रों के बीच जब इस तरह के मजबूतों का संबंध को मजबूत करने के लिए इस तरह की जो द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण है, खासकर व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, राजनीतिक और राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए?
2: देखिए, जब भी किस तरह के मल्टीलैटरल इवेंट्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक मौका होता है कि देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से मिलें और जो अपने जो कॉमन इंटरेस्ट की बात है वो करें। और मुझे लगता है इसमें भारत ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए सभी देशों के साथ मुलाकात की है, और जिसका भी आनंद जी बता रहे थे, कल भी वार्ताएं होंगी, लेकिन भारत की जो रूस के साथ, चीन के साथ और वियतनाम जैसे देशों के साथ जो वार्ता हो चुकी है, वो मुझे लगता है अपने आप में भारत का भी एक जो बायलैटरल जो रिलेशनशिप्स हैं भारत की, उनको सुदृढ़ करने में काफी योगदान देंगी। और आगे जैसे जैसे ये संबंध और गहरे होंगे, हम ऐसी द्विपक्षीय वार्ताओं को और प्लेटफॉर्म्स में भी होते हुए देखेंगे।
1: अम्बेसडर अशोक सज्जनहार और डॉक्टर हर्ष पंत, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए।
4: सुर्खियों में
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। मुख्य समाचार, भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से शुरू। सम्मेलन के पहले दिन नई दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी मिली। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और भारत अफगानिस्तान T20 क्रिकेट मैच के कारण दिल्ली में कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक में शेख सराय में क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला बनाने को मंजूरी दी गई। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों के संघ के 48वें वार्षिक सम्मेलन में कहा, महिलाओं का स्वास्थ्य भारत की मानव पूंजी और भविष्य में निवेश है। और दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं कल सुबह 6 बजे से शुरू होंगी। अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
6: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि नाविक वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, फिर भी कठिन समय में उन्हें समय पर सहायता नहीं मिल पाती है।
6: क्या हम सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
5: ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती रहती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र

0: तीन पक्षों के समूह ट्रॉयका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
1: ग्लोबल गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
0: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। शिखर सम्मेलन के पहले दिन अपनाए गए नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए सभी तरह के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई और आतंकियों की सीमा पार आवाजाही, वित्त पोषण तथा सुरक्षित पनाह पर रोक लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC ने राजधानी के सौंदर्यीकरण और सजावट के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। परिषद ने प्रमुख गोल चक्करों, होटलों और सार्वजनिक स्थलों को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया है। सजावटी रोशनी से NDMC क्षेत्र के प्रमुख स्थान जगमगा रहे हैं, जबकि सजे हुए उद्यान और हरियाली राजधानी की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। इन प्रयासों से नई दिल्ली को स्वच्छ, हरा भरा और आकर्षक रूप दिया गया है, ताकि ब्रिक्स सम्मेलन में विदेशी मेहमानों के सामने राजधानी की बेहतर छवि प्रस्तुत की जा सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हों, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और कल अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले भारत अफगानिस्तान T20 क्रिकेट मैच के मद्देनजर दिल्ली में कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। ब्रिक्स सम्मेलन के कारण आज रात 9 बजे तक 22 स्थानों पर यातायात में बदलाव और 35 से अधिक मार्गों पर नियंत्रित आवागमन रहेगा। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड सहित आसपास के अन्य प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों से यात्रा के लिए पहले अतिरिक्त समय लेकर चलने और सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। साथ ही लोगों से परिवर्तित मार्गों और यातायात संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन और आवश्यक सेवा वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर रास्ता दिया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं बारिश, वाहनों के खराब होने और गुरुपर्व के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण भी कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित है। मोतीबाग से एम्स के बीच दोनों कैरिजवे, सराय काले खान स्थित बाबा बंदा सिंह बहादुर सेतु, वंदे मातरम मार्ग और मुख्य रोहतक रोड पर यातायात प्रभावित हुआ है। भारत अफगानिस्तान मैच कल शाम 7 बजे से रात 11:30 बजे तक होगा। दर्शकों की आवाजाही के कारण बहादुर शाह जफर मार्ग, DDU मार्ग और JLN मार्ग पर आवश्यकता के अनुसार यातायात प्रतिबंधित और मार्ग परिवर्तित किए जा सकते हैं। दर्शकों को उनके प्रवेश द्वार के अनुसार निर्धारित मार्गों से स्टेडियम पहुंचने की सलाह दी गई है। माता सुंदरी रोड, राजघाट पावर हाउस रोड और वेलोड्रम रोड पर निःशुल्क पार्किंग और पार्क एंड राइड सुविधा उपलब्ध रहेगी, जबकि स्टेडियम के आसपास सामान्य पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। यातायात पुलिस ने लोगों से प्रभावित मार्गों से बचने, वैकल्पिक मार्ग अपनाने, यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलने और निर्धारित स्थानों पर ही वाहन पार्क करने की अपील की है। लोगों से यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करने और उनका सहयोग करने को कहा गया है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि 18वें ब्रिक्स सम्मेलन के कारण यातायात में संभावित रुकावटों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए कल सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं 6:00 बजे से शुरू हो जाएंगी। इससे परीक्षा देने वाले छात्रों और आम लोगों को

0: समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होगी। दिल्ली मेट्रो ने यह भी बताया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो नवीनतम जानकारी के लिए दिल्ली मेट्रो की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखें। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की बेटी जहरा पेजेशकियन ने आज प्रधानमंत्री संग्रहालय और ब्रिक्स बाजार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक विरासत और सांस्कृतिक धरोहर को करीब से देखा। इस संग्रहालय में भारत के प्रधानमंत्रियों और देश पर उनके प्रभाव की झलक मिलती है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज नई दिल्ली में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ICAI के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। देश भर में 23 केंद्रों पर आयोजित इस समारोह में श्री मेघवाल ने नए योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने देश में किए जा रहे कानूनी सुधारों और शासन व्यवस्था में इनके महत्व का उल्लेख किया।
1: इसमें हमने 1725 ऐसे पुराने कानून जिसकी अब आवश्यकता नहीं उनको हमने समाप्त किया। 40,000 से अधिक जो कंप्लायंस बर्डन है उनको कम किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस देने का काम किया। इसी रिफॉर्म जर्नी को आगे बढ़ाते हुए जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस एक्ट 2026 के माध्यम से 79 सेंट्रल एक्ट्स की 784 प्रोविजंस में बदलाव किया गया। 717 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया। हमारा अप्रोच स्पष्ट है, छोटी प्रोसीजरल गलती के लिए अननेसेसरी क्रिमिनलाइजेशन नहीं बल्कि प्रोपोर्शनेट रेगुलेशन और वॉलंटरी कंप्लायंस को बढ़ावा देना ये हमारी अप्रोच का हिस्सा है।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई आज वित्त समिति की बैठक में शेख सराय में क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला बनाने को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को इसका निर्माण कार्य 2 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य दिया है। लगभग 6,300 वर्ग मीटर भूखंड पर बनने वाली इस प्रयोगशाला का कुल निर्मित क्षेत्र 18,300 वर्ग मीटर होगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: इस परियोजना के लिए 151,81,00,000 रुपए बजट को भी स्वीकृति दी गई है। नई प्रयोगशाला से दक्षिण पूर्व और मध्य दिल्ली के जिलों को विशेष लाभ मिलेगा। यह रोहिणी स्थित मौजूदा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को भी अतिरिक्त वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराएगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि नई क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से गृह विभाग और दिल्ली पुलिस को नए आपराधिक कानूनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी। वहीं दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि नई क्षेत्रीय प्रयोगशाला से मामलों से जुड़े साक्ष्यों की जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम अधिक तेज और सुगम होगा, जिससे आपराधिक मामलों के समय पर निपटारे में मदद मिलेगी। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर धोखाधड़ी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सस्ते दाम पर वॉशिंग मशीन के पुर्जे देने के नाम पर गुजरात के एक व्यक्ति से 1,50,000 रुपए ठगे थे। वहीं दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5,100 क्वार्टर अवैध शराब और अपराध में इस्तेमाल होने वाले एक पिकअप तथा स्कूटी भी बरामद की है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने एक अन्य अवैध मामले में 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों के संघ AOGD के 48वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य भारत की मानव पूंजी और भविष्य में निवेश है। श्री संधू ने मातृ स्वास्थ्य देखभाल, समय पर जांच, कैंसर की रोकथाम और जीवन के हर चरण में समग्र स्वास्थ्य पर ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए चिकित्सा क्षेत्र से AI, डिजिटल स्वास्थ्य और अनुसंधान का उपयोग बढ़ाने का आह्वान भी किया। दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज जनता दरबार में दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी। उन्होंने नागरिकों की समस्याओं, जरूरतों और सुझावों पर संबंधित अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ विचार कर समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि जन प्रतिनिधि का दायित्व जनता की समस्याएं सुनना और उनके समाधान के लिए तत्परता से कदम उठाना है। इसके अलावा श्री सिंह ने आज बाजीतपुर ठाकरान स्थित दादा मालदेव मंदिर परिसर में ग्रामीणों से बातचीत की। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के लिए रवाना हुए, जहां वो कल

0: शुरू हो रहे 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होंगे। 18 सितंबर तक चलने वाले सम्मेलन का मुख्य विषय बदलती विश्व व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों और सिख समुदाय को लोगों की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि गुरबाणी हमें सेवा, सिमरन, समानता और सर्वदा भला का मार्ग दिखाती है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं पीढ़ियों से समाज को प्रेम, करुणा और भाईचारे से जोड़ती आई हैं। राजधानी दिल्ली में आज कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। विभाग ने बताया है कि कल राजधानी में बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से शुरू। सम्मेलन के पहले दिन नई दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी मिली। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और भारत अफगानिस्तान T20 क्रिकेट मैच के कारण दिल्ली में कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक में शेखसराय में क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला बनाने को मंजूरी दी गई और दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं कल सुबह 6 बजे से शुरू होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती रहती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
2: ग्लोबल गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
1: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण और गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। ब्रिक्स देशों ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए सभी तरह के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहले दिन सत्र समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिक्स नेताओं ने पौधारोपण किया। उन्होंने इंडिया इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के लिए भारत मंडपम पहुंचने पर ब्रिक्स सदस्य देशों के नेताओं का स्वागत किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और

0: अस्थि की रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। श्री नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव की मौजूदगी में 10 क्रिटिकल केयर ब्लॉक तथा 12 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से राज्य में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी और बीमारियों के खतरे का समय रहते पता लगाने की क्षमता मजबूत होगी। भारत ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दुनिया की सबसे लंबी स्टील स्लैग सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1.85 किलोमीटर लंबी ये सड़क स्वदेशी तकनीक के व्यापक प्रयोग को दिखाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये पहल कचरे से संपदा बनाने और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की प्राथमिकताओं के अनुरूप है। पाकिस्तान के एक मानवाधिकार संगठन ने अधिकारियों पर बलूचिस्तान में सुनियोजित सैन्यकरण और दमनकारी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि हिंसा और विस्थापन नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। और भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. BRICS nations have expressed concern about ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. In the New Delhi Declaration adopted on the first day of the BRICS Summit 2026, the leaders advocated for a multilateral approach that respects diverse national viewpoints and positions on crucial global issues. These issues include sustainable development, eradication of hunger and poverty, and contributing to the global response to climate change. In his closing remarks, the Prime Minister noted that the New Delhi Declaration adopted today provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। Representation, responsiveness और rule making तीनों में सुधार आवश्यक है। आज अडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: BRICS leaders condemned the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22 April last year in the strongest terms. They reaffirmed commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations. Earlier, the BRICS Summit 2026 kicked off at Bharat Mandapam in New Delhi this afternoon. Prime Minister Narendra Modi, in his opening remarks, proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the grouping's institutional momentum is maintained despite the changing chairship every year. The Prime Minister said the mechanism would enable follow-up of all initiatives and outcomes through the Troika. The Prime Minister said BRICS countries will have to work on a new and ambitious agenda for the next 20 years. The Prime Minister also proposed to establish a seafarers' emergency support network to connect the maritime authorities and diplomatic missions of relevant countries to facilitate assistance during difficult times. Prime Minister Modi said the time has come to translate the unity and consensus among BRICS countries into concrete outcomes on the global stage. Mr. Modi said resilience, innovation, cooperation and sustainability have been India's foremost priorities as chair. Guided by these priorities, India has laid special emphasis on connecting BRICS cooperation directly with the common people. On the issue of reform in the United Nations Security Council, the Prime Minister emphasized that it can no longer be postponed. External Affairs Ministry today said that the consensus on the New Delhi Declaration at the BRICS summit was reached due to the year-long engagement at various levels during India's BRICS chairship. Addressing the media this evening at Bharat Mandapam in New Delhi, Secretary ER Sudhakar Dalela said adoption of the New Delhi Declaration was among the defining outcomes of India's chairship. He added that India's chairship has been people-centric. Mr. Dalela thanked BRICS nations for their collaboration during India's chairship. Prime Minister Narendra Modi and President of China Xi Jinping today reaffirmed that India and China should take a strategic and long-term perspective of their ties and differences should not become disputes.

जी आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:11 हो गए हैं। समय है हिंदुस्तानी संगीत के रागों पर आधारित फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा का। मधुरिमा में आज की शाम आपके साथ मैं हूँ रेशमा, और आइए बात करते हैं आज राग सोहनी की और सुनते हैं उसी की झलक लिए ये पहला गीत फिल्म संगीत सम्राट तानसेन से मुकेश की आवाज़ में, संगीत SN त्रिपाठी का।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो एचआईवी से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
8: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। 8:19 हो गए हैं और FM गोल्ड पर मधुरिमा में हम बात कर रहे हैं राग सोहनी की, जो कि मारवा परिवार से संबंधित है। यानी राग सोहनी, पूरिया और मारवा को एक ही परिवार के तीन समूह कहा जा सकता है। इन तीनों रागों के आरोह और अवरोह एक जैसे हैं, लेकिन प्रस्तुतिकरण अलग अलग है। राग सोहनी का स्वभाव बहुत चंचल है। तो आइए फिलहाल सुनते हैं 1961 में आई फिल्म करोड़पति से ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: जी हाँ, FM गोल्ड पर मधुरिमा कार्यक्रम है ये, और बात हो रही है राग सोहनी की, जो मारवा थाट जन्य राग माना गया है। वादी स्वर है इसका धैवत और समवादी कोमल है। इसमें ऋषभ कोमल और मध्यम तीव्र लगता है और पंचम वर्ज्य रहता है, इसीलिए इसकी जाति मानी गई है औडव शाडव। इसका गायन वादन समय रात्रि का अंतिम प्रहर। तो आइए, राग सोहनी पर ही आधारित ये अगला गीत सुनते हैं, फिल्म मुसाफिर खाना से मोहम्मद रफ़ी और निर्मला देवी की आवाज़ में।

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब,

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का यह नया रंग जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। जूनियर महिला एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बनाई, सेमीफाइनल में साउथ कोरिया को हराया। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स खिताबी मुकाबले में बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वरेव होंगे आमने सामने। ब्रिक्स ने खेल प्रौद्योगिकी पर कार्य समूह के गठन के भारत के प्रस्ताव का किया समर्थन। ईशा रानी बरुआ ने वियतनाम ओपन के फाइनल में जगह बनाई, तन्वी और प्रणॉय प्रतियोगिता से बाहर। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में कल भारत का सामना श्रीलंका से। भारत की नजरें रिकॉर्ड 8वें खिताब पर होंगी। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला कल नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हॉकी से, जहां भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में मौजूदा चैंपियन भारत ने जूनियर हॉकी महिला एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए साउथ कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में भारत का सामना मेजबान चीन से होगा। सुनते हैं इस मुकाबले पर एक खास रिपोर्ट।
1: सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम का दमदार प्रदर्शन रहा। भारतीय टीम ने नियंत्रण शुरुआत की और धीरे धीरे बढ़त बनाई। शुरुआती क्वार्टर के 13वें मिनट में मधु सिद्धार ने बेहतरीन अटैकिंग मूव को पूरा करते हुए भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में भारत को 17वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला और सुप्रिया ने इस मौके को भुनाने में कोई गलती नहीं की। उन्होंने कोरियाई डिफेंस को छकाते हुए सटीक ड्रैग फ्लिक से बढ़त को 2 गुना कर दिया। भारत ने 21वें मिनट में मैच का तीसरा गोल किया। सुखवीर कौर ने शानदार फिनिशिंग करते हुए स्कोर 3-0 कर दिया। साउथ कोरिया ने हाफ टाइम से पहले कुछ मौके बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत का डिफेंस मजबूती से डटा रहा और हाफ टाइम तक 3 गोल की बढ़त बनाए रखी। 33वें मिनट में भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसमें सुप्रिया ने ड्रैग फ्लिक करते हुए मैच में अपना दूसरा और भारत की बढ़त को 4 गुना कर दिया। 41वें मिनट में साउथ कोरिया ने प्यूरी जियोंग की गोल की मदद से मुकाबले को अपना पहला गोल किया। हालांकि भारत ने खेल की लय को बदलने नहीं दिया। 56वें मिनट में सुप्रिया ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए एक और गोल भारत के नाम करते हुए बढ़त को 5-0 कर दिया। ड्रैग फ्लिक स्पेशलिस्ट ने तीसरी बार गोल करके अपनी हैट्रिक पूरी की और भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: सेमीफाइनल में खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा और इस मुकाबले पर विस्तृत जानकारी लेकर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, भारत ने सेमीफाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन कर फाइनल के लिए अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत डिफेंडिंग चैंपियन भी है।

0: फाइनल में मेजबान टीम से कितनी चुनौती मिलने की उम्मीद है?
1: प्रशांत, अगर चुनौती की बात करें तो चीन की टीम का प्रदर्शन भी काफी शानदार रहा है
0: जी।
1: आज हुए मुकाबले में चीन ने जापान को 6-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। हालांकि इससे पहले भारत ने साउथ कोरिया को हराकर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया था। अगर इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो इस संस्करण में ये जो मुकाबला हुआ था
0: जी,
1: भारत और चीन के बीच, वो गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ था। भारतीय टीम का यह अभियान बहुत शानदार रहा है, चाहे वो साउथ कोरिया को 2 बार इसी संस्करण में हराना हो या पाकिस्तान को 19-0 के बड़े अंतर से शिकस्त देना हो। भारत ने अपने आप को एक बार फिर खिताब के प्रबल दावेदार के रूप में दिखाया है और दोनों ही टीमें इस संस्करण में अब तक अजेय रही हैं।
0: बिल्कुल, दोनों ही टीमें इस संस्करण में अजेय रही है। ये तो हुई विशेष महिला टीम की बात, और पुरुष एशिया कप भी चल रहा है, क्या है भारतीय टीम का प्रदर्शन वहां पर?
1: पुरुष टीम की बात करें प्रशांत, तो भारत ने अब तक इस संस्करण में कोई भी मुकाबला नहीं हारा है
0: जी।
1: भारत ने मलेशिया को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बनाई है और अब भारत का मुकाबला फाइनल में कोरिया से होगा। अगर कोरिया की बात करें तो पाकिस्तान को 4-1 से सेमीफाइनल में उन्होंने शिकस्त दी थी। इससे पहले जापान को कड़े मुकाबले में 3-2 से, चीनी ताइपे को एक तरफा मुकाबला में 16-0 से और शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबले जीते थे। भारत के खिलाफ हुए मुकाबले में उनको 7-3 से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। तो भारतीय टीम फुल कॉन्फिडेंस से ये मुकाबला जीतने के लिए तैयार है और अभी तक भारतीय टीम ने 5 खिताब अपने नाम किए हैं
0: जी। 5 खिताब अपने नाम किए, और जितने भी हॉकी प्रशंसक होंगे उन्हें दोनों ही वर्ग में दोनों ही तरफ से दोनों फाइनल मुकाबले जीतने की उम्मीद होगी। और अब सीधे चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज हुए रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबलों में बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। बेन शेल्टन ने ये जीत अपनी माँ को समर्पित किया।
2: Yeah, it's a lot of emotion. My dad, my mom have sacrificed a lot for me to be in this position today. My dad lost his mom earlier this year, and she's the reason that he was able to play tennis. Without her, there's no Ben Shelton standing here today. So this one is for her, and I'm gonna need you guys on Sunday to bring the energy. I'm going for it here. I'm gonna leave it all on the court. I hope you guys come and back me. Let's do this for the USA.
0: अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने भी अपना सेमीफाइनल मुकाबला जीत लिया। ये सुनते हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपने मुकाबले को जीतने के बाद क्या कुछ कहा।
2: I think it's incredibly special, especially these two guys, Francis and Ben. They're the crowd favorites here in New York. Everybody loves them, and I think tonight is going to be an absolutely epic semifinal, and I'm looking forward to watching it. And hopefully I can not make the American dream come true on Sunday.
0: विशेष, दोनों ही खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, फाइनल की तस्वीर जो है वो तय हो चुकी है। तो कैसा रहा सेमीफाइनल का मुकाबला दोनों ही खिलाड़ियों के बीच?
1: प्रशांत, अगर आज के पहले सेमीफाइनल मुकाबले की बात करें तो ज्वेरेव ने कैरेन कचनोव को एक तरफा मुकाबले में 6-3, 7-6, 7-6 से हराया। वहीं दूसरे में बेन शेल्टन ने अपने ही देश के फ्रांसिस टियाफो को रोमांचक मुकाबले में पहला सेट 4-6 से हारने के बाद 6-3, 6-3, 7-5 से हराया और अपने पहले ग्रैंड स्लैम फाइनल में भी जगह बनाई।
0: ये दोनों खिलाड़ियों के बीच ये पहला ग्रैंड स्लैम मुकाबला भी होगा, तो किस तरह का फाइनल होने की उम्मीद है? ऐसे में जब बेन शेल्टन ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, अल्कराज को हराया, अलेक्जेंडर ज्वेरेव भी लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे टूर्नामेंट्स में, तो कैसा फाइनल देखने को मिलेगा? विशेष
1: प्रशांत, अभी तक इन खिलाड़ियों की भिड़ंत जो है आपस में 5 बार हुई है, जहां 5ों बार ज्वेरेव ने बाजी मारी है
0: जी।
1: पहला ग्रैंड स्लैम मुकाबला दोनों के बीच है और ये पहला फाइनल भी दोनों के बीच है ग्रैंड स्लैम का, तो काफी प्रेशर है दोनों खिलाड़ियों पर। शेल्टन का यह पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल है, हालांकि इस साल हुए कनाडा ओपन ATP टूर टूर्नामेंट में वो विजेता रहे थे, लेकिन ज्वेरेव का यह 6वां ग्रैंड स्लैम फाइनल है। ज्वेरेव ने इस साल फ्रेंच ओपन का खिताब भी जीता। तो प्रशांत, हेड टू हेड की भिड़ंत से लेकर ग्रैंड स्लैम के अनुभव तक ज्वेरेव का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन होम क्राउड के बीच शेल्टन से भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी
0: जी। शेल्टन से भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। ये तो विशेष हुई बात पुरुष सिंगल्स और बाकी वर्ग की बात, और कल महिला सिंगल्स का भी मुकाबला जो हमें सेमीफाइनल देखने को मिला, क्या कुछ रहेगा खिताबी मुकाबले का हाल कल?
1: रायबकीना और सबालिंका दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी हैं टेनिस की प्रशांत, और मुकाबले में अगर जो मुकाबले की बात करें तो काफी रोमांचक रहने की उम्मीद है। रायबकीना अब तक 3 ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंची हैं और उन्होंने 2 जीते हैं, तो उनका विनिंग रेशियो काफी शानदार है। वहीं सबालिंका जो है वो अपना 9वां ग्रैंड स्लैम फाइनल खेलेंगी और अब तक वे 4 जीत चुकी हैं। दोनों ही खिलाड़ी पूरी मेहनत से ग्रैंड स्लैम टाइटल के लिए चुनौती पेश करती नजर आएंगी और अब तक ग्रैंड स्लैम फाइनल में दोनों 1-1 की बराबरी पर हैं।
0: बिल्कुल, कल रोमांचक फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा और टेनिस प्रशंसकों की निगाहें होंगी इन मुकाबलों पर और देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा खिलाड़ी अमरीकी ओपन का खिताब अपने नाम करते हैं। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के पहले दिन सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण थीम वाली विस्तृत घोषणा में ब्रिक्स खेल कार्य समूह की प्रगति की भी सराहना की गई। इस घोषणा पत्र में खेल सामाजिक विकास, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने तथा स्वस्थ और सक्रिय समाज के निर्माण का प्रभावी माध्यम है। इसमें ब्रिक्स खेल कार्य समूह की प्रगति की सराहना करते हुए शारीरिक संस्कृति और खेल के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन का भी उल्लेख किया गया। इस घोषणा पत्र में खेलों को सामाजिक विकास का माध्यम मानते हुए सम्मेलन ने भारत की 2 प्रमुख पहलों का समर्थन किया, जिसमें खेल प्रौद्योगिकी पर कार्य समूह के गठन और सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए खेल सामग्री विनिर्माण सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव शामिल है। भारत की अध्यक्षता में पिछले महीने विशाखापट्टनम में हुई ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 3 प्रमुख पहलों का उल्लेख किया था। इनमें खेल प्रौद्योगिकी पर कार्य समूह और खेल सामग्री निर्माताओं के सम्मेलन की पहल भी शामिल थी। और अब बात बैडमिंटन की। ईशारानी बरुआ ने वियतनाम ओपन सुपर 100 टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में ईशारानी ने अपने ही देश की रक्षिता श्री रामराज को 21-10, 21-18 से हराया। उधर तन्वी शर्मा को एस विति दशरथ ने 21-19, 22-20 से पराजित किया। फाइनल में ईशारानी का मुकाबला एस विति दशरथ से होगा। उधर पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में एच एस प्रणॉय टी जेसन से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। जेसन ने प्रणॉय को 21-13, 21-8 से हराया। और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में भारत का सामना कल श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम एशिया कप 2024 के फाइनल में श्रीलंका से मिली हार का हिसाब चुकता करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। सेमीफाइनल में कल श्रीलंका ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया था। विशेष, ये टूर्नामेंट अपने अंतिम पड़ाव पर है। भारत एशिया कप 2024 का फाइनल हार चुका था श्रीलंका से, तो अब जो दोनों टीमें हैं किस तरह का प्रदर्शन कल करना चाहेगी?
1: प्रशांत, भारतीय टीम का जो प्रदर्शन है इस टूर्नामेंट में वो कमाल कर रहा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम इंडिया ने बिना कोई मैच गंवाए फाइनल तक का सफर तय किया है। सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को 40 रनों से हराया था। बल्लेबाजी में शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना तो कमाल की फॉर्म में है, लेकिन हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष के बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं देखने को मिला है अब तक। गेंदबाजी में श्रीचरणी, दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, इनकी तिकड़ी जो है वो असरदार साबित हुई है। वहीं तेज गेंदबाजी में क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा ने भी बल्लेबाजों को खासा तंग किया है। भारतीय टीम इससे पहले एशिया कप के 7 बार इस खिताब को अपने नाम कर चुकी है। हरमनप्रीत एंड कंपनी की निगाहें रविवार को 8वीं बार इस ट्रॉफी को जीतने पर होंगी। दूसरी ओर श्रीलंका ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को धूल चटाते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया है। चमारी अटापट्टू की अगुवाई में टीम अपने खिताब का बचाव करने से सिर्फ 1 कदम दूर है। प्रशांत, अटापट्टू का प्रदर्शन बल्ले और गेंद दोनों से दमदार रहा है। वहीं हर्षिता समर विक्रमा भी अच्छी लय में दिखाई दी है। गेंदबाजी में चमुदी प्रबोधा लगातार विकेट निकालने में सफल रही है।
0: जी, कुछ प्रोमिनेंट खिलाड़ियों का आपने बताया जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, तो खिताबी मुकाबले से पहले कल किन खिलाड़ियों पर नजरें होंगी जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे अपनी अपनी टीमों के लिए?
1: अगर भारत की बात करें प्रशांत, तो भारत अब तक अपनी गेंदबाजी पर ज्यादा निर्भर दिखाई दी है। नंदिनी शर्मा, श्रीचरणी, प्रेमा रावत ने काफी प्रभावित किया है गेंदबाजी से, और दीप्ति शर्मा भारत के लिए अभी हाईएस्ट विकेट टेकर है, जिन्होंने 4 मुकाबलों में 11 विकेट लिए हैं और सामने वाले बल्लेबाजों को बैकफुट पर ढकेलने का मादा रखती हैं। और बल्लेबाजी की अगर बात करें तो मिडिल ऑर्डर हमारा लड़खड़ाता नजर आया है। लोअर मिडिल ऑर्डर में भी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दी है। सलामी बल्लेबाजों से काफी उम्मीद होगी, और वहीं श्रीलंका की ओर से चमारी अटापट्टू और समर विक्रमा से काफी उम्मीदें होंगी।
0: जी, काफी उम्मीदें होंगी। और श्रोता, आपको बता दें कि भारतीय टीम का रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ T20 फॉर्मेट में दमदार रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 31 मुकाबले खेले गए, जिसमें 25 मैचों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। उधर भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला कल नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, दूसरा मुकाबला 15 और तीसरा

0: 17 सितंबर को दिल्ली में ही खेला जाएगा। विशेष एशियन गेम्स दस्तक देने को, और ऐसे में ये श्रृंखला भारतीय टीम के लिए कितनी अहम होगी?
1: जी काफ़ी अहम होगी प्रशांत, क्योंकि एशियन गेम्स से पहले श्रृंखला वार्मअप की तरह काम करेगी और भारतीय खिलाड़ियों को अच्छा अनुभव मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन और तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज हैं टीम में, वरुण चक्रवर्ती, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई जैसे गेंदबाज, जिनको अनुभव की अभी ज़रूरत है और शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है उन सभी से।
0: बिल्कुल। और अब बात तीरंदाजी पर। आर्चरी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण हैदराबाद में 8 से 18 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। भारत के शीर्ष 36 तीरंदाज 10 अलग अलग देशों के 12 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करेंगे। उधर बेंगलुरु में ग्लोबल चेस लीग के चौथे संस्करण में शीर्ष खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जावखीर सिंदारोव की लगातार 3 जीत का सिलसिला रोक दिया। दूसरी ओर भारतीय ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती ने डैनियल डुब्रोव को एक रोमांचक मुकाबले में हराया। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपने सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों का को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत वांछित अमृतपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराया और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरिना सबालिंका का सामना एलिना रिबाकिना से। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
3: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्णयों और उनके परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। ब्रिक्स के ग्लोबल वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
3: गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड अब प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म अब पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10

0: प्रपोजल्स तैयार करें।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
0: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
0: क्या हम सी फेरर इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं।
0: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है।
1: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकताओं पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए।
0: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति भारत की विभिन्न स्तरों पर वर्षों से चले सहयोग के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक शासन संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और आज की वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
2: मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
3: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
1: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो।
4: ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति, सुरक्षा और स्थिरता का रास्ता तलाशने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने का भी आह्वान किया। उन्होंने सभी पक्षों से गाजा पट्टी में युद्ध विराम और मानवीय सहायता की पूर्ण तथा निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की। ब्रिक्स

0: ने दोहराया कि इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान केवल बातचीत से ही संभव है। आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई भी रूप पूरी तरह अनुचित है। ब्रिक्स देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पुष्टि की कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ आबी अहमद अली के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से चर्चा की। इसके बाद श्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक में श्री मोदी ने भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वियतनाम का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को दोहराया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच दक्षिण दक्षिण सहयोग पर सार्थक बातचीत हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ कुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया है। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान व निकोबार में गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहने के आसार हैं। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल आज रात एलिना रायबाकिना और आर्यना सबालिंका के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में एलिना ने कोको गॉफ को और आर्यना ने जेसिक

0: पेगुला को हराया था। पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में बेन शेल्टन ने फ्रांसिस टियाफो को और अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने करेन खचनोव को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरिना सबालेंका का सामना एलिना रायबाकिना से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. BRICS nations adopt New Delhi Declaration 2026, reaffirming commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation. Declaration calls for economic and developmental cooperation among member states, urges dialogue and diplomacy to resolve disputes, particularly in West Asia. New Delhi says adoption of the declaration among defining outcomes of India's BRICS chairship. Prime Minister Narendra Modi says gap between decisions and outcomes must be bridged through partnership and collective action. Emphasizes BRICS moving forward with approach of taking everyone along. Prime Minister Modi and President of China Xi Jinping stress for strategic and long-term perspective of ties in their bilateral meeting, assert differences should not become disputes. Mr. Modi holds series of bilateral meetings with his counterparts from BRICS countries. CBI secures extradition of red notice fugitive Amritpal Singh from Moldova, and in US Open, defending champion Arina Sabalenka to take on Elena Rybakina in women's singles title clash tonight. The BRICS nations adopted the New Delhi Declaration on the first day of the summit at Bharat Mandapam in New Delhi today. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. It highlighted the need to tackle hunger and poverty and strengthen the global response to climate change. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। Representation, responsiveness और rule making तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: Here is more from our correspondent.
3: BRICS member countries expressed deep concern over continued escalation of tensions in West Asia and called for exercising maximum restraint as well as avoiding actions that could further aggravate the situation. They urged to ensure protection of civilians and civilian infrastructure in accordance with purposes and principles of the Charter of the United Nations. BRICS members further expressed serious

0: नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। संस्कृति को अगर किसी एक शब्द में समझना हो तो संभवतः वो शब्द होगा जीवन। हम किन परंपराओं को सजोते हैं, किन नदियों के किनारे अपनी स्मृतियां छोड़ते हैं, किन पर्वों में सामूहिक उल्लास के रंग भरते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या गाते हैं, किस भाषा और बोली में अपनी पीड़ा दर्ज करते हैं, इन सब में हमारी संस्कृति सांस लेती है। और इसीलिए भाषा भी केवल संवाद का माध्यम नहीं है। भाषा में हमारी स्मृतियां हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी जीवन दृष्टि है। जरा सोचिए, हमारी दादी नानी की कही कोई पुरानी बात, गांव की कोई लोक कथा, किसी त्योहार का गीत, किसी रिश्ते को पुकारने का अपना अलग ढंग, क्या ये महज शब्द है? नहीं, इन शब्दों में एक पूरी जीवन पद्धति होती है। एक समाज, उसकी स्मृतियां, उसकी परंपराएं और उसकी संवेदनाएं। दरअसल भाषा और बोलियां संस्कृति की सबसे जीवंत आवाज हैं। हम जैसा जीते हैं वैसा ही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हमारे देश की खूबसूरती ही इसकी विविधता है। यहाँ भाषा बदलती है तो उसके साथ लोक बदलता है, लय बदलती है, संबोधन बदल जाते हैं, लेकिन भावनाओं की धड़कन वही रहती है। हिंदी की अपनी खूबसूरती भी इसी में है कि उसने इस विविधता से संवाद किया। अलग अलग भारतीय भाषाओं, बोलियों और लोक परंपराओं से शब्द और भाव ग्रहण किए, यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं से भी। इसीलिए हिंदी कोई बंद कमरा नहीं, बल्कि कई दिशाओं से आती हुई सांस्कृतिक हवाओं के लिए एक खुली खिड़की है। और जब कोई भी भाषा संस्कृति को अपने भीतर समेटती है तो वो सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं रहती, वो हमें अपने होने का अर्थ भी बताती है। भाषा से संस्कृति की ओर और संस्कृति से प्रकृति की ओर, अब एक ऐसी यात्रा जिसमें रास्ता केवल पैरों से नहीं स्मृतियों और संवेदनाओं से भी तय होता है। नर्मदा, जिसे भारत की जीवनदायिनी नदियों में से एक माना जाता है, जिसके तटों पर सभ्यताएं, लोक विश्वास और अनगिनत कथाएं आकार लेती रही हैं। विश्व नदी दिवस के उपलक्ष में सुनिए प्रख्यात चित्रकार, लेखक और नर्मदा प्रेमी स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़ के स्वरों में उनकी नर्मदा परिक्रमा के वृत्तांत का एक अंश, तीरे तीरे नर्मदा।
1: हम लोग नर्मदा पदयात्रा कर रहे थे और अमरकंटक जा रहे थे। छिनगांव का कुआं गांव के बाहर एक घाटी में था। मेरे साथी बड़े सवेरे वहां जाकर नहाए। मैं गया जरूर पर नहाया नहीं, ठंड के कारण हिम्मत ही न हुई। मन को समझाया, नहाऊंगा तो नर्मदा में, कुओं तालाबों पर नहीं। कह हंसा मोती चुगे, कह भूखे रही जाए। छिनगांव से बरछा, कच्ची धूल भरी सड़क से उतरने लगे तो नीचे दूर मैदान में से बहती हुई धूप नहाई नर्मदा दिखाई दी। अब प्रायः अमरकंटक तक नर्मदा

0: मैदान में से ही बहती है। पंचमनाथ पुजारी जब 48 बरस का था तभी पत्नी का देहांत हो गया था, अभी 70 का है और पूरी तरह से स्वस्थ है। कहता है, मैं बाहर भी हूं और भीतर भी हूं। अगर हम लोग भी बीच बीच में भीतर चले जाया करें और देखते रहें कि कहीं हमारी आत्मा को फफूंद तो नहीं लग गई तो कितना अच्छा हो। दूसरे दिन भी लगातार पानी बरसता रहा, हम कहीं जा नहीं सकते, लेकिन किसानों को कई दिनों से इस वर्षा की प्रतीक्षा थी। उनकी फसल सूख रही थी, उसे नया जीवन मिला। वैसे किसानों को इससे कहीं अधिक पानी की जरूरत थी। बादलों को आकाश से नीचे उतारने की विद्या केवल वनों को आती है और हम अपने अधिकांश वन काट चुके हैं। अब बादलों को आकाश की अटारी से नीचे धरती पर भला कौन उतारे। रात लुकामपुर में रहे। रात्रि के अंतिम प्रहर में ओस गिरनी शुरू हो गई थी। एक तो कड़ाके की ठंड, ऊपर से ओस की बुंदनियां, सवेरे घना कोहरा। कोहरे के छटने का काफी इंतजार किया लेकिन छटा नहीं तो कोहरे और ओस की फुहार में ही चल दिए। चलते चलते आसपास के सौंदर्य को मन में उतारता जाता, सोचता क्या इस सौंदर्य की गूंज अपनी कृतियों में पैदा कर सकूंगा, लेकिन इसकी चिंता अभी क्यों करूं, अभी तो इसका भरपूर आनंद लूं, अपने हृदय में उतार लूं और पकने के लिए वहीं छोड़ दूं। समय आने पर वह स्वयं बाहर आएगा, इसमें समय लगता है। अगर मैं कलाकार हूं तो मुझ में धैर्य होना चाहिए। दोपहर को खाना नहीं बनाते, लेकिन रामघाट के प्रपातों को देखकर लगा कि आज खाना यही बने। देर तक मैं उन प्रपातों के पास मड़राता रहा। शाम तक दूधी संगम पहुंच गए, लेकिन एक ग्रामीण ने कहा कि आप दूधी पार करके हर्रा जाइए, वहां कहीं न कहीं रहने की व्यवस्था हो जाएगी। आधी रात को आकाश में शरद पूर्णिमा का चंद्र था, चंदन का घाट और पूनों का चांद। अपनी नर्मदा परिक्रमा के दौरान मुझे कई पूर्णिमाएं देखने का अवसर मिला है और हर बार मैंने नई नई उपमाओं से चांद और चांदनी का वर्णन किया है। सवेरे आगे बढ़े, बसंतपुर और कंचनपुर होते हुए ठाड़ पातर पहुंचे। इस बार की यात्रा में एक सुखद परिवर्तन देखने मिला। अधिकांश गांव में प्राथमिक पाठशालाएं खुल गई हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। जहां भी शाला मिली हम वहां जरूर गए और शिक्षक से अनुमति लेकर मैं बच्चों को नर्मदा के बारे में बताता। अगर बच्चे जरा बड़े होते तो अपनी पुस्तक सौंदर्य की नदी नर्मदा में से उनके गांव से संबंधित अंश पढ़कर सुनाता। नर्मदा तट के कई गांवों में मैंने बच्चों के समक्ष रचना पाठ किया, उसी निष्ठा से जिस निष्ठा से नवंबर 2001 में भोपाल के भारत भवन में साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों के समक्ष किया था। ठाड़ पाथर की पाठशाला को देखते ही मेरी बांछें खिल गईं। प्यारे बच्चों, हर बच्चे को सबसे अधिक प्यार अपनी माँ से होता है, माँ के बिना वह रह नहीं सकता। इससे हुआ यह कि जो भी चीज हमें बहुत प्यारी होती है उसे हम माँ कहने लगे। जैसे हमारा देश, हम उसे भारत माता कहते हैं। इसी प्रकार यह जो नर्मदा बह रही है ना, वह हमें इतनी प्यारी लगती है कि हम उसे भी माँ कहते हैं, नर्मदा मैया। बच्चों, तुम कितने भाग्यवान हो कि नर्मदा की गोद में पल बढ़ रहे हो। पता नहीं बड़े होकर तुम इसी गांव में रहोगे या और कहीं जाओगे। जहां भी जाओ अपनी इस नदी को कभी मत भूलना। तुम जहां भी जाओगे इस नदी का एक अंश तुम्हारे साथ जाएगा।
1: ये थे चित्रकार, लेखक और नर्मदा प्रेमी स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़। स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी जबलपुर। देश के मध्य में नदी की धारा से अब चलते हैं पूर्वोत्तर की ओर, जहां संस्कृति केवल उत्सव नहीं समुदाय की सामूहिक स्मृति और प्रकृति के साथ उसके रिश्ते की अभिव्यक्ति है। मेघा

0: मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसने वाला गारो समुदाय सूर्य देवता को समर्पित जिस उल्लासपूर्ण नृत्य उत्सव के साथ अपनी सामुदायिक जीवन ऊर्जा को व्यक्त करता है वो है वांगला। और इसी वांगला के लोकरंग को समेटे है हमारी अगली प्रस्तुति, ये लघु रूपक आशीर्वाद मिसी साजोंग का।
1: हरे भरे पहाड़, बादलों से घिरा आसमान और इसके बीच गूंजती ढोल की सामूहिक थाप, ये है मेघालय का गारो समुदाय का वांगला। एक ऐसा लोक उत्सव जिसमें संगीत है, नृत्य है और प्रकृति के प्रति आभार की भावना भी।
2: भारत के पूर्वोत्तर की जनजातीय परंपराओं में गारो समुदाय की अपनी विशिष्ट पहचान है। गारो समुदाय मुख्य रूप से मेघालय में निवास करता है। हालांकि असम, त्रिपुरा और नागालैंड में भी इनकी बसावटें हैं।
1: वांगला फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला पारंपरिक उत्सव है। ये मूलतः गारो समुदाय के सूर्य देवता मिसी साजो के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि के उत्सव का अवसर है।
2: और इसकी सबसे खास पहचान है ढोल की सामूहिक थाप। शायद इसी वजह से वांगला को कहा जाता है 100 ढोलों का उत्सव।
1: इस जीवन परंपरा की खूबसूरत झलक इस साल दिल्ली में आयोजित नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट फेस्टिवल यानी नेस्ट फेस्ट 2026 में भी देखने को मिली।
2: लेकिन आखिर वांगला नृत्य की खासियत क्या है, इसकी प्रस्तुति में कौन सी लय और भाव छुपे हैं?
3: मेरा नाम अनालिशा है, मैं मेघालय से हूँ, गारो ट्राइब से। ये हमारा वांगला डांस जो है वो एक्चुअली हमारे एंसेस्टर्स ने शुरू करा था। जो ट्राइब है मेघालय की उसका एक गॉड है जो कि हम बोलते हैं मिसी साजो, जो कि सन के गॉड हैं। तो हम उनको हमारी अच्छी हार्वेस्ट को प्रेज करने के लिए या फिर वर्शिप करने के लिए हम ये वांगला डांस परफॉर्म करते हैं। 100 ड्रम्स वांगला ये एक फेस्टिवल है, इस पे हम वांगला परफॉर्म करते हैं। हमारा जो ड्रम्स होता है हम खुद ड्रम्स बजा के डांस करते हैं। जो लड़के लोग होते हैं वो ड्रम्स, हमारे ड्रम्स जो होते हैं उसको दामा बोलते हैं, लंबे ड्रम होते हैं, वो लड़के लोग डांस के टाइम पे उसको कैरी करते हैं और वो बजाते हैं उस टाइम पे, तो वही हमारा इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक हो जाता है।
1: पारंपरिक दामा ढोल की थाप पर जब कलाकार एक साथ कदम मिलाते हैं तो जैसे पूरी प्रस्तुति में एक लय सी दौड़ जाती है।
2: ढोल की यही धुन वांगला को गति देती है, 100 ढोलों के उत्सव की पहचान भी देती है।
1: वांगला की खूबसूरती सिर्फ इसके लय और कदमों में नहीं, इसके रंगों में भी दिखाई देती है। पारंपरिक वेशभूषा के रंग बिरंगे परिधान और आभूषण इस नृत्य को एक अलग विजुअल पहचान देते हैं।
2: आइए सुनते हैं अनालिशा को।
3: जब हम ये डांस परफॉर्म करते हैं तो यूजुअली हम लोग अपना ट्रेडिशनल अटायर पहनते हैं। ट्रेडिशनल अटायर जैसे कि हम लोग सर पे बांधने का कपड़ा पहनते हैं, रैप अराउंड स्कर्ट होता है। मैं अगर गारो में बोलना चाहूँ तो एक दोमे होता है, दोमे जो होता है वो हम सर पे लगाते हैं, वो मुर्गी के पंख होते हैं, और एक खोतप होता है वो हम सर पे बांधते हैं कपड़ा जैसा होता है। तो फिर हम इयररिंग्स भी पहनते हैं, उसको हम नाथापसी बोलते हैं, और नेकलेस भी पहनते हैं लंबे लंबे नेकलेस, उसको हम रुकतुक बोलते हैं या फिर रुकमाचू। और हम जो बेल्ट पहनते हैं उसको हम सिंखी बोलते हैं, और जो हम हाथ में जो चूड़ियां पहनते हैं उसको हम जक्सान बोलते हैं। हाँ, और जो हम नीचे जो रैप अराउंड स्कर्ट पहनते हैं उसको हम अकमंदा बोलते हैं।
2: इस पूरी प्रस्तुति का नेतृत्व करने वाला एक खास कलाकार भी होता है जिसे कहा जाता है मदग्रिक। आइए सुनते हैं रियोशन से।
4: तो जो मदग्रिक का जो ड्रेस है वो सबसे अलग होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा वॉरियर होता है जो अपने कम्युनिटी को लीड करेगा। तो उसका जो कपड़ा होता है उसका पंडरा होता है, जो वो गामचा की तरह उसको पहना जाता है उसको पंडरा कहते हैं, और इसको रुकमाचू कहते हैं, जो हम गले में पहनते हैं उसको रुकमाचू कहते हैं। और उसके बाद हम डोमे भी पहनते हैं। डोमे बेसिकली जो बर्ड है, वाइल्ड बर्ड्स, वाइल्ड बर्ड्स

0: से उनको बनाया जाता है।
1: तो ये है गारो समुदाय का वांगला, जहां ढोल की हर थाप में उत्सव की खुशी है, हर कदम में सामूहिकता की लय है और हर रंग में अपनी संस्कृति पर गर्व।
2: समय बदला, जीवन शैली बदली, लेकिन वांगला की थाप आज भी गूंज रही है अपनी परंपरा, अपनी पहचान और अपनी जड़ों को साथ लेकर। संस्कृति भारती के लिए मैं हूँ प्रांजल।
1: और मैं नेत्रा।
3: आशीर्वाद मिसी सालजोंग का। गारो समुदाय के वांगला नृत्य उत्सव पर केंद्रित लघु रूपक अभी आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। लोक से शास्त्र, परंपरा से पर्व और अब गणपति बप्पा की भक्ति और उत्सव धर्मता के रंग। भारत के अलग अलग हिस्सों में पर्वों की अपनी अपनी छवियां हैं, अपनी ध्वनियां हैं, अपनी परंपराएं हैं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तो जैसे सार्वजनिक जीवन और सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न हिस्सा ही है। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी पर ये विशेष प्रस्तुति गणपति बप्पा मोरे।

0: पुणे का गणेशोत्सव आज जिस तरह से पूरे जोश और उत्साह से मनाया जाता है, उसकी शुरुआत के पीछे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का बड़ा योगदान है। सन 1893 में लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप दिया। उस समय गणपति की पूजा ज्यादातर घरों में ही होती थी। लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव के बहाने लोगों को एक साथ लाया। गणेशोत्सव को उन्होंने अनंत चतुर्दशी तक मनाने की परंपरा को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे पूजा के साथ भजन, कीर्तन, भाषण और तरह तरह के कार्यक्रम भी होने लगे। उस समय देश अंग्रेजों के शासन में था, इसलिए इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों में जागरूकता और देश के लिए कुछ करने की भावना भी पैदा होने लगी। शुरुआत में सन 1893 में पुणे में 3 और मुंबई में 2 जगह सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाया गया था। धीरे धीरे यह उत्सव पुणे से निकलकर महाराष्ट्र के दूसरे शहरों तक और अब तो सारे देश में ही नहीं विदेश में भी पहुंच गया है। पुणे के गणेशोत्सव की एक खास पहचान है यहाँ के प्रतिष्ठा प्राप्त 5 गणेश, जिसे मराठी में मानाचे 5 गणपति कहते हैं। इनमें श्री कस्बा गणपति को पुणे का ग्राम दैवत माना जाता है।
1: नमस्ते, मैं नीलेश वकील कार्याध्यक्ष, मैं बात कर रहा हूँ पुणे के प्रथम नामांकित मंडल से, श्री कस्बा गणपति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल से। 1893 में यानी 1893 में ये गणेशोत्सव मंडल की हमारे स्थापना हुई और तब से ये उत्सव चलते आ रहा है। पहला मान विसर्जन का यानी पहला नंबर हमको दिया जाता है। गणेशोत्सव क्या है तो कलावंत, विचारवंत, बुद्धिवंत इन लोगों का उत्सव यानी गणेशोत्सव, यानी सब लोग आके ये उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। गणेशोत्सव की और एक खासियत है कि सामाजिक काम यानी सोशल वर्क। इसी तरह से हम लास्ट 25 साल से ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं।
0: इसके बाद

0: चामड़ी जोगेश्वरी, गुरुजी तालीम, तुलसीबाग और केसरीवाड़ा के गणपति आते हैं।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित तिलक, मैं अध्यक्ष हूँ केसरी गणेश उत्सव का। अलग अलग प्रोग्राम्स रखे जाते हैं केसरीवाड़ा में, कोई लेक्चर्स हो, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स रखे जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स रखी जाती है, ब्लड डोनेशन कैंप रखा जाता है। ऐसे पूरे 10 दिन कार्यक्रम केसरी गणेश उत्सव के माध्यम से किया जाता है। अगर कोई प्रेजेंट इशू हो तो उसके ऊपर भी लेक्चर्स ये केसरी गणेश उत्सव के माध्यम से हमेशा कंडक्ट किया जाता है।
0: गणपति की स्थापना से लेकर अनंत चतुर्दशी के विसर्जन तक पूरा शहर जैसे उत्सव में डूबा रहता है। कहीं ढोल ताशों की गूंज सुनाई देती है तो कहीं सुंदर सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाई देते हैं।

0: श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति के बारे में हेमंत रास ने बताते हैं।
1: जय गणेश। श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणेशोत्सव 135 साल यहाँ पुणे में विराजमान हो रहे हैं। अभी श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति का परमानेंट मंदिर हो गया है। यहाँ बहुत बड़ी भीड़ रहती है। उत्सव में 10 दिन में 2 करोड़ लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस साल हमने वृंदावन का प्रेम मंदिर यहाँ मंडप में बनाया है, जो दगड़ूशेठ हलवाई गणपति के दान पेटी में जो भाविक अपना योगदान देते हैं, उससे हम मानव सेवा का महामंदिर बनाते हैं।
0: भाऊ रंगारी गणेशोत्सव के अध्यक्ष संजीव जावड़े,
2: ये जो उत्सव जो चालू हुआ वो 1892 में भाऊ रंगारी इन्होंने चालू किया उनके साथीदारों के साथ, और उन्होंने एक मूर्ति बनाई जो राक्षस को वध करती है, और ये मूर्ति इको फ्रेंडली है। और 1892 से आज तक हमारे ट्रस्ट ने किसी के पास चंदा लिया नहीं है, हम गुलाल नहीं यूज करते। और तीसरी बात यानी हमारे जो उसमें म्यूजिक या गीत जो रहते वो भक्ति गीत रहते, और वो भी मॉडरेट लेवल नॉइस पे।
0: पुणे का गणेशोत्सव सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि लोगों को साथ लेने वाला, हमारी संस्कृति से जोड़ने वाला एक खास उत्सव बन गया है।
3: गणपति बप्पा मोरया, गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी पर ये विशेष प्रस्तुति आपने सुनी आकाशवाणी पुणे के सौजन्य से। उत्सव हमें जोड़ते हैं और शिक्षा हमें सशक्त बनाती है। साक्षरता केवल अक्षरों को पहचान लेने का नाम नहीं, ये अपने अधिकारों को समझने, अपने निर्णय स्वयं लेने और दुनिया को नए नजरिए से देखने की क्षमता भी है। शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में अब एक ऐसी कहानी जिसने साक्षरता की उपलब्धि को एक भौगोलिक पहचान से जोड़ दिया, मिजोरम की उस यात्रा की कहानी जिसने उसे साक्षरता के शिखर तक पहुंचाया। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साक्षरता का मिजो शिखर।
4: साक्षरता का अर्थ केवल वर्णमाला पहचानना या हस्ताक्षर करना नहीं है। वास्तविक साक्षरता वो है जो नागरिक को अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और समाज के प्रति उसके योगदान का एहसास भी कराए। हाँ, शुरुआत जरूर अक्षरों की पहचान से होती है।
5: सितंबर का ये समय देश भर में पठन पाठन और गुरु परंपरा के सामाजिक महत्व पर मंथन का अवसर देता है। ये समय हमें ये देखने का अवसर भी देता है कि नीतियाँ कागजों से उतरकर धरातल पर कितना प्रभाव छोड़ रही हैं।
4: इसी उजाले की मिसाल बनकर उभरा है भारत के पूर्वोत्तर का सुंदर राज्य मिजोरम। भारत सरकार के नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम ने 98.2% की कार्यात्मक साक्षरता हासिल करके देश में पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया है।
5: पर जानते हैं, दुर्गम पहाड़ियों और बीहड़ रास्तों के बीच बसी आबादी में इतना बड़ा बदलाव केवल कागजी दावों से नहीं होता। जब जमीन पर जाकर एक एक घर का सर्वे किया गया तो देखा गया कि आखिरी पड़ाव पर

0: लगभग 3000 ऐसे लोग बचे थे जो अक्षरों की दुनिया से दूर थे।
1: और यहाँ मिजोरम की सांस्कृतिक चेतना का एक सुंदर रूप देखने को मिलता है, जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं तलांगना। जैसे ही सर्वे के आंकड़े सामने आए तो बिना किसी आर्थिक लाभ की परवाह किए लोकल वॉलंटियर्स और युवा खुद आगे आ गए।
0: इन युवाओं ने गांव-गांव जाकर अपने से बड़ों को पढ़ाना शुरू किया और एक अनोखा कम्युनिटी बॉन्ड बना, यानी तलांगना। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आधुनिक कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल को समझने के लिए आइए सुनते हैं भारतीय जनसंचार संस्थान आइजोल परिसर के प्राध्यापक डॉक्टर वनलाल रोहता को।
2: मिजोरम में जीवन को करीब से देखने और समझने के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि मिजो समुदाय का पढ़ना पुस्तकों और शिक्षा के साथ ऐतिहासिक रूप से एक गहरा और विशिष्ट संबंध रहा है। जब ईसाई मिशनरी मिजोरम आए तो उन्होंने रोमन लिपि का प्रयोग करते हुए मिजो भाषा के लिखित रूप को विकसित और प्रचलित किया। मेरे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि पढ़ने की संस्कृति केवल उच्च शिक्षित लोगों तक सीमित नहीं थी, परिवारों में मनोरंजन और रुचि के लिए पढ़ने की भी एक मजबूत परंपरा रही है। सोशल मीडिया के दौर से पहले माता पिता द्वारा बच्चे को सोने से पहले कहानियां सुनना या सुनाना काफी आम बात थी। मेरा मानना है कि मिजोरम की उच्च साक्षरता दर की जड़ें समुदाय की मजबूत सहभागिता की संस्कृति में निहित है। मिजो दर्शन में निहित त्रावमेना अर्थात बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना और उनकी सहायता करना, उल्लास अर्थात समाज के सभी वर्गों के लिए आजीवन सीखने की अवधारणा, या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भी इसी सामुदायिक भावनाओं को महत्व दिया गया है। किसी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए 95% साक्षरता को मानक माना गया है। उल्लास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक मुझे इसमें स्वयं सेवी शिक्षकों की भूमिका लगती है। मिजोरम में इन स्वयं सेवी शिक्षकों में विद्यार्थी, शिक्षक, संसाधन व्यक्ति और क्लस्टर रिसोर्सेज सेंटर के समन्वयक शामिल रहे हैं। उन्होंने विद्यालयों, सामुदायिक भवनों, वायम पुस्तकालय और आवश्यक पढ़ने पर शिक्षार्थियों के घरों तक जाकर भी सीखने सिखाने की गतिविधियां संचालित की।
3: कम्युनिटी हॉल्स, वायम लाइब्रेरीज एंड वेयर नेसेसरी इवन इन लर्नर्स होम्स एज़ वेल टू देयर ओन सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट।
0: मिजोरम के पहाड़ों पर जब सुबह सुबह धुंध छटती है तो किसी घर के बरामदे में बैठा बुजुर्ग या स्कूल की ओर बढ़ती कोई छोटी बच्ची, दोनों के हाथों में एक चीज समान मिलती है, एक खुली हुई किताब। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
1: और मैं हूँ प्रांजल।
4: अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति साक्षरता का मिजो शिखर, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। विश्व के या देश के अलग अलग हिस्सों को हम समझना चाहें, उन्हें जानना चाहें, तो करनी पड़ती है यात्राएं। और इसी महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के प्रति दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। और पर्यटन की यही मानवीय भूमिका हमें एक दूसरे महत्वपूर्ण दिवस की ओर ले जाती है, विश्व शांति दिवस। हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 में इस दिवस की घोषणा की थी और 2001 में इसे अहिंसा और युद्ध विराम के दिवस के रूप में निर्धारित किया। 2026 में विश्व शांति दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन पीस फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीडे, यानी शांति में निवेश हर व्यक्ति के लिए, हर जगह, हर दिन। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने विचार, कर्म, कला और जीवन से भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और श्री नारायण गुरु, स्वाधीनता और राष्ट्र चेतना के पुरोधा दादा भाई नौरोजी और अमर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर एनी बेसेंट,

महान दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और संगीत की दुनिया की दो महान स्वर साधिकाएं एम एस सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर, जिनके सुरों ने भारतीय संगीत को देश और दुनिया तक का विस्तार दिया। इन सभी महान विभूतियों के कृतित्व और व्यक्तित्व को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक है। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। इन आपराधिक मामलों में दोहरे हत्याकांड, शस्त्र अधिनियम और एनडीपीसी अधिनियम के अंतर्गत

0: इस न्यूज बुलेटिन। नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं किरण शर्मा। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया। बहुपक्षवाद मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत चीन संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। विदेश मंत्रालय ने कहा, ब्रिक्स देशों ने व्यावहारिक और विकासोन्मुखी परिणामों के लिए मिलकर काम किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह को मोलदेवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आर्याना सबालेंका का सामना एलिना रिबाकिना से। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्णयों और उनके परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने दो स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
1: ग्लोबल गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्य प्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए।
1: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। इस पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति भारत की विभिन्न स्तरों पर वर्षों से चले सहयोग के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक शासन संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और आज की वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पुष्टि की कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानिनचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबुधाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ भी वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को दोहराया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह को मोलदेवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगौड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल आज देर रात एलिना रायबाकिना और आर्याना सवालेंका के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में एलिना ने कोको गॉफ को, वहीं आर्याना ने जेसिका पेगुला को हराया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया, बहुपक्षवाद मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह और गुरपाल सिंह को मोलदेवा से भारत प्रत्या

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

10:31 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हैं आप और प्रोग्राम हर सिंगार आपके साथ मैं विकास।

अज और पर्दे पर थी माला सिन्हा और साथ में उनके नजर आ रहे थे किशोर कुमार। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और एन दत्ता का इसमें संगीत रहा। गीत को गुनगुनाते गुनगुनाते पहले तो मैंने गौर नहीं किया, लेकिन अभी जब आप तक मैंने ये गीत पहुंचाया तो ना चाहते हुए भी मेरा जहन इस गीत के साथ एक और गीत को गुनगुनाने लगा और वो गीत था ठंडी हवाएं लहराती आएं। शायद बहुत से लोगों को कुछ कुछ ऐसा ही एहसास हुआ होगा। बहरहाल संगीत कई दफ़ा इस तरह के खूबसूरत से हादसे हमारे साथ करता रहता है। प्रोग्राम का अगला गीत 1959 का ही है और फिल्म का नाम है बरखा। जी ये गीत तो मुझे लगता है कि जेन जी भी जानते होंगे, क्योंकि आज जब रील्स का दौर चल पड़ा है तो कुछ गीत उस पुराने से खूबसूरत से संदूक से हम और आप अक्सर नए रूप में सुनते और देखते हैं। प्रोग्राम चल रहा है हर श्रृंगार, आपके साथ मैं विकास।

लता जी की आवाज़ थी और संगीत था चित्रगुप्त साहब का और गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। और जैसा कि मैंने कहा कि फिल्म का नाम था बरखा। अगला जो गीत आप तक पहुंचने वाला है, और देखिए कोइंसिडेंस कि अगला गीत भी राजेंद्र कृष्ण साहब का ही। और अचानक से मैंने जब इस गीत के क्रेडिट्स देखे तो पता चला कि अच्छा, ये गीत भी अचानक से राजेंद्र कृष्ण साहब का ही निकल पड़ा। राजेंद्र कृष्ण साहब के गीत मैंने देखा है कि हम में से बहुत से लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन जब बात क्रेडिट्स की आती है, इन नामों को याद रखने की आती है, हम उन नामों को ना भूल जाते हैं। सच कहूँ तो सही नहीं करते, लेकिन ठीक है, हर कोई उतना दीवाना शायद नहीं होता। वो शायद संगीत को सिर्फ सुनना पसंद करता है। फिल्म का नाम है आंगन और प्यारा सा गीत है, और इस गीत को गाया है आशा जी ने। प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार, और हर सिंगार में मैं आपके साथ विकास।

फिल्म का नाम था आंगन और रोशन साहब का संगीत था इस फिल्म में। एक नाम जो मैं जोड़ना भूल गया था इस गायिका का नाम, और उनका नाम है गीता दत्त, यानी कि आशा जी के साथ एक और जो आवाज़ हम तक पहुंची थी उन गायिका का नाम। इस गीत को सुनते हुए अगला जो गीत मेरे जहन में अचानक से चलने लगा वो था फिल्म शहीद का। जानते हैं कौन सा वाला गीत? आप तक पहुंचाऊंगा ना तो शायद आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ कुछ तो मिलता जुलता साउंड कर रहा है।

कह सकते हैं कि ये गीत कुछ कुछ लोक संगीत की मिट्टी की खुशबू लेकर भी हम तक पहुंचते हैं, और इन्हीं गीतों की ये बहुत खूबसूरत सी बात है कि सुनते सुनते हमें कई तरह के रंग देखने को मिलते हैं। अगला जो गीत है वो भी एक लोक गीत की रंग या उसकी छाप लिए हुए है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

10:56 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार। प्रोग्राम का आखिरी गीत मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। ये फिल्म आई थी 1959 में, लेकिन इसका तेलुगु वर्जन 1955 में रिलीज हुआ और फिल्म का नाम था जया सिम्हा, और जो इसका हिंदी वर्जन था उस फिल्म का नाम रखा गया जय सिंह। वहीदा रहमान और एंटी रामाराव पर्दे पर नजर आते हैं। प्रेम धवन का इस फिल्म में गीत रहे और रमेश नायडू साहब का संगीत।

उषा मंगेशकर की आवाज है और थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ यानी FM गोल्ड के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया जो सतत विकास, भूख और गरीबी उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन में बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल देर रात एलिना रिबाकिना और आर्याना सबालेंका के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today, being Saturday, we'll be taking your calls on your market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. श्रोताओं, व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. श्रोताओं, चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: प्राची, नमस्कार. और राजेश,
0: आपको भी वेलकम टू यू.
2: गुड इवनिंग राजेश.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए जाने सुर्खियां.
0: ब्रिक्स नेशंस अडॉप्ट न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ब्रिक्स समिट 2026. लीडर्स एडवोकेट फॉर मल्टीलैटरल अप्रोच दैट रिस्पेक्ट्स diverse viewpoints and positions on global issues. SEBI releases consultation paper proposing changes to closing auction session and derivatives settlement. And benchmark domestic indices register weekly decline of over 2%.
1: ब्रिक्स देशों ने ब्रिक्स समिट 2026 के पहले दिन नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया. नेताओं ने वैश्विक मुद्दों पर अलग अलग दृष्टिकोण और रुख का सम्मान करने वाले बहुपक्षीय नजरिए को बनाए रखने की बात कही. सेबी ने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन और डेरिवेटिव सेटलमेंट में बदलाव का प्रस्ताव देते हुए परामर्श पत्र जारी किया और प्रमुख शेयर सूचकांकों में 2% से अधिक की साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई.
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: ब्रिक्स देशों ने दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ध्रुवीकरण तथा अलगाव की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा 2026 में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक स्तर पर सैन्य खर्च में भारी बढ़ोतरी के मौजूदा रुझान पर चिंता व्यक्त की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सत्र के समापन पर इस घोषणा को अपनाने का प्रस्ताव रखा. अपने समापन भाषण में श्री मोदी ने कहा कि आज अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा सदस्य देशों के साझा संकल्प के लिए एक स्पष्ट दिशा प्रदान करती है.
3: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता. रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग, तीनों में सुधार आवश्यक है. आज एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है. अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले. हमने इस बात पर भी बल दिया कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और उनके नियमों के निर्माण में ग्लोबल साउथ की बराबर भागीदारी होनी चाहिए.
1: सिद्धार्थ, ग्लोबल साउथ का साझा संकल्प, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए.
2: नहीं, देखिए, ब्रिक्स का जो जब बनाया गया था तो ये एक धारणा थी, ये मानना था कि तकरीबन 2006 में और सन 2000 में इसकी कल्पना
1: जी.
2: एक व्यक्ति थे गोल्डमैन सैक्स में जिन्होंने इसकी कल्पना की और उसके बाद ये माना कि आने वाले समय में ये चार देश जिसमें ब्राज़ील था, हिंदुस्तान था, इंडिया था, चाइना, और तो इनकी ये जो है उभरती हुई जो अर्थव्यवस्था है उनमें इसमें इनका बड़ा रोल होगा और साथ साथ उसमें उसके बाद साउथ अफ्रीका भी जुड़ा
1: जी.
2: तो और उसका जो बेसिक जब

0: पहली बार ये इस ब्रिक्स सम्मेलन हुआ 2009-10 में जो सम्मेलन हुआ उसमें ये था कि कैसे जो जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हैं उनको कैसे रिफॉर्म किया जाए, कैसे एनर्जी सिक्योरिटी की बात की जाए, कैसे ग्लोबल साउथ का जो सवाल आपने किया कि उनको जो है कैसे उनकी उनको भी इस पूरा जो दुनिया की बदलती हुई परिस्थिति है उसमें उनको भी बराबर का हिस्सा दिया जाए। ग्लोबल साउथ से हमारा मतलब होता है जो ऐसे देश जो डेवलपिंग देश हैं जो भी थोड़ा पिछड़ गए हैं, पीछे हैं, अभी पूरी तरह से
1: विकास की राह में आगे हैं।
0: हाँ, आ रहे हैं, मतलब विकास की राह पर हैं, आगे नहीं हैं, वो पीछे हैं, उनको भी साथ लेके चलना है बदलते हुए समय के। लेकिन आप देखेंगे जैसा अभी दिख रहा है कि जो मल्टीलैटरलिज्म है, डेमोक्रेटिक जो अलग अलग जो विचारों को लेके जो है अब उतना उसकी उसको समावेश करना या उसको एक्सेप्ट करना, उसको लेके जो है एक विरोधाभास है या आपस में एक तालमेल जिसको कहें नहीं है, या उसे एक्सेप्ट करना कि उस विरोधाभास में भी हम साथ मिलकर काम करें, साथ मिलकर बैठें। तो मुझे लगता है एक तो एक वही सबसे बड़ा वो है, साथ साथ जो अभी दुनिया में हम देख रहे हैं चारों तरफ जिस तरह का जो एक चाहे आप अमेरिका ईरान का हो या अमेरिका ईरान और इसराइल एक तरफ है, यूक्रेन रशिया का जो लड़ाई चल रही है, तो इसको लेके भी चिंता है क्योंकि कि ब्रिक्स का मानना है कि इस समूह का मानना है कि इन सब चीज़ों का जो समाधान सिर्फ बातचीत से हो सकता है, लड़ाई से किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता।
2: So Siddharth, to what you said about the leaders advocating for a multilateral approach that respects diverse national viewpoints and positions on crucial global issues, and one major development that has taken place is India's Middle East peace push at BRICS, where UAE Crown Prince met with Iranian President Pezeshkian. So that's a step in the right direction, and the real essence of what is happening at BRICS is showcased in this meeting. Perhaps there could be some outcome, positive outcome.
0: Absolutely, Rajesh. And I think India has been taking this position or making or trying to bring nations with different viewpoints or with differences to talk to each other and bring them to a reasonable some kind of a reasonable dialogue to reach some kind of a solution to the existing stalemate or issues. And as you rightly said, with the UAE and heads of state from UAE or and Iran talking, so I think that's a big achievement for this round of Delhi BRICS leaders meeting, I would say. And we have been saying this, and we've been also saying that India is also trying to push the cause of nations where we see today supply chains are disrupted, trade protectionism is at its height, plus there is stress in terms of fiscal stress, and so India is also trying to ensure that globally there is no the supplies of energy as far as the issue of energy supplies is concerned, as far as other supplies of fertilizer or essential items. So we've been also pushing the cause of those causes also.
2: We have two callers online with us, both from Delhi. First we go to Premjeet. Premjeet, a warm welcome. Please ask your question.
3: Very good evening to all of you, sir. And we are very blessed that we are having BRICS summit right now.
2: जी
3: सिद्धार्थ सर, मेरा सर सवाल ये है कि अभी प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा कि सी फेरर को, because sir I am also a sea farer, इंक्रोच करने के लिए और उनके इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे ब्रिक्स के सिंडिकेट को एक्नॉलेज किया। सर आप इस पे जरा अपना प्रकाश डालें सर, धन्यवाद सर।
0: नहीं प्रेमजीत जी, गुड इवनिंग, नमस्कार आपको, और आपने जो सवाल उठाया आज के समय में ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि अभी हमने देखा है जो गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो हो रहा है, जो बार बार जो जिस तरह से जब से अमेरिका और ईरान के बीच और इसराइल के बीच में ये जो युद्ध छिड़ा है उसके बाद जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ से 40% जो तकरीबन तेल की सप्लाई, तेल और गैस की सप्लाई होती है दुनिया को, वहाँ पे जो पानी के जहाज जिनके थ्रू ये सप्लाई होती है उन पे हम लगातार देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मतलब अटैक्स होते रहे हैं और एक इस और ये वजह बहुत बड़ी चिंता है। इसी को शायद प्रधानमंत्री ने इसी की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है पूरे ब्रिक्स के सभी देशों का, जो 11 देश इस ब्रिक्स के समूह में साथ साथ जो पार्टनर देश हैं, और ये इस समय बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब ये हाल फिलहाल में भी हम देखेंगे तो लगातार इस तरह के जो अटैक्स जो हैं पानी के जो जहाज जिनके थ्रू ये सप्लाईज ऑयल एंड गैस की सप्लाईज होती है उन पे हो रहा है। तो और बिल्कुल वाजिब बात आपने जो कही, सीफेरर्स जो आप लोग उस पर काम करते हैं, उसको उसका संचालन करते हैं, तो उनके उनकी जानमाल और उनकी सुरक्षा जो है बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो इसी बात को शायद उठाने की कोशिश की और उन्होंने ये संदेश भेजने की कोशिश की है कि कम से कम ऐसे उपाय किए जाएँ ताकि ऐसी चीज स्थिति से हम लोग बच पाएँ।
1: दिल्ली से हमारे साथ विनय जुड़ रहे हैं। विनय जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: मैम, मुझे पूछना है कि क्या कहते हैं, अगर निफ्टी में किसी स्टॉक का वेट 10% है तो उसमें अगर 1 या 2 पॉइंट की मूवमेंट होती है तो इंडेक्स में कितनी मूवमेंट होती है, नंबर वन। नंबर टू, कि हमारा अगर निफ्टी 20 पॉइंट अगर डे एंड पे एंड होता है, क्लोज होता है 20 पॉइंट प्लस में, तो जो सेंसेक्स है उसका 1 उसका 3 टाइम्स होता है, ऐसा क्यों?
0: अमित जी, एक तो आपका पहला सवाल बहुत टेक्निकल सवाल है कि कितना पॉइंट अगर वो चढ़ता है किसी शेयर में, अगर वृद्धि होती है तो उससे निफ्टी पे कितना इम्पैक्ट आता है। और जहाँ तक आपने उसका बीएसई से जो आपने कंपैरिजन किया, एक वो मोटा अनुमान माना जाता है कि तकरीबन 3 गुना है, बट ऐसा कोई मतलब कोई इस तरह की कोई वो नहीं है कि विनय जी माफ़ कीजिएगा, आपका मैंने नाम गलत बोला, विनय जी, तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई उसका कोई ऐसा कोई आधार है कि जिसको हम मान के चलें कि इतना गिरेगा तो इतना ही होगा। हालांकि और इस आधार को भी अभी जो नया सेबी ने अभी जो सिस्टम आया था क्लोजिंग ऑक्शन का, जो प्राइस डिस्कवरी का, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के शेयर्स का, उसमें इस चीज पे भी कहीं ना कहीं एक वॉलेटिलिटी आ रही थी, तो मुझे लगता है ऐसा कोई इसको आधार ना माने आप। और
1: जी, दिल्ली से हमारे साथ अमित झा जुड़ रहे हैं। अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: जी, मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार।
1: नमस्कार।
5: मेरा प्रश्न सीधा तो ये है सर कि अभी जो ब्रिक्स ने समिट हो रहा है अपने देश में नई दिल्ली में, तो एक ब्रिक्स करेंसी की बात सामने आ रही है, तो क्या ये ब्रिक्स करेंसी डॉलर और यूरो की तरह ही मतलब प्रचलन में आ जाएगा सर? और दूसरा प्रश्न ये है सर कि जैसे अभी ट्रंप, अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप जी का स्टेटमेंट आया था कि ईरान वॉर कंक्लूड सून, तो क्या ईरान वॉर मतलब खत्म होने के आसार हैं सर? धन्यवाद।
0: नहीं, जहां तक आपकी अमित जी आपका सवाल है करेंसी को लेके, तो इसकी बात हमेशा समय समय पर होती आई है, लेकिन ऐसा कोई ठोस अभी हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है जहां पे ब्रिक्स जहाँ ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही। हाँ, ये ज़रूर हो रहा है कि ब्रिक्स देश आपस में अपनी करेंसीज में अपने जो व्यापार है वो अपनी अपनी अपनी करेंसी में करें, ये एक इस पे एक जोर है। साथ साथ जो हमारे पेमेंट सिस्टम्स हैं उनको, जो सेंट्रल बैंक के पेमेंट सिस्टम है उनको कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे से समावेश करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी ब्रिक्स की कोई करेंसी इस तरह की होगी या उस पर कोई बहुत सीरियसली विचार हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका दूसरा एक सवाल और भी था,
2: आई थिंक परहैप्स ही विल
0: कॉल, उनका सवाल था अमेरिका का और ईरान का जो युद्ध है कि वो शायद अमेरिका राष्ट्रपति का वो हवाला दे रहे थे कि जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी ऐसा कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो स्थिति आज की है वो स्थिति काफी मतलब चिंताजनक और खराब है, तो ऐसा कोई संकेत नहीं कि युद्ध तुरंत खत्म होने जा रहा है।
2: Moving on, markets regulator SEBI today proposed changes to the methodology for calculating expiry day settlement prices of index and stock derivatives following a review of the newly introduced closing auction session CAS framework. In a consultation paper, SEBI proposed 2 options for determining the settlement prices: a blended volume weighted average price, WAP, based on trades executed during the last 30 minutes of the continuous trading session, CTS, and the 10-minute CAS or continuation of the existing CTS VWAP methodology. The proposals follow feedback received from market participants on the use of the CAS-determined closing price for settling derivative contracts on expiry. Determination of derivative settlement

0: डिस्कशन होते भी हैं इस ऐसे जब
1: and you also mentioned Siddharth that yeah. there was UAE and Iran has had a
0: yeah.
1: discussion
0: besides UAE and also the declaration also has said that कोई भी जो है युद्ध से किसी भी चीज का समाधान नहीं होगा तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन में इसका मेंशन भी है कि लड़ाई से किसी भी चीज का समाधान नहीं होगा केवल बातचीत के से ही जो है ऐसी चीज़ों का समाधान हो सकता है तो मुझे लगता है रत्नाकर जी ये काफ़ी ऐसे जब भी ऐसे कोई समूह आपस में बैठते हैं 10-11 देश और साथ में पार्टनर नेशंस भी हैं 20 देश तो ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल सीरियस डिस्कशंस होते हैं।
2: ठाणे से हमारे साथ गुरुनाथ जुड़ रहे हैं। गुरुनाथ जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए। गुरुनाथ जी आप हमें सुन पा रहे हैं?
3: हाँ सुन पा रहा हूँ मैम
2: जी, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: मैम नमस्कार।
2: नमस्कार,
3: हेलो,
1: आप सवाल पूछें गुरुनाथ जी।
3: हाँ जी, हाँ जी सर। सर मेरा क्वेश्चन है, अभी जो 6-7 महीने पहले जो वॉर चालू हुआ अमेरिका और ईरान के बीच में, उससे पहले हमारी मार्केट तो ऐसे लगता था कि 1 लाख तक 1 लाख के अंकों को भी छू जाएगा, तो ये मतलब अभी जो मार्केट जो नीचे आ गई है तो इसमें क्या मतलब FII या संस्थागत जो निवेशक होते हैं या डोमेस्टिक क्या वो कम हो गए और क्या ये जो और है इसका असर हमारे मार्केट पे पड़ा है क्या? थैंक यू।
0: नहीं गुरुनाथ जी, बिल्कुल इस जो भी जियोपॉलिटिकल स्थिति है जो दुनिया में इस समय अनिश्चितता है उसका हमारी बाज़ार को भी उसने कहीं ना कहीं बाज़ार में वॉलेटिलिटी है या अनिश्चितता का माहौल से में बाज़ार में भी है तो और हम दुनिया का पार्ट हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उस जो भी दुनिया में हो रहा है उससे हम अछूते रहेंगे। साथ साथ अगर आप देखेंगे जो 6-7 महीने में हुआ टैरिफ को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ टैरिफ ट्रंप साहब आए तो उन्होंने दुनिया भर में टैरिफ लगाया, हमारे ऊपर भी लगाया और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुए शॉर्ट टर्म में, और जहाँ तक वेस्ट एशिया जो ये लड़ाई चल रही है उससे सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है तेल की कीमतें, और हम भारत जैसा देश जो 90% तेल आयात करता है तो हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा जो इसका एक फिस्कल कॉस्ट है, और कहीं ना कहीं उस अनिश्चितता वो जो अनिश्चितता है वो बाज़ार में भी दिख रही है। साथ साथ जो आपने बात कही कि FIIs ने भी पैसा निकाला, लेकिन FIIs ने पैसा सिर्फ इस कारण से नहीं निकाला, FIIs जो नेचर है उनका एज एन इन्वेस्टर, मेरा ये मानना है वो जहाँ भी मौका देखते हैं उनको लगता है कि हाँ वो बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग उनका जो है इंटेंट रहता है, मोटिव रहता है, तो वो वहाँ पैसा लगाते हैं जहाँ जिस बाज़ार में उनको लगता है ज़्यादा है। तो ऐसा कोई
1: extent work on sentiments. Absolutely. And positive sentiments are required for markets to
0: yes
1: go.
0: And despite that Rajesh, our markets have not tanked and even FIIs have withdrawn, even then the domestic investors both institutional and retail have posed a confidence in the Indian markets.
2: अन्य खबरों में, श्रोताओं, 4 सितंबर 2026 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $45 अरब के से बढ़कर 785.7 अरब डॉलर के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विदेशी मुद्रा संपत्ति $47 अरब से अधिक बढ़कर लगभग $648 अरब हो गई है। हालांकि सोने का भंडारण लगभग $2.5 अरब से अधिक फिसलकर लगभग $114 अरब रह गया है। और इस बीच हमारे साथ दिल्ली से वीरेंद्र जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: हेलो
2: जी, अपना सवाल पूछिए।
4: हाँ मैम नमस्ते।
2: नमस्ते
4: मैडम, जो जैसे अभी ये सुन रहा था मैं प्रोग्राम की, ये सब चर्चा कर रहे हैं युद्ध वगैरह का, ईरान का, अमरीका का
2: जी,
4: तो ये तो कॉमन बात हो गई, सबको पता है, इस पे टाइम वेस्ट करना बेकार है, बजाय इस पे समाधान निकालिए कि जो विस्तार जो लड़ाई की वजह है, लड़ाई की वजह है विस्तारवाद, और विस्तारवाद की वजह है पॉपुलेशन, चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है, वो तिब्बत से विस्तार कर रहा है
2: जी। वीरेंद्र जी आप अपना सवाल पूछिए।
1: I think we lost touch with him. In the meantime, we have a story on the RBI governor interview, Prachi.
2: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि फॉरेन करेंसी, नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिटरी और दूसरी योजनाओं से आने वाला निवेश बहुत मजबूत रहा है। एक साक्षात्कार में श्री मल्होत्रा ने कहा कि ये मजबूत निवेश भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में निवेशकों के भरोसे को दिखाता है और कम समय में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की क्षमता को भी सिद्ध करता है। बैंकिंग सिस्टम में अतिरिक्त नकदी पर श्री मल्होत्रा ने बताया कि रिजर्व बैंक के पास नकदी को संभालने के लिए कई उपकरण हैं और वह जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि ऋण वृद्धि बढ़ने के साथ साथ करेंसी प्रचलन, विदेशी मुद्रा बाजार में दखल और बैंकों की कोषीय आवश्यकताओं के जरिए समय के साथ कुछ अतिरिक्त नकदी को वापस ले लिया जाएगा। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार पांचवें सप्ताह गिरावट आई। ये गिरावट कच्चे तेल के दाम बढ़ने और वैश्विक ब्याज दरों को लेकर चिंताओं के बीच दर्ज की गई। इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1733 अंक यानी 2.3% गिरकर 74,782 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 500 अंक यानी 2% से अधिक फिसलकर 23,398 पर स्थिर हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 लगभग 1.5% फिसला, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक इस सप्ताह लगभग 1% नीचे आया। क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो बिकवाली अधिक रही और सप्ताह के दौरान प्रमुख क्षेत्र गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी रियल्टी में सबसे अधिक यानी 6.5% से अधिक की गिरावट आई। इसके बाद निफ्टी आईटी जिसमें सप्ताह के दौरान लगभग 6% की गिरावट दर्ज की गई।
1: सिद्धार्थ, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इन द आरबीआई गवर्नर्स इंटरव्यू, ही इज रिफ्लेक्टेड स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज एंड कॉन्फिडेंस इन इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड द एबिलिटी इंडियाज एबिलिटी टू अट्रैक्ट फॉरन कैपिटल विद इन अ शॉर्ट पीरियड। सो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दैट ही हैज मेड एंड ही इज क्वाइट पॉजिटिव अबाउट द ग्रोथ ऑफ इंडिया।
0: Rajesh, more than the statement that he's made, also the fact that we have got almost close to $130 billion dollars through these FCNR deposits, that itself shows the current state of the Indian economy, the strength in the inherent strength in the Indian economy, and also what he's also reflected that because of this huge influx of money coming in, the liquidity is high in the market, but he's also assured the market that there's nothing to worry. RBI is looking into it. They are completely hands on the situation and already conducting operations to absorb the excess liquidity.
1: Okay. The European Commission has formally submitted its proposal to the European Council to sign and conclude the free trade agreement with India, marking a major step towards implementing the ambitious pact widely described as the mother of all deals. If authorized by the Council, the agreement will become the largest trade deal ever concluded by both the European Union and India. Now, this really augurs well. We don't have time. A very, very, very brief comment.
0: I think it opens up a big market for Indian exporters.
2: बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ कार्यक्रम में आने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए।
0: धन्यवाद आप।
1: Thank you, Siddharth, for being with us. And before we close the headlines once again, BRICS nations adopt the New Delhi Declaration on first day of BRICS Summit 2026. Leaders advocate for multilateral approach that respects diverse viewpoints and positions on global issues. SEBI releases consultation paper proposing changes to closing auction session and derivatives settlement. And benchmark domestic indices register weekly decline of over 2%. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
6: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

11:40 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हैं आप। प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत, आपके साथ मैं विकास।

क्या नशा नशा सा है, बोलिए रब बोलिए सब सुना।

चांदनी।

प्रेम पुजारी इस फिल्म का गीत पहुंच रहा है आप तक, और किशोर कुमार साहब का ये गीत छोड़े जा रहा हूं मैं इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल जो रखते हैं आपका ख्याल। आज के लिए बस इतना ही, मुझे यानी विकास को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलुओं और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण यातायात में होने वाली रुकावटों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। ये निर्णय परीक्षा देने वाले छात्रों और लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने तथा समय पर पहुंचने के लिए लिया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिन के मुंबई दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी जाएंगे। बीकेसी स्थित भारत डायमंड बोर्ड्स में आयोजित GJEPC पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे और लाल बागचा राजा के दर्शन करेंगे। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का फाइनल देर रात एलिना रिबाकिना और आर्याना सबालेंका के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर जेवरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर पानी पे लिखी कहानी यानी गीतों भरी कहानी। तो सुनिए कहानी कदमों में आसमान, कहानी छोटू की। उस दिन नीलिमा देर तक सोई रही। अचानक पापा की आवाज से उसकी आंखें खुली। नीलू बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे अभी तक सोई हुई हो? क्या पापा, सोने दो ना, मैं देर रात तक वो अपना फेवरेट शो देख रही थी ना, इसलिए उठ नहीं पाई। अब आज ऑफिस से छुट्टी, नीलिमा अलसाई हुई बोली। उफ, ये लड़की भी ना, ये कोई सोने का टाइम है? तुम्हें अपने सिवा किसी और की भी परवाह है? उठो जल्दी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, पापा ने सख्ती से कहा। तो नीलिमा उठकर बैठ गई। वो फ्रेश होकर हाथ में चाय का कप लिए पापा के पास आ गई। पापा गोविंद राम, जो आंखें बंद किए किसी उधेड़ बुन में बैठे थे। क्या हुआ पापा, क्या बात है? आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा, नीलिमा बोले। उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर नीलिमा के पापा बोले, सुन रहा हूँ कि तुम वो फरीदाबाद वाला फूड आउटलेट बंद कर रही हो और स्टाफ को निकाल रही हो, क्या ये सच है? पापा, आपको पता तो है वो चलता तो है नहीं और उससे कुछ प्रॉफिट भी नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किल से सिर्फ स्टाफ की सैलरी निकल पाती है। अब ऐसे में उसे बंद ना करें तो क्या करें? नीलिमा, तुम्हें पता है इससे कितने लड़के बेरोजगार हो जाएंगे? और वो लड़का जो अभी अभी गांव से आया है, वो कहाँ जाएगा? पापा चिंतित स्वर में बोले। होते हैं तो हो जाए, जहां मर्जी वहां जाए, हमने सबका ठेका थोड़ी ना ले रखा है। और वैसे भी इस दुनिया में कितने ही गरीब हैं, हम किस किस के बारे में सोचेंगे? और पापा, हम उन्हें एक महीने की सैलरी दे तो रहे हैं ना? नीलिमा अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, जबकि उसके पापा के चेहरे पर गहरी खामोशी थी। उनके दिल के किसी कोने में कोई कहानी घटाओं की भांति घिराई थी और उमड़ घुमड़ रही थी। उनके होठ बुदबुदा उठे।

आज गोविंद राम की जिंदगी की एक घटना भी उनका पीछा कर रही थी। उनके खामोशी में हजारों शब्द उगाए थे, लेकिन उन्हें चुप देखकर नीलिमा से ना रहा गया। वो बोले, पापा क्या सोच रहे हो? गोविंद राम मानो अचानक नींद से जागे, बोले, बेटा यहां बैठो मेरे पास। नीलिमा पापा की आंखों में देखते हुए

0: और पास आकर बैठ गई। एक कहानी सुनोगी?
1: जी, कौन सी कहानी?
0: छोटू, छोटू की कहानी। नीलिमा अपने पापा की आंखों में झांकने लगी थी। वहां एक नन्हा सा 9 साल का बच्चा नजर आ रहा था और किसी चलचित्र की भांति गोविंद राम फ्लैशबैक में जा चुके थे।
2: ए लड़के, तेरा नाम क्या है? अबे सुनाई नहीं देता क्या तुझे?
0: जी छोटू।
2: ओए छोटू, इधर आ, कहां मर गया था?
0: अचानक एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था और आंखों से छोटू की मासूमियत बहने लगी। उसका भोला सच्चा मन कराह उठा। दूर कहीं रेडियो पर एक गीत बज रहा था।

छोटू का बचपन उस ढाबे नुमा होटल के कामों में कैद होकर रह गया था। फटे पुराने कपड़े पहने छोटू कभी ग्राहकों को चाय के ग्लास पकड़ाते देखा जाता तो कभी जूठे बर्तनों को साफ करते। मालिक की एक आवाज पर दौड़ते भागते छोटू की अपनी कोई मर्जी भी नहीं रह गई थी। सुबह से शाम तक, अभी सुन ओए लड़के, ओ छोटू इधर आ, छोटू कहाँ मर गया, छोटू ये कर, छोटू वो कर। अब तो छोटू अपना असली नाम तक भूल चुका था जो उसे उसके माता पिता ने दिया था। फिर भी छोटू हमेशा हंसता रहता।

अक्सर जब छोटू अकेला होता तो याद करता वो दिन जब वो अपने छोटे से गांव में अपनी माँ, बाबूजी और दो छोटे भाई बहनों के साथ रहा करता था। दिन भर गांव में उछल कूद करता, कभी गिल्ली डंडा खेलता तो कभी कंचे। गांव की अमरैया में जाकर कभी कच्चे अमिया तोड़कर लाकर खाता तो कभी जामुन। कितना खुश था वो अपने गांव में। उसके दोस्त भी कितने अच्छे थे। छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते थे मगर फिर सब एक हो जाते। गांव के गंगाराम ताऊ, मुरली भैया, भगत काका और भक्तिन काकी सब कितने अच्छे थे। और एक यहाँ के लोग हैं, बिना बात के ही दुत्कारते हैं, मानो गरीब होना कोई अपराध हो। छोटू को याद आता वो भयानक दिन जब उसके मजदूर बाबूजी के ऊपर दीवार गिर गई थी। वो कुछ दिन बिस्तर पर पड़े रहे और फिर चल बसे। माँ नन्हे बच्चों और छोटू को गले लगाकर कितना रोई थी, मगर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है भला।

छोटू की माँ दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह बच्चों का पेट पाल रही थी। उन्हीं दिनों गांव के जगन काका जो शहर में रहते थे छोटू को काम दिलाने के लिए शहर ले आए थे। उसने सोचा था कि वो शहर में आकर खूब पैसे कमाएगा, अपनी माँ का सहारा बनेगा, छोटे भाई बहनों के लिए ढेर सारी टॉफियां और मिठाइयां खरीदेगा। वो सब कुछ खरीदेगा जो देखकर उसका मन ललचाता रहता है। लेकिन उस नन्हे मन को क्या पता था, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। जगन काका ने छोटू को एक ढाबे पर रखवा दिया था। ढाबे का मालिक एक संवेदनहीन इंसान था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि छोटू एक बच्चा है। उसे बस काम और काम से मतलब था। छोटू गांव की कच्ची गलियों और झोपड़ी से निकल कर आया था। उसने शहर की चकाचौंध नहीं देखी थी। सड़क के किनारे बैठकर जब वो जूठे बर्तन धोता तो उसकी आंखें सड़क पर ही लगी रहती थीं। स्कूली यूनिफॉर्म में स्कूल जाते बच्चों को देखकर उसके मन में भी अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जाने का उत्साह आता। अपने माता पिता की उंगली थामे घूमते आइसक्रीम खाते बच्चों को देखकर छोटू का बाल मन भी ललचा उठता। सड़क की चकाचौंध में गुम छोटू से जब काम करने में देर होने लगती तो ढाबे का मालिक चिल्लाने लगता और फिर छोटू सहम कर जल्दी जल्दी काम करने लगता। और इस तरह दिन पंछियों की तरह उड़ते जा रहे थे। मौसम बदल रहा था लेकिन छोटू के नसीब का रंग वही का वही।

ढाबे के मालिक का घर भी ढाबे के बगल में ही था। मालिक कभी कभी छोटू को घर के काम करने के लिए भी भेजता। मालिक की एक छोटी सी बेटी थी, नैनी। नैनी इकलौती बेटी थी। अकेली होने के नाते वो चाहती थी कि छोटू उसके साथ खेले। उसे खिलौनों से खेलती देखकर छोटू का बालमन भी खेलने को होता। एक दिन छोटू को मालिक ने घर से कुछ सामान लाने को भेजा। छोटू ने देखा कि नैनी खेल रही है। उसने छोटू को भी अपने साथ खेलने के लिए आवाज दी, लेकिन छोटू ने मालिक के डांट के डर से मना कर दिया। तो नैनी रोने लगी। उसकी माँ ने नैनी को रोते देखा तो उन्हें लगा कि शायद छोटू ने कुछ कहा है। तो उन्होंने आओ देखा न ताओ और निर्दोष छोटू की पिटाई कर दी। इधर छोटू सामान लेकर देर से पहुंचा तो मालिक ने भी उसे पीट दिया। उस दिन रात को छोटू अपनी माँ को याद कर बहुत रोया और उसने मन ही मन सोच लिया कि कल सुबह वो अपने गांव भाग जाएगा, अब यहां पर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। रोते रोते उसकी आंख लग गई तो उसे अपने गांव के सपने आने लगे। उसका प्यारा गांव, उसकी वो स्वर्ग जैसी झोपड़ी जहां उसकी माँ उसे थपकी देकर सुलाया करती थी।

लड़के चुपचाप उठा और स्टेशन की ओर चल पड़ा। तभी अचानक उसे याद आया कि घर में बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी मिल पाती थी। छोटू चलता जा रहा था और सोचता जा रहा था, उसकी विधवा माँ दूसरों के खेतों में काम करके किस तरह से तीनों बच्चों का पेट पाल रही थी। कभी कभी तो आधे पेट भी रह जाना पड़ता था। बदन पर कपड़े के नाम पर बस एक फटी बनियान थी। उसे याद आई अपनी झोपड़ी नुमा घर की। घर के नाम पर दो मिट्टी की टूटी दीवारों के बीच एक टूटा हुआ छप्पर था जो बारिश के समय टप टप टपकता रहता था, और चारों प्राणी दीवारों से चिपक कर किसी तरह रात काटते थे। और यहाँ कम से कम पेट तो भर जाता है, कुछ फटे पुराने कपड़े भी मिल ही जाते हैं, और उसकी माँ को ढाबे का मालिक हर महीने कुछ पैसे भी भेज देता है, तो माँ की मदद भी हो जाती है। घर की गरीबी और पिस्ती जिंदगी के बारे में सोच सोच कर छोटू जड़

गया। उसके कदम जहां की तहां थम गए। आंखों में आंसू भरे भारी मन से लौट चला उसी ढाबे की ओर और फिर एक बार अपनी बेबसी भरी जिंदगी से जद्दोजहद।

एक दिन छोटू ने देखा कि नैनी अपनी माँ की उंगली पकड़े उसके लिए टॉफियां लेकर आई है। नैनी ने माँ को बता दिया था कि उस दिन छोटू की गलती नहीं थी, तो मालकिन ने कहा कि छोटू कभी कभी नैनी के पास आकर उसके साथ खेला करे। धीरे धीरे छोटू और नैनी दोस्त बन गए थे। छोटू को जब भी काम से फुर्सत मिलती तो वो दौड़कर नैनी के पास आ जाता। दोनों साथ साथ खेलते, बातें करते, लड़ते झगड़ते। बच्चों का कोमल मन कितना मासूम और निश्चल होता है ना? वो किसी भेदभाव को नहीं जानता। वो कौन है, मैं कौन हूँ, मालिक कौन, कौन नौकर, कौन बड़ा कौन छोटा, ये बच्चों को नहीं पता होता। ये तो हम बड़े उनके दिमाग में डालते हैं। बच्चों को तो जरा बुरा लगा, झगड़ लिए, हट कर लिए, फिर थोड़ी देर में सब ठीक भी कर लिया। काश कि बड़े भी ऐसा कर पाते। खैर, नैनी जब पढ़ती तो छोटू भी उसके पास आकर बैठ जाता और टूटे फूटे शब्दों में पढ़ने की कोशिश करने लगता। छोटू को पढ़ना अच्छा लगता था। एक दिन काम से फुर्सत पाकर वो नैनी के किताब से उल्टा सीधा गलत सही पढ़ रहा था।

नैनी ने देखा तो उसे सही सही पढ़ाने लगी। फिर उसने छोटू को अपनी एक पुरानी किताब दी और उसे कल पढ़कर आने के लिए कहा। छोटू देर रात तक पढ़ता रहा। अगले दिन उसकी आंख एक जोरदार थप्पड़ से खुली। वो चौंक कर उठकर बैठ गया। उसने देखा कि सामने यमराज की भांति ढाबे का मालिक खड़ा था। मालिक ने उसे गालियां देते हुए कॉलर पकड़कर झिझोड़ा, उसका फटा पुराना बिस्तर उठाकर फेंक दिया। बिस्तर में से कुछ किताबें और खिलौने गिर पड़े। वो छोटू से पूछने लगा, ये किताबें और खिलौने कहां से आए? छोटू ने जवाब दिया कि ये उसे नैने ने दिए हैं। मगर मालिक को छोटू की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने छोटू को चोर समझा और डंडा ढूंढकर मारने के लिए दौड़ा। छोटू धीरे धीरे पिछले पैरों से सड़क की ओर खिसका और पलटकर तेज दौड़ा। अचानक तेजी से आती एक कार ने छोटू को टक्कर मार दी और छोटू वहीं गिर पड़ा।

0: कहानी कहते कहते गोविंद राम चुप हो गए थे। पापा, फिर क्या छोटू मर गया? नीलिमा ने रोते हुए पूछा। छोटू की सांसें बाकी थी, उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। किसी ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी। जब छोटू होश में आया तो वो एक हाथ से अपंग हो चुका था। छोटू का मालिक एक कोने में खड़ा था। उसके नाम FIR हुई थी। अब उसे बाल श्रम अधिनियम के तहत जेल जाने और जुर्माना भरने से कोई नहीं बचा सकता था। पुलिस छोटू का बयान ले रही थी। बेटा डरो मत, बताओ किसने तुम्हें काम पर रखा था?
1: जी किसी ने भी नहीं, छोटू बोला। मैं अपनी मर्जी से कर रहा था।
0: क्या मालिक ने तुम्हें मारा पीटा? तुम क्यों भाग रहे थे?
1: नहीं साहब, मालिक बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे गरीब को उन्होंने सहारा दिया, उनके बहुत एहसान है हम पर।
0: तो भाग क्यों रहे थे? पुलिस ऑफिसर बोला।
1: साहब मैं तो बस खेल खेल में भाग रहा था, अचानक गाड़ी से टक्कर लग गई। मालिक तो बहुत अच्छे हैं साहब।
0: ढाबे के मालिक की आंखों से आंसू बहने लगे। आज छोटू कितना बड़ा हो गया था, उससे भी बड़ा।

पापा, अब छोटू कहाँ है? नीलिमा ने धीरे से पूछा। ये देखो तुम्हारे सामने। फिर ये सब कुछ बदला कैसे? आप छोटू से गोविंद राम कैसे?

बने। मालिक का दिल पसीज गया था। मालकिन एक नेक महिला थी। उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज दिया। मेरे बचपन का नाम गोविंद था, जिसे मेरे माँ बाबूजी ने दिया था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने धीरे धीरे खुद का काम शुरू किया और अब जो ये तुम रेस्टोरेंट चला रही हो ना, उसी कड़ी मेहनत का परिणाम है। एक बात बताओ नीलू, एक सीमा के बाद समाज को वापस देना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। फिर एक गहरी सांस लेकर गोविंद राम रुके, चश्मे के भीतर उमड़ आए आंसुओं को साफ किया, फिर बोले, नीलू बेटा एक बात कहूं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फरीदाबाद वाला आउटलेट बंद ना हो? कोई बात नहीं, स्टाफ की सैलरी तो आ ही जाती है ना, और वो लड़का जो नया नया गांव से आया है, उसे पूछना क्या वो आगे पढ़ना चाहता है। जी पापा, नीलिमा अब बदल चुकी थी। उसे समझ आ चुका था कि इंसान की जिंदगी का एक नजरिया और भी है, जिसमें अपनी खुदगर्जी के अलावा दूसरों के दुख दर्द को भी समझना जरूरी होता है, और शायद सही मायने में जीना इसी का नाम है।

तो दोस्तों ये थी कहानी छोटू की, कदमों तले आसमान। देखिए कितना अच्छा संदेश था, एक ऐसा लड़का जो अनाथ था लेकिन उसको सही दिशा दी ऐसे व्यक्ति ने, जिसके मन में प्रेम था, विश्वास था कि ये बच्चा एक दिन कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। दोस्तों ऐसी कितनी ही घटनाएं हम अपने आसपास घटते देखते हैं। हमें चाहिए कि हम भी कहीं ना कहीं अपने मन में एक संवेदनशीलता पैदा करें और ऐसे बच्चों को कहीं ना कहीं एक आसरा दें, एक दिशा प्रदान करने में मदद करें ताकि वो अपने जीवन को सही दिशा दे पाएं। ये सब आप पर ही निर्भर करता है, क्योंकि हम आप मिलकर बनते हैं एक ऐसी कड़ी जो कि समाज की बेहतरी के लिए काम करता है। तो ऐसे ही इस मानवतापूर्ण संदेश के साथ हम समेटते हैं अपना ये कार्यक्रम जिसका नाम है पानी पर लिखी कहानी। और ये कार्यक्रम से अब रश्मि कुकरेती को दीजिए विदा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जा

0: जाता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता के प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में ब्रिक्स सिंफनी, अनेक संस्कृतियां एक लय की भी विशेष प्रस्तुति रही, जिसमें ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने अनूठी सामूहिक संगीत प्रस्तुति में एक साथ भाग लिया। विभिन्न देशों के विविध संगीत परंपराओं से सजी इस सिंफनी में साझा कलात्मक अभिव्यक्ति रही, जिसमें ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि और एकजुटता की भावना प्रतिबिंबित हुई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए गणमान्य अतिथियों ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का भ्रमण भी किया। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के मुंबई दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी जाएंगे। बीकेसी स्थित भारत डायमंड बोर्ड्स में आयोजित GJEPC पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे और लाल बागचा राजा के दर्शन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशभर की लखपति दीदियों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन महिलाओं ने लखपति बनकर सशक्तिकरण की मिसाल कायम की है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नई दिल्ली में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ICAI के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। ये दीक्षांत समारोह देशभर में 23 केंद्रों पर आयोजित किया गया था। समारोह में श्री मेघवाल ने नए योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The BRICS nation adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
3: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप गीत सुहाने लेकर माधुरी है आज की रात आप सभी के साथ नमस्कार

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और प्यारे प्यारे गीत यहीं तो आपको सुनने को मिलते हैं। तो ऐसे ही प्यारे गीतों की लड़ी लेकर आते हैं हम गीत सुहाने के बहाने।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम

फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 1:22 और हो चुके हैं पूरे 18 सेकंड। गीत सुहाने का ये सफर है और अगला गीत हम लेकर आए, उससे पहले कुछ और बातें भी कर लेते हैं। कल क्या हो किसे पता, लेकिन ये जो लम्हा है ना, ये हमारा है और इस वक्त हम इस लम्हे के साथ हैं और बहे चले जा रहे हैं। नज़र और नसीब में भी क्या इत्तेफाक है, नज़र उसे ही पसंद करती है जो नसीब में नहीं होता। और अगला गीत हम लेकर आए हैं आपके लिए फिल्म पारस मनी से।

बहुत ही मीठा सा ये गीत सुना आप सभी ने लता जी की आवाज़ में फिल्म दिल एक मंदिर से। और सच में रात जब इतनी खूबसूरत सुहानी हो जहां ये ऐसे मीठे मधुर गीत चल रहे हों तो लगता ही है कि ये रात रुक जाए, लेकिन समय कब किसी के बांधे बंधा है, कब किसी के रुके रुका है, ये तो बस आगे बढ़ने का नाम है। तो चलिए समय के साथ आगे बढ़ते हुए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं जो मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए फिल्म शोला और शबनम से लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में।

प्यार का बंधन ऐसा होता भी नहीं है कि वो टूट जाए, और प्यार का बंधन क्या है इस गीत से ज़्यादा अच्छा कौन कह सकता है।

ये गीत सुना आपने आशा और रफ़ी की आवाज़ों में, फिल्म नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे से, और इतना प्यारा ये गीत था। और अगला गीत जो हम लेकर आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, उससे पहले ये भी दो लाइनें आपकी नज़र करते हुए कि वो दर्द ही था जो समा गया आँखों में, वो दर्द ही था जो समा गया आँखों में, ज़माने की कितनी ही ठोकरें खाए हैं

इन दिनों गरचे दकन में है बड़ी कदर सुखन, कौन जाए जौक पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। जौक का ये शेर बहुत ही खूब है दिल्ली पर, और हमने अभी दिल्ली वाला गीत भी सुना, और ये गीत हमने सुना फिल्म परिवार से मुकेश और उषा की आवाज़ों में।

माया फिल्म का ये गीत सुना आपने लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में, और गीत सुहाने जो सफ़र है हमारा ये अब बस मुकम्मल हुआ जाता है। तो इससे पहले एक गीत और हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म छोटी सी मुलाकात से, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी

0: और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और टाला नहीं जा सकता। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपनी तस्वीर भेंट की है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाला चीनी मिट्टी का ये स्मृति चिन्ह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 12 अक्टूबर 2019 को तमिलनाडु के मामल्लपुरम में हुई मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की साझेदारी को और गहरा करने के अवसरों पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष जू चियाची से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत की अवसंरचना और परिवहन संपर्क संबंधी प्राथमिकताओं को समर्थन देने, स्थानीय मुद्रा वित्त पोषण को बढ़ाने, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और AIIB की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, कुलगाम, बांदीपोरा, बारामूला और सोपोर समेत 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये अभियान प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के पाकिस्तान स्थित संचालकों और उनके कथित स्थानीय समर्थकों के नेटवर्क से जुड़े सीमा पार आतंकी योजनाओं के मामले में चलाए गए। तलाशी के दौरान मामले से संबंधित और भी आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। देश में रक्तदान के क्षेत्र में हरियाणा लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The BRICS nations adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. The declaration calls for a commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: The 18th BRICS Summit kicked off yesterday with Prime Minister Narendra Modi welcoming leaders of member countries at Bharat Mandapam. In his opening remarks, Prime Minister Modi proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the growth institutions

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं आप, और राज सुरमई लेकर माधुरी है आज की रात आप सभी के साथ। नमस्कार। कहते हैं ये इश्क नहीं आसां, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।

फिल्म कच्चे धागे से ये गीत सुन रहे थे आप अलका याग्निक और हंसराज की आवाज़ों में। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसे देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले।

लता और शब्बीर कुमार की आवाज़ में ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म गुलामी से। अगले गीत की तरफ बढ़ें उससे पहले चंद लाइनें आपके लिए। बहुत खुश था वो, बहुत खुश था जो महफिल को हंसाकर, बहुत रोया वो घर के पास आकर। यहाँ आसेब के मारे हैं सारे, यहाँ तो पेशगोई मत किया कर। सखी एक बांटता है रोज़ खुशियाँ, तुलुए सुबह से पहले उठाकर। बहुत खुश था जो महफिल को हंसाकर, बहुत रोया घर के पास आकर।

फिल्म प्रेम रोग से ये गीत सुन रहे थे आप, जिसे गाया लता जी और सुरेश वाडकर ने। बाट दुनिया भर के लोगों जोहता रहता हूँ मैं हूँ दरवाज़ा मोहब्बत का खुला रहता हूँ मैं। जिंदगी हैरान है मेरी ढिठाई देखकर, मुस्कुरा कर गम के चालें काटता रहता हूँ मैं। क्या ये मुमकिन है कि सजदे सब हो मेरे रायगा, जबकि तेरे इश्क में ही बावला रहता हूँ मैं। और ढूंढने जो भी उसे निकला वो खुद को खो ही गया, लोग कहते हैं मुझे भी लापता रहता हूँ मैं। बाट दुनिया भर के लोगों जो होता रहता हूँ मैं हूँ दरवाज़ा मोहब्बत का खुला रहता हूँ मैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये सफ़र है रात सुरमई का, जहां बहुत सी बातें होती हैं और साथ ही साथ ऐसे नगमे हम आप तक पहुंचाते हैं जो हम सभी के दिलों को छू जाते हैं। और जब बात इश्क की होती है तो मुमताज़ का नाम आना तो लाजमी है, और जब मुमताज़ की बात होती है तो प्यार के यादगार वो इमारत भी याद आती है जिसका नाम है ताजमहल। और ताजमहल फिल्म से ये गीत आप सभी के लिए।

फिल्म ताजमहल से गीत सुना आप सभी ने हरिहरन और प्रीति उत्तम की आवाजों में। जबानों पर उलझते दोस्तों को कौन समझाए, मोहब्बत की जबां मुमताज है सारी जबानों में। जी आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 2:50 और हो चुके हैं पूरे 20 सेकंड। रात सुरमई का ये सफ़र है जो यकीनन आप सभी को बहुत सुरमई लग रहा होगा। चलिए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं हम।

हौसला भले न दो उड़ान का, तस्करा तो छोड़ दो थकान का। जी हाँ, अब तो वाकई थकान से होने लगी है, क्योंकि अब बारी आ गई है आपसे इजाज़त लेने की। तो इजाज़त दीजिए माधुरी को, रात सुरमई का ये सफ़र यहीं तक। लेकिन आप बने रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। अब से कुछ ही देर में प्रसारित होंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए गणमान्य

0: अतिथियों ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का भ्रमण भी किया। इनमें फिलीपींस की प्रथम महिला लुइस अरनेता मार्कोस, ईरान के राष्ट्रपति की पुत्री जहरा पेजिशियन और ईरान के राष्ट्रपति के दामाद हसन मजीदी डिज़ा शामिल रहे। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिटरी और दूसरी योजनाओं से आने वाले निवेश बहुत मजबूत रहा है। एक साक्षात्कार में श्री मल्होत्रा ने कहा कि ये मजबूत निवेश भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में निवेशकों के भरोसे को दिखाता है और कम समय में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की क्षमता को भी सिद्ध करता है। बैंकिंग सिस्टम में अतिरिक्त नकदी पर श्री मल्होत्रा ने बताया कि रिजर्व बैंक के पास नकदी को संभालने के लिए कई उपकरण हैं और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करेंगे। भारत ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दुनिया की सबसे लंबी स्टील स्लैग सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1.85 किलोमीटर लंबी यह सड़क स्वदेशी तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल दर्शाती है। इस तकनीक में स्टील उत्पादन से निकलने वाली स्टील स्लैग को सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री में बदला जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रदान किए जाने वाले समारोह में कहा कि स्टील स्लैग रोड तकनीक से सड़क निर्माण की लागत करीब 40% तक कम हो जाती है और पारंपरिक सड़कों की तुलना में इनकी मजबूती 4 गुना अधिक होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये पवित्र ग्रंथ सदियों से मानवता को निस्वार्थ सेवा, मानवीय गरिमा और एकजुटता का मार्ग दिखाता आ रहा है। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The BRICS nation adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: The 18th BRICS summit kicked off yesterday with Prime Minister Narendra Modi welcoming leaders of member countries at Bharat Mandapam. In his opening remarks, Prime Minister Modi proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the growth in institutional momentum is maintained despite the changing chairship every year. He emphasized that the gap between decisions and their outcomes must be bridged through partnership and collective action. The Prime Minister said BRICS countries will have to work on a new and ambitious agenda for the next 20 years. The Prime Minister also proposed to establish a seafarers' emergency support network to connect the maritime authorities and diplomatic missions of relevant countries to facilitate assistance during difficult times.
2: क्या हम seafarers' emergency support network बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम

नमस्कार दोस्तों, रात अपनी रफ्तार धीमी कर चुकी है, दिन भर की भागदौड़ जैसे कहीं पीछे छूट गई हो और अब हमारे पास है थोड़ा सा वक्त अपने लिए, अपनी यादों के लिए और उन एहसासों के लिए जिन्हें हम अक्सर दिन के उजाले में महसूस ही नहीं कर पाते। कहते हैं कि कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, बस दिल से दिल का रास्ता होना चाहिए। आप सुन रहे हैं हमराही आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से और मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये गीत था फिल्म अजनबी से। आज की रात हम बात करेंगे किसी से जुड़ने की। किसी से जुड़ना हमेशा उसके साथ होना नहीं होता दोस्तों, कभी कभी कोई बहुत दूर होकर भी हमारे बेहद करीब होता है। उसकी एक आवाज़ चेहरे पर मुस्कान ले आती है, उसका एक संदेश पूरे दिन को खूबसूरत बना देता है, और कभी कभी तो सिर्फ उसका ख्याल ही दिल को सुकून देने के लिए काफ़ी होता है।

0: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: दोस्तों, रिश्ते बनाना आसान है, लेकिन किसी के दिल में अपनी जगह बनाना आसान नहीं। किसी से जुड़ाव शायद यही है कि आप उसके साथ अपनी खुशियां बांटना चाहें, अपनी परेशानियां बताने से पहले उसी का ख्याल आए, कुछ अच्छा हो तो उसे बताने का मन करे और कुछ अच्छा ना हो तो उसकी आवाज़ सुन लेने से ही मन हल्का हो जाए। शायद यही होता है एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 3:28 और ठीक 48 सेकेंड। कभी आपने गौर किया है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग अचानक आते हैं और फिर धीरे धीरे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। सुबह खुलती है तो उनका ख्याल, दिन में कोई बात हो तो उन्हें बताने की इच्छा, शाम ढलती हो तो उनसे बात करने का मन और रात आती है तो उनकी याद। यही तो जुड़ाव है दिल से दिल का और शायद यही प्यार है।

रॉकी फिल्म के इस खूबसूरत गीत को आवाज़ दी थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। जानते हैं आप, कुछ रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात होती है उनमें बहुत कुछ कहना नहीं पड़ता, आप चुप हैं, सामने वाला समझ जाता है कि आप कहते हैं मैं ठीक हूँ, और वह आपकी आवाज़ सुनकर कह देता है नहीं तुम ठीक नहीं हो। कितना खूबसूरत होता है ना जब कोई आपके शब्दों से ज़्यादा आपकी खामोशी पढ़ने लगे। शायद इसी को कहते हैं दिल से जुड़ना, क्योंकि आवाज़ तो हर कोई सुन सकता है लेकिन खामोशी सुनने वाला कोई खास ही होता है।

कभी कभी दो लोग एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, शहर अलग, रास्ते अलग, समय अलग, लेकिन फिर भी एक दूसरे की जिंदगी में मौजूद रहते हैं। फोन की स्क्रीन पर एक नाम दिखाई देता है और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एक छोटी सी आवाज सुनाई देती है और लगता है जैसे दूरी कम हो गई हो। तभी तो कहते हैं दूरी रिश्तों को खत्म नहीं करती, अगर दिलों में जगह बनी रहे।

दोस्तों, प्यार हमेशा आई लव यू कहने से नहीं होता। कभी प्यार इस बात में होता है कि घर पहुंचकर बताना, कभी खाना खा लिया, कभी आज आवाज़ कुछ थकी हुई लग रही है, आराम कर लो, और कभी सिर्फ इतना कि मैं हूं, तुम चिंता मत करो। ये छोटे शब्द शायद दुनिया के लिए मामूली हैं, लेकिन जिस दिल को इसकी ज़रूरत होती है उसके लिए ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। किसी का ख्याल रखना, उसकी खुशी में खुश होना और दुख में चुपचाप खड़ी रहना, यही तो जुड़ाव है।

रात में यादें कुछ ज़्यादा करीब आ जाती हैं। दिन में जिन बातों को हम टाल देते हैं, रात में वही हमारे सामने बैठ जाती हैं। कोई पुरानी बातचीत, कोई मुलाकात, किसी की हंसी, किसी की मुस्कुराहट, और फिर लगता है कि काश वो इंसान इस वक्त हमारे साथ होता। शायद रिश्तों की यही खूबसूरती है कि इंसान दूर हो सकता है, एहसास नहीं। जिससे दिल जुड़ जाए वो दूरी में भी साथ रहता है।

आज की रात उनके नाम जो दूर होकर भी हमारे करीब है, इसी एहसास के साथ मैं अर्चना गोयल हमराही कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। 4:10 पर कार्यक्रम अरुणिमा में मैं आपसे फिर जुड़ूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। भारत चौथी बार ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कल पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया।

0: गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में ब्रिक्स सिंफनी अनेक संस्कृतियों और एक लय की भी विशेष प्रस्तुति रही, जिसमें ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने अनूठी सामूहिक संगीत प्रस्तुति में एक साथ भाग लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कल से 3 दिन का मुंबई दौरा आरंभ किया। इस दौरान वे मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी जाएंगे और हिंदी पर केंद्रित 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया था। दिल्ली यातायात पुलिस ने अरुण जेटली स्टेडियम में आज होने वाले भारत अफगानिस्तान T20 क्रिकेट मैच के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The BRICS nations adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. The declaration calls for a commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks, after adoption of the New Delhi Declaration, that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: The 18th BRICS Summit kicked off yesterday with Prime Minister Narendra Modi welcoming leaders of member countries at Bharat Mandapam. In his opening remarks, Prime Minister Modi proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the grouping's institutional momentum is maintained despite the change in chairship every year. He emphasized that the gap between decisions and their outcomes must be bridged through partnership and collective action. The Prime Minister said BRICS countries will have to work on a new and ambitious agenda for the next 20 years. The Prime Minister also proposed to establish a seafarers' emergency support network to connect the maritime authorities and diplomatic missions of relevant countries to facilitate assistance during difficult times. Prime Minister Modi said the time has come to translate the unity and consensus among BRICS countries into concrete outcomes on the global stage. He said resilience, innovation, cooperation and sustainability have been India's foremost priorities as chair.
2: Bharat ki BRICS adhyakshata people centric aur humanity first approach par aadharit hai. Resilience, innovation, cooperation aur sustainability hamari prathmiktaen rahi hain. In prathmiktaon ke sath humne BRICS sahyog ko samanya jan se jodne ka विशेष बल दिया है।
1: After the conclusion of the session on the first day, Prime Minister

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है। समय हुआ है सुबह के 4:11 और कार्यक्रम अरुणिमा के साथ मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। नमस्कार, सुबह के इस खूबसूरत बेला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं ना, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज को सुंदर बनाने का अधिकार हमारे पास है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ईश्वर की प्रार्थना के साथ।

दोस्तों, सुबह का समय सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं है, ये खुद से मिलने का समय है। दिन शुरू होने से पहले अगर हम अपने मन से दो बातें कर लें तो पूरा दिन बदल सकता है। आज सुबह खुद से पूछिए, मैं आज क्या अच्छा कर सकता हूँ। किसी के लिए एक अच्छा शब्द, किसी की मदद, किसी को माफ़ करना, या शायद खुद को थोड़ा समय देना।

हर बड़ा बदलाव किसी बड़े कदम से नहीं, कई छोटे छोटे अच्छे कदमों से शुरू होता है। तो आज एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि आज मैं शिकायत कम करूंगा और समाधान ज़्यादा ढूंढूंगा। आज मैं चिंता कम करूंगा और प्रयास ज़्यादा करूंगा। और आज मैं खुद पर थोड़ा और विश्वास करूंगा।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा और मैं हूं आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 4:25 और ठीक 25 सेकंड। आइए दोस्तों इस सुबह की शुरुआत करें उस शक्ति को याद करके जिसने हमें एक और दिन दिया है। हे ईश्वर, आज का दिन हमें धैर्य दीजिए, सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने का अवसर दीजिए और इतनी शक्ति दीजिए कि मुश्किलों के सामने हम हार न मानें।

आज की सकारात्मक बात है जो आपके पास है उसकी कद्र कीजिए। हम अक्सर उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन कभी कभी रुक कर देखिए, आपके पास एक नया दिन है। सांसें हैं, अपने लोग हैं, कुछ अपने हैं, कुछ उम्मीदें हैं, और सबसे बड़ी बात, आपके पास फिर से कोशिश करने का मौका है। कृतज्ञता मन को बहुत हल्का कर देती है। आज सुबह बस 3 चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, शायद आपका मन पहले से ज़्यादा शांत हो।

साथियों, क्यों ना आज खुद से एक वादा करें, मैं अपने लिए बुरा नहीं बोलूंगा, मैं अपनी छोटी छोटी सफलताओं को भी पहचानूंगा, मैं हर गलती से सीखूंगा, मैं किसी की सफलता से नहीं जलूंगा बल्कि उसे प्रेरणा लूंगा, और सबसे जरूरी, मैं अपने सपनों को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि रास्ता मुश्किल है।

भोपाली मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार दोनों जहां की नेमतें हो आप पे निसार हाँ बचपन हो खुशगवार जवानी सदा बहार अल्लाह करे ये दिन यूं ही

याद रखिए, रास्ते मुश्किल हो सकते हैं लेकिन मंजिल असंभव नहीं। कभी कभी हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए बस एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है एक और कोशिश। तो अगर कोशिश असफल हुई थी तो आज फिर कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी अगली कोशिश ही आपकी सफलता बन जाए।

सुबह सुबह अपने मन में पुरानी शिकायत मत भरिए। कल किसी ने कुछ गलत कह दिया, किसी ने आपको समझा नहीं, किसी काम में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, उसे कुछ देर के लिए वहीं छोड़ दीजिए। हर सुबह पिछले दिन का बोझ लेकर चलेंगे तो नए दिन की खूबसूरती कैसे महसूस करेंगे। इसलिए कल को अनुभव बनाइए, बोझ नहीं। जिसे बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करना सीखिए।

तो दोस्तों अब ये खूबसूरत सुबह आगे बढ़ रही है और सुबह की सुगबुगाहट होने लगी है और ज़िंदगी हमें आवाज़ देने लगी है कि चलो आज कुछ अच्छा करते हैं।

इस खूबसूरत गीत और संदेश के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम से अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। 5:10 पर भोर सुहानी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। आज ब्रिक्स सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की और ज्यादा से ज्यादा संयम बरतने के साथ साथ ऐसी कार्रवाईयों से बचने को कहा जिनसे हालात और बिगड़ सकते हैं। पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की गई और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया गया। भारत चौथी बार इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी अनेक संस्कृतियां एक लय की भी विशेष प्रस्तुतियां रहीं, जिसमें ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने अनूठी सामूहिक संगीत प्रस्तुति में एक साथ भाग लिया। विभिन्न देशों की विविध संगीत परंपराओं से सजी इस सिम्फनी में साझा कलात्मक अभिव्यक्ति रही, जिसमें ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि और एकजुटता की भावना प्रतिबिंबित हुई। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कल से 3 दिन का मुंबई दौरा आरंभ किया। इस दौरान वे मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी जाएंगे और हिंदी पर केंद्रित 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में गृहमंत्री श्री गणेश ज्ञानरति शीर्षक से पांडुलिपियों की विशेष रूप से प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे वहां पुस्तकालय का दौरा करेंगे, एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करेंगे और उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली यातायात पुलिस ने अरुण जेटली स्टेडियम में आज होने वाले भारत अफगानिस्तान T20 क्रिकेट मैच के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि दर्शकों की आवाजाही के कारण स्टेडियम के आसपास यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। यातायात पुलिस ने बताया कि इस दौरान बहादुर शाह जफर मार्ग, DDU मार्ग और JLN मार्ग पर आवश्यकता के अनुसार यातायात प्रतिबंधित और मार्ग परिवर्तित होने की संभावना है। यातायात पुलिस ने दर्शकों को उनके प्रवेश द्वार के अनुसार निर्धारित मार्गों से स्टेडियम पहुंचने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने की उम्मीद है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज और बिजली की स्थिति बनी रहेगी। वहीं दिल्ली में अगले 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने वाले उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग को अपनी तस्वीर भेंट की है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने उस दावे को फर्जी बताया है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाली चीनी मिट्टी की स्मृति चिन्ह चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने 12 अक्टूबर 2019 को तमिलनाडु के मामल्लापुरम में हुई मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर धोखाधड़ी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सस्ते दाम पर वॉशिंग मशीन के पुर्जे देने के नाम पर गुजरात को एक व्यक्ति से 1.5 लाख रुपए ठगे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The BRICS nations adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence and decision-making on global issues. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after the adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता. Representation, responsiveness और rule making तीनों में सुधार आवश्यक है. आज अडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है. अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले.
1: Today is the second and final day of the BRICS summit. The two-day summit began yesterday at Bharat Mandapam in New Delhi. The BRICS nations adopted the New Delhi Declaration 2026 on the first day of the summit itself. The BRICS nations reiterated their commitment to the peaceful resolution of international disputes through dialogue, consultation and diplomacy. The leaders also expressed their concern over the continued escalation of tensions in West Asia and called for exercising maximum restraint as well as avoiding actions that could further aggravate the situation. They also strongly condemned the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22nd April last year in the strongest terms and reaffirmed their commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations. India is organizing the summit for the fourth time. Prime Minister Narendra Modi and President of China Xi Jinping reaffirmed that India and China should take a strategic and long-term perspective of their ties and differences should not become disputes. During their bilateral meeting on the sidelines of BRICS summit, the two leaders welcomed the steady progress in India-China bilateral relations since their last meeting in Tianjin in August last year. Prime Minister Modi highlighted that both the sides must be guided by three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. The two leaders expressed commitment to a fair, reasonable, and mutually acceptable resolution of the boundary question, proceeding from the political perspective of the overall bilateral relations and the long-term interests of the two peoples. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman discussed opportunities to further deepen the India-Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, partnership. The Finance Minister met President of Asian Infrastructure Investment Bank, Zhu Jiai, in New Delhi. In a social media post, Finance Ministry said, discussions were held on supporting India's infrastructure and transport connectivity priorities, enhancing local currency financing, increasing private sector participation, and global presence of AIIB. Anthropic CEO Dario Amodei has called for artificial intelligence industry to slow its rapid development, saying safety measures need time to catch up with the technology. Iraq has dismissed the commander of military operations in Maysan

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं सुबह की वेला में कार्यक्रम भूर सुहानी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके साथ अर्चना गोयल। एक नई सुबह, एक नया सूरज, हवा में घुली ताजगी, पेड़ों पर पत्तियों पर ठहरी ओस और पक्षियों की चहचहाहट, जैसे प्रकृति हमसे कह रही हो, कल चाहे जैसा भी था, आज तुम्हारे पास एक नया अवसर है। भोर सुहानी की सुबह की ताजगी के साथ करेंगे कुछ ऐसी बातें जो आपके चेहरे पर मुस्कान और मन में उम्मीद जगा दे। तो चलिए आज की सुबह की शुरुआत एक छोटी सी प्रार्थना के साथ।

दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि प्रकृति हमें बिना कुछ कहे कितना कुछ सिखाती है? पेड़ देखिए, आंधी आती है, तूफान आता है, कभी शाखाएं टूटती हैं, लेकिन मौसम बदलते ही वही पेड़ फिर नई पत्तियों से भर जाता है। प्रकृति यही बताती है कि मुश्किलें स्थायी नहीं होती। अगर पेड़ हर पतझड़ के बाद कह देता कि अब मेरे जीवन में बस सूखापन रहेगा, तो कभी नई हरियाली नहीं आती। इसलिए अगर जिंदगी में सूनापन लग रहा है, तो याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।

सुबह की पहली किरण कितनी खूबसूरत होती है ना, अंधेरों को धीरे धीरे पीछे छोड़ती हुई और आसमान पर रोशनी की एक नई लकीर खींचती हुई। सूरज हमें रोज एक संदेश देता है। हर रात के बाद सुबह होती है, तो फिर हम अपनी परेशानियों से क्यों डरे। आज अगर रास्ता मुश्किलों में है तो चलना मत छोड़िए, सफलता यदि दूर है तो कोशिश करना मत छोड़िए।

सुबह सुबह जब किसी बगीचे में जाइए तो फूलों को देखिए। गुलाब को इस बात की फिक्र नहीं कि सामने वाला फूल उससे ज़्यादा खूबसूरत है या नहीं। सूरजमुखी को ये फिक्र नहीं कि वो गुलाब क्यों नहीं। हर फूल अपनी पहचान के साथ खिलता है। शायद यही बात हमारे लिए भी है। किसी का बसंत आज है तो किसी का कल आएगा। बस इतना देखिए कि क्या आपका आज कल के आज से थोड़ा बेहतर है।

जरा ध्यान दीजिए, सुबह के इस शांत वातावरण में पंछियों की आवाज सुनाई दे रही होगी। इन नन्हे परिंदों को देखिए, उन्हें नहीं मालूम कि आज इन्हें कितना दाना मिलेगा, ये भी नहीं मालूम कि मौसम कैसा रहेगा, फिर भी वे सुबह होते ही पंख फैलाकर उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है कि आसमान में उनके लिए भी जगह है। फिर हम क्यों डरे? अपने सपनों को पूरा करने के लिए उड़ चलते हैं, अपनी उम्मीद के पंख फैलाएं।